0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग ललित, कलाकार थे आमिया रंजन बैनर्जी। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन

0: एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्वयुद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस सामने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Suvendu Adhikari will take oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. The oath-taking ceremony will be held at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, BJP President Nitin Naveen, Union Ministers and Chief Ministers of all NDA-ruled states are expected to attend the swearing-in ceremony. Earlier, Mr. Adhikari was elected the leader of the state BJP Legislature Party. The Legislature Party meeting was held in Kolkata in the presence of the Home Minister Amit Shah yesterday. Mr. Shah, who presided over the meeting, said that all the proposals were received in the favour of Suvendu Adhikari. Adhikari. Following his election as the BJP legislature party leader, Mr. Adhikari met West Bengal Governor R.N. Ravi and staked claim to form the first BJP-led government in the state. The BJP registered a historic victory in assembly elections, ending TMC's 15-year rule. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. Reports are also coming that the swearing-in ceremony, which was to take place today, will not be held. Earlier, TVK had claimed that the actor-turned-politician once again met the governor yesterday and staked claim to form the government, saying that he has the majority. Meanwhile, the IUML headed by Professor Khader Mohideen has said that his party has not given a letter of support to TVK. In another surprising move, the meanwhile AMMK party leader TTV Dhinakaran approached the governor and submitted a letter of support from S. Kamraj, the lone MLA elected from Mannagudi, to make AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswamy as the new Chief Minister. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Guyanese Health Minister and discussed the progress of India-Guyana health ties. Dr. Jaishankar, who is on a three-nation visit to the Caribbean, met Health Minister Dr. Frank Anthony on a stopover at Georgetown in Guyana. Dr. Jaishankar was in Jamaica on the first leg of his tour, then went to Suriname and will be in Trinidad and Tobago for the final leg of his visit. U.S. President Donald Trump has announced a three-day ceasefire between Russia and Ukraine, noting that the temporary truce coincides with Russia's Victory Day celebrations commemorating the then-Soviet Union's role in the World War II. In a post on Truth Social, Mr. Trump said the ceasefire would take place from 9th to 11th of May and would include a suspension of all kinetic activity between the two countries. Mr. Trump stated that the request for the temporary truce was made directly by him and noted that the agreement will also include a prisoner exchange involving 1,000 prisoners from each side. The standoff over the Strait of Hormuz has intensified after Iran rejected a US-backed draft resolution at the United Nations Security Council, calling it flawed and politically motivated. Tehran argued that the proposal will legitimize unlawful actions rather than help resolve the conflict. Iran said the only path towards stability is ending the war, lifting the US maritime blockade on Iranian ports and restoring normal shipping through the Strait of Hormuz. The draft resolution, backed by the United States along with Bahrain, Saudi Arabia, UAE, Kuwait and Qatar, seeks to protect the freedom of navigation in one of the world's most critical energy corridors. Washington has accused Iran of threatening commercial shipping and destabilizing maritime traffic. Israel and Lebanon will resume negotiations with 2 days of intensive talks facilitated by the U.S. on 14th of May and 15th of May. U.S. State Department said delegations from both countries will meet in order to form a comprehensive peace and security agreement that substantively addresses the core concerns of both countries. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है 6:10 और 15 सेकंड। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: श्रोताओं, अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम चिंतन।
1: नमस्कार, आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे रवि शर्मा माधूब की लिखी हुई लघु वार्ता धार्मिक ग्रंथों से प्रेरणा।
2: धार्मिक ग्रंथ से तात्पर्य है ऐसा ग्रंथ जिसका संबंध किसी न किसी धर्म की मान्यताओं, नियमों, संदेशों आदि से हो। विश्व में मुख्यतः 12 धर्म प्रचलित हैं। प्रत्येक धर्म के संस्थापकों ने अपने धर्म के कुछ नियम, अनुशासन, संदेश आदि दिए, जिनमें से कुछ कालांतर में ग्रंथों के माध्यम से लिखित रूप ग्रहण कर भक्तों तक पहुंचे। विश्व के लगभग प्रत्येक धर्म में मानव के लिए हितकर, प्रेरक, उन्नयन आधारित विचार प्रस्तुत किए गए। सभी धार्मिक ग्रंथों में जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चिंतन किया गया। जीवन की विभिन्न समस्याओं पर विचार करते हुए उनके समाधान तलाशने का प्रयास किया गया। मनुष्यों के भीतर छिपे पशु को दबाए रखना और उसके देवत्व को उभारने का प्रयास भी अधिकतर धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध या जैन धर्म हो, सभी के धार्मिक ग्रंथ मनुष्य को सदमार्ग पर चलाने का प्रयास करते हैं। प्रायः यह माना जाता है

0: कि ये धार्मिक ग्रंथ ईश्वरीय प्रेरणा या दैवीय प्रेरणा से लिखे गए। विश्व के कुछ प्रमुख धर्मों के धार्मिक ग्रंथों में हिंदू धर्म के आधार ग्रंथ हैं वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, महाभारत आदि। वेदों में जिस ज्ञान के भंडार को समाहित किया गया है उसके वास्तविक अर्थ को समझने, यज्ञों में उस ज्ञान की प्रयोग विधि जानने, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति तथा उसकी सुरक्षा के लिए ऋषियों द्वारा रचित वेद संबंधी ग्रंथों के 6 भाग हैं। वेदांग 6 हैं, उपवेद 4 हैं, 18 पुराण, 108 उपनिषद और 2 ऐतिहासिक ग्रंथ अर्थात रामायण एवं महाभारत। स्मृति ग्रंथ हालांकि 250 का उल्लेख मिलता है लेकिन लगभग 100 ही उपलब्ध हैं और उनमें भी 22 अत्यधिक प्रसिद्ध रहे हैं। बौद्ध धर्म के ग्रंथ त्रिपिटक कहलाते हैं। जैन धर्म के दर्शन को जन सामान्य तक पहुंचाने वाले 44 ग्रंथ माने जाते हैं। गुरु की वाणी गुरु ग्रंथ साहब सिखों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। इसमें विभिन्न संतों और गुरुओं की वाणी को शामिल किया गया है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबल है जिसके 2 भाग हैं, ओल्ड टेस्टामेंट तथा न्यू टेस्टामेंट। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है कुरान। इसमें कई धार्मिक आदेश हैं जिनमें प्रतिदिन 5 बार नमाज अदा करने की आवश्यकता भी शामिल है। यहूदियों की धार्मिक पुस्तकें हैं तनख तथा तलमूड। तनख को हिब्रू में बाइबल कहा जाता है। तनख यहूदी धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। इसमें जीवन रक्षा से संबंधित कई नियम बताए गए हैं। संस्कृत का एक प्रसिद्ध श्लोक है, विद्या ददाति विनयम् विनयाद्याति पात्रताम्। इस पूरे श्लोक का जो अर्थ आता है वह है, विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से पात्रता आती है, पात्रता से धन प्राप्त होता है और धन से धर्म और सुख की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व होता है। ये ग्रंथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक धार्मिक विश्वास को फैलाने का काम करते हैं। ये नैतिकता, जीवन मूल्य तथा मानव मूल्य सिखाने में सहायक सिद्ध होते हैं। ये ग्रंथ मानसिक शांति, आत्मसंयम, आध्यात्मिक उन्नति और आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग हैं। ये धार्मिक ग्रंथ जीवन के प्रत्येक पक्ष को स्पष्ट करने वाले दिव्य वचन हैं। धार्मिक ग्रंथों से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाते हुए धर्म, अर्थ, काम और मानव जीवन के परम लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने अपने धार्मिक ग्रंथों के अर्थ तथा मूल भाव को जानें, समझें और अपनाएं। इससे हम धर्म के नाम पर प्रचलित कुरीतियों और ढोंग आडंबरों से बच पाएंगे।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है रामचरितमानस की संगीतमय प्रस्तुति। अभी आप सुनेंगे बालकांड भाग 50।

हाथ में अपनी वीणा लिए हरिगुण गाते हुए एक बार देवर्षि नारद नारायण के समक्ष क्षीर सागर जा पहुंचे। यद्यपि शिवजी ने नारद जी को कामदेव की करतूत पर अपनी विजय का हाल भगवान पर प्रकट न करने का परामर्श दिया था, फिर भी देवर्षि ने प्रभु से कामदेव का चरित्र कह सुनाया। प्रभु से ये बात छिपी न रही कि नारद जी को कामदेव पर विजय पा लेने का अभिमान हो गया है। भक्तों का कल्याण प्रभु का गुण है, अतः अभिमान के अंकुर को नारद जी के मन में से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने 400 कोस विस्तार वाले एक माया नगर की रचना की और उसे वैकुंठ से भी अधिक सुंदर बना दिया। इस माया नगरी के राजा शील निधि ने अपनी अति सुंदर कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचा। इस अनिंद्य सुंदरी का वरण करने के लिए अगणित राजा वहां आ पहुंचे।

0: पश्चिम बंगस्य राज्यपालेन आर एन रविना सह मिलित्वा राज्ये प्रथमं भाजपा नेतृत्वस्य सर्वकारस्य निर्माणाय प्रतिज्ञां प्रदत्तवान्। विधानसभा निर्वाचने भाजपेति दलं ऐतिहासिकं विजयं प्राप्नोत्। टीएमसीति दलस्य 15 वर्षाणां शासनं च समापितम्। पुदुचेरी राज्ये राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधनस्य मुख्यमंत्री पदस्य प्रत्याशी एन रंगासामी इत्येषः उपराज्यपालेन के कैलासनाथन वर्येण सह मिलित्वा अग्रिम सर्वकारस्य निर्माणाय प्रस्तावः प्रदत्तवान्। श्री रंगासामी बहुसंख्यायां विधायकानां समर्थनपत्राणि उपराज्यपालाय समर्पितवान्। रक्षा अनुसंधान विकास संघटनेन डीआरडीओ इत्यनेन भारतीय वायुसेनया च गुरुवासरे ओडिशा तटस्य समीपे टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन तारेति शस्त्रस्य प्रथमोड्डयन परीक्षणं सफलतया संपादितम्। तारेति भारतस्य प्रथमा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्रव्यवस्थास्ति या मार्ग निर्देशित युद्धोपकरणान् यथार्थ निर्देशित शस्त्रेषु परिवर्तयति। दुबई नगरे भारतस्य वाणिज्य दूतावासेन समुद्रे मृतस्य एकस्याः नौकायाः भारतीयस्य चालकदलस्य मृत्योः विषये शोकः प्रकटितः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये पटले सन्देशे कॉन्सुलेट जनरल इत्यनेन घटनैषा दुर्भाग्यपूर्णं उक्तम्। सः पोतस्य स्वामिना सह निरन्तरं सम्पर्के अस्ति। अधिकविवरणानि च अन्वेष्टुं प्रयासरतः अस्ति। दूतावासेन आश्वासितं यत् अस्मिन् विषये सर्वविधसाहाय्यं प्राधान्येन प्रदीयन्ते। हॉर्मुज जलसन्ध्यां गतिरोधः तदा तीव्रः अभवत् यदा संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सुरक्षापरिषदि अमेरिकासमर्थितस्य प्रस्तावस्य प्रारूपम् ईरानदेशेन निराकृतम्। तद्दोषपूर्णं राजनीतिना प्रेरितं चास्तीति उक्तम्। तेहरानेन उक्तं यत् अयं प्रस्तावः विवादस्य समाधाने साहाय्यं न कृत्वा अवैधरूपेण कार्यं कर्तुं प्रेरयिष्यति। तेहरानेन संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सदस्यराष्ट्रान् प्रस्तावितस्य प्रस्तावस्य समर्थनं न कर्तुं प्रार्थितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दिल्ल्याः अरुणजेटलीति क्रिकेट क्रीडाङ्गणे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलं 8 पराजितम्। अद्य जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडाङ्गणे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफ़् गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने 12 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आर एन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं तमिलनाडु में तमिल वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरल में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी

0: कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा है कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा में संबंधित था। ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। उधर अमेरिका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Suvendu Adhikari will take oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. The oath-taking ceremony will be held at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, BJP President Nitin Naveen, Union Ministers and Chief Ministers of all NDA-ruled states are expected to attend the swearing-in ceremony. Earlier, Mr. Adhikari was elected the leader of the state BJP Legislature Party. The Legislature Party meeting was held in Kolkata in the presence of the Home Minister yesterday. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK Chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. Reports are also coming that the swearing-in ceremony, which was to take place today, will not be held. Earlier, TVK had claimed that the actor-turned-politician once again met the governor yesterday and staked claim to form the government, saying that he has majority. Meanwhile, the IUML, headed by Professor Kadir Muhyiddin, has said that his party has not given a letter of support to TVK. In another surprising move, the meanwhile AMMK party leader TTV Dinakaran approached the governor and submitted a letter of support from S. Kamarat, the lone MLA elected from Mannarkudi, to make AIADMK General Secretary E. Palanisamy as the new Chief Minister. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Guyanese Health Minister and discussed the progress of India-Guyana health ties. Dr. Jaishankar, who is on a three-nation visit to the Caribbean, met Health Minister Dr. Frank Anthony on a stopover at Georgetown in Guyana. Dr. Jaishankar was in Jamaica on the first leg of his tour, then went to Suriname and will be in Trinidad and Tobago for the final leg of his visit. U.S. President Donald Trump has announced a three-day ceasefire between Russia and Ukraine, noting that the temporary truce coincides with Russia's Victory Day celebrations commemorating the then Soviet Union's role in World War II. In a post on Truth Social, Mr. Trump said the ceasefire would take place from 9th to 11th of May and would include a suspension of all kinetic activity between the two countries. Mr. Trump stated that the request for the temporary truce was made directly by him and noted that the agreement will also include a prisoner exchange involving 1,000 prisoners from each side. The U.S. has announced sanctions against 10 individuals and companies, including several in China and Hong Kong, over accusations they aided Iran's efforts to secure weapons and the raw materials needed to build its Shahed drones and ballistic missiles. A report.
2: The U.S. Treasury's last night move comes days before U.S. President Donald Trump plans to travel to China for a meeting with President Xi Jinping and as efforts to end the war with Iran have stalled. In a statement, U.S. Treasury said it remains ready to take economic action against Iran's military industrial base to prevent Tehran from reconstituting its production capacity. Treasury said it is also prepared to act against any foreign company supporting illicit Iranian commerce, including airlines, and could impose secondary sanctions on foreign financial institutions that aid Iran's efforts, including those connected to China's independent teapot oil refineries. Experts say Treasury's actions were aimed at cracking down on Iran's ability to threaten ships operating in the Strait of Hormuz and regional allies. Ashish Abraham for Akashwani News, Delhi.
1: The standoff over the Strait of Hormuz has intensified after Iran rejected a U.S.-backed draft resolution at the United Nations Security Council, calling it flawed and politically motivated. Tehran argued that the proposal will legitimize unlawful actions rather than help resolve the conflict. Iran said the only path towards stability is ending the war, lifting the U.S. maritime blockade on Iranian ports and restoring normal shipping through the Strait of Hormuz. Israel and Lebanon will resume negotiations with 2 days of intensive talks facilitated by the U.S. on May 14th and May 15th. U.S. State Department said delegations from both countries will meet in order to form a comprehensive peace and security agreement that substantively addresses the core concerns of both the countries. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 7:10:14। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आप सुनेंगे अमृता दत्ता से भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें अभी आपने सुना अमृता दत्ता से भजन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। श्रोताओं, गीतों भरी गुड मॉर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। मैं कुसुम, आपकी होस्ट एंड दोस्त। दोस्तों, हर सुबह एक नया जन्म है, हर सुबह हमारा पुनर्जन्म होता है। आज हम जो करते हैं वही सबसे अधिक मायने रखता है, क्योंकि जब ये विचार हमें याद दिलाता है कि जो बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो दोस्तों, नया दिन हमें फिर से शुरुआत करने का अवसर देता है। सुबह केवल सूरज का आना नहीं, वो हमारे भीतर उम्मीद की एक नई किरण, साहस और नई सोच का जन्म भी होता है। बीता हुआ कल समाप्त हो चुका है, कल कोई गलती हुई, कोई दुख मिला, कोई सपना अधूरा रह गया, तो हमें सुबह ये संदेश देती है कि जीवन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एक नया दिन, एक नए दिन और नए सुबह की शुरुआत हुई है। फिर से कोशिश करने की, इस बार और बेहतर कोशिश करने की। हम अक्सर भविष्य की चिंता, अतीत के पछतावे में खो जाते हैं दोस्तों, लेकिन सच

यह है कि हमारा भविष्य आज के छोटे छोटे कर्मों से बनता है। आज की मेहनत कल की सफलता है, आज की सकारात्मक सोच कल की शांति और आज का धैर्य कल की जीत है। तो यूं ही गुनगुनाते रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए, जीवन को बेहतर बनाइए संगीत के साथ। सुनते रहिए हमारे साथ संगीत गीतों भर। गुड मॉर्निंग।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग, मेरे यानी कुसुम के संग। हम बात कर रहे थे आज की। हमने बताया कि जैसे आज में ही हमें जीना चाहिए, आज के कर्मों से ही हमें हमारा जो भविष्य होता है वो बनता है। दोस्तों ये हम सभी जानते हैं। ये कहना केवल एक प्रेरणादायक वाक्य नहीं बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। दोस्तों हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा भविष्य, किस्मत, परिस्थितियां दूसरों के फैसलों से तय होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में भविष्य की नींव हमारे आज के विचार, आदतें और कर्म रखते हैं। आज आप जो करते हैं वो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी और दिशा तय करती है। आज की जो आपकी मेहनत है वो जो कल है वो कल की सफलता में तब्दील हो जाती है। आज यदि आप आलस करेंगे तो कल आपको सिर्फ और सिर्फ पछतावा मिलेगा। आज अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो कल आपको आत्मविश्वास, सफलता और बहुत कुछ मिलेगा। और आज का जो धैर्य है वो कल की बड़ी उपलब्धि बन जाता है। दोस्तों भविष्य अचानक नहीं बदलता, वो रोज़ किए गए छोटे छोटे प्रयासों से बनता है। तो इसलिए हमें भी हर दिन छोटे छोटे प्रयास करने हैं। यही जीवन का नियम है। जो बीज आज हम बोते हैं वही कल फल बनकर हमारे पास लौटते हैं और हमारा जीवन सकारात्मक बन जाता है।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, हम बात कर रहे थे कर्म की, कि जो हम बीज आज बोते हैं वही कल फल बनकर हमारे पास ही वापस लौटता है। कर्म के बहुत सारे प्रभाव होते हैं, कुछ सकारात्मक होते हैं और कुछ नकारात्मक होते हैं। हमारे केवल कर्म जो होते हैं हमारी बाहरी सफलता ही नहीं बनाते, बल्कि हमारा व्यक्तित्व भी बनाते हैं। आपने महसूस किया होगा कि यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो मन की शांति, आत्मविश्वास, सुकून, सम्मान सब कुछ मिलता है। हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, जीवन में सकारात्मकता ही सकारात्मकता आती है, एक सकारात्मक ऊर्जा हमें देती है। कैसे भी जो सकारात्मक कर्म होते हैं, चाहे वो मन कर्म, वचन और वाणी से जो भी हम कर्म अपने सेंसेस के थ्रू करते हैं, वो सभी हमें अच्छे कर्म हमें सुकून देते हैं दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें नकारात्मक कर्मों की, तो इससे पछतावा मिलता है, तनाव मिलता है, असंतोष मिलता है और कई बार अवसर भी खो जाते हैं। तो जीवन की यही सीख है कि हर दिन को अवसर समझिए, छोटी छोटी जो आदतें हैं उनको बनाइए। अच्छी आदतें बनाएंगे तो वह हमारे लिए ही बेनिफिशियल होंगी। अपने लक्ष्य की तरफ रोज़ एक नया कदम बढ़ाएंगे तो हमारी सफलता निश्चित होगी, क्योंकि सफलता एक दिन की नहीं दोस्तों, रोज़ के प्रयासों से ही हमारी सफलता बनती है। भविष्य कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अचानक सामने आ जाए, भविष्य यह है, वो है जिसे हम आज अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, छोटे छोटे प्रयास, सकारात्मक विचारों से बनाते हैं। तो आज का जो परिश्रम है, कल ही पहचान बनाता है दोस्तों।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, बात कर रहे थे हम आज की, यानी आज जो पल हमें मिला है। आगे बढ़ने का रहस्य है शुरुआत करने में निहित है दोस्तों। ये पंक्ति हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य सिखाती है। अक्सर लोग सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन शुरुआत करने से डर जाते हैं। वे सही समय, सही अवसर या पूरी तैयारी का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि दोस्तों, सफलता की पहली सीढ़ी केवल शुरुआत करना है। कई बार हम शुरुआत करना ही भूल जाते हैं, हमें डर लगता है। किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए पहला कदम उठाना ज़रूरी होता है दोस्तों। जब तक हम शुरुआत नहीं करते, तब तक कोई बदलाव संभव भी नहीं हो सकता। मान लीजिए कि एक किताब लिखनी है आपको, तो जब तक आप ये सोचेंगे नहीं, आप सोचते रह जाएंगे जब तक आप उस किताब को लिखने के लिए जो आपके विचार हैं, एक बार किताब उठाकर पहला शब्द लिख नहीं लेते। तो इसलिए शुरुआत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सफलता की शुरुआत ही पहले प्रयास से होती है। जब आप कुछ भी, अगर आपके मन में जो भी विचार आते हैं वो लिखते हैं, तो वहीं से आपका जो पहला कदम है वो शुरुआत हो जाती है। तो सपनों की शुरुआत होती है पहला कदम। जीवन में सबसे कठिन काम अक्सर जो हमारा जो शुरुआत होती है फर्स्ट टाइम, वही हो जाती है। अगर उसमें डिले हो जाता है तो वहाँ पे हमारे सपने अधूरे हो जाते हैं। लेकिन एक बार यदि आपने कदम आगे बढ़ा लिया, तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं।

0: दोस्तों, हम बात कर रहे थे कर्म की आज की, कि हमें प्रयास करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। चाहे छोटा सा ही प्रयास हो, करना चाहिए। लेकिन अक्सर असफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। लोग क्या कहेंगे इस बारे में ज़्यादा सोचते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें ये अभी तक पूरी तरह नहीं तैयार हुए हैं, या किसी परफेक्ट टाइम का इंतज़ार कर रहे होते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, हमेशा ये याद रखना चाहिए कि परफेक्ट समय कभी भी नहीं आता। समय को परफेक्ट हमारे कर्म बनाते हैं, हमारे प्रयास बनाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण ही ले लीजिए कि यदि हम मिट्टी में छोटा सा बीज डालते हैं तो तुरंत विशाल पेड़ नहीं बनता, धीरे धीरे अंकुर बनता है। और जब बड़ा होता है तो वो छोटा ही होता है, लेकिन पता नहीं होता कितना बड़ा पेड़ बनेगा। तो इसी तरह हमारी छोटी छोटी जो कर्म होते हैं, छोटे छोटे प्रयास होते हैं, वही बड़े पेड़ में तब्दील होते हैं। सपने देखने से मंजिलें नहीं मिलती, मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना पड़ता है दोस्तों। तो मुझे यानी कुसुम को दीजिए इजाज़त, और अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, और इंजॉय करिए ये गीत।
1: तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। 8 बजने को हैं, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल RN रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

0: ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
1: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सुनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सुनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
1: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IUML ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। AMM के पार्टी के नेता TTV दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें AIADMK के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LVMH मोइट हेनेसी लुई विटो ACE के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज़ जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
4: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
6: Exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई।

0: भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी। राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट है नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सुवेंदु अधिकारी आज सुबह मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और फुटबॉल में भारत ने 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एशिया कप के क्वार्टर फाइनल्स में पहली बार जगह बनाकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। सुवेंदु अधिकारी आज मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। हलफ बरदारी की तकरीब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: रियासत नई सरकार की हलफ बरदारी की तारीखी घड़ी का मुशाहदा करने के लिए तैयार है। ये तकरीब कोलकाता के आइकॉनिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। हालिया इख्तिताम पजीर असेंबली इंतखाबात में फैसला कुन वोट हासिल करने के बाद रियासत की सियासी तारीख में पहली मरतबा भारतीय जनता पार्टी की क्यादत वाली सरकार बाकायदा तौर पर ओहदा संभालेगी। हलफ बरदारी की तकरीब में मुल्क भर से पार्टी की हिमायत करने वाले लाखों अफराद, सियासी लीडरों और मुअज्जज मेहमानों की आमद का इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी की बरसर इक़्तदार रियासतों के वज़ीर आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। गवर्नर RN रवि वज़ीर आला और नई काबीना के मेम्बरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। पार्लिमानी पार्टी के नौमंतखब लीडर सुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि रियासत में इदारा जाती बदरवानी की छानबीन के लिए एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन कायम किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि RG खर अस्पताल और संदेश खाली जैसे वाकयात के सिलसिले में भी तहकीकात शुरू की जाएगी। अधिकारी ने इस जीत को बीजेपी कारकुनों की इज्तिमाही कोशिशों को मौसूम करते हुए पार्टी के मंशूर में शामिल सभी वादों को वक्त पर पूरा करने का अहद किया। ये तकरीर 25वें बैशाखी के मौके पर मुनक्किद की जा रही है, जो रवींद्रनाथ टैगोर का यौम पैदाइश है। इससे तकरीब की सकाफती और अलामती अहमियत बढ़ जाएगी। पूरे वस्ती कोलकाता में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रोग्राम को खुशसूबी के साथ मुनक्किद कराने को यकीनी बनाने के लिए हजारों पुलिस अहलकारों को तैनात किया गया है। कोलकाता से संदीप

0: दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि मगरबी बंगाल में बीजेपी हुकूमत भारत की सरहदों को महफूज बनाएगी और कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करेगी। कल कोलकाता में मगरबी बंगाल के 9 मुंतखबा बीजेपी अरकान असेंबली से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि बीजेपी की जीत का मकसद अपनी तंजीम को तौसी देने या इसके नजरियात को जवाब फराहम करने का नहीं है, बल्कि इस जीत का मकसद मुल्क की कौमी सलामती की सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करना है। उन्होंने कहा कि आसाम, त्रिपुरा और अब मगरबी बंगाल में बीजेपी की हुकूमतें सरहद को नाकाबिले तस्खीर किले में तब्दील कर देंगी।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: जनाब शाह ने जोर देकर कहा कि बीजेपी हुकूमत में दरअंदाजी और गायों की स्मगलिंग नामुमकिन हो जाएगी। तमिलनाडु में टीवीके के सरबराह सी जोसेफ विजय के तहत सरकार की तश्कील के सिलसिले में अब भी गैर यकीनी सूरत हाल है। नया मोड़ ये आया है कि आईयूएमएल ने हुकूमत की तश्कील के लिए टीवीके को अपनी हिमायत की खबरों से इनकार कर दिया है। एक और वाकये में ये खबरें भी आ रही हैं कि हलफ बर्दारी की तकरीब जो आज मुनाकिद होनी है मुनाकिद नहीं होगी। प्रोफेसर कादिर महीउद्दीन की सरबराही वाली आईयूएमएल ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिजागा वेत्री करगम को हिमायतनामा नहीं दिया है। एक और हैरानकुन वाकया यह है कि एएमएमके पार्टी के लीडर टीटीवी दिनाकरन ने गवर्नर से रुजू किया है और इस कामराज की तरफ से हिमायतनामा पेश किया है, जो मन्नार दुई से मुंतखबा वाहिद एमएलए हैं। उन्होंने यह हिदायतनामा एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी एडापड्डी पलानीस्वामी को वजीर आला बनाने के हक में पेश किया है। एक रिपोर्ट।
3: तमिलनाडु में जहां 85% से ज़्यादा वोट डाले गए हैं, अभी तक नई हुकूमत और वज़ीर आला के तकरूर का इंतज़ार है। नई हुकूमत की तश्कील में इसलिए ताखीर हो गई है कि वाहिद सबसे बड़ी पार्टी टीवीके भरपूर अक्सरियत 118 की तादाद तक अभी तक नहीं पहुंच सकी है। अलबत्ता वीसीके की तरफ से महज एक और हिमायतनामा मौसूल हुआ है, जिसे एक हतमी कदम माना जा सकता है, क्योंकि पार्टी के पास 2 अरकान असम्बली आ गए हैं, जिसके बाद ये तादाद 118 हो जाएगी। तब तक किसी फैसले का इंतजार रहेगा। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सब्रमणि को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस मुकर्रर किया है। वजारत दिफा का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि ओहदा संभालने की तारीख से अगले अहकाम तक फौजी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमात अंजाम देंगे। वो जनरल अनिल चौहान की मुलाजमत की मुद्दत 30 मई को मुकम्मल होने के बाद अपना ओहदा संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि एक इंतहाई मुअज्जज़ अफसर हैं, जिनकी 4 दहाइयों से ज़्यादा की शानदार खिदमात हैं। वो सितंबर 2025 से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में मिलिट्री एडवाइज़र के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमांड के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने मगरबी और शिमाली महाजों पर अहम ऑपरेशनल फॉर्मेशंस की कमांड भी की है। हुकूमत ने वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को बहरिया का अगला सरबराह मुकर्रर किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन इस वक्त मगरबी बहरिया की कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। एडमिरल तकरीबन 4 दहाइयों की शानदार खिदमात हैं। भारतीय बहरिया में मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए उनका ऑपरेशनल, स्ट्रेटजिक और जवानों से मुतालिक बंदोबस्त का काफ़ी तजर्बा है। वो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे, जो 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 का कल बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। ये तकरीबात मंदिर की तामीर नौ के 75 साल पूरे होने के मौके पर मनाई जा रही हैं। इन तकरीबात में मुल्क भर के अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
0: सोमनाथ के मंदिर में सोमनाथ अमृत पर्व पठात्मक अति रुद्र के साथ शुरू हो गया है। आज 3 रोज यज्ञ का भी आगाज होगा, जिसके दौरान सामग्री के तौर पर तकरीबन 125,000 अशिया मुकद्दस आग की नज़र की जाएंगी और मौजूदा बैन अल-अक़वामी तनाज़ात के दौरान आलमी अमन और इंसानियत की भलाई के लिए दुआ की जाएगी। ये तकरीबात 11 मई को इख्तिताम

0: नज़ीर हो जाएंगी जब मंदिर में अज़ीमुशान तरीके से कुंभाभिषेक का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें 11 मंदिरों का पानी नज़र किया जाएगा। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान की तरफ से अमेरिका की हिमायत वाली करारदाद के एक मुसव्वदे को मुस्तरद किए जाने के बाद आबनाए हुरमुस पर तातुल में शिद्दत आ गई है। ईरान ने कहा है कि इस करारदाद में खामियां हैं और इसके पीछे सियासी मकसद कारफरमा है। ईरान ने कहा है कि इस तजवीज़ से गैर कानूनी इकदाम को कानूनी जवाब हासिल होगा, बजाय इसके कि इससे तनाज़े को हल करने में मदद मिले। ईरान ने अक़वामे मुत्तहिदा के रुकन मुल्कों से अपील की है कि वो इस मुजवजा करारदाद की हिमायत न करें। तफसील हमारे नमानिगार से।
0: इस करारदाद को अमेरिका के साथ साथ बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर की हिमायत हासिल है और इसमें तवानाई की दुनिया की सबसे अहम गुजरगाह में जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है। अमेरिका ने ईरान पर कमर्शियल जहाज़रानी के लिए ख़तरा पैदा करने और बहरी ट्रैफिक को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम आयद किया है। इसी दौरान ईरान की फ़ौज ने कहा है कि अमरीकी फ़ौजों ने मुत्तहिदा अरब इमारात में फुजैरा बंदरगाह के नज़दीक ईरान के एक तेल टैंकर और एक और जहाज़ को निशाना बनाया था, जबकि इत्तला के मुताबिक अमरीका के फ़दाई हमलों में बंदर खमीर, सिरिक और किस्म जजीरे में शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। इधर ईरान का फ़दाई निज़ाम भी अपने दिफा के लिए सरगर्म है। समंदर में बढ़ती हुई इस महाज़ाराई में इंसानी जानें भी तलफ हुई हैं, लिहाजा दुबई में भारत के मिशन ने एक जहाज़ में सवार भारतीय अमले के एक अहलकार की हलाकत पर दुख का इजहार किया है और इसे एक अफसोसनाक वाक़या करार दिया है। इस सबसे अलग ईरान ने खलीज ओमान में एक टैंकर पकड़ लिया है, जबकि अमरीका ने कहा है कि उसने उसी रोज़ दो जहाज़ों को नाकारा बनाया है। कल के इन वाक़यात के बावजूद सिफारती ज़राए ने काम करना बंद नहीं किया है। 14 निकाती अमरीका ईरान मुजवजा फ्रेमवर्क अपनी जगह मौजूद है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: अमरीका ने 10 अफराद और कंपनियों के खिलाफ बंदिशों का ऐलान किया है, जिनमें चीन और हांगकॉन्ग के अफराद और कंपनियां भी शामिल हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हथियार और शाही ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने में दरकार खाम मवाद हासिल करने की ईरान की कोशिशों में मदद दी है। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: अमेरिका की तरफ से ये बंदिशें सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदर शी जिनपिंग के साथ एक मीटिंग के लिए चीन जाने के मंसूबे से कुछ दिन पहले आयद की गई हैं, क्योंकि ईरान के साथ जंग खत्म करने की कोशिशों में तातुल पैदा हो गया है। एक बयान में अमरीकी महकमा खजाना ने कहा कि वो ईरान के फौजी सनती ठिकाने के खिलाफ इकतसादी कार्रवाई करने को तैयार है, ताकि ईरान को हथियार बनाने की सलाहियत को असर नौ परवान चढ़ाने से रोका जा सके। महकमे ने कहा है कि वो एयरलाइंस समेत ऐसी किसी भी गैर मुल्की कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने को भी तैयार है जो ईरान की नाजायज तजारत की हिमायत करती हो। वो उन गैर मुल्की माली इदारों पर दूसरे दौर की बंदिशें आयद कर सकता है जो ईरान की कोशिशों में मदद दे रहे हैं, जिनमें वो इदारे भी शामिल हैं जो चीन की छोटी आज़ाद रिफाइनरी से वाबस्ता हैं। माहिरीन का कहना है कि महकमे ख़जाना की इस कार्रवाई का मकसद आबनाए हुरमुज और इलाकाई इत्तेहादियों में जहाज़ों की आमदोरफ्त में धमकी देने की ईरान की सलाहियत के खिलाफ कार्रवाई करना है। न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के दरमियान एक 3 रोज़ा जंग बंदी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यह आर्जी माहदा दूसरी जंग अजीम में उस वक्त की सोवियत यूनियन के रोल की याद में मनाई जाने वाली रूसी फतह के दिन की तकरीबात के मौके पर किया गया है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में जनाब ट्रंप ने कहा कि यह जंग बंदी 9 मई से 11 मई तक रहेगी और इसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान किसी भी तरह की फौजी कार्रवाई मुअत्तल रहेगी। उन्होंने कहा कि इस माहदे में दोनों तरफ से 1,000 कैदियों को रिहा किया जाना भी शामिल है। भारत के महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिन में केरलम, माहे, तकसीब, लक्षद्वीप, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक आज छत्तीसगढ़, गंगाई मगरबी बंगाल, झारखंड और विदर्भ में गरज चमक और 50 किलोमीटर फी घंटा से की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। फुटबॉल में भारत ने पहली बार 17 साल से कम उम्र के खवातीन के AFC एशियन कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करके तारीख रकम की है। भारत ने कल चीन के शहर सुजाऊ में अपने ग्रुप बी के फाइनल में लबनान को 4-0 से हराया। भारत के लिए प्रतिका बर्मन ने 7वीं और 85वें मिनट में और देवी सेंजम ने 36वें और जोया ने 72वें मिनट में गोल किए। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने पर भारत 2026 के फीफा अंडर 17 खवातीन आलमी कप में अपनी जगह बना लेगा।

0: आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने मगरबी बंगाल में बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी को लीडर मुंतखब किए जाने के बाद रियासत के उजियाला के तौर पर उनके नाम के ऐलान की खबर को शह सुर्खी बनाया है। हलफबरदारी की तकरीब आज दिन में 11 बजे होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत सरकर्दा लीडर इसमें शिरकत करेंगे। मुश्तरका कमांडरों की कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन कमांडरों से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जंग में बर्तरी और दुश्मन से आगे रहने के लिए हैरत का अंसुर पैदा करें। इंतखाबी कमीशन ने असेंबली इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक इंडेक्स कार्ड और शुमाराती आदाद शुमार जारी किए। DRDO ने मकामी ग्लाइड हथियारों के निज़ाम तारा का कामयाब तजर्बा किया। इन खबरों को रोजनामा प्रताप ने पहले सफ़े पर जगह दी है। भारत और सिंगापुर इंसदादी दहशतगर्दी और सरहद पार जरायम पर मुश्तरक वर्किंग ग्रुप के 5वें इजलास में दहशतगर्दी और सरहद पार जरायम के लिए ताउन बढ़ाने पर मुत्तफिक। ब्रिक्स की सदारत के दौरान भारत MSMEs ताउन को फ़रोग देने की तैयारी में। इन खबरों को रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने खसूसी तौर पर शाया किया है।
0: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यन को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और फुटबॉल में भारत ने 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एशिया कप के क्वार्टर फाइनल्स में पहली बार जगह बनाकर तारीख रकम की है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। समय हुआ है 8:45 और 15 सेकंड। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
3: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। आज के अंक में शामिल है वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस पर जानकारी, बातचीत डॉक्टर तुलिका सेठ से जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हेमाटोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं, और एक थैलेसीमिया मेजर पेशेंट निष्ठा से दी गई एक जानकारी, और उसके बाद सुनिए एक भेंटवार्ता ग्रीष्म ऋतु और आयुर्वेद। जानकारी देंगी श्याम प्रिया। दोस्तों, दुनिया भर में 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक लक्ष्य थैलेसीमिया जैसे गंभीर अनुवांशिक विकार और इससे पीड़ित रोगियों के संघर्ष के संबंध में जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही ये दिवस पीड़ितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों तथा इस रोग के उन्मूलन की दिशा में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों का भी सम्मान करता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस, इस पर विशेष जानकारी हमने प्राप्त की डॉक्टर तुलिका सेठ से जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हेमाटोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं। आइए इनसे जानते हैं थैलेसीमिया के बारे में।
4: थैलेसीमिया एक खून की बीमारी है, ये जेनेटिक है। इसका अर्थ है कि माता पिता दोनों को थैलेसीमिया कैरियर या थैलेसीमिया ट्रेट होता है, और उसके कारण बच्चे में थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। ये कैसे होता है? इसमें अगर माता पिता दोनों थैलेसीमिया कैरियर हैं, तो हर प्रेगनेंसी में 25% खतरा होता है कि एक बच्चा हो जिसको थैलेसीमिया मेजर है। 75% चांस है कि बच्चे नॉर्मल हो, इसलिए कई परिवारों में दोनों माता पिता थैलेसीमिया ट्रेट हैं, फिर भी बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं। बट क्योंकि खतरा है, अगर आपको जानकारी हो जाती है तो अवश्य प्रेगनेंसी के दौरान टेस्ट कर सकते हैं कि होने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर है या नहीं। थैलेसीमिया मेजर के जो बच्चे होते हैं, जब पैदा होते हैं उस समय नॉर्मल होते हैं, और जैसे

0: जैसे बड़े होते जाते हैं, क्योंकि जो खून बच्चे में होता है माँ के पेट के अंदर, वो करीब 1 साल के बाद वो परिवर्तित हो जाता है अडल्ट खून में। तो ये जो चेंज होता है ये लगभग 6 महीने के बाद होने लगता है। तो जनरली बच्चे पैदाइश के समय नॉर्मल होते हैं और 6 महीने के बाद ही उनमें कुछ कुछ तकलीफ़ें होने लगती हैं। बच्चा सफ़ेद दिखने लगता है, बच्चा अधिक रोता है, सुस्त हो सकता है, खेलता कम है। और अगर डॉक्टर के पास जाते हैं माता पिता, तो पता चलता है कि खून की कमी है। और लगभग 9 महीने में या 1 साल से पहले ही अधिकतर बच्चे पहचाने जाते हैं, और उनमें फिर खून चढ़ाने का इलाज शुरू करना पड़ता है, क्योंकि थैलेसीमिया बच्चे का खून कम होता है, और अगर उनको खून नहीं चढ़ाया जाए तो बहुत खून की कमी हो जाती है और उनको मृत्यु भी हो सकती है। इसका रिस्क फैक्टर ये है कि दोनों माता पिता में थैलेसीमिया ट्रेट या थैलेसीमिया कैरियर हो। अच्छा, ये कहना बहुत ज़रूरी है कि जो थैलेसीमिया ट्रेट या तो जो थैलेसीमिया कैरियर हैं वो मरीज नहीं हैं, वो नॉर्मल व्यक्ति हैं और अपना पूरा जीवन नॉर्मल जी सकते हैं। उनको कोई दवाइयों की या कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर एक थैलेसीमिया कैरियर किसी नॉर्मल व्यक्ति से शादी करता है तो थैलेसीमिया मेजर बिल्कुल होने का खतरा नहीं है। अगर दो थैलेसीमिया माइनर या कैरियर या ट्रेट जिसको हम लोग बोलते हैं उनकी शादी होती है, तो जैसे मैंने कहा उनमें 25% खतरा होता है कि उनके बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो। और इस खतरे को बिल्कुल शून्य किया जा सकता है अगर वो प्री नेटल टेस्टिंग करें। प्री नेटल टेस्टिंग का अर्थ ये है कि अगर दोनों माता पिता का टेस्ट हो गया है और पता चल गया है कि थैलेसीमिया कैरियर हैं वो दोनों, तो जब 10 हफ्ते का बेबी होता है तो उस टाइम पे गाइनोकोलॉजिस्ट के पास जाके एक CVS टेस्ट होता है, जिसमें माँ के पेट में सुई डाल के बच्चे से थोड़ा सा खून लेके उसका जांच किया जा सकता है और पता चल जाएगा कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है कि नहीं। हर साल इंडिया में करीब 20,000 बच्चे पैदा होते हैं थैलेसीमिया मेजर के साथ, और अगर जानकारी होगी सब परिवारों में तो आगे नहीं होगा हमारे देश में। इसका प्रिवेंशन के लिए केवल अवेयरनेस है, जागरूकता है, जानकारी होनी चाहिए। बच्चा पैदा करने से पहले बहुत सारे जांच माता पिता में होती है, तो थैलेसीमिया का टेस्ट भी आप करा लीजिए। अगर माता पिता दोनों थैलेसीमिया कैरियर्स हैं तो कोई बात नहीं, नॉर्मल बेबी भी हो सकता है, बट जो 25% खतरा है थैलेसीमिया मेजर होने का, उसमें अगर आप टेस्ट करेंगे तो वो खतरा भी बिल्कुल शून्य हो जाएगा। इन बच्चों को क्योंकि खून की अति आवश्यकता होती है और हर महीने जिंदगी भर खून चढ़ाना पड़ता है, तो रक्तदान मैं सबको बोलूँगी कि सभी लोगों को रक्तदान करना चाहिए। केवल थैलेसीमिया नहीं, बट और भी बच्चे हैं जिनको कैंसर होता है, या मरीज़ हैं जो एक्सीडेंट के मरीज़ हैं, या जिनको और कारण से खून चढ़ाना पड़ता है जैसे कैंसर वगैरह बीमारी, तो रक्तदान से आप लोगों की जान बचा सकते हैं। तो रक्तदान सबको करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं, नॉर्मल हैं, तो आप हर 3 महीने में खून दान कर सकते हैं। इससे कोई कमज़ोरी नहीं होती, इससे कोई असुविधा नहीं होती है, और आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। लास्ट में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिन परिवारों में एक बच्चा है जिसको थैलेसीमिया मेजर है, तो उनमें जितने भी लोग हैं सबको ज़रूर अपनी थैलेसीमिया कैरियर का स्टेटस पता होना चाहिए, और उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब शादी होएगी और बच्चा होगा तो उस टाइम पे टेस्ट करें, ताकि उनके और परिवार में और बच्चे ना पैदा हों जिनको थैलेसीमिया मेजर है। थैंक यू।
1: अब बात करते हैं एक थैलेसीमिया मेजर पेशेंट निष्ठा से।
2: नमस्कार, मेरा नाम निष्ठा है और मैं एक थैलेसीमिया मेजर पेशेंट हूँ। थैलेसीमिया मेजर जीवन यापन करना में बहुत ज़्यादा सहयोग माता पिता का होता है, क्योंकि सबसे पहले तो उन्हीं को अपने आप को संभालना पड़ता है कि उनका एक बच्चा जिसका वो कब से इंतज़ार कर रहे थे उसको थैलेसीमिया जैसी बीमारी है जो उम्र भर के लिए है। तो सबसे पहले तो माता पिता को खुद संभालना पड़ता है ताकि वो हमें संभाल सकें।

0: यही मेरे साथ भी हुआ था, पर मेरे माँ बाप ने अपने आप को बड़ा पक्का कर लिया कि हम इस बच्ची के लिए सब कुछ करेंगे और जो ये अपने जीवन में हासिल करना चाहेगी उसके लिए हम हमेशा उसके साथ देंगे। और आज मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ एंड मेरी भी फैमिली है। थैलेसीमिया वर्कर्स के तौर पे मैंने काफ़ी काम भी किया है और कह सकते हैं कि मैं एक थैलेसीमिया एडवोकेट हूँ, और जब मौका मिलता है थैलेसीमिया के बारे में लोगों को बताती हूँ, उनको अवेयर करती हूँ। आज के दौर में यदि आप कहें कि थैलेसीमिया अगर किसी को है तो वो क्या चैलेंजेस फेस करता है, तो ऐसे में बचपन में कई बार ही अवेयरनेस नहीं होती तो टीचर्स सोचते हैं हम इस बच्चे को किसी एक्टिविटी में लें या नहीं लें। कॉलेज में आते हैं तो फ्रेंड्स सोचते हैं क्या ये हमारी तरह हैं, और नहीं दिख रहा हमारी तरह या नहीं दिख रही तो क्यों नहीं दिख रही। लोगों को कई क्वेश्चंस होते हैं और सच मानिए मेरे साथ रह के लोग सरप्राइज भी हो जाते हैं कि यार ये तो थैलेसीमिया इतना बड़ा कुछ नहीं लग रहा। बट ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि सही समय पे सही ट्रीटमेंट मिल पाया मुझे, टाइम टू टाइम ट्रांसफ्यूजन्स हो पाए और कैलेशन मिल पाई, आयरन कैलेशन के लिए जो दवाइयाँ होती हैं वो मिल पाई। ये दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, इसलिए थैलेसीमिया का सबसे बड़ा चैलेंज थैलेसीमिया को मैनेज करने का खर्चा भी है, क्योंकि डेस्ट्रॉल होते हैं वो इंजेक्शन्स होते हैं जो 12-12 घंटे बच्चे लगाते हैं, बहुत महंगे होते हैं। दवाइयाँ होती हैं बहुत महंगी होती हैं, एक आम आदमी के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। और सबसे बड़ा चैलेंज तो ब्लड ही अरेंज करना होता है। ब्लड डोनेशन तो आप जानते ही हैं कि कितना नोबल कॉज है, पर क्योंकि हर महीने महीने में 2 बारी रादर चाहिए होता है, एक बड़े थैलेसीमिया पेशेंट को महीने में 4 से 6 यूनिट चाहिए होते हैं, तो आज थैलेसीमिया डे पे मैं सबको 2 ही दरख्वास्त करूंगी कि आप शादी से पहले अपना थैलेसीमिया स्टेटस चेक कराएं, और यदि आप फिट हैं तो आप ज़रूर ब्लड डोनेट करें। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
2: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए,
3: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
2: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
3: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें healthairdelhi@gmail.com पर। ग्रीष्म ऋतु और आयुर्वेद, आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
4: हम साधारणतः ये सुनते आए हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसीलिए हमारी सेहत कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में हम किसी बीमारी के क्योर पर नहीं बल्कि बात करेंगे बीमारी का बचाव कैसे हो, यानी प्रोटेक्टिव हेल्थ। इस पर आज खास बातचीत होगी हमारे गेस्ट के साथ, और विशेषकर हम बात करेंगे सीजनल हेल्थ प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस। हमारे साथ हमारे गेस्ट स्टूडियो में श्याम प्रिया जी, पहले स्वागत कर लेते हैं। श्याम प्रिया जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद शालिनी जी।
4: श्याम प्रिया जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं, आप वेलनेस ट्रेनर हैं, साथ ही साथ आयुर्वेद के जो प्रचार प्रसार में आप बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। साइंटिफिक तरीके से सोसाइटी में कैसे आयुर्वेद को पहुंचाया जाए, जन जन तक, लोक तक इसके जो गुण हैं वो सब समझें, उसको अपने जीवन में सम्मिलित करें, इसके लिए लोक आयुर्वेद संकल्पना के तहत आप विजन के तहत कार्य कर रही हैं, और क्लासिकल वेलनेस नॉलेज टू कॉमन मैन इन कॉन्टेम्प्ररी वेज, ये आपका ध्येय है। मैंने सही कहा श्याम प्रिया जी?
5: जी बिल्कुल।
4: तो ये बताइए, हम बात की शुरुआत करें, हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके होंगे, हम साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं आयुर्वेद शास्त्र को, पर वास्तव में आयुर्वेद हमारे जीवन का एक विज्ञान है, ये किस प्रकार से है इस पर भी हम बात करेंगे। पर कार्यक्रम में सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जो हम ऋतु की बात करते हैं आयुर्वेद में, बहुत हम सुनते रहे हैं अब ये ऋतु है, अब ग्रीष्म ऋतु है, अब बसंत ऋतु है, ये ऋतु होती क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और कितनी प्रकार की होती है?
5: सबसे पहले तो आपके प्रश्नों का उत्तर शुरू करने से पहले
4: जी,
5: क्योंकि हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में चर्चा करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में हमारा डाइट एंड लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ आयुर्वेद को लेकर चर्चा करने वाले हैं, तो मैं सबसे पहले वेदों के अधिष्ठाता जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, आयुर्वेद के सभी पूर्व आचार्य और मेरे वर्तमान के आचार्य वैद्य हितेश जानी जी को चरण वंदन करती हूँ, और हमारे AIR के सुनने वाले सभी श्रोताओं को श्याम प्रिया का नमस्कार। तो अब मैं आपके प्रश्न पे आती हूँ कि ऋतु क्या होती है?

0: जी
1: तो ऋतु का अर्थ है परिवर्तन, और ये संस्कृत शब्द ऋत से आया है। ऋत का अर्थ होता है सर्वमान्य नियम, वो परिवर्तन जो सबको मानना पड़ेगा, कोई भी उस परिवर्तन से बच नहीं सकता,
0: मतलब जो नेचुरल है।
1: नेचुरल है, प्राकृतिक है, और हर जीव उस नियम के अधीन है। तो इस प्रकार से ऋतु शब्द का अर्थ हुआ परिवर्तन। फिर बाद में इसको हम आगे, जब आगे भी चर्चा करेंगे कि इसको आयुर्वेद शास्त्र स्वास्थ्य से या ऋतु से कैसे जोड़ता है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। अपनी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भारत ऐसा देश है जहाँ पे भारतवासी ये पूरी 6 ऋतुओं का अनुभव कर सकते हैं। बाकी देशों में तो बहुत सारी ऋतुएं देखने को नहीं मिलती,
0: बिल्कुल।
1: या तो बर्फ पड़ती है या नहीं पड़ती है, या सिर्फ सर्दी ही रहती है या सिर्फ गर्मी रहती है। लेकिन भारत की जलवायु और भारत की भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि भारतवासी 6 ऋतु का अनुभव करता है। आयुर्वेद का मूल उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, उसका आहार कैसा होना चाहिए, उसकी निद्रा कैसी होनी चाहिए, उसका विहार कैसा होना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए पूरी दिनचर्या में, ऋतुचर्या में उसे क्या करना चाहिए, तो ये सब साइंस थी, स्वास्थ्य की साइंस। और दादी नानी इसको जानती थी,
0: जी बिल्कुल सही कहा,
1: सिर्फ हमें दादी नानी को याद करना
0: याद
1: है
0: करना है।
1: बस।
0: और वो जो जानकारी उन तक थी उसको हमें कोशिश करना है, हम दोबारा से अपने जीवन में लेकर आए
1: बिल्कुल।
0: जहां जहां हम छूट रहे हैं, है ना।
1: लोक आयुर्वेद एक्चुअली यही संकल्पना है जो आचार्य चरक ने सोचा था कि जन जन कैसे स्वस्थ रहे। सिर्फ वो चिकित्सा नहीं करते थे, वो ये भी सोचते थे कि दादी कैसे स्वस्थ रहेगी, नानी, ये पूरा घर कैसे स्वस्थ रहेगा, समाज कैसे स्वस्थ रहेगा, चिकित्सा ही हम नहीं करेंगे। तो लोक आयुर्वेद उसी संकल्पना का नाम है जी, कि थोड़ा सा जो हम सिर्फ भूल गए हैं, भारतीयों के कहते हैं ना, हमारे तो DNA में वो ज्ञान है,
0: बिल्कुल
1: हम तो
0: बिल्कुल
1: ऋषियों की संतान है,
0: जी
1: तो सिर्फ ये याद कराने की प्रक्रिया है और कुछ नहीं, वो
0: जी
1: हमारे अंदर ही है, सिर्फ
0: एक
1: आवरण
0: बहुत
1: हटाना
0: अच्छी बात
1: है।
0: आपने बोली, हमारी दादी नानी या हमारे पूर्वज ये जानते थे कि किस तरह से जीवन को जीना है आयुर्वेद के साथ, इसीलिए शायद वो बहुत स्वस्थ उन्होंने जीवन जिया। और आज भी अगर हम देखते हैं, हमसे 2 पीढ़ी पहले हमारी नानी हमारी दादी अगर है तो वो बहुत हेल्दी अभी भी हैं। और ये आम एक धारणा है, लोग आम बोलते हैं कि आजकल तो हम अभी इसी उम्र में हमारी ये हालत है, हम इनकी उम्र तक पहुंचेंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो अगर हम आयुर्वेद को अपनाते हैं तो हमारा जीवन उतना ही स्वस्थ हो सकता है, ऐसा मुझे आपकी बातों से लगता है।
1: बिल्कुल, जो बुद्धिमान व्यक्ति अच्छी आयुष्य चाहता है, क्योंकि उसे पता है स्वस्थ आयु से ही जीवन के चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है, धर्म, अपनी ड्यूटीज निभाना, कामना, काम मतलब कोई भी डिजायर पूरी करना, अर्थ, पैसा कमाना, और मोक्ष, भगवत प्राप्ति करना, तो मानव जीवन के ये चार उद्देश्य हैं। अगर किसी व्यक्ति को इनको पाना है, चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति करनी है, तो अच्छी आयु उसका आधार है। अतः आयुष्य चाहने वाला बुद्धिमान व्यक्ति सदा आयुर्वेद के उपदेशों का विधेयात्मक रूप से पालन करता है। ऑप्शन नहीं है, इट इज असेंशियल साइंस। आयुर्वेद उपदेशेषु विधया परमादरा, करना
0: तो
1: ही चाहिए,
0: आयु चाहिए, स्वस्थ आयु चाहिए, तो आयुर्वेद को अपनाना
1: अपनाना
0: चाहिए।
1: चाहिए।
0: बहुत अच्छी अच्छी बातें अभी आपने बताई। हमने शुरू में जो पहले आपसे प्रश्न किया था ऋतु के बारे में जाना था, आपने बताया कि ये ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं, ये भी बताइए कि ये जो ऋतुएं हैं या सीजन्स हैं जो आपने बताए हैं, ये हमारे हेल्थ को हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है, इसकी साइंस क्या है,
1: बहुत ही
0: कुछ तो आपने
1: सुंदर,
0: बता
1: बिल्कुल
0: दिया।
1: बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। तो अभी क्योंकि ग्रीष्म ऋतु शुरू हो रही है, तो हम ग्रीष्म ऋतु पे
0: जी
1: के सीजन पे ज्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन उस पे आने से पहले ये ऋतु मुझे कैसे प्रभावित कर
0: हाँ
1: रही
0: जी
1: है,
0: हाँ
1: हाउ सीजन इम्पैक्ट्स ह्यूमंस, तो पहले हम इसका थोड़ा विज्ञान जानते हैं, तो हम
0: हाँ
1: अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे कि वाई वी शुड फॉलो सीजनल डाइट एंड
0: बिल्कुल
1: लाइफस्टाइल।
0: बिल्कुल
1: तो वो ये कहते हैं कि सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, महर्षि चरक ने बोला, सृष्टि की सभी वस्तुएं पंच महाभूतों से मिलकर बनी हैं। इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर हम रामचरितमानस पढ़ें तो भी तुलसीदास जी ने बोला, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। तो सृष्टि की सभी वस्तुएं पंच महाभूतों से मिलकर बनी हैं। वो क्या है? वो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये पंच महाभूत इस पिंड यानी शरीर को बनाता है, और यही पंच महाभूत इस ब्रह्मांड को यानी प्रकृति को बनाता है। तो जब प्रकृति में चेंज होगा तो मुझ में भी चेंज होगा, क्योंकि मैं इस सृष्टि का हिस्सा हूं, इस पंच महाभूत का हिस्सा हूं। जब बाहरी पंच महाभूतों में चेंज होगा तो अंदर के पंच महाभूत भी प्रभावित होंगे। तो इस साइंस को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि ये तो सृष्टि का नियम है। और अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो जिस तरह से हम, अगर हम इसे हम आभासित भी करते हैं कई बार, कि जैसे सर्दी आती है तो मेरी भूख अपने आप बढ़ जाती है, गर्मी आती है तो भूख अपने आप कम हो जाती है, तो ये कैसे हुआ? ये मेरी जठराग्नि

0: मतलब मेरी डाइजेस्टिव फायर, मेरी पाचन शक्ति कम ज्यादा कैसे हुई?
1: क्योंकि सूर्य ने मुझे इम्पैक्ट किया।
0: और सूर्य ने मुझे क्यों इम्पैक्ट किया? क्योंकि जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री के कोण पर जो ऑर्बिट है सूर्य का उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। 365 डेज में वो चक्कर पूरा होता है जिसमें 6 ऋतुओं का निर्माण होता है। ये साइंस तो हम पढ़ लिया है, ऋतु चक्र है। तो जब जब पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी की प्लेसमेंट सूर्य के हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंग जिस जिस तरह से जाती है, वैसे वैसे चेंजेस हमारे ऊपर आते हैं, हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं।
2: तो ये बात तो समझ में आ गई, बहुत स्पष्ट है। आपने बोला ये साइंस है और सबको ही पता है कि जब प्रकृति के उसमें बदलाव आएगा तो वो हमारे शरीर को भी, हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। अब क्योंकि हम ग्रीष्म पे बात कर रहे हैं, गर्मियां हैं, गर्मियों में अपने आप, अपने बताया, भूख कम हो जाती है। हमने ये एक नॉर्मल एक सेटिंग है बॉडी की, लेकिन हमें क्या खाना चाहिए? कम हो जाती है पर फिर भी हम क्या खाएं जो हमारे शरीर को लगे और हमें स्वस्थ रखे? तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए?
0: बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ये हेल्थ जो है ना, ये विजडम का विषय है।
2: बिल्कुल है,
0: बुद्धि का विषय है। और जो विवेकवान व्यक्ति है, जो कहते हैं ना कि इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत अच्छा हेल्दी रह सकता है। और हमारे आचार्य भी मानते हैं कि ये सिंपल बात नहीं है, क्योंकि वो जो भी कहते थे वो साइंटिफिक था। उन्होंने बहुत रिसर्च किया ह्यूमन बॉडी पे, उन्होंने प्रकृति पे रिसर्च किया। तो वो कहते हैं अभी ग्रीष्म ऋतु आई है तो ऑब्जर्व करो क्या चल रहा है प्रकृति में। वो कहते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे सब सूख गए हैं, इतना ज्यादा ताप बढ़ जाता है, सब धरती में दरारें आ जाती हैं। हमारा खुद का भी, हमें लगता है कि हम, हमारे अंदर का जो उष्णता है वो बढ़ गई है, हमारा मतलब गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये एक पॉइंट हुआ। और दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ, ये एक हमने फील किया कि हमारे अंदर गर्मी कुछ बढ़ गई है, ये हमने फील किया। ये मतलब ये चीजें जो है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हर व्यक्ति उसे अनुभव करता है और वो ये नहीं कह सकता कि मैं इसे नहीं मानूंगा,
2: इसे नहीं मानूंगा।
0: तो पहला हमने अनुभव किया कि बहुत गर्मी बढ़ गई है। दूसरा क्या अनुभव किया कि मेरा बल कम हो गया है। कहते हैं ना कि बाहर धूप से आओ तो थकावट लगती है, और मतलब मुझे तो चक्कर आ रहे हैं धूप से आकर, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, भूख कम हो गई है, मतलब जठराग्नि, अग्नि बल उसको बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में, अग्नि बल कम हो गया है, शारीरिक बल भी कम हो गया है, क्योंकि अंदर से लग रहा है कि कुछ ज्यादा ताकत नहीं है, तो शारीरिक बल भी कम हुआ है और गर्मी बढ़ी है। तो अब इन सब चीजों को देखते हुए हमारी फूड प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? गर्मी को कम करना है तो शीतल रसों का सेवन, और भूख कम है तो मैं ज्यादा हैवी डाइजेस्ट नहीं कर सकता तो लिक्विड डाइट का डिसीजन करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ शारीरिक बल भी कम है तो मुझे बलवान रसों का सेवन करना पड़ेगा। तो अब ये देखिए, ये पूरा मतलब सिंपल, दादी नानी इसी तरह से प्लानिंग करती थी कि अभी शीतल रसों का कैसे सेवन करेंगे। शीतल रसों का सेवन, कोल्ड ड्रिंक नहीं, वो द्रव्य जो नेचुरल रूप से बॉडी को शीतलता प्रदान करें, उनको द्रव्य के रूप में, उनको लिक्विड के रूप में आपको सेवन करना चाहिए।
2: मतलब जो नेचुरल सोर्सेस हैं, जो भगवान ने हमें दिए हैं, यानी जो फल हैं, जो सब्जियां हैं, उन्हीं से ही हम कुछ,
0: जिनकी खुद की प्रकृति ठंडी है, ठंडी तासीर है जिनकी, जैसे गुलाब आपको ठंडक ही देगा, जैसे बेल आपको ठंडक देगा, आम, फालसा, इस ऋतु के फल ऐसे ही आएंगे जो आपको प्राकृतिक ठंडक देंगे। तो उन प्राकृतिक ठंडक देने वाले द्रव्यों का रसपान, उसे कोल्ड ड्रिंक बोला गया। और दूसरा, अब मुझे तो बल चाहिए तो फिर मुझे जो टेस्ट है, मतलब जो मेरी कोल्ड ड्रिंक जिसे हम कहें या शीतल पेय, जो आयुर्वेद के शीतल पेय हैं, तो उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए? तो मधुर, अम्ल, लवण, हमारे 6 रस होते हैं खाने में। आप कभी कहते हैं ना कि हर व्यक्ति ये 6 रस फील करता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो मधुर मींस मीठा, अम्ल मींस खट्टा, लवण मींस नमकीन, कटु मींस जो है हमारा थोड़ा उष्ण, मतलब कि काली मिर्च जैसे, और तिक्त मींस कड़वा, नीम, और कषाय मींस कसैला जैसे जामुन। तो ये 6 रस, हमारे षड रस बोलते हैं इसको, ये हर व्यक्ति भोजन में फील करता है। और
2: षड ऋतु,
0: षड रस,
2: तो ये बहुत आसानी से समझ
0: आए। तो मधुर, अम्ल, लवण, ये बलवान रस हैं, आपको बल देते हैं। कहते हैं ना, बड़ा मीठा खाया, मजा आ गया। तो मजा किसको आया? मन को तृप्ति हुई। मधुर रस तृप्ति करता है, अम्ल रस भी कहते हैं खट्टा मीठा, टेस्टी था तो तृप्ति हुई, तो बल मिला। ऐसे ही नमकीन चीजें खाके भी बल मिलता है। तो मधुर, अम्ल, लवण, मतलब पहले के जो ये 3 रस हैं, आप क्रम में हम याद कर सकते हैं, वो बलवान रस हैं, वो बल प्रदान करते हैं। और जो पीछे के 3 रस हैं, कटु, तिक्त, कषाय, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आप खाना खा के सौंफ खाते हो ना, खाना खा के इलायची खाते हो ना।

0: ये सब कटु तिक्त कषायरस हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन इनका सेवन ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन मधुर अम्ल लवण का ज्यादा थोड़ा, क्योंकि ऋतु ऋतु के हिसाब से सेवन करना, वो कहते हैं नित्यम सर्व रस अभ्यासः, नित्य सभी रसों का सेवन करना चाहिए। बट स्वा स्वा अधिक्या अमृतावृतो, लेकिन जिस जिस ऋतु में ऋतु के अनुसार जिस जिस रस के सेवन का अधिकता से प्रयोग बताया गया, उस ऋतु में उस रस का ज्यादा सेवन करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशियस डाइट,
1: दिस इज कॉल्ड आयुर्वेद,
0: दिस इज कॉल्ड आयुर्वेद।
1: ये आपने आज बताया कि अगर शीतल पेय है वो कौन सा पेय होना चाहिए जो
0: हाँ
1: आपको गर्मियों में लेना चाहिए, इस
0: हाँ
1: तरह का होना चाहिए। अच्छा, ये तो खाने पे आपने काफी अभी बताया, ये बताइए क्या लाइफस्टाइल भी, कोई एक्टिविटी भी कोई ऐसी होती है कि ये करनी चाहिए गर्मियों में या नहीं करनी चाहिए?
0: बिल्कुल। हमारी कहते हैं ना कि हमारी हर मूवमेंट हमारा स्वास्थ्य बनाती है। आप बताइए, अगर आप ठीक से नहीं सोएंगे तो बीमार हो जाएंगे, आप ठीक से नहीं देखेंगे तो बीमार हो जाएंगे, आप ठीक से नहीं सुनेंगे तो बीमार हो जाएंगे, आप ठीक से नहीं बोलेंगे तो बीमार हो जाएंगे, आप ठीक से नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। खाने को हमने कहा आहार, क्योंकि वो थोड़ा व्यापक क्षेत्र है, तो हमने उसको पूरा नाम दिया आहार। और ये जो बाकी एक्टिविटीज हैं, बोलना, सुनना, चलना, देखना, आप देखिए ना, कहते हैं ना, मैं कल अच्छे पोस्चर में नहीं बैठा तो मेरी कमर में दर्द हो गया। एवरी एक्टिविटी ऑफ आवर, मतलब कहते हैं ना कि हम दिन में कुछ भी काम करें वही हमारी हेल्थ है।
1: जी,
0: तो उसको सही प्रकार से करना कहलाता है
1: क्या है
0: विहार।
1: सही
0: विहार
1: प्रकार वो
0: तो
1: बताइए।
0: सही प्रकार ये है कि ग्रीष्म ऋतु का आपका जो प्लानिंग होना चाहिए, तो कैसे हम कैसे प्लान करें, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उठ के एक्सरसाइज करते हैं जनरली हम, तो उस ऋतु में कहा गया अधिक व्यायाम ना करें। हमारे यहाँ व्यायाम की प्लानिंग ऐसे नहीं होती थी कि भाई आप 45 मिनट्स इन अ डे या 1 आवर इन अ डे। वयो बल शरीरानी देश काल अशनानी चा समीक्षा या कुरियात व्यायाम अन्यथा रोग मापनीयात। कि आप अगर ये सारे पैरामीटर्स जो मैं आपको बताऊंगी अभी, इनको नहीं देख के आपकी एक्सरसाइज प्लान करेंगे तो आपको फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाएगा। समीक्षा या कुरियात, समीक्षा करो, देखो क्या आप ये सारे पैरामीटर्स को मीट कर रहे हो, देन यू प्लान योर एक्सरसाइज। अदरवाइज रोग मापनीयात, अदरवाइज आपको रोग हो जाएंगे। तो वो पैरामीटर्स क्या है, वयो बल शरीरानी, वयो अभी कौन सी अवस्था में हूं, 80 साल का हूं या 18 साल का
1: पहले
0: हूं,
1: आप अपनी उम्र को
0: उम्र
1: देखें
0: को।
1: कि आप
0: हाँ, बल एक होता है अपने, हर किसी की अपनी एक अपनी
1: सीमा
0: इम्यूनिटी होती
1: है।
0: है।
1: जी
0: अपना,
1: जी
0: मैं तो 100 कदम चल के भी शायद थक सकती हूँ, पर आप हो सकता है कि 400 कदम चल के भी ना थकें। तो एक प्राकृतिक बल होता है हर व्यक्ति का, जो उसको जन्म से मिलता है, अपनी इम्यूनिटी होती है। तो बल, आपका खुद का बल कितना है, शरीर आपकी बॉडी टाइप क्या है, आप वातज प्रकृति हो तो आप तो वैसे ही चलते फिरते रहोगे, आपको ज्यादा एक्सरसाइज नहीं चाहिए। पित्त हो तो मध्यम प्लान करो, कफज हो तो आपका तो बहुत लेजी नेचर है, थोड़ा मतलब बैठने का नेचर है, तो आप ज्यादा एक्सरसाइज करो, आपको जल्दी मोटापा आएगा। तो पहला पहला पैरामीटर वयो अवस्था, एज, बल, इम्यूनिटी आपकी नेचुरल इम्यूनिटी, शरीर आपके शरीर की प्रकृति क्या है, काल, काल देश अशनानी चा, ऋतु कौन सी चल रही है भैया। अगर ग्रीष्म ऋतु चल रही है तो वैसे ही शिकंजी पी रहे हो आप, लिक्विड डाइट खा रहे हो, तो गाजर का हलवा तो खा नहीं रहे हो, तो ज्यादा एक्सरसाइज नहीं चाहिए। वही हेमंत और शिशिर ऋतु होती सर्दी की तो मैं ज्यादा एक्सरसाइज प्लान करती। तो इस तरह से काल और जो बाकी हैं, देश काल अशनानी चा, देश तो देश कौन सा है, आप कहाँ रहते हो,
1: और
0: उसकी
1: क्या
0: जलवायु
1: खाते हो
0: कैसी
1: और
0: है,
1: क्या
0: और
1: खा
0: क्या
1: रहे हो?
0: खाते हो, और अशन ये लास्ट में आएगा, जो क्या खाते हो आपने बोला
1: अच्छा।
0: अशन। अशन होता है खान पान, कि मैं संत हूं, मैं तो एक ही टाइम भिक्षा मांग के खा रहा हूं, तो उसकी क्या वो एक्सरसाइज प्लान करेगा। या आप ग्रस्त हो तो आप 2 टाइम ही खाते हो, ज्यादा आपका ग्रस्त में भी ज्यादा खान पान नहीं है, या आप मतलब कहते हैं कि नॉर्मल खाना खाते हो, बहुत आपकी डाइट नहीं है, तो आप नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मतलब ऐसी एक्सरसाइज आपको लाभ करेंगी। बहुत रिगरस जिम वाली एक्सरसाइज आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप खाते ही रहते हो, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, तो फिर तो आपको ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो
1: पर आहार भी
0: एक्सरसाइज,
1: तो नियंत्रित करना पड़ेगा
0: आहार भी करना पड़ेगा।
1: उसको।
0: तो ये सब लिंक्ड है, ये सब लिंक्ड है, क्योंकि हम प्लानिंग तो कर रहे हैं एक्सरसाइज की, पर यहाँ फूड की बात चली है। आपको एक्सरसाइज प्लान होनी चाहिए ये सारे पैरामीटर्स को देखते हुए, ना कि आपने किसी व्यक्ति को फिक्स कैसे कर दिया कि 45 मिनट्स इन अ डे, 1 आवर इन अ डे,
1: इसका
0: तो
1: इसका
0: ऐसे
1: ये
0: फिक्स नहीं कर
1: मुझे
0: सकते
1: मतलब
0: हैं।
1: समझ में आया श्याम प्रिया जी, कि अगर हम ये प्लान कर रहे हैं कि हमें एक्सरसाइज करना है, तो हमें किसी से एडवाइस लेनी चाहिए जो एक योग गुरु है, जो भी हमें ये एडवाइस कर सके कि क्या काल है, क्या आपके बॉडी
0: बिल्कुल, ये आयुर्वेद
1: कंस्टिट्यूशन है,
0: आचार्य आपको
1: आयुर्वेद, कि
0: बताएगा।
1: उनसे गाइडेंस लेके ही करना चाहिए। ये नहीं कि आपने सुनी सुनाई,
0: हाँ
1: मेरा दोस्त कर रहा है, मेरा पड़ोसी कर रहा है, तो आपने
0: नहीं,
1: कर लिया।
0: वो आपको

0: सकता भी कर सकता।
1: और एक और मैं आपको बात बताऊं कि जो बॉडी टाइप है वो दादी जानती थी, दादी बताती थी इस बच्चे को केला मत देना, इसकी तासीर ऐसी नहीं है। तो दादी नानी अनुभव से जानती थी, क्योंकि अब हमारा अनुभव उतना नहीं रहा तो हम किसी आयुर्वेदाचार्य से, अच्छे आयुर्वेदाचार्य से नाड़ी परीक्षण करके अपनी शरीर की प्रकृति जान सकते हैं बिल्कुल, और जाननी नहीं चाहिए, बिकॉज मेरी प्रकृति क्यों ना मैं जानूं और मेरी प्लानिंग मैं क्यों ना कर सकूं, ये तो विजडम का विषय है।
0: बहुत सारी चीजें हैं और आपने बहुत सारी चीजें जल्दी जल्दी भी बताई क्योंकि समय का सच में हमारे पास अभाव है। हमारे पास चलते चलते क्या आप वर्ड्स ऑफ विजडम देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं?
1: स्वस्थ रहना है वो बुद्धि का विषय है, स्वास्थ्य विवेक, हेल्थ विजडम। हमें क्या करना चाहिए, विवेक जागृत कैसे होगा, तो हमें सिर्फ गुणों को देखना है। गुणों मीन्स मेरे गुण क्या हैं, मेरी प्रकृति क्या है, प्रकृति के मतलब ऋतु जो आई प्रकृति में उसके गुण क्या हैं, जो मैं द्रव्य जो मैं फूड आइटम खा रहा हूँ उसके गुण क्या हैं। मतलब अगर मैं ये कहता हूँ कि बादाम तो बहुत अच्छा है, पर बादाम मेरे गुणों के हिसाब से अनुकूल हो रहा है या नहीं। जो मैं आइटम खा रहा हूँ वो जैसे गन्ना है, अब गन्ना तो बहुत अच्छा है लेकिन सर्दियों में गन्ने को खाने के लिए सॉलिड ही गन्ना खाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय में हमको थोड़ा डिफरेंट बल चाहिए, सर्दी को हमको कवर अप करना है। लेकिन गर्मी में गन्ना खाना है तो लिक्विड फॉर्म में ही खाना पड़ेगा। तो आपने अब आपको चयन करना पड़ेगा। तो ये विजडम की बात है कि अभी ऋतु कौन सी चल रही है, तो जो मैं खाने वाली वस्तु है उसके गुण क्या है, उसको मैं किस फॉर्म में खा रहा हूँ, तो आपको ये पूरी गुणों की साइंस है।
0: आप हमारे स्टूडियो में आई और इस विषय पर इतनी विस्तृत जानकारी आपने हमारे साथ शेयर करी, हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके।
1: थैंक यू सो मच।
2: अभी आप ग्रीष्म ऋतु और आयुर्वेद इस विषय पर श्याम प्रिया से ली गई भेंट वार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका।
4: नमस्कार, धरती आकाश कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है।
5: हम सब ने इतिहास का अध्ययन अपने स्कूल के लाइफ में जरूर किया है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी इतिहास का अध्ययन भी एक विज्ञान है। तो जो हिस्ट्री ऑफ साइंस कहते हैं या साइंटिफिक रिसर्च बिहाइंड जो हिस्टोरियन और हिस्ट्री है डिफरेंट कंट्री के, उनकी जो पता लगता है किस तरह से किया जाता है, और जब हम कहते हैं कि इतिहास का अनुसंधान की बात करते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग उस अनुसंधान के लिए किस तरह से किया जाता है, तो यह एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग उत्सुकता का विषय हो जाता है। हम वैज्ञानिक समझ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का प्रसारण करते रहते हैं, और उसमें ऐसा कहा जाता है कि हर देशवासी को अपने देश के इतिहास का अध्ययन जरूर करना चाहिए ताकि उन्हें पता लगे कि हम पूर्व में क्या थे और किस तरह से हम आगे उसका फायदा उठा करके अपना एक समग्र विकास कर सकते हैं। इतिहास के विज्ञान और इतिहास के अनुसंधान पर किस तरह की जानकारियां और अध्ययन किए गए हैं और किस तरह से ये आजकल के विद्यार्थियों को, समाज के लोगों को लाभान्वित कर सकता है उसकी जानकारियां, इन सब से जुड़ी बातों पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर देवेश विजय। डॉक्टर देवेश विजय पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर है जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में, और इन्होंने इतिहास के अनुसंधान और इतिहास के ज्ञान पर काफी अध्ययन किया है। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं, जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक विचार, तकनीकी नवाचार और औद्योगिक प्रगति ने किस तरह से आधुनिक समाज को आकार दिया है, इस सब पे इन्होंने अध्ययन किया और अपनी बातें रखी है। डॉक्टर देवेश विजय जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
6: धन्यवाद।
5: सबसे पहले हम आपके माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे अपने सुनने वालों के लिए भी कि समाज शास्त्र, इतिहास, ये सब कुछ मानव विज्ञान के दृष्टिकोण को दिखाता है। जब हम इसको समझने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता लेते हैं, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इतिहास के अध्ययन में किस तरह से उपयोगी हो रहा है?
6: आपने दो जुड़ी हुई बातें उठाई हैं, बहुत महत्वपूर्ण है दोनों, कि इतिहास और समाज शास्त्र किस रूप में वैज्ञानिक विधा है, और जो विज्ञान का अपना इतिहास है वो हमें क्या दर्शाता है, समाज पर विज्ञान का, तकनीक का कैसे असर पड़ा है। तो जो पहली बात है कि इतिहास और अन्य समाज शास्त्र मानविकी से थोड़े अलग है, जिसमें आते हैं लिटरेचर, फिलोसफी, वो इस दृष्टिकोण से कि इनका एक वैज्ञानिक विधि होती है, इनमें कल्पना और

0: एब्स्ट्रैक्ट तर्क की बजाय पुख्ता जानकारी। विज्ञान का मतलब क्या है? पुख्ता जानकारी जो कि लॉजिक और कॉरोबोरेटेड फैक्ट्स के आधार पर रची जाती है और ट्रांसमिट की जाती है। और जो प्योर साइंटिस्ट होते हैं उनके पास एक एक्स्ट्रा मेथड होता है एक्सपेरिमेंट का। अब समाजशास्त्र में हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि मानव पर एक्सपेरिमेंट करना नैतिक दृष्टि से उचित नहीं, लेकिन उसका एक सब्स्टिट्यूट हमारे पास है, वो है कंपैरेटिव मेथड। जैसे फ्रांस में ही क्रांति क्यों हुई 1789 में, सभी कॉलोनीज में भारत सबसे पहले आजाद क्यों हुआ, तो इसको हम कंपेयर करके समझ सकते हैं कि चीन पहले क्यों नहीं आजाद हुआ, तो वहां परिस्थिति में क्या फर्क था, आजादी के लिए कौन सी कंडीशंस चाहिए होती हैं, उससे वो स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे हमारे यहाँ क्या कंडीशंस थी कि गांधीवादी आंदोलन जिसका कोई दुनिया में जवाब नहीं, भाषाओं को जोड़कर, जातियों को जोड़कर, वर्गों को जोड़कर, महिलाओं को पहली बार आंदोलन में लाकर इतनी बड़ी संख्या में गांधी जी ने एक कमाल कर दिया था। तो वो दर्शाता है क्यों हिंदुस्तान में ही सबसे पहले आजादी का आंदोलन सफल हुआ जबकि चल तो सब जगह रहे। तो ये होता है कंपैरेटिव मेथड जो हमें कुछ वैज्ञानिक पुट लाने की हमें सुविधा देता है समाजशास्त्र में और इतिहास में। अब आपने दूसरा सवाल उठाया था कि विज्ञान का जो इतिहास है वो हमें क्या दर्शाता है कि विज्ञान और तकनीक समाज पर कैसे असर डालती है। तो उसमें देखिए सबसे पहली गौर करने वाली बात यह है कि जब भी हम किसी भी चीज के परिणाम ढूंढते हैं और कारण ढूंढते हैं, यही हम इतिहास में पढ़ते हैं, 1857 के कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या निकले, अमरीकी क्रांति के कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या निकले, तो इनको हमें त्वरित और लॉन्ग टर्म दोनों स्तरों पर ढूंढना चाहिए। और जो लॉन्ग टर्म परिणाम होते हैं किसी भी साइंटिफिक खोज के या तकनीकी नवाचार के, वो कुछ इंटेंडेड होते हैं यानी कि अपेक्षित होते हैं, कुछ अनपेक्षित होते हैं, इन दोनों को देखना होता है। यानी कि चार तरीके के परिणाम हमें देखने चाहिए और वो फिर चार स्तरों पर देखे जाते हैं, राजनीतिक परिणाम, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। पर खास बात यह है कि लॉन्ग टर्म भी देखे जाए, दीर्घगामी और तात्कालिक, और अपेक्षित और अनपेक्षित। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा कि हमने एजुकेशन को अब राइट बना दिया, अब ये उसका अपेक्षित परिणाम है कि उससे प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, स्टूडेंट्स जो पास आउट करके निकलते हैं, अब गरीब को भी मौका मिल रहा है, हर एक का राइट है, वो स्कूल मांग सकता है कोर्ट जाकर अगर स्कूल पास में नहीं है, तो उससे तो इकोनॉमिक ग्रोथ और हर चीज में और रोजगार वगैरह में सहायता मिलनी चाहिए। लेकिन अनपेक्षित परिणाम ये निकला कि बेरोजगारी बढ़ गई, क्योंकि जो पढ़ लिख जाता है वो कुछ खास तरीके के रोजगार में लगना चाहता है, वो हर तरीके के रोजगार में लगेगा, इसलिए गरीब अनपढ़ आदमी बहुत ही कम बेरोजगार होता है, पढ़े लिखों में ज्यादा बेरोजगारी होती। तो ये हो गया अनपेक्षित परिणाम। इसी तरह से साइंस टेक्नोलॉजी ने तो दुनिया को बदला है। देखिए दुनिया बदलती है कई कारणों से, मानव समाज बदला है, उसमें जो फास्टेस्ट इन्फ्लुएंस आता है वो तकनीक का। पत्थरों के औजार बनाने से शुरू करने से पहले, आग का कंट्रोल ढूंढने से साथ, या पहिया बना वहां से शुरू करके, वो जो स्टोन एज थी उस समय चेंज बहुत स्लो था, लाखों साल में कोई नई खोज होती थी, आज तो हर हफ्ते। अब हम पोस्ट मॉडर्न युग में हैं, मॉडर्न युग में भी नहीं है, अब रफ्तार परिवर्तन की तकनीक बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से चेंज हो रही है।
1: बिल्कुल, प्रौद्योगिकी के विकास ने जो है, खास करके जो वैज्ञानिक नवाचार जो है ना, उसने क्या है, मानव के विकास में एक नई उड़ान दी है, समाज उस दिशा में तेजी से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि हम धरती से ऊपर उठकर अब ग्रहों की ओर जा रहे हैं, वहां भी हम संसाधनों की तलाश कर रहे हैं। आपका 3 दशकों से ज्यादा का शिक्षण अनुभव है और आप इतिहास, विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इतिहास की भी बात करते हैं, तो जब हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति से लेकर के वर्तमान के समय तक, तो आपको क्या लगता है कि बौद्धिक दृष्टिकोण में या वैज्ञानिक दृष्टिकोण में किस तरह से अंतर आए हैं?
0: देखिए जैसा मैंने कहा, आधुनिक युग में रफ्तार पकड़ी साइंस ने और ये शुरू हुआ रेनेसा पुनर्जागरण के काल से यूरोप में। उससे पहले चीन, भारत वगैरह काफी आगे थे विज्ञान में, लेकिन पुनर्जागरण ने यूरोप को एक नई रफ्तार दे दी। वो गैलीलियो का युग, फिर बाद में न्यूटन, तो उनके तो जवाब नहीं है। उसके बाद फिर आइंस्टाइन ने न्यूटन का पूरी जो दृष्टि थी उसको बदल दिया, क्योंकि उस समय तक तो रिलेटिविटी का अंदाजा ही नहीं था। फिर उसके बाद अब आजकल क्वांटम फिजिक्स आ गया है, क्वांटम मैकेनिक्स, वो आइंस्टाइन को भी बदल रहा है थोड़ा। तो ये मुख्य जो बड़े बड़े पैराडाइम यानी कि दृष्टियां वैज्ञानिकों की हैं, वो बदलने का इतिहास है। लेकिन जैसा मैंने कहा, प्राचीन काल में हिंदुस्तान और मध्य काल में चीन यूरोप से कहीं आगे। जैसे उदाहरण के लिए मैथमेटिक्स में हमारे यहाँ जो ब्रह्मगुप्त ने या आर्यभट्ट ने जो खोजें की हैं, जीरो का जो महत्व है, ये बहुत बड़ी कल्पना शक्ति चाहिए थी इसको समझने के लिए, सारी दुनिया ने उसको बाद में अपनाया, डेसिमल सिस्टम। और इसी तरह से एस्ट्रोनॉमी में आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया कि एक्सिस पर पृथ्वी घूमती है सूरज के साथ, तो ये तो न्यूटन से पहले यहाँ पर
1: कंसेप्ट आ गया था।
0: कितनी तीव्र कल्पना शक्ति रही।

0: होगी। सो मेडिसिन में वैदिक काल से हमारा जो
1: रहा
0: हीलिंग
1: है।
0: सिस्टम है, थेरेपीज हैं, आयुर्वेद और योगा, ये तो दुनिया के लिए गिफ्ट है। और उससे भी पहले जो इंडस वैली का है, जो टाउन प्लानिंग, उस तरह की तो आज मॉडर्न टाइम्स में आके आप आइए, वरना वो तो कहीं मिली नहीं। वो ड्रेनेज सिस्टम, वो पूरा ग्रिड पैटर्न और पब्लिक बाथ, ये सब चीजें तो
1: बिल्कुल
0: चीन वो देश है जिसने सबसे पहले किताब बनाई, प्रिंटिंग जहां सबसे पहले शुरू हुई, दुनिया का पहला सेंसस चीन में हुआ, सिविल सर्विस एग्जाम चीन में सबसे पहले शुरू हुआ। जमींदारों पर कंट्रोल करने के लिए एक मैजिस्ट्रेट होना चाहिए, वरना हर जगह जमींदारा जुल्म चलता था। तो ये सब चीन में पहले शुरू हुआ।
1: बारूद
0: तो
1: का आविष्कार
0: हाँ,
1: चीन में
0: पंपस
1: कहते
0: का
1: हैं।
0: बारूद सबसे पहले चीन में बना। तो लेकिन तो रेनेसा यानी कि 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी से यूरोप ने बढ़त हासिल कर ली।
1: पुनर्जागरण का
0: हाँ,
1: काल जो
0: पुनर्जागरण का जो काल था, उसके बाद वैज्ञानिक क्रांति, न्यूटन का काल और फिर औद्योगिक क्रांति।
1: बहुत अच्छा। एक बात होती है कि अविकास का समाज शास्त्र, जिसे सोशियोलॉजी ऑफ अंडर डेवलपमेंट भी कहते हैं, और साथ ही आधुनिक शहरीकरण की जो बात करते हैं, एक तो हमने अपने सिंधु घाटी सभ्यता के शहरीकरण की बात की कि किस तरह से प्लान टाउन प्लानिंग होती थी, किस प्लान में। अब वर्तमान समय में देखते हैं अर्बेनाइजेशन की अपनी रफ्तार है, उसी जुड़ी हुई अपनी समस्याएं हो रही है। तो ये जो एक अंडर डेवलपमेंट के साथ जो एक अंडर डेवलपमेंट के दुष्परिणाम भी आ रहे हैं, तो इस प्रक्रिया में आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ है, और प्रौद्योगिकी इसमें क्या ऐसी भूमिका निभा सकती है।
0: देखिए, जैसा मैंने कहा था कि समाज में इंसान विकास चाहता है, क्योंकि विकास बहुमुखी होना चाहिए, केवल आर्थिक तरक्की नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य सबसे ज्यादा, और उसके अलावा नैतिकता का विकास भी होना चाहिए। अब इन सब में अच्छा गवर्नेंस भी चाहिए, तभी हो पाएगा, अच्छी यानी कि राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, और सांस्कृतिक पहलू मजबूत होना चाहिए, परिवार इत्यादि मजबूत होने चाहिए। पर सबसे जो तेजी से असर डालता है वो है टेक्नोलॉजिकल चेंज। लेकिन टेक्नोलॉजिकल चेंज की एक दिक्कत ये है कि उसके अनपेक्षित दुष्परिणाम भी निकलते हैं। टेक्नोलॉजी विकास कर रही है, अविकास भी उसका एक पहलू है, क्योंकि कुछ प्रदेश आगे निकल जाएंगे, कुछ उसी रफ्तार के कारण पीछे रह जाएंगे, असमानता बढ़ेगी, तो असमानता फिर प्राकृतिक संपदा पे दुष्परिणाम, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, बहुत सारे उसके तकनीकी विकास के दुष्परिणाम भी होते हैं। यहीं पर हमें उचित नीतियां चाहिए। ये नहीं है कि हमें टेक्नोलॉजी को धीमा कर देना है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके लिए अच्छी बौद्धिक स्तर पर भी चर्चाएं होनी चाहिए, और सरकारी स्तर पर उचित नीतियां चर्चाओं के आधार पर बननी चाहिए, तब फिर समन्वित विकास हो पाएगा।
1: समन्वित विकास हो सकता है। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जो तकनीकी प्रगति है, टेक्नोलॉजी और साइंस का जो डेवलपमेंट है, वही सामाजिक प्रगति को तय करती है, समाज के लोगों की प्रगति को तय करती है, और खासकर वर्तमान जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दौर है। तो तकनीकी विकास का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत सारी चीजों में द्रुत परिवर्तन भी ला रहा है। तो अगर हमको समाज और प्रौद्योगिकी को एक आपसी संबंध की तरह, परस्पर सहयोग की भावना, और जिसका दुरुपयोग ज्यादा न हो सके, अगर करना हो, तो किस तरह से आप अपने अध्ययन के अनुभव के अनुसार लोगों को बताएंगे, या आपके नजर में इस तरह की एक कार्य प्रणाली होनी चाहिए।
0: आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि ये कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत तेजी से परिवर्तन करने जा रही है, इसलिए उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं उन पर भी नजर रखना जरूरी है। जैसे AI के, अगर जो डिक्टेटर्स हैं दुनिया के, बहुत घातक उपयोग कर सकते हैं, वो वायरस बना सकते हैं खतरनाक, वो रोबोट्स भेज सकते हैं सेना, और वो सर्वेलांस, लोगों की पर्सनल जिंदगी पर पूरी नजर रख सकते हैं, सोचना मुश्किल कर सकते हैं, बोलना तो दूर, तो इसके घातक परिणाम भी बहुत हो सकते हैं, इसीलिए उनको डेमोक्रेटिक तरीके से उस पर नियंत्रण रखा जाए बहुत जरूरी है।
1: तो अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो छात्र या जो लोग इसमें अंतर शोध कर रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट को लेके, जो कि इतिहास है, इतिहास का अपना विज्ञान है, फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का अपना इतिहास है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। इतिहास मतलब सिर्फ वो इतिहास नहीं है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ जो है इतिहास भी बदल रहा है। ऐसी शोधकर्ताओं को, ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे।
0: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि अंतर विषयक शोध को बिल्कुल अपनाना चाहिए। वो जमाना गया कि आप केवल आर्काइव्स में जाकर के और बगैर संस्कृति को समझे, बगैर फील्ड में जाए, किसान को कभी आपने देखा नहीं, नहीं कि अनाज में मोटा अनाज छोटा अनाज क्या होता है, जमीन की उर्वरकता क्या होती है, तो फील्ड वर्क करना बहुत जरूरी है और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एविडेंस ढूंढना चाहिए। इसी से अंतर्विषयक शोध बनता है और जिस एरिया पर आप शोध कर रहे हैं उसको, जैसे मैंने कहा था, कंपैरेटिव मेथड जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप यही देखिए कि उस समय जापान में क्या हो रहा था, ब्रिटेन में क्या हो रहा था, वहां ऐसा क्यों हुआ, यहां ऐसा क्यों हुआ, इस तरह से एनालिटिकल

0: सिलेबस में हो या साउंड ऑफ म्यूजिक हॉलीवुड की कोई बहुत बेहतरीन फिल्म है, वो बच्चों के जहन में उतर जाती हैं। इनका उपयोग शिक्षाविदों को करना चाहिए।
1: बहुत अच्छा। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने समाज का और अपने सामाजिक संस्कृति को और अपने इतिहास की भी जानकारी रखें और उसके साथ समन्वय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के साथ करते हुए चले, अपनाते हुए चले। डॉक्टर देवेश विजय जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तकनीकी नवाचार, इसका इतिहास और इतिहास का जो विज्ञान है, वैज्ञानिक विकास हुआ है इतिहास में डिफरेंट बहुत सारे देशों में, उसके बारे में जानकारियां दी। इन सब जानकारियों के लिए और यहाँ आने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत शुक्रिया आपका।
2: इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक अब संपन्न होता है। वाचन स्वर नीलम अलकानिया, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप शाह।
3: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: अभी आप पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक सुन रहे थे। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ देर बाद कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IUML ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा।

आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में बृहस्पतिवार तक लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: new suspected cases of Hanta virus were reported yesterday, one in Spain and the other on the remote South Atlantic island of Tristan da Cunha, as experts race to contain an outbreak that began on a luxury cruise ship. The announcements in locations thousands of miles apart will fuel concern about the spread of a virus so far associated with 3 deaths, though the World Health Organization has repeatedly said the risk of the wider public is low and the virus does not transmit easily. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders defeated Delhi Capitals by 8 wickets at the Arun Jaitley Stadium in Delhi last night. And that is the end of this news bulletin.
1: अब आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रही हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 10:10 हुए हैं। ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद का। आपकी पसंद के कुछ खूबसूरत गीतों के साथ, आपके संदेशों के साथ मैं हूं आप ही का चिरपरिचित मित्र नवीन सक्सेना। आपकी आज के इस अंक को लेकर आपके नाम, आपकी फरमाइशें, आपकी पसंद और आपके संदेश, ये सब अगले 1 घंटे तक आपके साथ रहेंगे, मैं रहूंगा आपके साथ। तो चलिए एक खूबसूरत बात से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हैं। क्यों अच्छा लगता है आपको आज का दिन, या क्यों अच्छा लगते हैं वो तमाम दिन जब आप खुश होते हैं। खुश होते हैं तो किन बातों से खुश होते हैं? बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपके जीवन को कभी खुश कर देती है, चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आ जाती है और आपसे कहती है कि आज दिन भर इस खूबसूरत मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर, अपने होठों पर सजाए रखिए। मेल आने का सिलसिला जारी है। इतने सारे मेल कार्यक्रम की शुरुआत होते ही हमारे पास आ चुके हैं कि किसको छोड़ें, किसको याद करें, लेकिन कोशिश करते हैं कि उन तमाम मेल्स को, उन तमाम संदेशों को हम शामिल कर लें जो आप हमसे लगातार भेजते रहते हैं। खुशनुमा नमस्ते, गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से और शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल, इन्होंने हमें संदेश भेजा है। वहीं संदेश हमें आया है बोधराज खोरवाल का। ये कहते हैं कि फिल्म का गीत हमें सुनवा दीजिए। उत्तम नगर दिल्ली से ये लिखते हैं। कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश इनके साथ हैं। शम्स कुल कमर राही का, इनका भी संदेश हमें मिला है। कमल का संदेश हमें मिला है। धर्मेंद्र छिप्पा, इनका संदेश मिलता है, कहते हैं कि बेहतरीन नगमे सुनवा दीजिए, शानदार प्रोग्राम कीजिए, किसी भी गीत में नाम शामिल कर लीजिए। और लिखने वाले हैं ये भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिप्पा, कपिल छिप्पा, ईशान छिप्पा और पूजा परिहार। रूबीना थापा का भी हमें संदेश मिला है। आपकी फरमाइश, देखिए फरमाइश नहीं है, आपकी पसंद का ये प्रोग्राम का नाम है, आपकी पसंद, और आपकी पसंद के गीत हम आपको सुनवाएंगे। ये संदेश हमें अब मिल रहा है ब्रजेंद्र जी का। ब्रजेंद्र जी विश्वकर्मा हैं और साथ में इनके हैं तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। इन्होंने भी अपना संदेश हमें लिख के भेजा है। रविंद्र मोहनदास का हमें संदेश मिला है किशनगंज बिहार से और इनके साथ आशा देवी हैं। देखिए उन तमाम आपके नाम तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन अगर आप अपनी बातें हमारे साथ शेयर करेंगे ना और अपने संदेश हमारे साथ शेयर करेंगे तो देखिए प्रोग्राम का मज़ा दोगुना हो जाएगा। चलिए मैं अपनी बात आपसे शेयर करता हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है कि तुमसे बातें करने का अब उतना मन नहीं करता, तुमसे बातें करने का अब उतना मन नहीं करता जितना मन बस तुम्हारे पास बैठने का होता है, बिना कुछ कहे थोड़ी देर और बस ये महसूस करना कि तुम साथ हो तो चुप्पी भी कितनी सुकून देती है। आपके संदेश हमें मिलते रहते हैं और यही सबसे बड़ी बात है कि आप हमें सुन रहे हैं, तो कभी कभी बिना बोले भी हम बहुत कुछ कह जाते हैं। ये लिखते हैं आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार, हमारी फरमाइश शामिल कर

लीजिए ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां और आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से इन्होंने संदेश भेजा है। तुलसी मस्कीन का संदेश हमें मिल चुका है और तुलसी मस्कीन जी क्या कहते हैं, देखिए बहुत खूबसूरत सा संदेश इन्होंने लिख के भेजा है। कहते हैं कि खुश रहो, खुशियां बांटो, गुनगुनाते रहो। साथ में इनके बहुत सारे साथी हैं, वीना मस्कीन हैं, आशीष राजा हैं, चेतना मस्कीन हैं, मेघा मस्कीन हैं। चंडीगढ़ से एक और हमें संदेश मिला है राहुल खुराना, रुचिता केशु, रिधान खुराना का। तमाम संदेश हमारे को लगातार मिल रहे हैं और अगर हम इन संदेशों को लगातार पढ़ते रहेंगे तो शायद हम गीत नहीं सुनवा पाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत। दिन महीने साल गुजर जाएंगे, देख लेंगे, देख लेना।

जीने मरने की कसमें अक्सर हर कोई खाता है, लेकिन प्यार में जीना मरना नहीं है, प्यार को निभाना है। ऐसा लिखते हैं हरजिंदर सिंह भाटिया। और कहाँ से लिखते हैं, इन्होंने ये नहीं भेजा है। देखिए आप कहाँ से लिखते हैं, आप हमें वो नाम बताएंगे ना, तो देखिए हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपका संदेश पढ़ सकेंगे। माहिरा मलिक कहते हैं, नमस्कार आदाब बेशुमार मोहब्बत कनॉट प्लेस दिल्ली से। इनके साथ में हैं माहिरा मलिक तो है ही, हिबा अग्यास आयसा जोया जैनब मरियम, गीत इन्होंने फरमाइश भेजी है। ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके गीत को हम ज़रूर सुनवा पाए, लेकिन आपका नाम देखिए हमने ज़रूर पढ़ दिया। रमेश चौहान का हमें संदेश मिला है, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से। रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी और बेबी हायशा, आपके नाम हम लगातार पढ़ते हैं, लेकिन अगर अपने नाम के साथ, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप कुछ संदेश लिखते हैं, कुछ शायरी लिख के भेजते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, तो बिल्कुल इतना मज़ा आ जाएगा। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, डॉक्टर अमनदीप कालका से, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, और इससे पहले ये थे सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। शाहजी बोड़खे, इनका संदेश भी हमें मिल चुका है। साथ में हैं इनके श्रीमती नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, उत्तम जाम बोड़खे और स्वराज जाम बोड़खे, ये भी हमें संदेश लिख रहे हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं। एक और संदेश हमें मिला है, नीतू मल्होत्रा का हमें संदेश मिला है, बेशुमार मोहब्बत आपको लिखते हैं। सतीश अनेजा का संदेश मिला है, नमस्कार जी प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इनके साथ हैं बिमला अनेजा, इन्होंने मिलकर हमें एक ख़त भेजा है। देखिए बार बार हमारी जबान से ख़त निकलता है, क्योंकि ये जो ईमेल के संदेश है ना, ख़त से भी सुंदर तो होते हैं, लेकिन जो बात ख़तों में थी वो इसमें कहाँ। बहुत ही खूबसूरत सा गीत था ना, चिट्ठी आई है, संदेश लाई है। अगला जो संदेश हमें मिला है, वो मिला है हमें नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। ये लिखते हैं पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल मलकापुर से है, नारायणा, राजकुमार खर्चे, आशीष, और साथ में धन्यवाद भी लिखते हैं। देखिए धन्यवाद आपका कि आप हमसे जुड़े हैं। कौशल्या देवांगन का हमें संदेश मिल चुका है, नवीन जी नमस्कार, किसी भी गीत के साथ हमारा नाम बोल दीजिए, नाम तो आपका आएगा ही। दीपेश वर्मा का हमें संदेश मिला है, ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। साथ में है पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांग शर्मा, आर कुमार। आर कुमार जी अगर आप अपना पूरा नाम हमें लिख के भेजते तो हमें ज़्यादा आसानी होती। वड़िंग खेड़ा से, पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा इनके साथ हैं। सुधाकर जाधव का हमें संदेश मिला है, देखिए क्या खूबसूरत मिलते हैं। आज जागतिक पक्षी दिन आ है, देखिए महाराष्ट्र के अंदर लिखा है, मराठी में लिखा है, कोशिश करते हैं कि हम पढ़ें। आज जागतिक पक्षी दिन आ है, यानी पशु पक्षी वास्ते आपके आंगन में आपको दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। हम तो हमारे आंगन में पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करते ही हैं। आज पक्षी दिन है, इस वास्ते आज के दिन हमेशा हमें पशु पक्षियों के लिए दाना ज़रूर रखना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत बात की है, और यहाँ से एक बात मुझे याद आती है, कहते हैं कि खुद जियो औरों को भी जीने दो। प्रेम पूर्वक नमस्कार, ग्राम पंचायत कालेबाग जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, कुमार संचित, कुमार प्रथमेश, कुमार प्रणाली, कुमार सर्वद और कुमारी सानवी देशमुख। आप सबके पसंद पे बहुत ही खूबसूरत सा गीत मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ। इससे पहले एक और संदेश हमारे पास आया है, पद्मपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहरा अरोड़ा और ममता अरोड़ा का। एक और संदेश है सांबलपुर कांकेर से फगुराम यादव का, सुधाकर यादव का संदेश हमारे पास है, रविंद्र मोहन दास का संदेश हमारे पास है, किशनगंज बिहार से छोटे अंसारी, इनका भी हमें संदेश मिला है। कहते हैं कि सदा खुश रहो, आपका आज का प्रोग्राम बेहद शानदार है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, असलम अंसारी और असाद अंसारी, आप सबकी पसंद पे एक खूबसूरत सा गीत, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं।

संदेश हमारे पास लगातार आ रहे हैं, सुरेश जाधव, हिरमानी वर्मा और राम नरेश चिक, आपका भी संदेश हमें मिल चुका है। वही संदेश आया है प्रकाश वर्मा का, सप्रेम नमस्कार और आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार, ये लिखते हैं पुंजाली नावेरकर। स्वर्ण सिंह का संदेश मिल चुका है, किशन सपकाल है, नवी हसन है और सुदर्शन मुखी है। आप सबके संदेशों के साथ बहुत ही खूबसूरत गीत आप सबके लिए।

वकी प्यार करने वाले कभी भी नहीं डरते, और डरना भी क्यों है कि प्यार कोई ऐसी चीज़ थोड़ा ना है जो डरेगा। प्यार ऐसी चीज़ है जो और बांटनी चाहिए। लोगों से मिलिए, मुस्कुराते रहिए, और जितने ज़्यादा आप दोस्त बनाएंगे ना, देखिए आपका चेहरा उतना ही खिला रहेगा, माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा, और तरह तरह के लोगों से तरह तरह की बातें कीजिए, फिर देखिए क्या मज़ा आता है ज़िंदगी का। लिख भेजते हैं संघमित्रा श्रोता संघ, वार्ड नंबर 1 पुफाली, ज़िला यवतमाल से जयशंकर सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी। देखिए हमने आपका संदेश शामिल कर लिया है, संदीप मक्कड़ का संदेश हमने शामिल कर रखे हैं, मोहम्मद सईद अब्बासी का संदेश हम साफ शामिल कर रखे हैं, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान और बहुत सारे साथी, किशन वंजनानी इनका संदेश हमें मिल चुका है, इनका भी संदेश हम शामिल कर रहे हैं, रचना यादव एक नाम मुझे दिखाई दे रहा है, उनके साथ बहुत लंबी फेरिस्त है, पूजा, अभय सिंह, किशन सिंह, आशा राजौरिया, अजय, ज्योति राजौरिया, मंथन।

अभी आप सुन रहे थे सबरस कार्यक्रम। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी। इसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग जौनपुरी में ख्याल। कलाकार हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खां।

0: अभी आप सुन रहे थे राग जौनपुरी में ये ख्याल। कलाकार थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां। इसके साथ ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करीब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
1: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 वैशाख गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल एसएन राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान 4थे और गुजरात 5वें नंबर पर है।

आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।

0: घर आंगन। साथियों, आज की बात इस सुविचार के साथ कि कर्म करें फल की इच्छा न रखें। गीता का ये सार श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का अर्जुन से संवाद, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी जीविका जीवन का आधार सिर्फ कर्म करने तक है और उसके परिणाम पर हमारा कोई भी हाथ नहीं होता है।
1: जी हाँ, नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और कार्यक्रम है घर आंगन, और साथ ही साथ हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। और मैं हूँ आज आपके साथ प्रतिभा और
0: मनीषा। तो स्वीकारें हमारा
1: प्यार भरा नमस्कार।
0: साथियों, अपने कर्तव्य और उसे पूरी निष्ठा से निभाने और परिणाम की चिंता से मुक्त रहने की सीख है निस्वार्थ कर्म, जो मन को शांति देता है और संतुलित भी बनाता है।

0: अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी हो जाता है जहाँ प्रतियोगिता है, मानसिक दबाव है, और ऐसे में संतुलन ही जीवन की कला है।
1: क्योंकि जब कर्म पूजा बन जाए तो सफलता स्वयं ही प्रसाद हो जाती है।

0: महेंद्र कपूर, मनहर और लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म थी पूरब और पश्चिम।
1: साथियों, सूत्र वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी अधिक से अधिक लोगों का कल्याण और अधिक से अधिक लोगों के सुख का मार्ग प्रशस्त करना, इस ध्येय वाक्य के साथ 90 वर्षों से सतत देश की धड़कन बना हुआ है आकाशवाणी।
0: दोस्तों, 1936 प्रसारण की दुनिया में ये साल भारत के इतिहास में दर्ज आजादी से पहले की वो आवाज है जो आज 140 करोड़ श्रोताओं तक निर्बाध पहुंच रही है।
1: जानते हैं, शुरुआती दिनों में प्रसारण के इस विकास यात्रा को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने बीबीसी के लियोनेल फील्डन की सेवाएं ली। वे प्रसारण नियंत्रक के रूप में भारत में 1935 में यहाँ आए
0: और दिल्ली स्थित हमारे इस केंद्रीय रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ 1936 में नए साल के दिन। फिर शुरू हुई रेडियो के विस्तार की योजना और प्रक्रिया।
1: और जानते हैं, इस दौरान तकनीकी विशेषज्ञों में बीबीसी के अभियंता एचएल किर के भारत आए। लियोनेल के साथ जिस योजना को उन्होंने तैयार किया, उसे बीबीसी के मुख्य अभियंता सीडब्ल्यू गोइडर के संशोधनों के बाद अपनाया गया। दोस्तों,
0: यानी सन 1936 का वर्ष भारत के प्रसारण इतिहास में बना मील का पत्थर। देश की विश्वसनीयता का परिचायक आकाश

0: जी हाँ, तेरे सुर और मेरे गीत। इस गीत को आप सुन रहे थे गूंज उठी शहनाई फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारे सुर से सुर मिलाने के लिए आपको जुड़ना होगा fmgold@gmail.com पर अपने संदेशों के जरिए। तो बने रहें FM Gold 100.1 में, घर आंगन के साथ।
1: श्रोताओं, आज हम नमन करते हैं वीरता के प्रतीक महाराणा प्रताप जी को, जिनकी जयंती ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के रूप में मनाई जाती है। 1540 में जन्मे महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और आज भी शौर्य और पराक्रम की अविस्मरणीय मिसाल हैं वो।
0: इसी दिन याद करते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता कवि, दार्शनिक और भारत के राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी को, जिनकी 165वीं जयंती मनाई जा रही है।
1: बंगाल में जन्मे टैगोर, जिन्हें साहित्य और कला के क्षेत्र में अपार ख्याति प्राप्त है, बंगाल साहित्य में उनका अभूतपूर्व योगदान रहा है।
0: जिनका जन्म बंगाली कैलेंडर के अनुसार दोस्तों हर साल मई माह के शुरुआती दिनों में मनाया जाता है और बंगाली पंचांग के अनुसार टैगोर जी का जन्म बोईशाख महीने की 25 तारीख को माना गया है। इसलिए तिथि के अनुसार इस साल उनकी जयंती 9 मई यानी आज के दिन मनाई जा रही है।
1: और देखो मनीषा, साथ ही आज भारतीय

0: स्वतंत्रता संग्राम के उदारवादी नेता, समाज सुधारक और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी की भी जयंती है। 9 मई 1866 में जन्मे स्वतंत्रता संग्राम के इस वीर को भी हम आज नमन करते हैं।
1: तो सुनते रहिए, गुनते रहिए, सीखते रहिए देश की प्रेरणाओं से आगे बढ़ने और बेहतर करने का हुनर FM गोल के साथ।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना सहरा फिल्म से इस गीत को।
1: श्रोताओं, आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जा रहा है, जो मई महीने के हर दूसरे शनिवार को हर साल मनाया जाता है।
0: और प्रकृति ने ना दोस्तों हमें वनस्पतियों के साथ साथ पशु पक्षियों की प्रजातियां भी सौगात के रूप में दी हैं। मानते हैं ना आप इस बात को, क्योंकि ये इतने अनमोल हैं कि हम सभी के आंगन में हमारी नींद खुलने से पहले चहक चहक कर हमें जगाते हैं। तो ये जो विलुप्त होती हुई कुछ पक्षियों की प्रजाति है, उनको संरक्षित करने के लिए ही हम आज का दिन मनाते हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने मनीषा। देखो, आज का दिन प्रवासी पक्षियों की आबादी को प्रभावित करने वाले कारकों पर डेटा एकत्र करने में जन भागीदारी की भूमिका पर प्रकाश डालता है।
0: इसमें पक्षियों की गिनती से लेकर सर्वेक्षण और योजनाएं शामिल होती हैं दोस्तों।
1: देखो, ना केवल योजनाएं बल्कि आज के इस अवसर पर जो आज का जो दिन मनाया जा रहा है, तुम जानती हो कि 100 से अधिक देशों में आज कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
0: प्रवासी जो पक्षी होते हैं, उनकी प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में देखने के लिए एक सुनहरा अवसर देने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं दोस्तों, ताकि हम इसके लिए सक्रिय भागीदारी रख सकें।
1: बिल्कुल। और देखो, प्रवासी पक्षियों की सुंदरता और महत्व से प्रेरित रचनात्मक कृतियां भी बनाई

0: संरक्षण और जलवायु परिवर्तन तथा आवासों के नुकसान जैसे खतरों से निपटने के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए आज के दिन बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
1: होने भी चाहिए, है ना प्रतिभा। और ये जो पशु पक्षी हैं वो हमारी प्रकृति की धरोहर हैं दोस्तों, इन्हें बचाए रखने में हमें भी अपना योगदान जरूर देना चाहिए, क्या कहते हैं आप?

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना फिल्म अनाड़ी से। श्रोताओं, आज महिलाएं देश की प्रगति में कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित भी कर रही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने प्रतिभा, क्योंकि महिलाएं सिर्फ घर तक अब सीमित नहीं हैं, बल्कि वे हर क्षेत्र में सफलता के नए आयाम स्थापित कर चुकी हैं और कर रही हैं। शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल और व्यापार, कोई भी क्षेत्र हो, भारतीय महिलाओं ने हर जगह अपना सिक्का अब स्थापित कर लिया है।
0: बिल्कुल ठीक कहा मनीषा तुमने। कल्पना चावला, पीटी उषा, पीवी सिंधु, किरण मजूमदार शॉ, फाल्गुनी नायर, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, ऐसी महिलाओं के जो हम नाम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी प्रतिभा, सरकार की जो नीतियां हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, समाज के बदलते दृष्टिकोण

0: को जिस तरीके से महिलाओं के लिए नए अवसर के द्वार हमारी सरकार, हमारी जो आसपास की नीतियां हैं वो जिस तरीके से सुअवसर दे रही हैं, तो ये तो होना ही है। और भारतीय संस्कृति में हमारी जो महिला है वो सदैव से सम्मान के लिए हमेशा जानी जाती हैं और उन्हें वो सम्मान मिला ही है। और वर्तमान में जो हमारी केंद्र सरकार है उनकी नीतियों से महिलाओं को और भी अधिक सशक्त बनाने की दिशा में और भी नए रास्ते खुल रहे हैं, क्या कहती हो?
1: बिल्कुल ठीक कह रही हो मनीषा। तुम देखो, सशक्त नारी सशक्त भारत एक मजबूत और महत्वपूर्ण कदम है इस दिशा में। और इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को राजनीति और निर्णय लेने में समान भागीदारी देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं।
0: बिल्कुल, और मैं आपको बताना चाहूंगी साथियों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और लखपति दीदी योजना के द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार और ऋण सुविधा देकर और भी ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है।
1: बिल्कुल ठीक। और देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।
0: हाँ, साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत आज परिवार में स्वच्छ ईंधन पहुंचाकर महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाकर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है।
1: देखो मनीषा, सशक्त महिला जो होती है वो घर की नींव और राष्ट्र की प्रगति की कुंजी है। यह पहल केवल सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल सही कहा। और ये अभियान महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सबल बनाकर विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

0: लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी पड़ोसन।
1: और श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं FM गोल्ड 100.1 MHz पर आपके अपने घर आंगन कार्यक्रम में। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है ये जानने के लिए हम भी उत्सुक हैं, तो fmgoldga@gmail.com पर आपके संदेशों की प्रतीक्षा है हमें। लेकिन इसी के साथ हम बताना चाहते हैं कि कुछ हमारे श्रोता साथी हैं जिन्होंने इस प्रतीक्षा को हमारी खत्म कर दिया है, और वो हैं हमारे नियमित श्रोता साथी, हमारे साथ नवीन भाटिया जी मोती नगर नई दिल्ली से, जिनको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, जानकारी अच्छी लग रही है, और हमेशा की तरह आज भी वो बहुत ही आनंदित हो रहे हैं इस कार्यक्रम के साथ। जी बहुत जी, आपको भी राम राम। और ये हैं गौरी शंकर जी नांगलोई से, और इन्होंने कहा है कि अच्छा इंसान जो है वो कर्म करने से ही आगे बढ़ता है, उसी तरह पशु पक्षी से भी हमें सीखना चाहिए और अपने कर्म को अच्छी तरह से निभाते रहना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत संदेश आपने दिया, और आपके इन संदेशों को निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और हमारी कोशिश होती है दोस्तों कि हम सभी जीवन के हर आनंद में आगे बढ़ें, क्योंकि जीवन के हर आयाम में हम खुशियाँ तभी पाते हैं जब हम प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं और अच्छी मानवीय भावनाओं को अपने अंदर लेते हुए जीवन की खुशियों को अपनी आंखों में समेटते हुए चलते रहते हैं, साथ साथ में गाते गुनगुनाते। तो चलिए फिर से गुनगुनाते हैं इस गीत के साथ, हमारे साथ आप भी जुड़िए और खुश हो जाइए।

0: लता मंगेशकर के सुरील सी आवाज में आप सुन रहे थे अनामिका फिल्म से ये गीत।
1: मनीषा देखो, अनुशासन सफल जीवन की पहली सीढ़ी होता है। जीवन में अगर व्यक्ति अनुशासित है ना, तो वो सबसे बड़ा धनवान है, क्योंकि अनुशासित व्यक्ति जीवन के हर पड़ाव पर सजग और सचेत रहता है।
0: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा, अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में बहुत जरूरी है, चाहे वो शिक्षा हो या करियर हो या रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा उठना बैठना ही क्यों ना हो, सब कुछ अनुशासित होने से अच्छा होता है।
1: बिल्कुल, और देखो अनुशासन फिटनेस का आधार भी है। फिटनेस का मतलब केवल जिम जाना नहीं, बल्कि एक अनुशासित जीवन शैली है, क्योंकि अनुशासन वो ताकत है जो प्रेरणा के खत्म होने के बाद भी आपको कसरत और सही खान पान जारी रखने में मदद करता है।
0: बिल्कुल सही कहा, फिटनेस केवल एक अस्थाई लक्ष्य नहीं है साथियों, ये हमारे श्रोता साथी भी जानते होंगे, बल्कि एक जीवन शैली है ना, जिसे बनाए रखने के लिए अनुशासित होना हम सभी का बहुत जरूरी है।
1: तो भाई मनीषा, क्यों ना आज बात करें कि अनुशासन फिटनेस के लिए क्यों और कैसे जरूरी है।
0: बिल्कुल, और मैं बताना चाहूंगी अपने दोस्तों को, उन्हें वैसे पता ही होगा कि अनुशासन का जो मूल मंत्र है वो है निरंतरता, यानी कि कंसिस्टेंसी, यानी जब व्यायाम करने का मन ना हो तब भी हमें कसरत करना चाहिए, यही हमारी नियमितता है और यही हमें अच्छा फल देती है।
1: देखो फिटनेस में निरंतरता ही वो कुंजी है जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, और जैसे तुमने अभी निरंतरता की बात की है ना, और अनुशासित रहने से आप कठिन दिनों में भी अपनी दिनचर्या बनाए रखते हैं, जिससे प्रगति बनी रहती है।
0: बिल्कुल सही कहा, और साथियों अनुशासित होने से जो हमारा स्वास्थ्य है, हमारी स्वास्थ्यवर्धक जो आदतें हैं वो और अच्छी होती हैं। जैसे हम सुबह अगर उठते हैं तो एक नियमित समय में उठें, जल्दी उठें, पौष्टिक भोजन ही करें, और अपनी जीवन शैली का इन सभी चीज़ों को अगर हम हिस्सा बनाते हैं तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है।
1: बिल्कुल, और देखो नियमित अनुशासन से सहन शक्ति, ताकत और लचीलापन भी बढ़ता है।
0: लगातार व्यायाम करने से तनाव का स्तर कम होता है दोस्तों, और मानसिक रूप से भी हमें बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है, खुद पर नियंत्रण रखने की क्षमता भी आती जाती है, जिससे आप बिना किसी बाहरी दबाव के अपने लक्ष्य की तरफ, फोकस की तरफ लगातार बने रह सकते हैं।
1: तो भाई क्यों ना अब बात की जाए कि अनुशासित जीवन शैली को हम कैसे अपना सकते हैं। तो भाई करना आपको ये है कि शुरुआत जो हो वो आपकी छोटी हो, यानी कि छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें, ताकि आप लंबे समय तक उसे अपना सकें।
0: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा तुमने, और फिटनेस के साथ अगर हम अनुशासित रहने का एक ठोस कारण खोजें, जैसे कि हमें रोज सुबह 6 बजे उठना है और हम उसका नियमित पालन करें, तो ये एक अच्छी आदत हमारे व्यवहार में शामिल हो जाएगी।
1: बिल्कुल, और देखो नियमित रूप से व्यायाम करने वाले अधिकांश लोग सुबह के समय को ही प्राथमिकता देते हैं, तो भाई सुबह तो फिर जल्दी उठना लाजमी है ना।
0: और सबसे जरूरी है दोस्तों कि अपनी फिटनेस यात्रा के परिणामों पर, यानी कि हम जो कर रहे हैं उससे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, इस पर हम नजर रखें और अपने अनुशासन को टूटने ना दें।
1: बिल्कुल, और देखो अनुशासित व्यक्ति अपने लक्ष्यों को अधिक आसानी से और तेजी से प्राप्त कर सकता है, और ये आपको शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक ऊर्जावान बनाता है, जिससे आप दैनिक जीवन के कार्यों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं।
0: और अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि फिटनेस में अनुशासन कोई सजा नहीं है दोस्तों, बल्कि स्वयं के प्रति गहरा प्यार, गहरा सम्मान है अगर हम ये कर पाते हैं तो, और ये वो ऊर्जा है जो हमें ऐसी शक्ति से जोड़ता है जहां हम अपनी फिटनेस यात्रा को, अपनी प्रेरणा को कम ना होने देते हुए इसे आगे बढ़ाते हैं, और इसके साथ साथ अपनी जिंदगी में अपनी खुशी के लक्ष्यों को पाते जाते हैं।

0: येशुदास की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी चितचोर।
1: और साथियों, घूमने का शौक तो अमूमन आप सभी को होगा, हमें भी है, और ऐसे में जो वीकेंड्स होता है उसमें लॉन्ग ड्राइव या आसपास की जगहों में घूमना हमारी जो महानगरीय जीवन संस्कृति है उसमें सुकून की सांस लेने जैसा है, क्या कहते हैं आप?
0: बिल्कुल। और देखो, अगर आप दिल्ली या NCR के निवासी हैं तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की खूबियों से भी आप वाकिफ होंगे, यदि नहीं तो ये जानकारी हो सकती है आपके बड़े काम की।
1: रफ्तार, तकनीक और प्रकृति को जोड़ने वाला ये मार्ग करीब 213 किलोमीटर लंबा है। इस आधुनिक एक्सप्रेसवे में यात्रा के लिए जहां 6 से 6.5 घंटे का समय लगता था, वो अब मॉडर्न वे की वजह से लगभग आधा ही रह गया है। दोस्तों,
0: 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे देश के सबसे आधुनिक हाईवे में से एक है, जहां हल्की गाड़ियों के लिए अधिकतम गति सीमा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्पीड का आनंद तो है ही, पर लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि रेस ना लगाएं बिल्कुल भी।
1: और हाँ, ये एक्सप्रेसवे यानी कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे गुजरता है एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर राजाजी नेशनल पार्क से, इसलिए जब आप यहाँ से गुजरें तो इस फॉरेस्ट जोन में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु धीमी गति और अनुशासन का ध्यान बेहद जरूरी है। दोस्तों,
0: बिल्कुल। और देखिए, सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है, मोबाइल से दूरी बनाकर रखें, और अगर आप ये सब ध्यान रखते हैं तो इस ड्राइव में आपको थकान बिल्कुल नहीं होगी।
1: और ध्यान रहे, ड्राइव स्मार्ट, ड्राइव सेफ, क्योंकि शान की सवारी तभी जब हो वो पूरी तरह से सुरक्षित।

0: साथियों, ये आखिरी गीत आपके लिए है मेरे जीवन साथी फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। और इस गीत के साथ आपको हम छोड़े जाते हैं यहीं घर आंगन कार्यक्रम में। आज सफर बस यहीं तक। मनीषा और
1: प्रतिभा को
0: दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: Good.
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।
2: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एनएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
0: मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए यह शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज बात हो रही है फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा की। श्रोताओं, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की, तो कहानी है बहन भाइयों की। प्रशांत और जसबीर मॉन्ट्रियल कनाडा में रहते हैं। माता पिता के तलाक के कारण दोनों अलग हो जाते हैं। प्रशांत माँ के साथ इंडिया चला आता है, जबकि जसबीर पिता के साथ वहीं रह जाती है। इसके बाद पिता द्वारा धोखा दिए जाने पर जो जैनिस है वो घर छोड़ देती है और बन जाती है हिप्पी, और अपना नाम रख लेती है जसबीर से जैनिस। इसके बाद वर्षों बाद पिता के बुलावे पर जब प्रशांत काठमांडू आता है और देखता है कि उसकी बहन नशे की आदि हो चुकी है, तो अपनी पहचान को पूरी तरह भूल चुकी है। बस वहीं से संघर्ष शुरू होता है और प्रशांत जुट जाता है पूरी तरह से अपनी बहन को हिप्पियों के चंगुल से छुड़ाने के लिए और वापस उसकी ज़िंदगी अच्छी बनाने के लिए। तो कहानी ऐसी थी कि लोगों के दिलों को छू गई थी, क्योंकि अक्सर जो कहानियाँ हम फिल्मों में देखा करते थे वो नायक नायिका के बीच में ज़्यादा दिखाई देती थी, लेकिन ये जो कहानी थी ये बहन और भाई के प्रेम की थी, तो इसलिए लोगों के मन में इस फिल्म के लिए एक अलग ही बात थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में देवानंद, जीनत अमान, मुमताज़, प्रेम चोपड़ा, अचला सचदेवा थी, और सबसे ज़्यादा जो चर्चा हुई इस फिल्म में वो हुई जीनत अमान की। उनका बोल्ड अंदाज, अलग स्टाइल, स्क्रीन प्रेजेंस उस समय के लिए बिल्कुल नया था, और कहा जाता है कि इस फिल्म के लिए कई अभिनेत्रियों से संपर्क किया गया था इस रोल के लिए, लेकिन बहुत सारे, क्योंकि ये जो रोल था ये थोड़ा सा उस समय के देखते हुए बोल्ड किरदार था, तो हर अभिनेत्री इसके लिए राजी नहीं हो रही थी। इवन दो बताया तो ये भी जाता है कि मुमताज़ को भी पहले यही रोल ऑफर हुआ था, लेकिन सबने मना कर दिया था, और फिर कास्ट किया गया, जीनत अमान का ऑडिशन लिया गया, और जीनत अमान को इस रोल में बेहतरीन जो किरदार उन्होंने करके दिखाया है वो आज तक याद किया जाता है।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और मैं हूँ इस कार्यक्रम में आपके साथ, आप इसके इस कार्यक्रम की होस्ट विजेता चतुर्वेदी। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा की। जब इस फिल्म में जीनत अमान को कास्ट किया गया था, उससे पहले वो मॉडलिंग कर रही थी और मिस एशिया पैसिफिक का खिताब भी जीत चुकी थी, लेकिन उसके बाद उनका करियर आगे नहीं बढ़ रहा था, तो उन्होंने इंडिया छोड़ने का मन बना लिया था। और ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने अपने बैग वैग भी पैक कर लिए थे। उसी दौरान जब ये मूवी की बनने की बात आई तो उनको ऑडिशन किया गया और ऑडिशन में वो सिलेक्ट भी हो गई, लेकिन वो बताती हैं कि उस दौर में जो फिल्में हैं वो दो दो तीन तीन साल तक बनती थी, उनकी एडिटिंग इतना लंबा समय लेती थी। तो फिर जब काम नहीं मिल रहा था तो फिर दोबारा से उन्होंने जाने का सोचा। तब कहते हैं देव साहब से उन्होंने बात की और इस फिल्म की एडिटिंग को जल्दी से करवाया, और जब ये फिल्म लोगों के सामने आई तो रातों रात जीनत अमान को सुपरस्टार बना दिया और नज़र में आ गई थी। क्योंकि ये जो जीनत अमान का जो उस वक्त का जो देख जिस तरह की वो दिखती थी, बाकी सब हीरोइनों से काफ़ी अलग दिखाई देती थी, उनका स्टाइल जो था वो बिल्कुल अलग था, इसलिए उन्होंने बहुत ही जल्दी अपने दर्शकों के दिल में एक अलग से जगह बना ली। श्रोताओं, बात की जाए इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन की तो भारत के अलावा नेपाल में भी इसकी शूटिंग की गई है, वहाँ की खूबसूरत वादियाँ दिखाई गई हैं और बहुत ही हिप्पी जो कल्चर इस फिल्म में दिखाया गया है बहुत ही वास्तविक दिखाया गया है। उस दौर में विदेशों में शूटिंग करना एक बहुत बड़ा कल्चर था, बहुत बड़ी बात होती थी, और ख़ास तौर से देवानंद की फिल्मों में तो ऐसा ज़रूर होता था कि वो अपने फिल्म का कुछ हिस्सा देश के बाहर ज़रूर करते थे। काठमांडू की गलियाँ, मंदिर, खुले माहौल में इस फिल्म को एक अलग ही पहचान दी। और अब बात करते हैं फिल्म के म्यूज़िक की। दोस्तों, फिल्म का जो म्यूज़िक दिया वो दिया था महान संगीतकार आरडी बर्मन ने, और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म के गाने आज भी सदाबहार है, और सबसे बड़ा सुपरहिट गाना जो है वो अब मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ। और यही गाना इस फिल्म की पहचान

और हमारे बहुत सारे श्रोता भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, तो आइए उनकी भी संदेश हम यहाँ शामिल कर लेते हैं। तो सबसे पहला संदेश हमारे पास आया कविता गौड़।

0: राजस्थान से जुड़ रहे हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार, और लिखते हैं कि हरे रामा हरे कृष्णा, जिसे देवानंद ने निर्देशित किया और नशाखोरी खिलाफ इस फिल्म में दिखाया गया है, जिसमें अभिनय किया था देवानंद, जीनत अमान, मुमताज और प्रेम चोपड़ा ने, आनंद बख्शी की लिखी हुई गीतों ने और संगीत से सजाया आर डी बर्मन ने। उन गीतों को आवाज दी आशा भोसले, किशोर कुमार, आर डी बर्मन, उषा उत्थुप ने। और इस फिल्म के बारे में जो बातें बताई हैं आपने, ये बहुत ही रोचक लग रही हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी जुड़ रहे हैं शांति नगर सोनीपत से और लिखते हैं, वी आर लिसनिंग प्रोग्राम और एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, स्टोरी, ऑल टाइम हिट्स। जी हाँ बिल्कुल, इस फिल्म के गाने ऑल टाइम हिट्स ही हैं जो हमेशा ही अच्छे लगते हैं। अगला संदेश हमारे पास देवशंकर तमूरिया, जय देव तमूरिया, तुषार देव तमूरिया, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा, मास्टर अल कबीर, किकरी मेटा, बेलहारी, पाटन दुर्ग से संतोष शर्मा और रुक्मणी शर्मा भी जुड़ रहे हैं, भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा जुड़ रहे हैं, दतरंगी से, पिपारिया से, कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता और समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति, राधे, दीपक, अंकु राघव, गांव फ्रांसी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जुड़ रहे हैं। लिखते हैं कि हरे रामा हरे कृष्णा की कहानी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है और जो जानकारी आप दे रही हैं बहुत ही बढ़िया है, फिल्म के गीत भी बहुत ही अच्छे हैं। खुशनुमा प्रस्तुति, गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से जुड़ रहे हैं और शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जुड़ रहे हैं, वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, ऊषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक जुड़ रहे हैं, नलेश्वर नगर नरवेल से पी एस नुहारकर, निर्मला और विशाल जी जुड़ रहे हैं, अजीत भवसार भी जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जुड़ रहे हैं और लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हेना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का संदेश रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से और वीरमगांव गुजरात से अजीत भवसार, प्रमिला भवसार। तो ये हमारे श्रोताओं के संदेश, तो आपके इतने प्यारे प्यारे संदेशों के नाम, एक और गीत इस फिल्म से।
1: तो इस्तेमाल करो हाथ पाओ, माउंट एवरेस्ट पे जाओ, मून पे जाओ, यहाँ पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। अफीम, चरस, गांजा के बीच गुनगुनाने से कुछ नहीं होगा। अगर यही भक्ति है, यही भगवान है, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, जिसका जप जपते रहते हो, तो उतार के फेंक दो इन मालाओं को, बहा दो इन फूलों को बागमती नदी की धारा में, वहां ज्यादा शोभा देगी।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोता, इस फिल्म की खास बात यह है कि ये जो फिल्म है, इसे हिप्पी संस्कृति को जब देवानंद ने पढ़ा था तो उनके मन में ये विश्वास आया था कि इस पर भी एक फिल्म बननी चाहिए, लोगों के बीच जागरूकता आनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त पर नशाखोरी तेज़ी से बढ़ रही थी। इसको दूर करने के लिए उन्होंने इस फिल्म का निर्माण करने का सोचा। आरडी बर्मन ने वेस्टर्न और इंडियन म्यूजिक का एक अनोखा मिश्रण इस फिल्म में किया। इस फिल्म के लिए जीनत अमान को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, और जो उनका लुक और स्टाइल था वो युवाओं के बीच में फैशन ट्रेंड बन गया था। श्रोताओं, इस फिल्म का संदेश सिर्फ मनोरंजन करना नहीं था, इसने समाज को सोचने पर मजबूर किया। हालांकि इस फिल्म को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, लेकिन गानों को लेकर या फिर इसमें जो जिस तरह की कल्चर दिखाया गया है उसको लेकर, लेकिन इस फिल्म का संदेश जो था वो एकदम साफ था कि जो परिवार टूटते हैं, गलत संगत जो युवाओं की हो जाती है, उसको दोबारा से ज़िंदगी में किस तरह से शामिल किया जाए, इसी संदेश को लेकर 1971 में ये फिल्म आई थी और लोगों के मन पर छा गई थी। तो श्रोताओं, ये फिल्म एक फिल्म नहीं बल्कि अपने दौर का एक आईना थी। इस फिल्म ने संगीत दिया, संदेश दिया और हिंदी सिनेमा को एक नई सुपरस्टार दी, जीनत अमान। तो इसी के साथ हमारा आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें मेल करके ज़रूर बता सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीआं खबरां। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने आज पश्चिमी बंगाल के नवे मुख्यमंत्री वजों सहुं चुक ली है। तमिलनाडु विच टीवी के मुखी सी जोसफ बिजले की अगवाई हेठ सरकार के गठन नूं लैके अनिश्चितता बनी हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS और वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन समुद्री फौज के अगले मुखी होंगे। खाड़ी इलाके में ईरान और अमरीका विचकार तनाव बढ़ गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में 7:30 बजे राजस्थान रॉयल

0: कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। दिन में लगभग 11 बजे वजीर आजम बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के 45 साल पूरे होने की तकरीब में शामिल होंगे और आर्ट ऑफ लिविंग बैन अक्वामी मरकज में नए तामीर किए गए ध्यान मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम प्रोग्राम के दौरान वहां मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। इसके बाद वजीर आजम मोदी हैदराबाद रवाना हो जाएंगे और तकरीबन 3 बजे हैदराबाद में कई तरक्याती प्रोजेक्टों की बुनियाद रखेंगे और उनका इफ्तिताह करेंगे, जिनकी मालियत 9,400 करोड़ रुपये बताई जाती है। सोमनाथ मंदिर की असरे नौ तामीर के 75 साल पूरे होने के मौके पर सोमनाथ अमृत पर्व 2026 मनाया जा रहा है। इस 5 रोज़ा तकरीब के दौरान मंदिर की तारीखी अहमियत को उजागर किया जाएगा। इस तकरीब को यादगार बनाने के लिए वजीर आजम मोदी पीर को सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। कानूनी खिदमात की कौमी अथॉरिटी NLSA आज पूरे मुल्क में दूसरी कौमी लोक अदालत 2026 का इनेकाद कर रही है। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए NLSA के मेंबर सेक्रेटरी संजीव पांडे ने बताया कि शमूलियत और आवाम पर मरकूज तरीक़ों के जरिए तनाज़ात के बआसानी निपटारे और अदालतों पर बोझ को कम करना इस इकदाम का मकसद है। उन्होंने बताया कि मुसालहत के काबिल फौजदारी मामलात, बैंकों के चेक वापस होने के मामलात और बैंक की रकम वसूल करने के तनाज़ात समेत इस लोक अदालत में बड़े पैमाने पर तनाज़ात निपटाए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि 2023 और 2025 के दरमियान 12 कौमी लोक अदालतों का इनेकाद किया गया, जिसमें 26 करोड़ मामलात का निपटारा किया गया।
1: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के दरमियान रिवायती रिश्तों की तारीफ की। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने खारजी मामलात और त्रिनिदाद एंड टोबैगो के कैरिकॉम मामलात की वजारत में परचम कुशाई के मौके पर खिताब किया। वजीर मौसूफ ने दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे सकाफती रवाबित और तारीखी रिश्तों का जिक्र किया। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों मुल्कों के दरमियान कपड़ों, खेलों और रिवायतों में यकसानियत पाई जाती है। डॉक्टर जयशंकर ने त्रिनिदाद और टोबैगो की वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसा से मुलाकात की और बाहमी तआवुन को मजीद मजबूत करने के इकदाम के बारे में तबादला ख्याल किया। हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमानी को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS मुकर्रर किया है। वजारत दिफा का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमानी ओहदा संभालने की तारीख से अगले अहकाम तक फौजी उमूर के महकमे के सिक्रेटरी के तौर पर भी खिदमत अंजाम देंगे। हुकूमत ने वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को बहरिया का अगला सरबराह मुकर्रर किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन इस वक्त मगरबी बहरिया की कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडमिरल की तकरीबन 4 दहाइयों की शानदार खिदमत हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर के 165वें यौम पैदाइश पर आज पोचीशे बोईशाख के मौके पर रविन्द्र जयंती मनाई जा रही है। पूरी दुनिया में सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है।

खास प्रोग्राम शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी समेत पूरे मगरबी बंगाल और बांग्लादेश में मुनक्किद किए जा रहे हैं। इन प्रोग्रामों में रविंद्र संगीत, शायरी, रक्स और ड्रामे का इनेकाद किया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया सी पी राधा कृष्णन और वजीर आजम ने मोदी ने पोचीशे बोईशाख के मौके पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर को खराज अकीदत पेश किया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY और अटल पेंशन योजना को पूरे मुल्क के शहरियों की खिदमत में 11 साल मुकम्मल हो गए हैं। खजाने की वजारत ने बताया कि सभी शहरियों, खासतौर से समाज के कमज़ोर तबकों को इकतसादी सहूलत देने के लिए इन स्कीमों का आगाज़ किया गया था। इन स्कीमों के बारे में बात करते हुए मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी

पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी जन सुरक्षा स्कीमों का आगाज किया था ताकि कम कीमत पर इंश्योरेंस और पेंशन के फायदे हासिल किए जा सकें। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने काले धन को जायज बनाने के एक मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी है। काले धन को जायज बनाने के इस मामले में हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड और इसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा शामिल हैं। दो रोज़ा बहर हिंद मुज़ाकरात IOD-10 कल नई दिल्ली में ख़त्म पजीर हुए। तब्दील होती दुनिया में बहर हिंद का खित्ता इन मुज़ाकरात की थीम थी। IPL क्रिकेट में आज शाम जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सुविंदु अधिकारी मगरी बंगाल के बीजेपी के पहले वजीर आला बन गए हैं। उन्होंने 5 काबिनी वदरा के साथ हलफ लिया। तमिलनाडु में सरकार बनाने पर सियासी तातुल बरकरार है। टीवी के पार्टी को अक्सरियत मिलना बाकी है। कानूनी खिदमात की कौमी अथॉरिटी तनाजात के बासानी हल के लिए पूरे मुल्क में लोक अदालत का इनेकाद कर रही है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बाहमी ताउन को मजबूत करने की गरज से त्रिनिदाद और टोबैगो की वजीर आजम से मुलाकात की। और IPL क्रिकेट में आज शाम जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: India's unshattered faith that has risen victorious over repeated assault over centuries. The festivities will culminate on 11th of this month with a grand Kumbh Abhishek at the temple spire using water from 11 sacred shrines. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
1: On to sports. In IPL cricket, Rajasthan Royals will face Gujarat Titans in Jaipur. The match will start at 7:30 p.m. Earlier, Kolkata Knight Riders defeated Delhi Capitals by 8 wickets at Delhi last night. Chasing the victory target of 143 runs, Kolkata Knight Riders made 147 for the loss of 2 wickets in 14.2 overs. Finn Allen delivered a jaw-dropping batting masterclass to power Kolkata Knight Riders to a commanding 8-wicket victory over Delhi Capitals. Two new suspected cases of hantavirus were reported yesterday, one in Spain and the other on the remote South Atlantic island of Tristan da Cunha, as experts raced to contain an outbreak that began on a luxury cruise ship. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Shobhendu Adhikari becomes the first BJP Chief Minister of West Bengal, takes oath along with 5 cabinet ministers. Political stalemate continues for government formation in Tamil Nadu as TVK yet to reach the majority mark. National Legal Services Authority organizes National Lok Adalat across the country to provide amicable settlement of disputes. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar meets Prime Minister of Trinidad and Tobago to strengthen bilateral cooperation. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to face Gujarat Titans in Jaipur this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and News on EIR app. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
4: अमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करीब। भारतের सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
3: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कहा कृषि अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा

0: कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्रवाई की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित

0: कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
1: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाश।

0: लोकवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
1: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
0: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है प्रोग्राम एक ही कलाकार का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में।

महमूद जी एक गांधीवादी थे और अमीनाबाद में क्यूरियो शॉप चलाते थे। बचपन से ही इनको संगीत के प्रति दीवानापन था, जो छोटे तलत अक्सर बड़े बड़े उस्तादों की महफिलों को घंटों सुनते थे। फिर इन्होंने मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूज़िक, जो अब भातखंडे विश्वविद्यालय है, यहाँ से पंडित एस सी आर भट्ट से शास्त्रीय संगीत सीखा और यहीं से शुरू होती है एक ऐसे सफ़र की कहानी जो आने वाले समय में भारतीय संगीत को एक नई दिशा देने वाला था। आगे चलकर कैसे तलत महमूद ने भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयां दी जानेंगे, पर अभी सुनिए इनके फिल्म दाग का ये बेहतरीन सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं तलत महमूद साहब, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, हर महान कलाकार की तरह तलत महमूद का सफ़र भी आसान नहीं था। महज 16 साल की उम्र में 1939 में इन्होंने लखनऊ ऑल इंडिया रेडियो पर गज़लें गाना शुरू किया। दाग मीर जिगर की शायरी को इनकी नर्म मखमली आवाज़ में सुनकर लोग खुश हो जाते थे। इनकी आवाज़ में वो मिठास

थी जो कहीं और नहीं मिलती। यहीं से इनकी जर्नी शुरू हुई जो आगे चलकर भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयां दे गई। लखनऊ के बाद तलत महमूद की जिंदगी का अलग पड़ाव था कोलकाता। 40 के दशक में ये शहर कला और संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ इनकी मुलाकात हुई मशहूर संगीतकार पंकज मलिक से। कोलकाता में ही इन्होंने अपना पहला गीत सब दिन एक समान नहीं आता, बन जाऊंगा क्या से क्या मैं, इसका तो कुछ ध्यान नहीं था, रिकॉर्ड किया। लेकिन असली सफलता मिली 1944 में जब HMV ने इनकी एक गज़ल रिलीज़ की, तस्वीर तेरी दिल में दिल मेरा बहला न सकेगी। इस एक गज़ल ने पूरे हिंदुस्तान में हलचल मचा दी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस ज़माने में इस रिकॉर्ड की लाखों कॉपियां बिकी थी। इतना ही नहीं, कोलकाता में काम करते हुए इन्होंने कुछ बंगला गाने भी गाए। वहां के लोग इन्हें तपन कुमार के नाम से जानते थे। और तो और, इन्होंने 16 बंगला फिल्मों में कैमियो रोल भी किया। बंगला सिनेमा के बाद इनका अगला पड़ाव था मुंबई। दोस्तों, इस सफ़र में आपको ले जाएंगे, पर उससे पहले सुनिए इनकी एक और फिल्म से एक खूबसूरत सा गीत।

अभी आपने सुना देख कबीरा रोया फिल्म से ये गीत, जिसे तलत महमूद साहब ने गाया था। श्रोताओं, कोलकाता ने तलत साहब को वो मंच दिया जहां से इनकी शोहरत की खुशबू मुंबई तक पहुंचने लगी। बात करते हैं उस दौर की जब तलत महमूद ने माया नगरी मुंबई का रुख किया। 1949 के आसपास ये मुंबई आए। उसी समय भारतीय सिनेमा का गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा था। यहाँ इनकी मुलाकात दिग्गज संगीतकार अनिल विश्वास से हुई। अनिल दा ने इनकी आवाज़ को परखा और फिल्म आरजू में

दिया। गाना था ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो। इस गाने ने तलत साहब को रातों रात फिल्म इंडस्ट्री का सबसे चहेता सिंगर बना दिया। फिर संगीतकार नौशाद, श्री रामचंद्र और शंकर जयकिशन जैसे दिग्गजों ने इनके लिए धुनें बनाना शुरू कर दिया। तलत साहब की आवाज़ की सबसे खास बात ये थी कि वो जब गाते थे तो ऐसा लगता था जैसे वो आपके कानों में आकर कोई राज की बात कह रहे हों। इन्होंने दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद जैसे सुपरस्टार के लिए अपनी आवाज़ दी। उस दौर में इन्होंने लता मंगेशकर, सुरैया, मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे जैसे दिग्गजों के साथ गीत गाए। इतना ही नहीं दोस्तों, तलत महमूद सिर्फ एक बेहतरीन सिंगर ही नहीं बल्कि एक अभिनेता भी थे। क्यों चौंक गए ना आप? इस बारे में भी हम आपको बताएंगे, पर अभी सुनिए इनकी आवाज़ में टैक्सी ड्राइवर फिल्म से ये बेहतरीन गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो कलाकार हैं वो हैं तलत साहब, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, म्यूज़िक की दुनिया में तो तलत साहब छा ही चुके थे, लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व और खूबसूरत चेहरे ने फिल्म निर्माताओं को इनकी ओर खींचा। वो दिखने में किसी भी बड़े हीरो से कम नहीं थे। तलत साहब ने करीब 13 फिल्मों में एज एन एक्टर काम किया, जिनमें दिले नादान, वारिस, रफ्तार, डाक बाबू

एक गांव की कहानी और मालिक फिल्म प्रमुख थी। हालांकि तलत साहब स्वभाव से बहुत ही शर्मीले और सीधे साधे इंसान थे। एक्टिंग की चकाचौंध इन्हें बहुत ज़्यादा रास नहीं आई, फिर ये सिर्फ गीत गाने लगी। तलत साहब ने सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि 12 भाषाओं में करीब 750 गाने गाए। इनकी गज़लें आज भी क्लासिक मानी जाती हैं। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो दोस्तों, 1951 में इन्होंने अपनी फैन लतिका मुल्लिक से शादी की, जिन्हें बाद में नसरीन कहा जाने लगा। फिर इनके दो बच्चे हुए, खालिद और सबीना। तलत महबूब हमेशा लाइमलाइट से दूर रहते थे, पर अपनी मखमली आवाज़ की वजह से ये वेलवेट वॉइस ऑफ इंडिया कहलाए। इसी बात पर चलिए सुनते हैं इनकी फिल्म रूप की रानी चोरों के राजा से ये गीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं तलत साहब। और श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल से, और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं तलत साहब के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। फिल्मी गानों के अलावा तलत महमूद का असली जो इश्क था वो गज़ल ही था। इन्होंने गज़ल गायकी को महफिलों से निकालकर आम आदमी के ड्राइंग रूम तक पहुंचाया। ये पहले भारतीय सिंगर थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाइव कॉन्सर्ट किए। संगीत के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गज़ल की अदायगी में जो ठहराव और अल्फाजों का सही उच्चारण तलत साहब के पास था, जो बहुत कम गायकों में देखने को मिलता है। समय के साथ हर चीज़ बदलती है, और यही बदलाव तलत महमूद साहब के करियर में भी आया। 70 के दशक के बाद संगीत का अंदाज बदलने लगा, तेज़ और एनर्जेटिक गानों का दौर शुरू हुआ और तलत साहब की मुलायम आवाज़ को कम मौके मिलने लगे। लेकिन तलत साहब ने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि अपनी गरिमा और क्लास को बनाए रखा और स्टेज शोज और गज़लों के माध्यम से अपने फैन से जुड़ाव बनाए रखा। अपनी मखमली आवाज़ की वजह से इन्हें 1992 में पद्म भूषण से नवाजा गया, जो इनकी कला के प्रति सम्मान था। तो चलिए इसी बात पर सुनते हैं इनकी एक और फिल्म से एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप जुड़े हुए हैं और आपके मेल हमारे पास आ चुके हैं, तो हम जल्दी जल्दी उनके आपके मेल पढ़ लेते हैं। और ये है, लिखते हैं होस्ट राखी बैनर्जी, गुड आफ्टरनून। आज एक ही कलाकार में तलत महमूद जी के बारे में बेहतरीन जानकारी मिल रही है। शो का आगाज़ नाइस सॉन्ग से हुआ, इतना ना मुझसे तू प्यार को जाता। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, चैतन्य मेघा, और चंडीगढ़ से राहुल रचिता और केशु खुराना जी का। और आगे बढ़ते हैं, और ये है बुलंदशहर से एम एस अब्बासी, कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैज़ी फरार, फरीन फरहान, फारिया ताहिरा। और ये है पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा टिल्लू नायक जी का। और ये भी लिखते हैं कि उन्हें प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है और इन्हें बहुत लंबा सा एक मेल लिखा है। और आगे चलते हैं, ये है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी से, इनका दोबारा आ गया है। और ये है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से ए पी एस नावाहरकर, निर्मला विशाल, मलकापुर से नारायण राजकुमार आशीष, और ये है फारूक अली खान, फैज़ी फराज। और आगे चलते हैं, ये है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। और ये है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार। और देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया और मास्टर अल कबीर हैं, ये बलौद छत्तीसगढ़ से हैं। और छत्तीसगढ़ जुड़ी लाइन मुंगेली से है मोहम्मद इस्तफाक खतीजा, और मोहम्मद अशफाक आफरीन, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं तलत महमूद साहब की। मित्रों, कुछ आवाज़ें कभी नहीं मरती हैं और तलत महमूद जी की आवाज़

इतिहास भी उन्हीं में से एक है। आज ही के दिन यानी 9 मई 1998 को 74 साल की उम्र में इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था, लेकिन इनकी यादें और इनके गाने आज भी हमारे साथ हैं। इनकी गायकी ने भारतीय संगीत को एक नई पहचान दी और ये साबित किया कि गाना सिर्फ सुरों का खेल नहीं है बल्कि दिल से जुड़ी एक भावना है। आज भी जब इनके गाने प्ले होते हैं तो दिल में एक सुकून सा महसूस होता है। इसी सुकून को महसूस करते हुए आज हम आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं और आप सुनिए इनकी फिल्म से ये आखिरी।

कुछ श्रोताओं का और मेल आ चुका है, हम उन्हें भी पढ़ लेते हैं। ये हैं ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान, जय हिंदपाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश और इनके परिवार के सभी सदस्य। और ये है पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी का। और

श्रोताओं, आशा है कि आपको ये संगीतमय सफर पसंद आया होगा। अगले शो में फिर मिलेंगे। फिलहाल अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए, लेकिन आप सुनते रहिए गीत और गुनगुनाते रहिए संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार थे वो थे तलत महमूद साहब। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दिन के 3 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: नृत्य गोपाल जी
1: जी चंपा जी,
0: देखो रुत तो कोई भी होए, हमारा ब्रज को लोक जीवन ऐसा है कि हमारे ब्रजवासी भैया बहन आए ना, उनके ऊपर कितनी तरह की कहावत लोकोक्ति बनाई ले मैं।
1: चंपा जी देखो, भारत अपने ये जो ऋतु विज्ञान है या के ताई बहुत जानो जाए है।
0: हाँ,
1: पर जब आप ब्रिज की बात करें तो ब्रिज में ऋतु अपने आप कछु ऐसो व्यवहार कर भी लग जाए ना कि ब्रिजवासी वाके अनुकूल चल भी लग जाए।
0: जेठ कोई महीना चल रो है तो हम देखें कि ये जेठ मास के ऊपर इतनी बढ़िया लोकोक्ति है कि वो बड़ी काम की है।
1: चंपा ये जो लोकोक्ति है उनते जीवन संचालित हुए है,
0: बड़ी सुंदर लोकोक्ति है। जेठ की तपन आषाढ़ की घुमड़ दोनों ही जरूरी हैं।
1: दोनों जरूरी हैं और जेठ जितनो तपे वाके काजू तो कछु लोकोक्ति है ना।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, तपे जेठ तो तरे खेत।
1: हाँ,
0: ऐसो मानो गयो है ब्रज के लोक जीवन में कि खूब तपड़ का पड़ेगो ना, खेत की मट्टी के काज है ये व्यवहार अच्छो है। ऐसे ही नृत्य गोपाल जी हम देखे हैं कि आवो जावो तो मानव जीवन के काज है, जरूरी है। बाकी काजे भी या जेठ के महीना में कितनी सुंदर बड़ी प्यारी सी लोकोक्ति है, जेठ की दोपहरी में घर बैठे बटो ही।
1: अब चंपा देखो जो राहगीर है ना वे बेचारे ऐसी तपती दोपहरी में कहाँ कहाँ जाए कैसे जाए। अरे चंपा जी या के ताई तो कविवर बिहारी ने इतनी बढ़िया सी बात कही है, उनने एक दोहा लिख दियो, बैठ रही अति सघन बन।
0: हाँ,
1: पैठ सदन तन माह देख दोपहरी जेठ की छाहो चाहत छा।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी देखो, जब इन लोकोक्तिन के ऊपर बात चली है तो एक और याद आ रही है, जेठ की दोपहरिया और सावन की बदरिया।
1: हाँ
0: दोनों ही जरूरी हैं।
1: दोनों जरूरी हैं, जो कि करें कि जितनो जेठ तपेगो उतनो ही ना आषाढ़ और सावन उतनो ही बरसेगो, बाको मौसम विज्ञान ते या को संबंध है। अब देखो चंपा जी, हमारे भारत में घाग भड्डरी जैसे महान मौसम विज्ञानी है गए।
0: हाँ,
1: उनने जब अच्छी अच्छी बात कही तो इन सबको उनने उल्लेख करे हुए।
0: तो नृत्य गोपाल जी देखो ना, तो ये गर्मी की जब बात चली है तो कितनी सारी गर्मी की लोकोक्ति है चल पड़ी। तो फिर जब गर्मी की ही इतनी बात है तो फिर क्यों ना अपने प्यारे भैया बहनान ने गर्मी के ही लोकगीत की ओर ले चले।
1: मतलब ऐसी अच्छी बात क्यों का जी, कहा पूछवो, कोई अच्छा सो लोकगीत सुनवाए दो।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी चलो, तो गर्मी पड़ रही है ना, तो आपको पंखा कूलर की ब्यार माऊ ले चले।

0: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये मन भावन सो लोकगीत सुन रहे हते। हाँ प्यारे भैया बहनाओं, लोकगीत सुन के तो आपने अंदाज लगा ही लियो होएगो कि देखो चाहे बात पंखा की है चाहे कूलर की है, अगर है तो बढ़िया बात है और ना है तो भैया बहनाओं लानो पड़ेगो। ब्रज नारीन के बारे में तो यही कहो जाए कि खाए बिना वे रह जाए पर कहे बिना नाए रहे में।
1: हाँ हाँ चंपा, या बात को तो हम जाने
0: ते गोपाल जी आपको कहा संकेत है।
1: ना, हम तो ये कह रहे या बात को तो हम मान रहे हैं।
0: हाँ माननी पड़ेगी
1: हाँ जी,
0: बिल्कुल।
1: पर एक बात आप ध्यान रखो
0: हाँ
1: कि हमारी जो ब्रजनार है ना, इनने परंपरागत ढंग सो अपने लोक जीवन में इतने विज्ञान को धारण करे हुए हो है
0: हाँ ये
1: कि
0: तो
1: बाकी
0: है।
1: और तो हमारा ध्यान ही ना जाए कबू।
0: हमारे जैसे खेतन में काम कम हो जाए, हमारी जो दादी हमारी नानी वो अपने काज है ना काम निकाल के रखती कि हमें गर्मी में कहाँ कहाँ करनो है, कहाँ नयो सीखनो है, कहाँ चीज हमें नई बना के रखनी है। उनको जो अपनी खेती बाड़ी ते ही संसाधन मिले करते ना घास फूस के, वो ही उनके काज है बहुत बड़ी संपदाए।
1: अच्छा देखो तो सही, पंखा बनावे के काजे, अभी आपने कूलर पंखा की बात तो कर दी
0: पर आप बीजना की बात कर
1: पर
0: ले।
1: अब बीजना बनावो देखो तो सही कौन पे आवे।
0: पर नृत्य गोपाल जी, तो जब ऐसी यह गर्मी की प्यारी सी रुत की बात शुरू हो ही गई है तो फिर कछु ऐसी ही चर्चा की और अपने भैया बहनान को ले चलें।
1: जी हाँ चंपा,
0: तो आओ प्यारे भैया बहनाओं, अब हम आपको सुनवाए रहे हैं ये भेंट वार्ता जाको विषय है ग्रीष्म ऋतु में ब्रज का लोक जीवन। या विषय पे बलदेव भाई शर्मा जी ते बातचीत कर रहे हैं नृत्य गोपाल जी।
1: जी हाँ श्रोताओ, आज जो स्टूडियो में पधारे भए हैं प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा। आप जाने हैं कि भारत के वरिष्ठ पत्रकार और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बलदेव भाई शर्मा जी ब्रज के बड़े लाडले बालक हैं और ब्रज में जीवन जीते भए उनकी अनेक स्मृति हैं। और आज ग्रीष्मकालीन ब्रज लोक जीवन या विषय पे हम आपसे बात करेंगे। बलदेव भाई शर्मा जी, सीधे सीधे एक ही बात मैं आपसे पूछ लूं कि जो गर्मी में हमारे ब्रज को लोक जीवन है ना, या कि काका स्मृति है, कैसे हमारे बालक अपनो समय पास करें, कैसे बड़े बुजुर्ग या हमारी मैया बहन कैसे समय व्यतीत करें और अब कर रही हैं, तनिक हमारे श्रोतान को बता दो ना।
2: राम राम नृत्य गोपाल जी, आपने बहुत पुरानी यादें ताजा करा दी और मेरा तो बचपन पूरा ब्रज में ही बीतो। दाऊजी महाराज के सानिध्य में गांव पटलोनी मेरो जन्म भयो, मई पढ़ाई लिखाई वही शुरुआती। और गांव में खेत में काम करते करते जो हमारा ग्राम्य जीवन है, वामे कितनी तरह की विविधता परेशानियां, अब तो जमानो बहुत बदल गया भैया और सुविधाएं बहुत है गई हैं, लेकिन बाद समय तो सुविधा के नाम पे कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा बीजना
1: जी
2: और खेत में दोपहरी में काम करते और दाएं चलती और खलिहान में से अनाज निकालना और जामे टी का टी दोपहरी में दाएं चला के, और अम्मा बुआ हमारी माँ रोटी लेके आ रही हैं, और हमारे खेत में एक बड़ी पुरानी गूलरी,
1: अच्छा
2: और हमारे आसपास के सब किसान दोपहरी में हमारी गूलर के नीचे आके बैठते
1: जी
2: और मई फिर रोटी पानी खाए के, और जो चांद पे वो बांधे रहते अंगोछा धूपते बचवे के लिए,
1: जी जी
2: और बई अंगोछाए बिछाए लो और
1: जी
2: बई पे 10-5 मिनट लूट मारी और फिर अपना काम में लग गए
1: फिर काम पे लग
2: और
1: गए।

0: लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जैसे आपने कही गर्मी के दिनों में, आज भी गर्मी उतनी ही है
1: जी
0: जितनी उस समय पड़ती थी
1: जी,
0: पर आज की जो गर्मी है भैया ये बहुत तकलीफ दे है, क्योंकि जामे बहुत सारी दूसरी तरह की बीमारी घुस गई है
1: जी,
0: पर्यावरण बिगड़ गए है
1: जी।
0: बार समय इतनी तेज गर्मी पड़ती थी, लेकिन फिर भी क्योंकि वातावरण की शुद्धता
1: जी
0: और ग्रामीण परिवेश में था, गर्मी तेज थी पर उसका प्रकोप नहीं था
1: जी,
0: फिर भी हमें बड़ी अच्छी बातें याद आती हैं उस समय की। हम लोग सब इंतजार करते थे
1: जी
0: कि अब गर्मी आई वारी है, जेठ आवेगो, बैसाख के बाद गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो गरसौली गांव में एक खरबूजे कलीदे बेचने वाला था,
1: अच्छा,
0: और वो घोड़े पे लाद के लाता था,
1: अच्छा,
0: और वहीं हमारे घर के पास ही चौतरा पे और पूरे खरबूजे कलीदे, कलीदा कहते हैं तरबूज को
1: जी,
0: आजकल की पीढ़ी तो कलीदा शब्द जानती भी नहीं है,
1: हाँ।
0: और इतना पूरा गांव वहां इकट्ठा हो जाता था आके और खरबूजे कलीदे ले जा रहे हैं। कई बार तो हमने देखा जो कलीदा निकलता है वो काटा बीच में से और आधा कलीदा पूरा जो उसका
1: गुदा गुदा
0: गुदा खा लिया
1: जी,
0: और जो कलीदे की खोपटा बचा उसे चांद पे यानी सिर पे रख लिया
1: जी।
0: अब ये जो शब्द है ना
1: जी
0: चांद है कलीदा है, ये आजकल के हमारे ब्रज में भी जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं
1: जी
0: वो नहीं जानते,
1: जी हाँ डॉक्टर,
0: लेकिन हमने उस जीवन को जिया है।
1: अब तो बीजना
0: आजकल
1: जाने
0: तो बीजना शब्द जानते ही नहीं है
1: जी,
0: जो पंखा होता है हाथ का
1: जी
0: और उसके खजूर के पत्ते से
1: हाँ।
0: बनते थे, लेकिन हमारे गांव में मैंने खुद सीखा, मैं बहुत अच्छे बीजने बनाता था डिजाइन वाले,
1: अरे वाह,
0: तो जो गेहूं की
1: नरई
0: नरई है
1: जी,
0: उस नरई को गला के बीच में चीर के उसमें से बीजना बनाते थे, उसको रंगते थे
1: हाँ।
0: लाल पीली नीली
1: जी
0: और मैंने अपने घर में दादी बुआ से बीजना बनाना सीखा, और अभी भी उस जमाने का एक मेरे हाथ का बुना बीजना मेरे घर में रखा है।
1: अरे क्या बात है।
0: और फिर उस पर किनारी लगाते थे कपड़े की
1: हाँ।
0: और उसमें एक डंडी होती थी और फिर उस बीजने से जो हवा आती थी सबसे बड़ी चीज यही वासम है कि आदमी के मन में बेचैनी नहीं थी
1: जी,
0: मन शांत रहता था तो उस गर्मी को झेल जाते थे। आज सबसे बड़ा बदलाव आया है कि मन की बेचैनी बढ़ गई है, सुविधाओं से इतना जीवन ग्रस्त हो गया है कि हम जरा सा भी कष्ट झेल नहीं सकते
1: जी
0: और उस समय तो सुविधाएं तो थी नहीं, लेकिन जो है उसी में कैसे संतुष्ट रहना है।
1: जी
0: एक बहुत मजेदार बात आप बता रहा हूं,
1: हाँ जी,
0: कि हमारा जो घर था वहां में पौरी
1: जी
0: पौरी होती है घर के बाहर और दगड़े के बीच में एक लंबा सा कमरा
1: जी
0: और उसमें दोनों तरफ निकलने का रास्ता जिसे आजकल क्रॉस वेंटिलेशन बोलते हैं,
1: वाह,
0: तो पौरी में खाट बिछाए के और दोपहरी में जब लेट जाते तो दोनों तरफ से हवा आती थी, हवा आती थी गर्म झांक झांक चल रही है जैसे लू कहते हैं
1: जी
0: आजकल
1: जी
0: उसे झांक बोलते थे,
1: जी
0: तो अंगोछा भिगोयो और पामंते और गर्दन तक भीगो अंगोछा डाल लो,
1: जी
0: फिर जो गर्म हवा आती थी वो इतनी ठंडी लगती कि आधा पौन घंटे तक पूरी चैन की नींद आती थी।
1: हाँ जी हाँ डॉक्टर साहब, मुझे याद है कि आपने पौरी की जो बात कही है, दोनों गेटन पे ना बीदरीन ने गीली करके भिजो के उनने हाँ। टांग दे और ऊपर ते अंगूछा पहन ले, और यही प्रकार से आपको तो याद होगी जब छत पे सोवे तो का गुदरीन गीली कर लेगा।
0: हाँ छत पे तो जाके पानी डालते ताकि थोड़ी दोपहर की अग्नि शांत रह जाए और फिर बामे आराम से सो और रात को इतनी बढ़िया नींद, और अब तो कूलर का तो जमाना ही चला गया, अब तो बिना एसी की नींद नहीं आती
1: जी।
0: ब्रज तो देखिए कृष्ण की भूमि है, राधा की भूमि है, आध्यात्मिक क्षेत्र है ब्रज,
1: हाँ जी,
0: तो वो जो मन में आध्यात्मिकता का वास है वो हमें बहुत सारे ताप से बचाए रखता है,
1: जी
0: चाहे वो गर्मी का ताप हो, चाहे रोग का ताप हो, चाहे मनस ताप।
1: जी हाँ श्रोताओ, देखो इतनी बढ़िया बात है कि हमें मन शांति अगर होगी तो बाहर की गर्मी कैसी हुए हमें परेशान ना करेगी। प्रोफेसर शर्मा, ऐसी गर्मी में ब्रज लोक में कहा कछु पेय पदार्थन को हु अपनो अलग स्वरूप आपने देखो है का?
0: देखो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आज फ्रिज ब्रिज ये सब दुनिया भर के साधन है
1: जी,
0: तो मटका
1: हाँ जी,
0: जिसे घड़ा कहते हैं
1: जी,
0: और हमारे गांव में उसको बोलते थे ब्रज में चपटा
1: चपटा,
0: और उसी में वो पानी भरा रहता था और इतना ठंडा पानी कि उससे एकदम आत्मा शांत हो जाए।
1: जी
0: दूसरा जो

0: तरबूजा है कलिंदा,
1: हाँ जी,
0: उसका शरबत बना,
1: शरबत जी,
0: और वो इतना ठंडा होता था कि बहुत देर तक उसकी शांति महसूस होती थी
1: जी।
0: तो ऐसी कई चीजें थी, कुछ नहीं है, हमारे यहाँ बूरा आता था,
1: हाँ जी,
0: जो आजकल बूरा शब्द लोग जानते ही नहीं है, पिसी हुई चीनी को बूरा कहते हैं,
1: हाँ, अब
0: हमारे यहाँ खांड से कुट के बूरा बनता था
1: जी।
0: बूरा इतना ठंडा होता है, उसका शरबत, खाली बूरे का शरबत आप पिए, वो बहुत ठंडा लगता था
1: जी।
0: एक और हमें बहुत अच्छी बात याद है कि गांव में शादी ब्याह होते थे
1: जी,
0: तो माँ नौते आमते,
1: हाँ जी,
0: और लगुन है रही है, सगाई है रही है
1: जी,
0: तो बतासे बटाव करते,
1: हाँ जी,
0: बाद में लड्डू लो को जमानो आएगो और अब तो
1: मिठाई के डब्बा चले,
0: लेकिन बतासे और फैना
1: जी,
0: तो जब माते लौट के आओ करते तो हम गिनते कि कितने बतासे मिले हैं
1: जी,
0: और फिर बतासे इकट्ठे करके और फिर उनको शरबत बना के पीवो थे। बतासे को शरबत इतना ठंडा होता है कि तुम्हें जुकाम है जागो, भरी गर्मी में अगर अचानक पीले हो गए,
1: हाँ जी,
0: बतासे को शरबत, तो ये छोटी छोटी चीजें, इनमें ही बड़ा सुख हो, बात समय मन में इतना संतोष हो कि जो छोटी सी भी चीज है वो ही बड़ा सुख दे रही है
1: जी, जी।
0: और बड़ी आत्मिक शांति बातें मिल रही है हमें।
1: पहले पुराने पेपर ने इकट्ठे करके लुगदी बना के डलिया बनावे, बिनते बूरा परोसे करे। तो अब प्रोफेसर बलदेव जी, एक और चीज आपने बचपन में जो जियो है कि जैसे ही गर्मी बढ़ी और हमें नानी की याद आ रही है, बाकहू कछु संस्मरण तनिक बताए दे।
0: हमारे संग तो समस्या जी रही कि हमारी ननसार दिल्ली में ही।
1: अच्छा,
0: सामान्यतया गांव की रिश्तेदारियां गांव में ही होती हैं,
1: हाँ
0: आसपास,
1: हाँ जी,
0: तो वहां कई बार हम चाची जो हमारी थी
1: जी,
0: वो माठ के पास गांव है दरबे, वहां हम जाते थे और एक बहुत बड़ी नहर के किनारे ही उनके पूरे खेत और वहीं पूरा घर, और एक एक डेढ़ डेढ़ महीने में वहां रहता था और नहर में कूद कूद के नहाओ करते ही।
1: वाह,
0: बम्बा हमारे गांव में भी था
1: जी,
0: लेकिन ये नहर बहुत बड़ी थी
1: जी,
0: और वहाँ का ग्रामीण जीवन का गर्मी के दिनों का बड़ा अनुभव है। आम के पेड़ है वहाँ
1: जी,
0: उनके खेतन में, मामा के जो हमारे खेत है
1: जी,
0: उन खेतन में आम के पेड़, आम पे चढ़ गए और गर्मी में आम आना शुरू हो जाते हैं,
1: हाँ जी,
0: और बाद में फिर पकते हैं, तो आम पे चढ़ते समय ये भी डर रहता था डार न टूट जाए, लेकिन वहाँ आम के पेड़ों पर चढ़ चढ़ के खेल पात भी होते रहते
1: जी,
0: थे, छुआछाई के खेल भी खेलते थे,
1: हाँ जी,
0: और वहीं से ऊपर से कूद गए
1: पड़े
0: और फिर पीड़ पे, पीड़ बोलते हैं तने,
1: हाँ
0: को
1: जी,
0: पीड़ बोलते हैं,
1: हाँ,
0: ये परिभाषा के बड़े प्यारे शब्द हैं, आजकल सुनाई नहीं देते हैं,
1: पीड़ पकड़ के चढ़ जा,
0: फिर चढ़ गए जल्दी,
1: हाँ,
0: जल्दी
1: जी,
0: तो जी, हमें इंतजार रहता था कि गांव में जब
1: छुट्टी
0: होंगी
1: हाँ
0: तो हम दरबे जाएंगे और चाची के पीहर,
1: हाँ,
0: और वहाँ हम कुछ दिन रहेंगे,
1: जी,
0: उनका कोलू चलता था,
1: अरे,
0: कोलू में गन्ना पिरता था और ताजा ताजा गुड़ कोलू में से पिरा हुआ खाते थे,
1: हाँ,
0: और हमें याद है कि मामा जी उसमें निकाल के दे देते थे तो हम छोटी छोटी गुड़ की पिंडी भी बनाते थे
1: खेल खेल में,
0: खेल खेल में,
1: खेल
0: छोटी
1: खेल
0: छोटी, और फिर उनको इकट्ठा करते जाते
1: जी। हाँ श्रोताओं, एक बात और आपको बता दूं, प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा लोक गीतन के बड़े अच्छे गायक के रूप में हूँ जाने जाए हैं, और ब्रज लोक जीवन में ये जो गर्मी को समय है, कहूँ बैठक पे बैठ के बंगला, कहूँ तिवारी पे बैठ के, बड़े बूढ़े ढोलक बजाए वो सिखा दें, आला गायबो सिखा दें, ढोला गायबो सिखा दें, तो ये जो बड़े बूढ़े हमें संगीत की शिक्षा दें, बहुत बार आपको सुनो है, तो ये शिक्षा कहाँ बड़े बुजुर्गन ते मिल गई और नेक तनिक कछु गायकू सुना दी।
0: भाग्य बड़ी चीज है
1: जी,
0: और वो भाग्य ही आपको ऐसी जगह ले जाता है, जन्म दिला देगा, सानिध्य दिला देगा। तो मेरा बड़ा भाग्य रहा कि मेरे जो बाबा थे,
1: हाँ जी,
0: वो अनपढ़ किसान थे लेकिन बड़े ज्ञानी थे, रामायण भागवत संतों की संगत, हमारे घर बहुत सारे साधु बाबा आते रहते थे
1: जी,
0: और बाबा बहुत अच्छे गायक थे
1: जी,
0: और चिकारे का ढोला गाते थे मेरे बाबा,
1: वाह,
0: राजा नल का, और राजा नल का ढोला तो मन को इतना विभोर कर देता है, आज भी राजा नल के ढोला का, मंजा की औखा, दानों से राजा नल की लड़ाई, मोतनी का ब्याह, मुझे सब याद है,
1: तनिक दो पंक्ति सुनाए दे।
0: और बाबा से सब मैंने गायन सीखा। फिर मेरे जो पिता थे,
1: हाँ जी,
0: वो भी बहुत अच्छे गायक थे, वो हारमोनिया पे भजन गाया करते थे।
1: अरे वाह,
0: तो एक मन का संस्कार अपने आप परिवार से बनता गया, मोहल्ले पड़ोस के सारे लोग इकट्ठे होकर दोपहरी में, दोपहरी का समय थोड़ा बिताना कठिन होता है, तो सब वहाँ आला गब्बाते थे मुझसे किताब लेके। तो मैंने बहुत आला गाई है, और इस तरह एक अभ्यास बनता चला गया धीरे धीरे। कहीं मैंने शिक्षा विधिवत हासिल नहीं की,
1: ये तो लोक की शिक्षा है।
0: जो लोक में है वो शास्त्र में नहीं है, लेकिन जो शास्त्र में है वो सब लोक,
1: वो सब लोक में है, वो ये बड़ी चीज है।
0: लोक बहुत व्यापक है। तो हमने तो अपने जीवन में भैया पढ़ाई करते करते गांव से 5 कोस दूर दाऊ जी पैदल जाओ करते पढ़े हुए, और फिर पैदल ही आए, फिर खेत में काम करो, और ऐसे ही खेला कूदी, और भाई में गानो बजानो ये सब चलते रहो। आपने कही है तो एक छोटी सी मुझे याद आ रही है, वृक्ष की भूमि अपरंपार है, इसकी माया अपरंपार है
1: जी।
0: और वहाँ हरेक के जीवन में 50 सुख दुख हुई, मन का जो आनंद है
1: वो आनंद है।
0: आज देखो सबसे बड़ी समस्या है कि साधन तो बहुत है तुम्हारे पास
1: जी,
0: लेकिन आनंद नहीं है।
1: हाँ जी,
0: वहाँ साधन नहीं थे
1: पर आनंद है,
0: आनंद था,
1: आनंद है।
0: तो ऐसे ही खोगी बाबा हमारे गाँव के पास ही एक गाँव है
1: जी,
0: मई से पहले साधारण से किसान है, वो खूब गाते डोलते हैं और घर बार से बाहर रह के कृष्ण भक्ति में ही रमे रहते हैं। तो एक बड़ा सुंदर पद वो गाते हैं, वो थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको। हाँ जी, और आप भी ब्रज के ही हो भैया, गोवर्धन के पास के निवासी हो, गोवर्धन बाबा की बड़ी महिमा ब्रज में है। तो बड़ा सुंदर भजन तो लंबा है, पर एक पद सुनाऊंगा
1: जी।
0: श्री गिरिराज बासु में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठन जाऊं, श्री गिरिराज बासु में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठन जाऊं, पशु आदिक

0: वैकुंठ भी ब्रज के आगे फीका है,
1: बहुत
0: कृष्ण द्वारका चले गई लेकिन ब्रज की
1: याद ना गई,
0: स्मृति उनकी आत्मा में समाई।
1: आज हमारे श्रोता नमित्ते बहुत और खास करके युवा तो भूल ही गए कि आला ढोलाऊ कछु हमारे आनंद की चीज ही है। तनिक दो पंक्ति सुना दो।
0: राजा नल चक्रवर्ती सम्राट
1: जी,
0: लेकिन भाग्य का किसी को पता नहीं
1: जी,
0: सारा राजपाट चला गया, वो कोल्हू पे नौकरी करने लगा, तनख्वाह के रूप में उसको खर मिलती थी खाने के लिए।
1: वाह।
0: तो एक दिन राजा नल वहां बैठा हुआ है और पुराना उसे याद आ रहा है, दुखी हो जाता है। तो उसकी थोड़ी सी याद मुझे है, बैठो बैठो पाटी पे नर बरवारो नल रोई रहो जाए

कोई स्याहती के बीच में कुल्हवारे में झमारिए मैया आए। कुल्हवारे में नल रहता था, हिंगलाज की माता जैसे ही उसने सुमिरी माता आ गई, नलते बाई को बने बतराए, बाई माने पक्षी, नलते बाई को बने बतराए, रो रहो तेरो बारो जय कु।

0: बीच में जाकी बोलिए भगवती माए हरि।
1: वाह, कितनो सुंदर भाव है। और कहा ही लोक ने अपने आनंद के ताई रास्ता चुने हैं, तो और हमारे श्रोतान को यह बात को ध्यान रखना है।

0: ही सो मैंने आपसे ये प्रश्न करे कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें जो सिखाए रहे हैं और जो हमें बताए रहे हैं वाको हमको ध्यान रखना चाहिए।
1: और
0: और
1: पंडित बैनी राम और मथुरा के पास लो बने, वहाँ के पंडित हरिफूल,
0: जी
1: ये चिखाने के ढोला के बड़े गायक थे।
0: जी
1: और उनका स्मरण करके आज मन इतना आनंदित हो जाता है कि ब्रज की आत्मा बसी है इस लोक संगीत में। ब्रज के देखो चिकारे का ढोला और ब्रज के रसिया, ब्रज के जिकड़ी भजन।
0: जी तनिक सोचो तो सही, इतनी सारी बात जब आपने बताई हैं तो हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग जो सब सुन रहे हैं श्रोता, वह आनंद को प्राप्त कर रहे हैं और संभवतः वे प्रयास हो करेंगे या को उन्नयन होए। अब क्योंकि समय की अपनी सीमा है, आपने इतना समय निकाले और इतनी अच्छी अच्छी बात बताई श्रोताओं, यही के संग आज हमारा ये जो समय है भेंट वार्ता को यही संपन्न है रहे हो है। आप स्टूडियो में पधारे और हमारे श्रोतान के ताई इतनी अच्छी अच्छी बात बताई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये भेंट वार्ता सुन रहे हते जाको विषय हो ग्रीष्म ऋतु में ब्रज का लोक जीवन। या विषय पे प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी ते बातचीत कर रहे हते नृत्य गोपाल जी। नृत्य गोपाल जी,
0: जी चंपा जी,
2: देखो आपको बहुत बहुत आभार, आपको धन्यवाद कि आपने देखो कितने बढ़िया बढ़िया अनुभवन को बलदेव भाई जी ते सुनो और हमारे श्रोतान को सुनवायो।
0: उनने अपने जीवन के अनुभव बताए।
2: तो हम तो आपसे यही अनुरोध करे हैं कि ऐसे ऐसे विशेषज्ञ ने समय समय पे आप बुलाते रहे करो, इतनी तो आप हमारी माँ नहीं लोगे।
0: अरे चंपा जी, हम तो आपकी सब बातन ने मान ही रहे हैं, पर आपको एक बात और बता मैं। हम
2: बताओ।
0: देखो, ये जो लोक कला, लोक विज्ञान, लोक संस्कृति को जो संरक्षण भयो है, या में हमारे ब्रिज के देवालयन की जो संस्कृति है ना,
2: हाँ,
0: या को बड़ो योगदान है।
2: या के काजे तो कहो गयो है, ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद, ब्रज वनिता सब पुष्प हैं मधुकर गोकुल चंद। तो जो ये गर्मी की ऋतु है ना, पौराणिक काल ते ही के अपने इष्ट को बड़े अच्छे भाव ते लाड लड़ायो जावे है और श्रद्धा को धरातल ऐसो है कि प्राकृतिक शीतलता, खसखस के बंगला, चंदन सेवा, शीतल भोग सेवा और मिट्टी के पात्रन में जल सेवा, फुहारे चले, ऐसे ऐसे जो मनोरथ हैं वो हमारे देवालय में इन दिना चल रहे हैं। और या वक्त ना सबसे बढ़िया जो वानगी है वो ये देखने को मिल रही है कि पुष्पन ते ही खूब श्रृंगार हो रहे हो है। कऊ कवि की रचना है, जहाँ गेंदा गुलाब अनेक खिले, क्यों बैठो करील की छायन में, मन तोहे मिले मिश्राम मही ब्रसभान किशोरी के पायन में। बढ़िया बात कही गई है, यही बात के काज है, हरी को फूल और के नहीं फूल, यानी कि तू हरी को फूल है तो फूल है, और अगर उनको तू फूल ना है तो तू फूल ना है। हाँ, है ना नृत्य गोपाल
0: ये
2: जी।
0: देखो, ये संतन को, भक्तन को और ब्रज लोक जीवन को ये जो भाव है, या
2: हाँ
0: को समग्रता में देवालय संस्कृति में विश्लेषण हुए है, फिर का दिन चर्चा कर लेंगे,
2: हाँ नृत्य गोपाल
0: क्योंकि
2: जी। और समय को संकेत भी चलने को
0: हाँ
2: हैरो है। तो प्यारे भैया बहनाओ, ये हमारी जो प्रेम रस्ते पगी वही बतिया है ना, अब ये समापन की ओर है, हम आए हैं तो हमें चलनो भी पड़ेगा। प्यारे भैया बहनाओ, इन्हीं प्यार भरी बातन के संग हमारो आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होवे है। मोय अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को
0: और मो नृत्य गोपाल को, कार्यक्रम प्रस्तुत करता वीके तोमर के संग जायवी की अनुमति प्रदान करें।
2: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बोलती कहानियां।
4: बोलती कहानियां क्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी शतरंज के खिलाड़ी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। रेडियो नाट्य रूपांतरकार और प्रस्तुति काजल सूरी।
5: वाजिद अली शाह का समय था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था।
6: संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बदी जा रही है। कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है।
7: ये मेरा।

0: जीविका की कोई चिंता न थी। घर में बैठे चखोतियां करते थे, आखिर और करते भी क्या।
1: प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मोहरे सज जाते, दांव पेच होने लगते। फिर खबर ना होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर और कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता,
2: अरे सुनिए खाना तैयार है।
3: अरे आते हैं आते हैं, दस्तरखान बिछाओ।
4: बेगम साहिबा, दस्तरखान लगा दें या इंतजार करना पड़ेगा आज भी?
2: तुम खाना लगा कर चले जाओ।
4: जी बेगम साहब।
5: इनका तो रोज का यही रहता है, आदमी दीन दुनिया का किसी काम का नहीं रहता, ना घर का और ना घाट का।
0: यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम साहिबा को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वो सोती ही रहती थी, तब तक उधर बाजी बिज जाती थी, और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्जा जी भीतर आते थे। हाँ, नौकरों पर वो अपना गुस्सा उतारती रहती थी।
4: बेगम साहिबा
2: बोलो।
4: मिर्जा साहब ने पान मंगवाए हैं।
2: क्या पान मांगे हैं? कह दो आकर ले जाएं, खाने को भी फुर्सत नहीं है। ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाएं चाहे ना खाएं।
4: जी बेगम साहिबा।
0: बेगम साहिबा को अपने पति से उतना मलाल न था जितना मीर साहब से। शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब के ही सर पर थोप देते थे।
1: और एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा।
5: रात रात जाग के सर में दर्द रहने लगा है।
2: हिरिया, अरे ओ हिरिया।
6: जी बेगम साहिबा। आई।
7: जी बेगम साहिबा।
2: जाकर मिर्जा साहब को बुला ला, किसी हकीम के यहाँ से जाकर दवा ले आए। दौड़ जल्दी कर।
7: जी बेगम साहिबा। हुजूर।
3: अरे कुछ बोलो बीबी।
7: हुजूर, बेगम साहिबा के सिर में बहुत तेज दर्द है, वो दर्द से बहुत परेशान है। उन्होंने कहा है कि किसी हकीम के यहाँ से दवाई ले आए।
3: अरे भाई सुन तो लिया, जाके कहो अभी आते हैं।
7: जी हुजूर। बेगम साहिबा।
2: हाँ बोल।
7: हुजूर कह रहे हैं चल अभी आते हैं।
2: जाकर कह।
1: दो ही किस्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी।
7: हुजूर।
3: अरे तुम फिर चली आई।
7: बेगम साहिबा कह रही हैं कि अभी चलिए, नहीं तो वो खुद हकीम के यहाँ चली जाएंगी।
3: अच्छा ठीक है तुम जाओ।
7: जी हुजूर।
3: अरे मियां मीर, कैसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता।
8: अरे भाई जाकर सुनिए, आइए, औरत नाजुक मिजाज होती है।
3: हाँ ठीक कह रहे हो तुम, चला जाऊंगा, अभी दो किस्तों में आपकी मात होती।
8: ना ना ना ना जनाब, इस भरोसे ना रहिएगा। वो चाल सोची है कि आपकी मोहरे धरे रह जाएंगे और मात हो जाएगी। पर जाइए सुनाइए, क्यों खामोखा उनका दिल दुखा रहे हैं।
3: इसी बात पर मुझे लगता है कि मात करके ही जाऊंगा।
8: हाँ मैं खेलूंगा ही नहीं। आप जाकर सुनाइए, जाइए।
3: अरे मीर साहब हवा बोल रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा हकीम के यहाँ। सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है।
8: कुछ भी हो उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी मियाँ।
3: अच्छा एक चाल और चले।
8: हरगिज नहीं। जब तक आप सुन ना आएंगे मैं मोहरों में हाथ ना लगाऊंगा।
3: अरे मीर मियाँ आप भी ना।
8: जाइए जाइए जाइए।
3: अच्छा ठीक।
0: मरते क्या ना करते, सो मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए। तो बेगम साहिबा ने त्योरियां बदल कर लेकिन कराहते हुए कहा,
2: तुम्हें निकोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए

0: उठने का नाम नहीं लेते। किसी का तुम जैसा आदमी ना हो।
1: अरे अब क्या कहूं बेगम साहिबा, मीर साहब मानते ही नहीं थे। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ।
0: जैसे वो खुद निकट्टू हैं, वैसे ही सबको समझते हैं। उनके भी बाल बच्चे हैं या सबका सफाया कर डाला है।
1: अरे बड़ा ही अजीब आदमी है। अब जब आ जाता है तो मुझे मजबूरन खेलना ही पड़ता है।
0: अरे तो मना क्यों नहीं कर देते।
1: अरे भाई बराबर का आदमी है, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे, मुलाहिजा करना ही पड़ता है ना।
0: तो मैं ही मना कर देती हूँ। नाराज हो जाएंगे तो हो जाएं। कौन किसी की रोटियां चला देता है। रानी रूठेंगी तो अपना सुहाग लेंगी। हिरिया, अरे ओ हिरिया।
2: जी बेगम साहिबा।
3: जी बेगम साहिबा।
0: जाके बाहर से शतरंज उठा ला। सुना नहीं तूने? बाहर से जाके शतरंज उठा ला और मीर साहब से कहना मियां अब नहीं खेलेंगे, तशरीफ ले जाएं वो अपनी।
1: अरे हीरिया रुको। अरे बेगम साहिबा क्या गजब करना चाह रही हो? ऐसा गजब मत करना, जलील करना चाहती हो क्या? हीरिया ठहर, कहां जाती है?
0: जाने क्यों नहीं देते? मेरा ही खून पिए जो उसे रोके। उसे तो रोक लिया, मुझे रोको तो जानू।
1: अरे अरे बेगम साहिबा, अरे सुनो, अरे ठहरो, अरे रुको।
4: ये कहकर बेगम साहिबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली गई। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया, बीवी की मिन्नतें करने लगे।
1: अरे खुदा के लिए तुम्हें मेरी कसम है, मेरी ही मैया देखे जो उधर जाए।
4: लेकिन बेगम ने एक ना सुनी, दीवान खाने तक चली गई। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2-1 मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी, कुछ मोहरे तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, और दरवाजा अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मोहरे बाहर से फेंके जाते देख चूड़ियों की खनक भी कान में पड़ी और फिर दरवाजा हुआ बंद। तो समझ गए बेगम साहिबा बिगड़ गई हैं, चुपके से घर की राह ली।
1: बेगम साहिबा तुमने तो गजब कर दिया।
0: अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लौ खुदा में लगाते तो क्या गरीब हो जाते? आप तो शतरंज खेलें और मैं चूल्हे चक्की की फिक्र में सिर खपाऊं। बोलो जाते हो हकीम साहब के यहाँ की?
1: अरे थोड़ा धीरज रखो।
4: मिर्जा घर से निकले तो हकीम साहब के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंचे और सारा किस्सा कहा।
1: अरे भाई मीर साहब।
5: क्या हुआ मिर्जा?
1: आप तो एकदम दम तबाह कर भागा है।
5: अरे देखो भाई मिर्जा, मैंने जब उन्हें बाहर आते देखा तभी समझ गया, इसलिए फौरन भागा वहां से। अरे मिर्जा बड़ी गुस्सेवार मालूम होती है आपकी बेगम, मगर आपने उन्हें यूं सर चढ़ा रखा है ये मुनासिब नहीं है मिर्जा। अरे उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं? घर का इंतजाम करना उनका काम है, भला दूसरी बातों से उनका क्या सरोकार?
1: अरे छोड़िए मीर साहब, आप ये बताइए अब कहां जमाव होगा?
5: अरे मिर्जा इसका क्या गम, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यही जमे।
1: अरे लेकिन मीर साहब मैं अपनी बेगम को कैसे मनाऊंगा? जब घर पर बैठा रहता था तब तो वो इतना बिगड़ती थी, यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा नहीं छोड़ेंगी।
5: जी बोलने दीजिए ना उनको, 2-4 रोज में अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए।
1: अच्छा सही कह रहे हो आप।
6: मीर साहब की बेगम उनका घर से दूर रहना ही बेहतर समझती थी, इसलिए वो उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना ना करती थी, बल्कि कभी कभार मीर साहब को देर हो जाती तो उन्हें याद दिला देती थी। इन्हीं कारणों से मीर साहब को ऐसा भ्रम हो गया था कि मेरी पत्नी बहुत सब्र वाली है, बहुत गंभीर है। लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन हर घर में रहने लगे तो बेगम साहिबा को बड़ा कष्ट होने लगा, तकलीफ होने लगी, उनकी आजादी में बाधा पड़ गई। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती थी और उधर नौकरों में कानाफूसी होने लगी।
7: हाँ यार, अब तक तो आराम से कट रही थी, दिन भर कोई काम नहीं, चाहे घर में कोई आवे चाहे कोई जावे, हमें कोई मतलब ना था।
8: सही बोल रहे हो जहूर, अब तो आठों पहर की धौंस हो गई है। कभी पान लाने का हुक्म होता है, कभी मिठाई लाने का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के दिल की तरह हर वक्त जलता ही रहता है।
7: अब ये मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई।
8: खुदा कसम,
7: दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए, ये भी कोई खेल है? सुबह बैठो तो शाम ही कर दी। अबे यार, घड़ी घड़ी आध घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल खेलना बहुत होता है।
8: खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम है, जो हुक्म होगा बजा ही लावेंगे। मगर ये खेल मनूस है मियाँ, इसे खेलने वाला कभी पनपता नहीं, घर पर कोई ना कोई आफत जरूर आती है।
4: बेगम साहिबा,
8: बेगम साहिबा, आदाब बेगम साहिबा।
4: आदाब बेगम साहिबा।
9: आदाब
4: बेगम साहिबा, खुदा झूठ ना बुलाए, देखिए मोहल्ले में बस यही चर्चा होती रहती है, हुजूर का नमक खाते हैं हम, अपने आका की बुराई सुन सुनकर बहुत रंज होता है।
9: जहूर,
4: आप ही बताइए कि क्या करें।
9: क्या बोलूं मैं तो खुद ही परेशान हूँ, मैं तो खुद ही इस मनहूस खेल को पसंद नहीं करती, पर ये है कि किसी की सुनते ही नहीं, क्या किया जाए।
4: देखिए बेगम साहिबा, छोटा मुंह बड़ी बात, मोहल्ले वाले कहते हैं कि जब हमारे यहाँ रईसों का ये हाल होता है ना, तो मुल्क का खुदा ही हाफिज।
8: हाँ, सही कह रहे हो मियां, सही,
4: ये बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी, आसार बहुत बुरे हैं।
8: अल्लाह अल्लाह।
6: राज्य में हाहाकार मचा हुआ था, प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी, अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था, देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी न वसूल होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था पर किसी के कानों में जू नहीं रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए, नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए बनाए जाते, नित्य नई व्यूह रचना होती, कभी खेलते खेलते झोंक हो जाती, तू मैमे तक की नौबत आ जाती।
7: अरे अरे अरे, ना ना ना ना ना, अरे बत, अरे ये मेरी बाजी थी। अरे ऐसे कैसे, इधर आप मोहरे को उधर रख के देख, मोहरे को उधर रखिए। घोड़ा भी नहीं
6: चलता। पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता।
7: अरे मियां, कैसी बातें करते हैं, देखिए मैंने आपको कहा। अरे चलिए चलिए,
10: मेरा मोहरा यही रहेगा।
7: अरे नहीं नहीं, चलिए लगा।
6: कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती, मिर्जा जी रूठ कर अपने घर चले जाते।
10: नहीं खेलना मुझे।
7: अरे अरे मिर्जा साहब, ये कैसे, अरे कैसी बातें कर, अरे सुनिए,
10: अरे आप सुनना चाह रहे,
6: मीर साहब अपने घर जा बैठते, पर रात भर की नींद के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता और सुबह दोनों मित्र दीवान खाने आ पहुंचते थे।
7: आ गए। अरे आप तो ऐसे नाराज होके चले जाते हैं।
10: अरे मीर साहब, आपके बगैर दिल कहाँ लगता
7: है। लगाए बाजी तो फिर हो जाए बाजी, चली आई है।
6: एक दिन दोनों मित्र बैठे शतरंज के खेल में अपने आप को डुबोए हुए थे कि घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछते हुए आ पहुंचा।
8: अभी ये कौन सी बला सिर पर आई, ये तलबी किस लिए हुई, अरे अब खैरियत नजर नहीं आती। जहूर, जहूर।
11: जी हुजूर, आया।
8: अरे कहां मर गया।
4: जी जी,
8: जाकर घर के दरवाजे बंद कर, जा कह दे कि मीर साहब घर पर नहीं है, जा।
4: जी जी हुजूर। जनाब, जनाब साहब घर पर नहीं है।
12: घर पर नहीं है तो फिर कहां है,
4: ये मैं नहीं जानता, क्या काम है?
12: काम तुम्हें क्यों बतलाऊं? हुजूर मैं तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं, जागीरदार हैं कि दिल लगी, मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा।
4: जी जी जी जी, अच्छा तो आप जाइए, कह दिया जाएगा, कह दिया जाएगा।
12: अरे कहने की बात नहीं है, कल मैं खुद आऊंगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है, समझे?
4: कल फिर आए।

0: हैं। जी जी बेहतर है बेहतर है, ये भी कह दिया जाएगा कह दिया जाएगा।
1: अरे मिर्जा अब क्या होगा?
2: बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी भी तलवी ना हो।
1: कमबख्त कल आने का कह गया है।
2: हाफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ता तो बेमौत मरे।
1: मिर्जा बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिले ही ना।
2: हाँ
1: एक काम करते हैं, कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहां किसी को खबर ही नहीं होगी।
2: सही बात,
1: हजरत आकर लौट जाएंगे।
2: वल्लाह क्या खूब सूझी
1: है ना।
2: हाँ इसके सिवा कोई तदबीर है ही नहीं।
1: बिल्कुल
2: आओ चलो।
3: अरे तुमने कल जाकर बहुत अच्छा किया, मीर साहब तो घबरा ही गए थे, अब मीर साहब की बैठक यहाँ नहीं जमेगी।
4: ऐसे गाउदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ, इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली, अब भूल कर भी घर पर नहीं रहेंगे। हाँ
5: दूसरे दिन से मीर और मिर्जा दोनों दोस्त मुंह अंधेरे निकल जाते, बगल में एक छोटी सी दरी दबाए, डिब्बे में गिलोरियां भरे, गोमती पार कर एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते जिसे शायद नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था। मस्जिद में पहुंच दरी बिछा शतरंज खेलने बैठ जाते थे।
2: अब यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है। ये लो दरी बिछाता हूँ।
1: अब जरा बिछाओ। हाँ आज तो शह दूंगा तुम्हें मिर्जा। रुको तुम
2: देखते हैं कौन किसको।
1: चलिए हाँ अपना पास चलिए। हाँ चलिए
2: ये चलती।
5: किश्त शह आदि दो एक शब्दों के अलावा मुंह से कोई और वाक्य निकलता ही ना था।
1: मिर्जा सूरज सर पर चढ़ाया है, भूख सी लग रही है, कुछ खा लिया जाए।
2: अरे खाना बाद में, पहले ये किश्त और शेख को देख लीजिए।
1: अरे नहीं मियां चलो नान भाई की दुकान पर चलकर कुछ खा कर आते।
2: अच्छा चलो, चलो चलो।
5: बस दुकान पर जाते खाना खाकर आ जाते, फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल ना रहता था।
6: इधर कंपनी की फौजे लखनऊ की तरफ बड़ी चली आती थी। शहर में हलचल मची हुई थी, लोग बाल बच्चों को ले लेकर देहातों में भाग रहे थे। पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र ना थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर, डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए जो बेगार में पकड़े जाए। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त में ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र खंडर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमजोर थी, मीर साहब उन्हें किश्त पर किश्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। ये गौरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने आ रही थी।
1: मिर्जा अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे।
2: अरे आने दीजिए मीर साहब, किश्त बचाइए या अपनी किश्त लो ये किश्त।
1: ना ना मिर्जा जरा देखना चाहिए, यहीं आड़ में खड़े हो जाएं।
2: अरे बाद में देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, ये लो किश्त, फिर से किश्त।
1: ओह तोपखाना भी है, 5,000 आदमी तो जरूर होंगे। ये कैसे जवान है, अजीब से दिख रहे हैं, अब सूरत देखकर तो खौफ होता है।
2: अरे मीर साहब बहाने मत बनाइए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, समझे, ये रही फिर से किश्त।
1: अरे मिर्जा आप भी अजीब आदमी हैं, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किश्त की सूझी है। कुछ इसकी खबर भी है कि शहर घिर गया है, अरे घर कैसे चलेंगे।
2: अरे जब चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा, ये रही फिर से किश्त। बस अब शह में मात है आपकी।
6: फौज निकल गई, 10 बजे का समय था, बाजी बिज गई।
5: दोनों फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्जा की बाजी कमजोर थी, 4 का गजर बज रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली शाह पकड़े गए थे और फौज उन्हें किसी अज्ञात स्थान

0: पर लेकर जा रही थी। शहर में ना कोई हलचल थी ना मारकाट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना न हुई थी। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना चला जा रहा था।
1: मियां मीर, हुजूर नवाब को जालिमों ने कैद कर लिया है।
2: कर लिया होगा, ये लीजिए शह।
1: अरे जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे।
2: रो ही रहे होंगे, भला ये ऐश वहां कहां नसीब होगी। ये किश्त
1: है। अरे किसी के दिन बराबर नहीं जाते, कितनी दर्दनाक हालत है।
2: हाँ मिर्जा, सो तो है ही। ये लो फिर किश्त। बस अब की किश्त में मात है, बच नहीं सकते मियां।
1: खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं। हाँ, इतना हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता?
3: हाय गरीब वाजिद अली शाह।
2: पहले मियां अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब का मातम कीजिए। ये किश्त और मात लगाना हाथ।
0: बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा ली। हार की चोट बुरी होती है, मीर ने कहा।
2: आइए नवाब साहब, आइए। नवाब साहब के मातम में मरसिया कह डालें।
0: लेकिन मिर्जा अपनी शतरंज की हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो हार का बदला चुकाने के लिए बेताब हो गए थे।
4: शाम हो गई। खंडर में चमगादड़ों ने चिल्लाना चीखना शुरू कर दिया, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे मानो दो खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे, इस चौथी बाजी का भी रंग कुछ अच्छा न था। वो बार बार जीतने का निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब आ पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र होती जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजलें गाते थे, चुटकियां लेते थे मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्जा सुन सुन कर झुंझलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनको दाद भी देते थे। ज्यों ज्यों बाजी कमजोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकलता जाता था, यहां तक कि वो बात बात पर झुंझलाने लगे।
1: ए मियां मीर, जनाब आप चाल मत बदलिए।
2: अरे मिर्जा।
1: अरे ये क्या कि चाल चले और फिर उसे बदल दिया?
2: मिर्जा।
1: अरे जो कुछ चलना है एक बार चल दीजिए।
2: अरे मिर्जा ऐसे थोड़ी ना होता है।
1: अरे ऐसे ही होता है, ये आप मोहरे पर ही क्यों हाथ रखते रहते हैं? मोहरे छोड़ दीजिए।
2: ये क्या बात हुई मिर्जा?
1: अरे अरे भाई, जब तक आपको चाल न सूझे मोहरा छूए नहीं।
2: चलिए ऐसे भी करके देख लेते हैं।
1: बिल्कुल। आप एक एक चाल आधे आधे घंटे में चलते हैं।
2: अरे शतरंज ऐसे ही खेली जाती है।
1: अरे इसकी सनद नहीं है। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज्यादा समय लगे उसकी मात समझी जाए। अरे फिर आपने चाल बदली? चुपके से मोहरा वहीं रख दीजिए, बता रहा हूँ।
2: अरे मिर्जा मैंने चाल चली ही कब थी।
1: अरे मियां मीर आप चाल चल चुके हैं।
2: हाँ
1: मोहरा वहीं वहीं वहीं रख दीजिए, मोहरा वहीं उसी घर में।
2: मिर्जा उसमें क्यों रखूं? हाथ से मोहरा छोड़ा कब था भाई मैंने।
1: मोहरा आप कयामत तक न छोड़े
2: तो
1: क्या चाल ही नहीं होंगी? फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे।
2: अरे मिर्जा धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता।
1: तो इस बाजी में आपको मात हो गई है।
2: मुझे क्यों मात होने लगी?
1: तो मियां साहब आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहां पहले रखा।
2: वहां क्यों रखूं? नहीं रखता।
1: क्यों नहीं रखिएगा? आपको रखना होगा।
2: अरे नहीं रखता।
1: अरे आपको रखना होगा।
2: अरे छोड़िए आप बात क्या कर रहे हैं। अरे इधर आइए। अरे छोड़िए आप।
4: तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे, न ये दबता था न वो। अप्रासंगिक बातें होने लगी थी।
1: अरे मैंने आपको कहा कि आप मोहरा वहीं रखिए, उसी घर में रखिए। अरे मीर साहब आपके खानदान में अगर किसी ने शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते ना।
2: मिर्जा
1: वो तो हमेशा घास ही छीला करते थे।

0: आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत और ही चीज है, जागीर मिल जाने से कोई रईस नहीं हो जाता।
1: मिर्जा, घास आपके यहाँ छींटते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं हम लोग।
2: अच्छा भाई, कमाल के शतरंज खेलते हैं आप हैं?
0: अजी जाइए जाइए, गाजीउद्दीन हैदर के यहाँ गुलामी करते करते उम्र गुजर गई, आज रईस बनने चले हैं। अरे रईस बनना कोई दिल लगी नहीं है, समझे आप?
1: अरे मिर्जा, गुलामी आप करते होंगे, हम तो हमेशा से बादशाहों के दस्तरखान पर खाना खाते चले आ रहे हैं।
0: खाना खाते चले आ रहे हैं। चलो हटो, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बातें मत करो।
1: ये चलो हटो क्या होता है? अरे मिर्जा, जबान संभालिए अपनी, वरना बहुत बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूं। यहां तो किसी ने आंख दिखाई कि उसकी आंख निकालने का हौसला है मुझमें।
0: अच्छा, हौसला हौसला है भाई, वाह। तो आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं? तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो जाए, या तो इधर या तो उधर। आओ,
1: या तो इधर या तो उधर।
0: हाँ।
1: अरे तुम क्या समझते हो?
0: अरे तुम क्या,
1: मैं तुमसे दबने वाला हूँ?
0: अरे तो क्या मैं दबूंगा तुमसे?
1: अरे छोड़ो,
0: अरे छोड़ो,
1: अरे ये कोई तरीका? अरे मिर्जा,
0: अरे अरे
3: बस फिर क्या था, दोनों दोस्तों ने कमर कस ली और दोनों की कमर से तलवारें निकल आईं। नवाबी जमाना था, सभी तलवार कटार वगैरह बांधते थे, दोनों कायर न थे, दोनों ने पैंतरे बदले, तलवारें चमकी, छपाछप की आवाजें आई, दोनों जख्मी होकर गिर पड़े और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। अपने बादशाह को बचाने के लिए उनकी आंखों से एक बूंद आंसू ना निकला, पर शतरंज के वजीर को बचाने के लिए दोनों ने अपनी जानें दे दी।
4: अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल से सनी मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी।
5: बोलती कहानियां क्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी शतरंज के खिलाड़ी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। रेडियो नाट्य रूपांतरकार, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे निखिल दीवान।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रमाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
7: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
6: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एम ए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने चेन्नई में आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपे जाली समर्थन पत्र पर कार्रवाई की मांग की है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई शुभ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है। श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात पांचवें स्थान पर है। ऐसे में दोनों टीमें शीर्ष चार में अपनी पकड़ मजबूत करने के इरादे से उतरेंगी। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
8: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. BJP leader Shivendu Adhikari took oath as the Chief Minister of West Bengal today, heading the first BJP government in the state. Governor Arun Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs were sworn in as cabinet ministers. They are cabinet ministers Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nishit Pramanik and Sudhiram Tudu. More from our correspondent.
9: Today is Pochishe Boishak, an auspicious day, birth anniversary of Kobi Guru Rabindranath Thakur, which is celebrated across the state. This day has been selected for the swearing-in ceremony of the new BJP government in West Bengal. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of other NDA and BJP-ruled states, BJP President Nitin Nobin, and other leaders of the Bharatiya Janata Party present in the swearing-in ceremony. The program started with floral tribute to Kobi Guru Rabindranath Thakur. Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Shubhendu Adhikari and other dignitaries paid respect to Kobi Guru. Kollan Laha reporting from Kolkata.
8: On the occasion, Prime Minister Modi took the blessing of 97-year-old Makhan Lal Sarkar, one of the senior most state leaders during BJP's initial days at the swearing-in ceremony. In a grand gesture, Mr. Modi hugged the veteran leader and touched his feet. Sarkar was the aide of Shyama Prasad Mukherjee, the founder of Bharatiya Jan Sangh. BJP has won 207 seats in the West Bengal 2026 assembly elections, while Trinamool Congress secured 80 seats after ruling the state for 15 years. Prime Minister Modi congratulated Shivendu Adhikari on taking the oath as the Chief Minister of West Bengal. In a social media post, Prime Minister Narendra Modi said that Mr. Adhikari has made a mark as a leader who has remained deeply connected to the people and understood their aspirations from close quarters. In Tamil Nadu, political stalemate continues over government formation. Tamil Raghavetri Karigram TVK, which emerged as the single largest party after winning 108 seats in the recent assembly polls, is yet to reach the majority mark of 118. Meanwhile, political activities have intensified to achieve the magic figure. AMMK chief TTV Dinakaran has demanded that the governor take action over the alleged forged letter of support from his party MLA to TVK. The VCK is expected to announce its decision by 4 p.m. today, following a formal meeting with TVK. Meanwhile, MLAs of AIADMK have arrived in Chennai from a resort in Puducherry to meet the party's General Secretary Edappadi K. Palaniswamy. The government has appointed Lieutenant General N.S. Raja Subramani as the next Chief of Defence Staff. The Ministry of Defence said Lieutenant General Subramani will also serve as Secretary, Department of Military Affairs, with effect from the date of assumption of charge and until further orders. The government has also appointed Vice Admiral Krishna Swaminathan as the next Chief of the Naval Staff. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today lauded the traditional relationship between India and Trinidad and Tobago. On his visit, Dr. Jayashankar addressed the flag-raising ceremony at the Ministry of Foreign and CARICOM Affairs of Trinidad and Tobago. The minister highlighted the deep cultural ties and historical bonds shared by the two countries. Dr. Jayashankar also met Prime Minister of Trinidad and Tobago, Kamala Prasad Bisesar, and explored new ideas and initiatives to further strengthen the bilateral cooperation. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana tomorrow. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Thereafter, Prime Minister Modi will travel to Hyderabad and he will lay the foundation stone and inaugurate the multiple developmental projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heat wave conditions at isolated places over Gujarat and West Rajasthan. The weather agency issued a red-colored warning for the thunder squall with wind speed reaching 60 to 80 kilometers per hour over Bihar today. And an IPL host Rajasthan Royals will face Gujarat Titans in Jaipur this evening at 7:30 p.m. Last night, Kolkata Knight Riders defeated Delhi Capitals by 8 wickets in Delhi. And that is the end of this news bulletin.
10: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर.
11: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है. लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी. द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर. कहीं भी कभी भी रहें हरदम अपडेट. आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप.
10: लीजिए अब सुनिए गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं. गुमशुदा व्यक्ति का नाम है रीता, पत्नी रामवीर, ग्राम नित्यानंदपुर, थाना किठोर, मेरठ. इनकी आयु लगभग 25 वर्ष है, ऊंचाई लगभग 5 फुट, बालों का रंग काला है, चेहरा गोल सामान्य है, शरीर की बनावट सामान्य है, बाएं हाथ की हथेली के ऊपर एक सफ़ेद निशान है. घटना के दिन उन्होंने हरे रंग का सूट सलवार और पैरों में सैंडल पहनी हुई थी. इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप मोबाइल नंबर 9897656819 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर थाना किठोर जनपद मेरठ में भी जानकारी दे सकते हैं. लापता व्यक्ति का नाम है शालू, पुत्री प्रमोद, प्रतापनगर. इनकी आयु लगभग 25 वर्ष है, शरीर की बनावट पतली है, ऊंचाई 5 फुट है, सफ़ेद गुलाबी कुर्ती व सफ़ेद पैंट पहनी हुई है. इनके बारे में किसी प्रकार की सूचना मिलने पर थाना हर्षविया SHO थाना हर्षविया से आप संपर्क कर सकते हैं।

0: अगली सूचना के अनुसार लापता व्यक्ति का नाम है फरदीन। आँखों का विवरण सामान्य है, रंग सांवला है, आयु 28 वर्ष है, बाल काले हैं, शरीर की बनावट मोटा, ऊंचाई 5 फुट 5 इंच, चेहरा गोल है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर जनपद मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी पर आप संपर्क कर सकते हैं। विलुप्त व्यक्ति का नाम है मीनाक्षी उर्फ शालू, पुत्री महेंद्र। आंखें गहरी काली हैं, रंग गोरा है, शरीर की बनावट मजबूत है, बालों का रंग सामान्य काला है, ऊंचाई 5 फुट 4 इंच, टॉप कुर्ता व पजामा पहना हुआ है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप क्षेत्राधिकारी के ठोर जनपद मेरठ को सूचित कर सकते हैं। विलुप्त व्यक्ति का नाम है अंसार, पुत्र कसमुद्दीन, निवासी हैं ग्राम नवाबगढ़ी थाना सरधना मेरठ के, आयु 22 वर्ष है, ऊंचाई 5 फुट 5 इंच है, रंग गोरा है, शरीर की बनावट आँख नाक कान औसत हैं। घटना के दिन इन्होंने हरी टी शर्ट व काला लोअर और हवाई चप्पल पहनी हुई थी। इनके बारे में कोई भी सूचना अगर आपको मिलती है तो आप थाना सरधना मेरठ को सूचित कर सकते हैं। विलुप्त व्यक्ति का नाम है राजकली, पुत्री तुलसीराम, आयु 18 वर्ष है, ऊंचाई 137.16 सेंटीमीटर, आंखों का विवरण सामान्य है, बालों का रंग काला, शरीर की बनावट सामान्य है, ये 3 मार्च 2026 से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना यदि आपको मिलती है तो आप थाना ब्रह्मपुरी मेरठ को सूचित कर सकते हैं। विलुप्त व्यक्ति का नाम है राजकरण उर्फ छोटू, पुत्र चुनवाद, आंखों का रंग औसत है, रंग सांवला है, आयु 20 वर्ष है, बालों का रंग काला है, शरीर की बनावट गहरा है और ऊंचाई 5 फुट है, चेहरा गोल। ये 18 नवंबर 2025 से नगला ताशी से लापता हैं। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना यदि आपके पास हो तो आप थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ को सूचित कर सकते हैं। उपरोक्त व्यक्ति के बारे में विवरण यह है कि ये मानसिक रूप से बीमार है। विलुप्त व्यक्ति का नाम है पायल, पुत्री सतीश कुमार, आंखें औसत सामान्य हैं, रंग गेहुआ है, बाल भी सामान्य हैं। घटना के दिन इन्होंने सूट और सलवार पहना हुआ था, ऊंचाई 4 फुट 9 इंच है, ये 9 मार्च 2026 से लापता हैं। इनके बारे में यदि आपको कोई सूचना मिलती है तो आप सरूरपुर थाना मेरठ से सूचना दे सकते हैं।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है, लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। The best of entertainment, information, education, अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी, रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: श्रोताओं, 5:10 पर लोक रंजनी कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप आनंद लेंगे इंद्रवी तेवतिया और होशियारपुर देवी के आवाज़ में लोक गीतों का।

साथ ही 7:05 पर आप सुनेंगे पशुओं में हीट स्ट्रोक के लक्षण और प्राथमिक उपचार विषय पर एक जानकारी भरी बातचीत। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अनूप कालरा, वैज्ञानिक, नई दिल्ली।

जलदाता ग्रैंड वाटर, कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं? क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।

श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आज रात्रि 10 बजे आप आनंद ले सकते हैं संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत राजकुमार मजूमदार के संतूर वादन का।

0: की शर्तों की जानकारी विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान में उपनिदेशक सिविल इंजीनियर के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस पद के लिए आवेदन करने हेतु निर्धारित प्रपत्र केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है और वेबसाइट का पता है cicef.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप पात्रता मानदंड और वेतनमान आदि की सभी जानकारियां विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी है जो इन पदों के लिए भारत के नागरिकों से आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित कर रही है। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार केवल ऑनलाइन अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। पद नाम है असिस्टेंट फोरमैन। कुल 150 पद हैं, जिनमें से 60 पद सामान्य वर्ग के लिए हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 15, एससी श्रेणी के लिए 24 और एसटी श्रेणी के लिए 33 तथा ओबीसी श्रेणी के लिए 18 पद आरक्षित हैं। तकनीकी इलेक्ट्रीशियन के कुल 350 पद उपलब्ध हैं, जिनमें से 140 सामान्य वर्ग के लिए, 35 ईडब्ल्यूएस के लिए, 56 एससी वर्ग के लिए, 77 एसटी वर्ग के लिए और 42 ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की वेबसाइट www.mahanadikol.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप योग्यता, पात्रता मानदंड, आरक्षण, आयु में छूट, परीक्षा शुल्क और अन्य नियमों और शर्तों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।
2: अभी आप सुन रहे थे एम्प्लॉयमेंट न्यूज। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम परिक्रमा। समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
0: नमस्कार। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोस्तों बज गए हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। दोस्तों आधा घंटे की इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, ले चलेंगे आपको अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे उनसे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर हमेशा की तरह रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को याद जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। दोस्तों कार्यक्रम परिक्रमा में आज हम हैं आपके साथ मुनीश शर्मा और सायरा मुज्तबा। नमस्कार सायरा।
3: नमस्कार मुनीश, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड यस, मुनीश हैज ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू इन टुडेज शो। तो हसबे दस्तूर हम लाते हैं ताज़ा तरीन खबरें तो हैं ही, बट बिकॉज द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा तो जाहिर सी बात है मुनीश हम लोग देश की परिक्रमा पे निकलेंगे। वील गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर कंट्री एंड सी व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैव फ्रॉम देयर। बिकॉज मुनीश बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं जो हमारे न्यूज़ बुलेटिन का कह सकते हैं हिस्सा नहीं बन पाती, बट दे आर डेफिनेटली वर्थ शेयरिंग विद आवर लिसनर्स। इसीलिए हम लाते हैं आपके लिए परिक्रमा। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस फर्स्ट। मुनीश, शुभेंदु अधिकारी बिकम्स फर्स्ट बीजेपी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, टेक्स ओथ अलोंग विद 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स।
0: तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी, टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला है।
3: National Legal Services Authority organizes National Lok Adalat across the country to provide amicable settlement of disputes.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की।
3: And in IPL cricket, Rajasthan Royals to face Gujarat Titans in Jaipur this evening.

0: महत्वपूर्ण मौजू की. टुडे इज ऑफ़ कोर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रविंद्रनाथ जयंती एंड वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे. तो पहला टॉपिक हम लेते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का. वेल देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल एंड मैजिकल अबाउट बर्ड्स मोनीश. One season they are perched on electric wires outside our homes, chirping away at sunrise, and then suddenly they are just gone, thousands and thousands of kilometers away, crossing oceans, deserts, mountains, even borders created by humans, but birds never recognize them.
1: लेकिन सायरा, क्या कभी तुमने सोचा है कि आखिर वैज्ञानिकों को ये पता कैसे चलता है कि आखिर ये पक्षी जाते कहाँ हैं?
0: That's right, Manish. Who notices when their numbers begin to fall? Who tracks whether a wetland is disappearing or whether a migration route is becoming dangerous?
1: और इसका हैरान करने वाला जवाब तो दरअसल है हम लोग. कभी कभी ये कोई लैब में काम करने वाला वैज्ञानिक नहीं होता. ये दूरबीन के लिए कोई स्कूली छात्र हो सकता है, या फिर कोई दादी जो हर सुबह अपनी बालकनी से चिड़ियों को देखती है, या कोई किसान जो अपने खेतों के पास अनजान चिड़ियों को निहारता है, या फिर ऐसा कोई आदमी जो सुबह की सैर के दौरान यूं ही चिड़ियों की कई तरह की फोटो अपलोड कर दिया करता है.
0: Exactly, Manish, and that's why World Migratory Bird Day this year wants the world to understand through its powerful theme, which is Every Bird Counts. Your observations matter because every single observation, every small note, every recorded sighting becomes part of a much bigger story.
1: लेकिन जानती हो सायरा कि केरल में एक नन्हा सा बच्चा इस सर्दी में एक झील के पास कम प्रवासी पक्षियों को देखता है. अफ्रीका में एक पक्षी प्रेमी उनके आने के असामान्य समय को नोट करता है. यूरोप में एक परिवार प्रवास के दौरान वेटलैंड्स में आराम फरमा रहे पक्षियों की तस्वीरें लेता है. पहली नजर में ये पल साधारण लग सकते हैं, लेकिन जब महाद्वीपों में ऐसे हजारों यहाँ तक कि लाखों अवलोकन एक साथ आते हैं तो वो ऐसे पैटर्न उजागर करना शुरू कर देते हैं कि जिन्हें वैज्ञानिक अकेले इतनी तेजी से कभी पकड़ नहीं पाते.
0: That's right. Suddenly these scattered moments turn into critical environmental evidence. That's the beauty of community science. Not complicated labs, not giant machines. But people, ordinary people, Manish, who are paying attention to nature.
1: जी हाँ दोस्तों, और इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बात ये बनाती है कि पंछियों का प्रवास अपने आप में प्रकृति के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है. कुछ प्रवासी पक्षी हर साल पूरे पूरे गोलार्धों को पार करके यात्राएं करते हैं. स्मार्टफोन से भी कम वजन वाले छोटे छोटे पक्षी तूफानों, बदलते मौसम, सिकुड़ती आर्द्र भूमियों और देशों को पार करने वाली थका देने वाली यात्राओं का सामना करते हुए जीवित रहते हैं.
0: इंडीड, बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है अपने आप में, खासतौर से जब माइग्रेटरी बर्ड्स का कहते नहीं है, जो वो माइग्रेशन शुरू होता है मोनीश, देयर आर सो मेनी यू नो चैनल्स जो उसको कहते नहीं है ट्रेस करते हैं, एंड इट रियली लीव्स यू ऑस्ट्रक कि कई बार तो हफ्तों हफ्तों तक वो नीचे आते ही नहीं, खाना खाने के लिए कहीं नहीं रुकते. यू नो इट्स अ नॉन स्टॉप जर्नी दैट दे टेक, एंड येट मेनी ऑफ अस बेयरली नोटिस देम अंटिल वन मॉर्निंग द साइलेंस आउटसाइड फील्स अनफेमिलियर. एंड दैट्स व्हाई दिस कैंपेन matters because birds are not only beautiful to look at, they also tell us something about the health of the planet itself.
1: दरअसल योगदान देने के लिए आपको महंगे उपकरणों की जरूरत नहीं है. शाम की एक साधारण सी सैर भी सार्थक हो जाती है. हो सकता है आप देखें कि सालों बाद गौरैया पास के किसी पार्क में लौट आई हैं. हो सकता है सर्दियों में पक्षियों का कोई झुंड गांव के किसी तालाब के पास आकर रुक जाए, और हो सकता है कि आपके पिता आसमान की ओर इशारा करते हुए कहें, जब मैं जवान था तब ये पक्षी यहाँ नहीं होते थे. इस तरह की बातचीत बहुत मायने रखती है, और ये अवलोकन भी मायने रखते हैं.
0: बिल्कुल, और काश ऐसा हो कि गौरैया वापस आ जाए, बिकॉज अब तो देखते हैं चारों तरफ तो गौरैया नजर ही नहीं आती. गणेश, Many global conservation efforts today rely heavily on what people report from their local surroundings. Community participation helps experts understand migration routes, breeding patterns, habitat loss, and population decline.
1: और जो लोग पक्षियों को देखना शुरू कर देते हैं वो अक्सर प्रकृति की भी ज्यादा गहराई से परवाह करने लगते हैं. जो लोग कभी वेटलैंड्स को नजरअंदाज करते थे वो अचानक उन्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं. जो बच्चे पक्षियों को पहचानना शुरू करते हैं वो मौसमों जंग

0: marks the 165th birth anniversary of Gurudev, and from the very first light of dawn, celebrations have already filled hearts across the country and beyond. In schools, cultural organizations, and neighborhood gatherings, people have come together out of affection for the great writer.
1: दोस्तों, एक सदी से भी पहले लिखे गए गीत आज भी उसी भावना के साथ गाए जाते हैं. बच्चे ऐसी कविताएं सुनाते हैं जिन्हें शायद वो आज पूरी तरह न समझते हों, फिर भी किसी न किसी तरह उन्हें गहराई से महसूस करते हैं. रविंद्र संगीत की ताल पर नृत्य प्रस्तुतियां बड़े ही सलीके से प्रस्तुत होती हैं, जबकि बड़े बुजुर्ग चुपचाप उनके साथ गुनगुनाते हैं, अपने साथ किसी और दौर की वो यादें ताज़ा करते हुए.
0: And nowhere does the celebration feel more timeless than at Shantiniketan. At 5 o'clock in the morning, the traditional homage began at Gaurprangan with the soulful strains of Baitalic songs. And before the world had fully awakened, music had already taken over the campus.
1: और बाद में सुबह वो पूरा क्षेत्र जन्मदिन समारोहों, प्रस्तुतियों और श्रद्धांजलि से जीवंत उठता है, जिसमें भक्ति और संस्कृति का सबसे सुंदर संयोजन देखने को मिला करता है. रविंद्र जयंती की एक खास बात यह है कि ये कभी भी एक औपचारिक आयोजन जैसा नहीं लगता, ये तो एक व्यक्तिगत अनुभव होता है. हमारे कोलकाता संवाददाता की रिपोर्ट भी तो यही कहती है.
2: टुडे इज पचिशे बैशाख, एन ऑस्पिशियस डे, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कवि गुरु रवींद्रनाथ ठाकुर, which is celebrated across the state. This day has been selected for the swearing-in ceremony of the new BJP government in West Bengal. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of other NDA and BJP-ruled states, BJP President Nitin Nobin, and other leaders of the Bharatiya Janata Party present in the swearing-in ceremony. The program started with floral tribute to Kovi Guru Rabindranath Tagore. Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Shubhendu Adhikari and other dignitaries paid respect to Kovigoru. Kollan Laha reporting from Kolkata.
0: And Monish, almost every Bengali household has at some point lived with Tagore's words. A rainy afternoon often reminds someone of his songs, a school function carries his poetry, a moment of heartbreak suddenly finds comfort in his lines, and his work lives inside everyday life. And perhaps that is why his influence continues to travel across generations and borders.
1: दरअसल दोस्तों, भारत से लेकर बांग्लादेश तक, विश्वविद्यालयों के सभागारों से लेकर विदेशों में छोटे छोटे सामुदायिक भवनों तक पूरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें रविंद्र संगीत, काव्य पाठ, नृत्य नाटिकाएं और उनकी रचनाओं से प्रेरित नाट्य प्रस्तुतियां शामिल हैं.
0: Yes, leaders across the country also paid tributes to Gurudev today. The Vice President reflected on how his contributions went far beyond literature. The Prime Minister described him as a writer, thinker and poet of extraordinary brilliance whose words gave voice to humanity's deepest emotions and India's cultural confidence.
1: Raksha Mantri Rajnath Singh ne kaha hai ki Gurudev ne ek Bharat Shreshth Bharat ki bhavana ko sudrid kiya, jabki Grih Mantri Amit Shah ne is baat par प्रकाश डाला कि टैगोर के साहित्य, संगीत और दर्शन ने स्वतंत्रता की भावना में किस तरह एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था.
0: That's right, Monish. Very few individuals have shaped the soul of a nation the way Rabindranath Tagore has. And he has given the world Gitanjali, a work that carried Indian literature to the global stage.
1: उन्होंने भारत को उसका राष्ट्रगान जनगण मन दिया, ऐसे शब्द जो आज भी हर दिन लाखों लोगों को एकता के सूत्र में पिरोते हैं. लेकिन पुरस्कारों और उपलब्धियों से भी बढ़कर उन्होंने लोगों को कुछ ऐसा दिया जो कहीं अधिक स्थायी है, संवेदनशीलता, चिंतन और जीवन को गहराई और सौंदर्य के साथ देखने का एक अनूठा नजरिया.
0: Yes, absolutely. Even today, in a fast-moving world filled with noise, Tagore's words continue to feel calm, relevant, and deeply humane. And maybe that is the true magic of Rabindra Jayanti.
1: दरअसल ये केवल किसी जन्म दिवस का उत्सव मात्र नहीं है. ये इस बात की याद दिलाता है कि कला समय की सीमाओं से परे हो सकती है, कि कविता आज भी घावों को भर सकती है, और ये कि ज्ञान और करुणा से भरी एक आवाज संगीत के थम जाने के बहुत बाद भी आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रह सकती है. और सायरा, अब वक्त हो गया है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि क्या कुछ है खास उनके पास।
0: That's right, we begin Parikrama's journey from down south in Thiruvananthapuram. The synchronized census of the endangered Nilgiri Thar is continuing across the western Ghats, with Kerala emerging as the major habitat of the species, according to preliminary findings from the Kerala Forest Department. Forest officials said the latest estimation exercise being carried out jointly by Kerala and Tamil Nadu forest departments has so far recorded a global population of around 2,000 Nilgiri Thars, of which more than 1,300 are in Kerala. The survey will continue till 17th of May. Let's hear more from our correspondent.
3: Iravikulam National Park in Idukki District, Keralam continues to be the main stronghold of the species, with 841 individuals recorded from the park alone. Nearly 90% of Keralam's Nilgiri Thar population is concentrated in the Moonar landscape. The census, which began on April 24th, covers 89 survey blocks in Keralam and 182 blocks in Tamil Nadu. In Keralam, the survey extends across 19 forest divisions from Thiruvananthapuram to Wayanad. Forest personnel and wildlife experts are using scientific methods, including bonded count and double observer method. Camera traps also have been deployed in selected areas to improve monitoring in difficult terrain. The Nilgiri Thar, endemic to the Western Ghats, is listed as an endangered species under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act. Officials say the ongoing exercise is aimed at assessing population trends, habitat conditions, and conservation threats, including habitat fragmentation, climate change, and human disturbance. The Kerala Forest Department says the findings underline the importance of protected grassland ecosystem in Moonar and Iravikulam for long-term survival of the species. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
1: दोस्तों, अंडमान निकोबार प्रशासन ने स्वराज द्वीप में दो नए विश्व रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा है। राधानगर बीच पर समुद्र के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। वहीं लाइट हाउस डाइव साइट पर 22.3 मीटर ऊंची ह्यूमन स्टैक बनाकर दूसरा रिकॉर्ड स्थापित किया गया। ये उपलब्धि न सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह बल्कि समूचे देश के लिए गर्व का एक क्षण है। सुनिए एक रिपोर्ट।
4: अंडमान निकोबार प्रशासन ने स्वराज द्वीप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए दो नए विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए। राधानगर बीच पर समुद्र के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। इस अभियान में प्रशासन, अंडमान निकोबार पुलिस, भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और अनुभवी स्कूबा डाइवर्स ने मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा लाइट हाउस डाइव साइट पर पानी के भीतर 22.3 मीटर ऊंची ह्यूमन स्टैक बनाकर दूसरा विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया गया। इस पूरे अभियान के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी रही और सभी प्रतिभागियों के समर्पण, साहस और टीम वर्क की सराहना की गई। यह उपलब्धि न केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है।
0: And now we head towards my favorite place, Monish. We're going to Goa. Well, to safeguard Goa's rich cultural heritage and support the next generation of performers, Chief Minister Dr. Pramod Sawant has launched a new scholarship scheme dedicated to traditional arts. This initiative aims to provide financial stability to students pursuing various disciplines from classical music to the ancient folk traditions of the state. Let's hear more from our correspondent.
5: The newly announced scholarship is designed to encourage youth to master traditional performing arts, including classical music, Bharatanatyam, Kathak, and folk dance. Notably, the scheme places a strong emphasis on indigenous Goan art forms such as Dashavatar and local theater. Under this initiative, selected students will receive financial assistance ranging from 3,600 to 9,000 rupees to help cover their training fees. The Chief Minister emphasized that the primary objective of this scheme is to inspire young artists and ensure that Goa's vibrant cultural legacy continues to thrive. By providing this support, the government hopes to create a sustainable environment for traditional performers who are the custodians of the state's heritage. Aspiring artists are encouraged to take advantage of this opportunity as the application process is already underway. Interested candidates must submit their applications by the 30th of May to be considered for the scholarship. For Parikrama, Mahesh Sopde, Akashwani News, Panji.
1: सायरा, ले चलिए हमको खेल के मैदान में और हमें बताइए क्या है वहाँ हलचल।
0: Well, in IPL cricket, Rajasthan Royals will face Gujarat Titans at Sawai Mansingh Stadium in Jaipur. The match will start at 7:30 p.m.

0: और दोस्तों, आइए अब हम याद करें महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करें उन महान व्यक्तित्वों की है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन।
1: आज हम जाने माने स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 9 मई 1866 को हुआ। वो उदार राजनेता और समाज सुधारक थे। गोखले इंडियन नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक भी थे।
2: गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के मार्गदर्शक के रूप में प्रसिद्ध हैं। गांधी जी गोखले को निपुण राजनेता मानते थे। 12 अक्टूबर 1896 को पुणे में गोखले के साथ पहली बैठक को याद करते हुए गांधी जी ने लिखा था,
1: मैं गोखले से मिला, वो मुझे फर्ग्यूसन कॉलेज के मैदान में नजर आए। गोपाल कृष्ण गोखले ने प्यार से मेरा स्वागत किया। उनके बर्ताव ने फौरन मेरा हृदय जीत लिया। उनके साथ वो मेरी पहली बैठक थी, तब भी यूं लगा जैसे हम कोई पुराने मित्र हैं। सर फिरोज शाह तो मेरे लिए हिमालय के जैसे थे, लोकमान्य सागर की तरह थे, लेकिन गोखले तो गंगा की तरह थे। कोई भी उस ताजगी भरी गंगा में स्नान कर सकता था। हिमालय तो अलंघ्य था और सागर को कोई आसानी से लांग नहीं सकता, लेकिन गंगा वो तो आपको गले लगाने के लिए आमंत्रित करती है। नाव और चप्पू के संग गंगा में जाना बहुत आनंददायक है। गोखले ने बारीकी से मुझे परखा, जैसे जैसे विद्यालय का शिक्षक प्रवेश लेने वाले उम्मीदवार को परखता है। उन्होंने मुझे बताया कि किससे मिलना है और उनसे कैसे मिलना है। उन्होंने मुझे भाषण देने को कहा और आश्वासन दिया कि वो हमेशा मेरे लिए उपलब्ध रहेंगे। मैं उल्लास के साथ विदा हुआ। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में गोखले ने जिंदगी भर मेरे हृदय में जो स्थान बनाया वो आज भी है और अत्यंत विशिष्ट है।
2: 19 फरवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा शत शत नमन।
3: एंड नाउ वी आर रिमेम्बरिंग सम मोर पर्सनालिटीज, मोनिश। वी आर स्टार्टिंग विद महाराणा प्रताप और प्रताप सिंह द फर्स्ट। वेल, ही वॉज द किंग ऑफ किंगडम ऑफ मेवाड़, ये हम सब जानते हैं। एंड ऑफ कोर्स टिल द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ राजस्थान, एंड ही वॉज देयर अंटिल हिज डेथ इन 1597। नोटेबल फॉर लीडिंग द राजपूत रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ मुगल एम्परर अकबर, इंक्लूडिंग द बैटल ऑफ हल्दी घाटी।
0: दोस्तों, महाराणा प्रताप का नाम भारतीय इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रतिज्ञता के लिए अमर है। वे उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के थे और वो तिथि धन्य है जब मेवाड़ की शौर्य भूमि पर मेवाड़ मुकुटमणि राणा प्रताप का जन्म हुआ। और दोस्तों, आज ही है पुण्यतिथि तेनजिंग नोरके की। उन्हें शेरपा तेनजिंग के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करने वाले वो पहले भारतीय थे। उन्होंने न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध पर्वतारोही एडमंड हिलरी के साथ 29 मार्च 1953 को 8,848 मीटर ऊंचाई वाली चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सबसे पहले सफलता प्राप्त की थी। भारत सरकार ने उन्हें 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया और 1954 में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की दार्जिलिंग में स्थापना की गई और तेनजिंग नोरके को उसका निदेशक बनाया गया। उनका निकनेम टाइगर ऑफ स्नोज रखा गया।
3: That's right, Monish. We are also remembering a very fine playback singer who is considered one of the greatest and most popular Indian male film and ghazal singers. We are talking about Talat Mehmood. Yes, today is Talat Mehmood's death anniversary. And although he tried his luck as a film actor, Monish, wo acting mein unko itni zyada jo hai keh sakte hain success nahi mili. But of course, we know that his voice was magical. Aur kitne saalon tak unki awaaz jo hai, bahut bade bade actors ko unhone awaaz di, chahe wo Dilip Kumar ho, chahe Sunil Dutt ho, isn't it? And the government of India, of course, conferred the Padma Bhushan on Talat Mehmood in the year 1992.
0: तो क्यों ना फिर तलत साहब की आवाज में सुनी जाए उनकी कुछ शानदार अदायगी, जिसे हम आप अक्सर गुनगुनाया भी करते हैं।
3: बिल्कुल।

0: क्या याद दिला दिया आपने, सुनील दत्त साहब जो हैं फोन पर गीत गा रहे थे
1: नूतन के लिए।
0: और बताइए और कौन से गीत आपको उनके याद आते हैं?
1: वेल बिकॉज ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट रोमांस एंड ट्रेजेडी ये दो मूड्स के तो कह सकते हैं तलत महमूद ने महारत हासिल कर ली थी, तो क्यों ना अभी तो हम लोगों ने एक बहुत ही रोमांटिक गज़ल या गीत जो कह लिए सुना, एक जो ट्रेजेडी और ट्रेजिक गाने होते हैं दर्द भरे, क्यों ना वो भी सुन ले।
0: बिल्कुल

0: दोस्तों, दरअसल यहीं से तलत और दिलीप कुमार का एक अनूठा संयोग बना जो कई फिल्मों में दोहराया भी गया। और महमूद ने हिंदी की 13 फिल्मों और 3 बांग्ला फिल्मों में तलत साहब ने कहना चाहिए अभिनय किया और 17 भारतीय भाषाओं में सायरा उन्होंने गाने गाए।
1: Wow, that's amazing. And of course, we all know के तलत महमूद के और कितने सारे गाने हैं, बट जाहिर है इतने कम वक्त में हम लोग सिर्फ दो ही आपके सामने प्रेजेंट कर पाए। And now, of course, the clock is showing that it's now time to wrap up the show.
0: बिल्कुल, इजाजत दीजिए दोस्तों, हम लेते हैं आपसे आज्ञा।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया। कांग्रेस के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किर्तियानिया, खुदीराम टुड्डू और निशित प्रमाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया है।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
2: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोईचीशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष महासचिव M.A. बेबी ने कहा कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने चेन्नई में आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट

0: के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 करोड़ रुपए के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धनशोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धनशोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को 147 के बजाय 144 अंकों से हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. BJP leader Shubhendu Adhikari took oath as the Chief Minister of West Bengal today, heading the first BJP government in the state. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs were sworn in as cabinet ministers. Their cabinet ministers are Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtania, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu. More from our correspondent.
2: Today is Pochishe Boishak, an auspicious day, birth anniversary of Kobi Guru Rabindranath Thakur, which is celebrated across the state. This day has been selected for the swearing-in ceremony of the new BJP government in West Bengal. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of other NDA and BJP-ruled states, BJP President Nitin Nobin, and other leaders of the Bharatiya Janata Party present in the swearing-in ceremony. The program started with floral tribute to Kobi Guru Rabindranath Thakur. Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Shubhendu Adhikari and other dignitaries paid respect to Kobi Guru. Kollan Laha reporting from Kolkata.
1: On the occasion, Prime Minister Modi took the blessing of 97-year-old Makhanlal Sarkar, one of the senior most state leaders, during the BJP's initial days at the swearing-in ceremony. In a grand gesture, Mr. Modi hugged the veteran leader and touched his feet. Sarkar was the aide of Shyama Prasad Mukherjee, the founder of Bharatiya Jan Sangh. BJP has won 207 seats in the West Bengal 2026 assembly elections, while Trinamool Congress secured 80 seats after ruling the state for 15 years. Prime Minister Modi congratulated Shubhendu Adhikari on taking oath as the Chief Minister of West Bengal. In a social media post, the Prime Minister said, Mr. Adhikari has made a mark as a leader who has remained deeply connected to the people and understood their aspirations from close quarters. The Enforcement Directorate has arrested Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in connection with an alleged money laundering case involving Hampton Sky Realty Limited. Earlier, the ED had conducted operations at 5 locations in Delhi, Gurugram and Chandigarh.

लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम। तो नीलम बहन, आज के लोक रंजनी कार्यक्रम में सबसे पहले अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं अमित कुमार तेवतिया से ये लोकगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे अमित कुमार तेवतिया से ये लोकगीत, और अब आपको अगला लोकगीत भी सुनवाते हैं पुष्पा गोसाई की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पुष्पा गोसाई से ये लोकगीत। और आइए एक और लोकगीत आपको सुनवाते हैं, कलाकार हैं इंद्रवीर तेवतिया।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 5:30 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम, दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं कविता और आज इस आधे घंटे के कार्यक्रम में मेरे साथ रहेंगे मेरे सहयोगी
3: अभिषेक कपिल।
2: अभिषेक और मैं आज इस आधे घंटे में आपको रूबरू कराएंगे अलग अलग खेल गतिविधियों से जो इस समय दुनिया में, इंडिया में, और ये कहूँ कि पता नहीं कहाँ कहाँ पर है। और उस पूरी जो जानकारी के साथ आज हम आपके साथ यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि वर्ल्ड के कोने कोने में अलग अलग जो खेल इवेंट है वो खेले जा रहे हैं इंडिया समेत, तो उन्हीं सभी जानकारी को एकत्रित करके हम हर शाम इस प्रोग्राम में आप सभी के समक्ष आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वक्त जो सबसे ज्यादा बड़ी खबर है, इतिहास रचने वाली जो खबर है, वो है फुटबॉल जगत से अभिषेक। और क्योंकि फुटबॉल में जो भारतीय खिलाड़ी हैं, यानी जिन्होंने अभी एक कारनामा किया है, वो है हमारी महिला टीम, जिन्होंने फीफा से बस एक कदम दूरी जो है वो रह गई है उनकी वहां जाने के लिए। मैं बात कर रही हूं यहां पर फीफा वर्ल्ड कप से एक कदम दूर रह गई है यंग टाइग्रेस की टीम, जिन्होंने लेबनान को हराकर अंडर 17 एशियन कप के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारत ने ये जो मुकाबला है ये 8 मई को खेला था, और 8 मई को मैच खेलने के साथ साथ यहां पर एक कारनामा ये बना दिया है भारतीय फुटबॉलर्स ने कि अपने आप को फीफा वर्ल्ड कप से सिर्फ एक कदम की दूरी पर यहां पर रख लिया है। फुटबॉल के इस मैच में सबसे ज्यादा जो ऐतिहासिक क्षण है वो ये है कि जो आखिरी मैच था जिसमें लेबनान के खिलाफ भारत ने 4-0 की शानदार जीत के साथ एएफसी अंडर 17 महिला एशियन कप चीन 2026 के लिए क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस तरह भारतीय महिला टीम पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में प्रवेश करने से सिर्फ एक कदम दूर है। 11 मई को मेजबान चीन के साथ जो ये मुकाबला है ये अभी खेला जाना है, और तब इस साल होने वाले फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप में भारत जो है वो खेलेगा, यदि जो अगला मैच है क्वार्टर फाइनल वो जीत जाता है। तो यंग टाइग्रेस के खिलाफ प्रीतिका बर्मन ने 2 गोल करके शानदार प्रदर्शन किया, जबकि अलवा देवी, सेंजम और जोया ने भी गोल किए। इसके साथ ही भारत ने 2005 के बाद पहली बार एएफसी अंडर 17 महिला एशियन कप में अपनी पहली जीत और पहले गोल दर्ज किए। ये एएफसी अंडर 17 महिला एशियन कप में नॉकआउट चरण के लिए भारत का अब तक का पहला क्वालिफिकेशन था। ये पुरुषों की एएफसी अंडर 16 चैंपियनशिप 2018 के बाद किसी भी एशियन कप में नॉकआउट चरण में भारत की पहली

0: उन्होंने अपनी टीम के लिए एक तुरप के इक्के की तरह काम किया और टर्निंग पॉइंट दे दिया इस मैच को। क्या कहा है प्रतिका ने, आइए सुनते हैं।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, मैं दो गोल मारी हूँ, हम लोग बहुत अच्छा खेले और हम लोग को ये मैच जीतना ही था, तो हम लोग अपना बेस्ट दे रहे थे, सब लोग हम लोग बेस्ट दे रहे थे, इसलिए हम लोग बहुत अच्छा खेला और स्कोर किया। मैंने दो स्कोर किया, टोटल हम लोग का स्कोर 4 गोल है और बहुत अच्छा लग रहा है। मीटिंग रात को करते हैं ना आप लोग, मैंने रात को सोचा था कि मैं फर्स्ट गोल मारेगा और मैं फर्स्ट गोल मारा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि और गोल मारा जाए, इसलिए मैंने गोल मारा।
0: तो ये जिस तरह की यहाँ पर प्रतिका ने बात बोली कि मैं रात को सोच के सोई थी कि मुझे गोल करने हैं,
2: उन्होंने ये भी जैसा उन्होंने बोला कि उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया था कि पहला गोल वो ही करेगी और उसके बावजूद उन्होंने 2 गोल किए। और मैच खत्म होने से 5 मिनट पहले भारत अपने शानदार प्रदर्शन पर मोहर लगा दी जब प्रतिका ने अपना 2रा गोल पूरा करा, जिसको लेके वो काफी उत्साहित थी कि मैं तो 1 सोच के आई थी और मैंने 2 कर दिए।
0: और ये दोनों ही गोल जो है भारतीय टीम की जीत में बड़ा उन्होंने किरदार निभाया। चलिए अब सुनते हैं हम यहाँ पर भारतीय फुटबॉल टीम जो है उनके जो कोच हैं सुरिंदर सिंह, वो क्या कहते हैं इन अंडर 17 लड़कियों की परफॉर्मेंस पे, आइए सुने।
3: भारत ने पहली बार AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में नॉकआउट स्टेज में अपनी जगह बनाई है, और जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक उपलब्धि है हमारी टीम के लिए। और हमारी लड़कियों ने जिस तरह से इससे पहले प्री क्वालिफिकेशन राउंड में उज्बेकिस्तान की टीम को हराया था, उससे उनके डिटर्मिनेशन और जीत की जो उनमें लालसा थी उसको देखते हुए इस बार जो टीम ने प्रदर्शन किया है बहुत ही ऐतिहासिक है। ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ शुरुआती मैचों में हार के बावजूद भी लेबनान को 4-0 से हराने पर इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो उनके आत्मविश्वास और कोचेस का भरोसा उन अपने प्लेयरों पर होने की वजह से है, क्योंकि पहले 2 मैच हारने से अगर हम जो तीसरे मैच के लिए अपने मनोबल को ऊंचा नहीं बनाए रखते तो ये शायद करिश्मा नहीं कर पाती हमारी लड़कियां। पर अभी मैं देखता हूं कि हमारी लड़कियों में आत्मविश्वास की कमी नहीं है और यस उनमें जीतने की लालसा बढ़ रही है। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भी ये करिश्मा हमारी लड़कियां कर सकती हैं और चाइना को घर पर यस जो तैयारी हमने की हुई है उसको पराजित कर सकती हैं। क्वार्टर फाइनल में चीन जैसी मजबूत टीम तो है, पर हमारा जो आत्मविश्वास वही हमें एक दूसरे के साथ बनाए रखता है और हमारी टीम स्पिरिट को बरकरार रखता है, जिससे हमारे खिलाड़ियों में आप देख सकते हैं कि 2 मैच हारने के बावजूद भी वो तीसरा मैच जो लेबनान के साथ उन्होंने खेला है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। तैयारी तो हमने कर रखी है, जो भी टेक्निकल या टैक्टिकल जो भी टैक्टिकल स्ट्रेटेजीज हम बना लेते हैं। सो मैं पूरी कोचिंग स्टाफ टीम और टीम को बधाई देता हूं और बेस्ट विशेस हैं।
2: वहीं दिल्ली प्रीमियर लीग यानी DPL में आज दोपहर खेला गया मुकाबला CISF प्रोटेक्टर्स और गरवा हीरोज के बीच रोमांचक अंदाज में ड्रॉ पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने शानदार खेल दिखाया और आखिरी क्षण तक मुकाबला बेहद कांटे का रहा। वहीं अभी जारी मुकाबले में नोएडा सिटी तरुण संघ के खिलाफ 2-0 से आगे है।
0: तो ये थी जो खबरें फुटबॉल जगत से जुड़ी हुई। जैसे फुटबॉल के अंदर आज हमारे लिए जो कि फुटबॉल लवर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन है, तो खुशी का जो मूमेंट है ना अभिषेक, ये तो बना ही रहेगा क्योंकि इसके बाद एक और मूमेंट ऐसा है जो बस अभी आप सुनने वाले हैं।
4: Finishing with a 10, Sahil Jadhav of India in his first Final Four has made it onto the podium here in Shanghai. He will collect the bronze medal a little bit.
0: तो अभिषेक, ये मोमेंट था शंघाई में जो अभी आर्चरी के इवेंट चल रहे हैं उसका, और क्योंकि आज का दिन और भी खास है आर्चरी जगत के लिए क्योंकि आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है वर्ल्ड आर्चरी डे, और एक ऐसा दिन जो आर्चरी के खेल उसकी परंपरा और खिलाड़ियों के समर्पण को सम्मान देने के लिए समर्पित है। और आज का दिन और भी खास हो जाता है क्योंकि आज हमारे एक आर्चर ने एक मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल, जिसके बाद ये जो खुशी है ये दुगनी चौगनी हो गई है। आज के दिन भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि युवा तीरंदाज साहिल जाधव ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। चीन के शंघाई में आयोजित आर्चरी वर्ल्ड कप 2026 स्टेज 2 में साहिल जाधव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेंस इंडिविजुअल कंपाउंड इवेंट में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। 25 वर्षीय साहिल जाधव ने कांस्य पदक मुकाबले में डेनमार्क के अनुभवी तीरंदाज मार्टिन को 147-144 के स्कोर

से हराकर अपना पहला आर्चरी वर्ल्ड कप पदक जीता। मुकाबले की शुरुआत में साहिल पिछड़ गए थे, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करते हुए अगले सेटों में लगातार बेहतर निशाने लगाए और जीत दर्ज कर ली। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में साहिल ने ऑस्ट्रेलिया के विश्व चैंपियन निको वेनर को शूटआउट में हराकर बड़ा उलटफेर किया था। हालांकि सेमीफाइनल में उन्हें फ्रांस के मौजूदा विश्व चैंपियन के खिलाफ 147-145 से करीबी हार का सामना करना पड़ा। साहिल का एक कांस्य पदक कंपाउंड वर्ग में भारत का इकलौता पदक रहा। भारत को इस बार कई निराशाएं हाथ जरूर लगी, लेकिन अंत भला तो सब भला, एक मेडल जो यहां पर आया उससे फैंस की उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। ओजस की बात करें और कुशाल की बात करें तो उम्मीदों पर वो खड़े नहीं उतरे, जबकि भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम भी क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई। महिला वर्ग की यदि बात करें तो महिला वर्ग में भी भारत का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक तो नहीं रहा। पूर्व विश्व चैंपियन अदिति स्वामी और शीर्ष भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वैनम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उम्मीदें अभी बाकी हैं क्योंकि रिकर्व वर्ग में सिमरनजीत कौर और महिला व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचने पर अभी जो उम्मीद है वो लगातार बनी हुई है, जबकि भारतीय महिला रिकर्व टीम स्वर्ण पदक मुकाबले में चीन से भिड़ने वाली है। खबरों को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले लेंगे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। तो ये तो बात हुई थी आर्चरी की, और अब चलते हैं आईपीएल के मुकाबलों की जानकारी जानने के लिए अपने सहयोगी अभिषेक कपिल के पास।

0: आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को उसके ही घर में 8 विकेट से करारी शिकस्त दे दी। मुकाबला खेला गया अरुण जेटली स्टेडियम में और यहां दर्शकों ने देखा फिन एलन नाम का बल्लेबाजी तूफान। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 142 रन बनाए। इस स्कोर का बचाव आसान नहीं था, लेकिन दिल्ली को उम्मीद थी कि उसके गेंदबाज शुरुआती विकेट निकालकर मुकाबले में पकड़ बनाएंगे और शुरुआत कुछ वैसी ही रही। केकेआर के 31 रन पर 2 विकेट गिर गए। कप्तान अजिंक्य रहाणे रन आउट होकर लौटे, जबकि अंग कृष्ण रघुवंशी को कप्तान अक्षर पटेल ने जल्दी चलता कर दिया। लेकिन इसके बाद मैदान पर जो हुआ उसने दिल्ली के गेंदबाजों के होश उड़ा दिए। न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन ने सिर्फ 47 गेंदों में नाबाद 100 रन ठोक डाले। उनकी पारी में शामिल रहे 5 चौके और 10 गगनचुंबी छक्के। हर दिशा में बरसते शॉट्स ने मैच को पूरी तरह एक तरफा बना दिया। दूसरे छोर से कैमरून ग्रीन ने भी शानदार साथ निभाया और 33 रन बनाकर नाबाद लौटे। नतीजा, कोलकाता ने सिर्फ 14.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। इस मुकाबले में कोलकाता की गेंदबाजी महत्वपूर्ण रही, जिसको लेकर कैमरून ग्रीन ने कहा,
1: 100% ready to bowl 4 overs. I think just the makeup of our team, I think we got Anu, who has been exceptional for us, bowling 1 or 2 overs. So that means I only bowl 2 or 3 overs. Which has been a really big help, I think, having left arm all rounder to potentially bowl through the middle, and I can bowl in the power play and potentially the death, so or through the middle as well. So I think it's just the makeup of our team that we've got 6 guys that we can go to, and obviously myself and Anu are the all-rounders there, so we just help each other out and bowl our 4 overs. I think I've never felt any pressure from the guys in the team and the coaching staff, especially if haven't made any note of it, don't add any pressure.
0: इस धमाकेदार जीत के साथ केकेआर ने बाकी टीमों को साफ संदेश दे दिया है, अगर फिन एलन चल पड़े तो मुकाबला कुछ ही ओवरों में खत्म हो सकता है। ये कोलकाता के टूर्नामेंट में लगातार 4th जीत थी। ये तो बात हुई कल खेले गए मुकाबले की, अब बात करते हैं आज खेले जाने वाले मैच की।

0: आईपीएल में आज शाम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आमने सामने होंगी राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस। मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है क्योंकि दोनों टीमों के लिए ये मैच काफी अहम माना जा रहा है। राजस्थान रॉयल्स ने सीजन की शुरुआत लगातार 4 जीत के साथ शानदार अंदाज में की थी, लेकिन पिछले 5 मुकाबलों में टीम सिर्फ 2 जीत ही दर्ज कर पाई है, यानी टीम की लय थोड़ी बिगड़ी हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस लगातार 3 मैच जीतकर पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी। हालांकि टीम अभी भी टॉप 4 से बाहर है। आज सबसे ज्यादा नजरें रहेंगी युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर। पिछले सीजन इसी मैदान पर और इसी गुजरात टीम के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में तूफानी शतक जड़ दिया था। राजस्थान को उम्मीद होगी कि वैभव एक बार फिर वही करिश्मा दोहराएं। वहीं यशस्वी जायसवाल से भी तेज शुरुआत की उम्मीद होगी, लेकिन जयपुर में अब तक उनका बल्ला खामोश रहा है। गुजरात की ताकत उसकी तेज गेंदबाजी रही है। मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाड़ा पर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वे राजस्थान के आक्रामक बल्लेबाजी को जल्दी रोकें। रबाड़ा इस सीजन पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, जबकि सिराज की इकोनॉमी भी शानदार रही है। और आज की सबसे दिलचस्प भिड़ंत हो सकती है शुभमन गिल और जोफ्रा आर्चर के बीच। आंकड़े बताते हैं कि आर्चर ने गिल को कई बार परेशान किया है, ऐसे में ये मुकाबला मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। साथ ही सभी की निगाहें जोस बटलर पर भी रहेंगी, जो कई साल राजस्थान के लिए खेले और जयपुर की परिस्थितियों को अच्छी तरह जानते हैं। अगर मौजूदा फॉर्म और टीम संतुलन की बात करें तो गुजरात टाइटंस का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है, खासकर उनकी तेज गेंदबाजी और मजबूत मिडल ऑर्डर उन्हें बढ़त दिलाता है। वहीं राजस्थान पर अपने घरेलू मैदान पर दबाव भी रहेगा, तो देखना होगा कि आज जयपुर में कौन बाजी मारेगा।
1: बाजी कौन मारेगा इसमें तो अभी वक्त है, लेकिन जिन लोगों ने बाजी मार के अपने आप को अब तक पहले पायदान पर बना रखा है, दूसरे पायदान पर बना रखा है, उनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। तो इस वक्त जो सबसे नंबर 1 पे काबिज है टीम है एसआरएच, जिन्होंने अभी तक पॉइंट टेबल में 14 अंक लेकर अपने आप को नंबर 1 बना लिया है। सेकेंड नंबर पे आ चुकी है पंजाब किंग्स, क्योंकि उन्होंने कई मुकाबले जो है वो अब हार भी गए हैं, तो इस वक्त 13 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है। तीसरे नंबर पे है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिनके 12 अंक है और तीसरे पायदान पर बनी हुई है। चौथे पायदान पर है आरआर, जिनके 12 अंक हैं, और चौथे पायदान पर है जीटी की टीम है 12 अंकों के साथ पांचवें पायदान पर। यदि सबसे आखिरी की बात करें तो एलएसजी जो है वो बने हुए हैं नंबर 10th सबसे लास्ट में, और यहां पर अब जो मुकाबले हैं वो ज्यादातर जो टक्कर वाले होंगे अभिषेक, वो 5 पायदान तक के जितनी भी टीमें हैं उनके साथ ही होने हैं, और ये अब इस वक्त रोमांच के पड़ाव है आईपीएल में।
0: बिल्कुल कविता जी, जैसा कि हम देख सकते हैं हैदराबाद, पंजाब, बेंगलोर और राजस्थान ने खुद को टॉप 4 पे काबिज कर लिया है, और ये सिचुएशन वैसी आ गई है कि अब बहुत सारे मुकाबले हो गए हैं, तो अब सामने आने लगा है कि मजबूत टीम कौन सी है और कमजोर टीम कौन सी है, ये दिखने लगा है अब इस आईपीएल में।
1: जी बिल्कुल, यहाँ तो मजबूत और कमजोरी की बात सबके सामने है, लेकिन एक मुकाबला ऐसा भी है, एक चैंपियनशिप ऐसी भी है जहां पर भारत ने पूरा दबदबा बना रखा है, चाहे लड़कियों की बात करें चाहे लड़कों की बात करें। बालक बालिकाओं के मुकाबले खेले जा रहे हैं अंडर 17 अंडर 15 बॉक्सिंग की बात कर रही हूं मैं, अंडर एशियन अंडर 17 अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के युवा मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। अगर बात करें अंडर 17 की तो 5 जो बॉक्सर हैं हमारे वो सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के युवा जो बालक हैं उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 मुक्केबाजों को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया, और देश के लिए कम से कम 5 पदक जो है इस वक्त पक्के हो चुके हैं। और इसके अलावा यदि बात करें यहां पर हम अंडर 15 की, तो अंडर 15 में मैं आपको बता दूं कि जो बॉयज हैं उनके जो सेमीफाइनल मुकाबले हैं वो 12 मई को खेले जाने हैं, और अभी तक जो मेडल हो चुके हैं वो 17 मेडल पक्के हो चुके हैं अंडर 15 के, 13 लड़कों के हैं और इसके अलावा 14 जो हैं वो लड़कियों के हैं, तो ये टोटल जो पदक हैं ये पक्के हो चुके हैं अब तक। हमने बात की है, फिर भी ताज़ा जानकारी पाने के लिए सीधा आपको लिए चलते हैं वेन्यू पर जहां ये मुकाबले खेले जा रहे हैं। कोच जुड़े हैं हमारे साथ जितेंद्र राज सिंह, जो हमें बता रहे हैं इस वक्त की लेटेस्ट जानकारी।
2: अंडर 15 के आज हमारी लड़कियों की सेमीफाइनल बाउट चल रही हैं। अंडर 17 के लड़कियों की बाउट्स 11 तारीख को सेमीफाइनल हैं। हमारी 13 में से 12 लड़कियां सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं।
1: और अगर लड़कों की बात करें, बॉयज के मुकाबलों की बात करें, तो उसमें क्या कुछ नई जानकारी है?
2: बॉयज का भी कल क्वार्टर फाइनल बाउट्स थी, उनमें बॉयज ने भी कल काफी अच्छा खेला है। बॉयज में से भी 5 लड़के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुके हैं। इनके सेमीफाइनल मुकाबले 12 तारीख को होंगे।
1: इंडिया की परफॉर्मेंस देखें तो कितने मेडल जो हैं हमारे पक्के हो चुके हैं ओवरऑल, और इंडिया की जो सिचुएशन है क्या लग रहा है आपको कि कहां पर है, किस पायदान पर है अभी?
2: अंडर 17 में देखा जाए तो 12 मेडल हमारे लड़कियों के और 5 मेडल लड़कों के हम पक्के कर चुके हैं, 17 मेडल। और अगर अंडर 15 की बात करें तो 14 लड़कियों में और 13 लड़कियों और 13 लड़कों में हमारे मेडल्स पक्के हो चुके हैं, क्योंकि अंडर 15 की 15 लड़कियां थी और अंडर 15 बॉयज के भी 15 ही अच्छे थे, तो 14 और 13 टोटल 27 मेडल उनके पक्के हो गए हैं, और हमारे 12 और 5 17 मेडल अंडर 17 में पक्के हुए हैं।
1: कोच के नजरिए से कैसी परफॉर्मेंस है इन सभी बालक बालिकाएं हैं अंडर 15 और अंडर 17 में खेल रहे हैं, पहला पड़ाव है इंटरनेशनल लेवल का, कितने खुश हैं अभी तक?
2: बढ़िया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, और पिछले हम 4-5 साल से काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं हमारे जूनियर सब जूनियर लेवल पर। अगर आप देखें पिछले साल भी हमारे बच्चों ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, पिछले साल अगर जूनियर एशियन चैंपियनशिप की बात करें तो भी हमारी लड़कियों ने काफी अच्छे मेडल प्राप्त करे थे, और जो मेजर टूर्नामेंट जो यूथ एशियन गेम्स था उसमें हमारी लड़कियों ने 7 लड़कियां गई थी, तो 7 में से 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल आया था, तो जो काफी अच्छी परफॉर्मेंस आज तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है किसी भी गेम्स के में, तो बस उसी को कंटिन्यू करते हुए भी इस साल भी हम काफी अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे।
1: ये परफॉर्मेंस अच्छे आएंगे क्योंकि मुकाबले अब भी चल रहे हैं, और जल्दी से अब आपको लिए चलते हैं हम शूटिंग जगत में, जहां कजाकिस्तान के अल्माटी में चल रहे हैं ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन 2026 के मुकाबले। भारत की नीरू ने महिला ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाकर शानदार प्रदर्शन किया, हालांकि फाइनल मुकाबले में वो पदक हासिल नहीं कर पाई और 7वें स्थान पर रही। नीरू ने क्वालिफिकेशन राउंड में बेहतरीन शूटिंग करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, जिससे भारतीय दल की उम्मीदें बढ़ गई थी, लेकिन आज शाम खेले गए फाइनल में वो अपनी लय बरकरार नहीं रख पाई और प्रतियोगिता का समापन 7वें स्थान के साथ किया। वहीं पुरुष ट्रैप वर्ग में भारत को निराशा हाथ लगी क्योंकि कोई भी भारतीय शूटर फाइनल में जगह बनाने में सफल नहीं रहे। चलिए चलते हैं स्क्वैश की खबर के लिए अपने सहयोगी अभिषेक के पास।
0: PSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के वीर चोटरानी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। इंडियन ओपन के उप विजेता वीर ने पहले राउंड में अपने ही हमवतन और इंडियन ओपन चैंपियन अभय सिंह को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराया। मैच में एक समय वीर 1-2 से पीछे थे, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करते हुए आखिरी 2 गेम अपने नाम किए। अब दूसरे दौर में कल उनका सामना स्थानीय पसंदीदा और शीर्ष वरीयता प्राप्त मिस्र के मुस्तफा असल से हो सकता है। वहीं अन्य खिलाड़ियों की बात करें, सेंथिल कुमार और रमित टंडन दोनों इस प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं।
1: जी, तो अब क्योंकि इस वक्त अंडर 17 जो ट्रायल्स हैं इंडियन रेसलिंग के वो भी चल रहे थे, और अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि IG स्टेडियम दिल्ली में यहां पर आयोजित किए गए, उसकी विस्तृत जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी शाहिद आजमी के पास।
3: नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम की KD जाधव हाल में आयोजित अंडर 17 लड़कियों के चयन ट्रायल में देश की उभरती पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वियतनाम में होने वाली अंडर 17 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। सबसे खास बात यह रही कि हरियाणा की बेटियों का दबदबा देखने को मिला। 10 में से 6 भार वर्गों में हरियाणा की पहलवानों ने क्वालिफाई किया, जबकि राजस्थान और दिल्ली की 2-2 खिलाड़ियों ने भी एशियाई चैंपियनशिप का टिकट हासिल किया। अब बात उन खिलाड़ियों की जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व तो करने का गौरव हासिल किया। 40 किलोग्राम भार वर्ग में राजस्थान की पलक, 45 किलोग्राम में दीक्षा, 46 किलोग्राम में अनामिका, 49 किलोग्राम में निकिता, 53 किलोग्राम भार वर्ग में अक्षरा, 57 किलोग्राम भार वर्ग में साक्षी, 61 किलोग्राम में मान्या, 65 किलोग्राम में अंतरा, 69 किलोग्राम में तानिया, जबकि 73 किलोग्राम भार वर्ग में दिल्ली की गरिमा ने चैन ट्रायल जीतकर एशियाई चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। सबसे पहले बात 40 किलोग्राम भार वर्ग की, जहां राजस्थान की पलक ने हरियाणा की तानिया को हराकर चयन हासिल किया। जीत के बाद पलक ने कहा, मैं पहली बार विदेश जाकर भारत के लिए मेडल जीतना चाहती हूँ।
4: मेरा नाम पलक है, मैं राजस्थान की हूँ, मैं 40 किलो में और मेरा फाइनल मुकाबला बहुत ही अच्छा रहा।
5: मैंने देखा आपने जबरदस्त खेला, बताइए फाइनल कैसा रहा शुरू से?
4: स्टार्टिंग में तो मतलब थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा था, फिर बाद में सही।
5: आपने 2 कुश्तियाँ लड़ी, 1 बाई की, यानी 3 लड़नी थी 2 लड़ी, दोनों के बारे में बताइए।
4: महाराष्ट्र वाली तो मतलब थोड़ी टफ नहीं थी, हरियाणा वाली टफ थी, पर फिर भी अच्छी लड़ी तो नहीं थी।
5: फॉल कौन सी कुश्ती की आपने?
4: फॉल दोनों फॉल थी।
5: दोनों फॉल कैसे किया बताओ?
4: तो से नहीं पता।
5: एशियन चैंपियनशिप में जब जाएंगी तो वहाँ के लिए क्या आप सोच रही, क्योंकि आप तो क्वालिफाई कर चुकी, पहली बार विदेश जाएंगी, इससे पहले जा चुकी?
6: मैं पहली बार विदेश जाऊंगी तो बहुत अच्छा रहेगा और मैं इंडिया के लिए मेडल लाऊंगी।
5: कितना एक्साइटमेंट है?
6: बहुत ज्यादा।
5: वहाँ तो और एशिया के टॉप पहलवानों के, कैसे जीतेंगी?
6: जीत मतलब अच्छी प्रैक्टिस करूंगी तो फर्स्ट ईयर।
3: वही 43 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की दीक्षा ने महाराष्ट्र की धनश्री को मात दी। दीक्षा का कहना है, मेरा लक्ष्य ओलंपिक गोल्ड है और उसी सोच के साथ मैं लगातार मेहनत कर रही हूँ।
7: मेरा नाम दीक्षा है और मैं मांडूठी गाँव में रहती हूँ, सोनू अखाड़ा में प्रैक्टिस करती हूँ। वहाँ पे कोच है धर्मेंद्र कोच हो गए, अनुराग कोच हो गए, सुधीर पहलवान छोटे कोच, बहुत सारे कोच, ओमवीर कोच साहब, दादा सुबह शाम लेके जाते हैं, लाते हैं। आज मेरी इस मैच में 2 कुश्तियाँ हुई हैं, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल। ट्रेलो में फाइनल, सेमीफाइनल तो आसानी से हो गई थी, फाइनल में स्कोर थोड़ा खींच के पूरी कुश्ती चली थी
5: जी। मैंने देखा इसमें कुछ ऑब्जेक्शन भी हुआ था, उसके बाद आपने फिर चढ़ाई की और जीत हासिल की, बताइए फाइनल कैसा रहा?
7: मतलब महाराष्ट्र वालों ने ऑब्जेक्शन फेंका था कि एक पॉइंट उसका नियम आ रहा है पॉइंट के ऊपर, तो ऑब्जेक्शन लॉस हो गया था और फिर अचानक से अटैक बढ़ा था।
5: अगर बताएं क्या किस तरह से तैयारी करके आई थी फाइनल के लिए?
7: पूरी अच्छे से तैयारी

0: यही सोच के आए थे कि जीत के ही जाना यहाँ से। तो
1: जो सोचा था हुआ या अभी और बेहतर कर सकती थी?
0: और बेहतर कर सकती थी पर हुआ नहीं उतना।
1: क्या सीखा आज?
0: कि कभी भी मतलब थोड़ा भी ढीला नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ढीला होते ही बहुत पॉइंट चले जाते हैं।
1: जी, अब एशियन चैंपियनशिप में जाएंगे उसके बारे में क्या सोचा?
0: एशियन में भी गोल्ड लाने की सोचेंगे। पूरी प्रैक्टिस करेंगे, जितना हो सकता है उतना करेंगे।
1: अपने बारे में बताइए, पढ़ाई क्या करती है और क्या क्या करती है?
0: मैं 11th क्लास में हो गई हूँ, प्राइवेट स्कूल में जाती हूँ बहादुरगढ़ में BSM में, वहीं से पढ़ाई भी और कुश्ती दोनों करती हूँ।
1: फैमिली में और कोई है पहलवान या कैसे कुश्ती में आना हुआ?
0: दादाजी पहलवान है हमारे, ताऊ जी इस ताऊ दादा लाजपत राय पहलवानी है, यही करवाते हैं सारी। अगर दादाजी करते हैं मतलब सारा खाने पीने का दादी करती है, सभी का सही हो गया, घर वालों का कोच होगा।
1: अभी तो आपकी बहुत कम उम्र है, कहाँ तक जाने के बारे में सोचा, क्या प्लान आगे फ्यूचर के?
0: ओलंपिक में तो गोल्ड लाना है यही सोच के चल रहे हैं प्रैक्टिस।
2: 46 किलोग्राम भार वर्ग में राजस्थान की अनामिका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हरियाणा की तानिया को हराकर क्वालिफाई किया। अनामिका ने कहा कि उनका पूरा फोकस अब एशियन चैंपियनशिप में भारत के लिए पदक जीतने पर है।
3: मेरा नाम अनामिका है, मैं राजस्थान से हूँ और ये मैं 46 किलो वेट में फर्स्ट आई हूँ। ये मेरा पहला बार का टूर है।
1: पहली बार विदेश जाएंगी एशियन चैंपियनशिप खेलने के लिए अंडर 17 में, बताइए फाइनल मैच कैसा रहा?
3: बहुत जिद्दारी करी कोच भी और दी और सब सबका सपोर्ट था, इसीलिए मैं जीत गई।
1: कैसे जीती, कैसे हराया?
3: अंदर वाला अपने कॉन्फिडेंस से।
1: और कितनी कुश्तियाँ आपने लड़ी आज?
3: मैंने आज 3 कुश्तियाँ लड़ी हैं।
1: तीनों कुश्ती के बारे में बताइए।
3: तीनों ही बहुत ज्यादा टक्कर वाली कुश्तियाँ थी, बस मैंने ये सोचा था, मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है और इस बार मुझे जीतना ही है।
1: तीनों में टफ कौन सी?
3: ये फाइनल ही थोड़ी टफ थी और तो मतलब ठीक हुई है।
1: आगे के लिए क्या सोच रही है, फ्यूचर के लिए क्या प्लान है?
3: और मेहनत करूंगी और आगे और भी मेडल लेके आऊंगी।
2: 49 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की निकिता ने दिल्ली की दीपांशी को शिकस्त देकर क्वालिफाई किया। निकिता कहती हैं, पहली बार विदेश जाकर देश के लिए मेडल जीतना मेरा सपना है।
4: मेरा नाम निकिता है, मैं 49 kg में थी हरियाणा से।
1: फाइनल कैसा रहा बताइए?
4: फाइनल दिल्ली के साथ था, मतलब टफ था, ठीक है, लेकिन 6-1 से मैं जीत।
1: कितनी कुश्तियाँ आज लड़ी?
4: 2 ही थी।
1: दोनों में टफ कौन सी थी?
4: फाइनल।
1: पूछूं आप रेसलिंग में कब से आई हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइए।
4: पिछले 5 साल से मैं रेसलिंग कर रही हूँ।
1: कौन कौन से कॉम्पिटिशन खेले इससे पहले?
4: इससे पहले एक स्कूल नेशनल खेला और स्टेट लेवल पे मैंने 4-5 कॉम्पिटिशन खेले।
1: पहली बार विदेश जाएंगी, कितना एक्साइटमेंट?
4: काफी ज्यादा खुशी है।
1: एशियन चैंपियनशिप के लिए क्या प्लान है? अब तो क्वालिफाई कर लिया है अंडर 17।
4: अभी ये की प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है कॉम्पिटिशन के लिए और अपना बेस्ट देना है।
1: कुश्ती क्यों लड़ती है, क्यों कुश्ती में आएंगे?
4: कुश्ती यही था कि मतलब मेरा बड़ा भाई भी कुश्ती करता है, ताऊ का लड़का, उसको देख के ही मेरे को कुश्ती करने का वो हुआ था।
1: मजा आ रहा कुश्ती कर?
4: जी।
1: कैरियर बनाना है?
4: जी।
1: कहाँ तक जाना?
4: ओलंपिक्स तक, ओलंपिक मेडलिस्ट।
2: इसी तरह 53 किलोग्राम भार वर्ग में दिल्ली की अक्षरा ने हरियाणा की निशा को हराकर एशियाई चैंपियनशिप में जगह बनाई। पूजा ढांडा से प्रेरित होकर कुश्ती शुरू करने वाली अक्षरा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन करना चाहती हैं।
5: मेरा नाम अक्षरा है, मैं दिल्ली से खेलती हूँ। मेरी कुश्ती मतलब कि अच्छी तो नहीं, ठीक थी।
1: कितनी कुश्तियाँ आज लड़ी आपने?
5: 2।
1: दोनों में सबसे अच्छी कौन सी थी?
5: सर अच्छी तो नहीं थी, बस ठीक थी, नॉर्मल।
1: क्यों अच्छी नहीं थी वही बताइए।
5: क्योंकि मैंने बहुत कमी की थी अपनी बाउट में, इसलिए मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि मैंने अच्छी की, कमियां बहुत थी।
1: मुझे क्या आपको लग रही है?
5: कारण सर, कारण तो कुछ भी हो सकता है ना, बॉडी नहीं चली या मैं थोड़ी सी नर्वस थी बस।
2: वही भारतीय महिला कुश्ती टीम के कोच वीरेंद्र दहिया ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भरोसा जताते हुए कहा कि यह युवा पहलवान एशियाई चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर देश के लिए पदक लेकर आएंगी।
6: सारी नई लड़कियां थी, 2 लड़कियां तो अंडर 15 की सिलेक्ट हुई है। और आपने देखा होगा पहले क्या होता था कि हरियाणा की लड़कियां सिलेक्ट, अब हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, कितनी स्टेटों की लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है या फाइनल में पहुंची है। तो कुश्ती के लिए जो पिछला जैसे 22 में जो ये इशू हुआ उसके बाद नई लड़कियों ने आना बंद कर दिया था। खुद मेरा लड़कियों का सेंटर है, 50% लड़कियां कम हो गई थी, लेकिन आज की नई प्योध को देख के अच्छा लगा। और 1-2 साल का जो गैप चलेगा भी यार हमारा बुरा समय क्योंकि नई लड़कियां नहीं आई थी, लेकिन आज की लड़कियों को देख के अच्छा लगा। 2-3 साल के बाद उस गैप को भर देंगे और आने वाला हमारा लड़कियों का भविष्य बढ़िया।
1: क्वालिटी कैसी देखी कुश्ती की आज?
6: बढ़िया, कई लड़कियां तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी।
1: कुछ लड़कियों ने प्रभावित किया?
6: छोटी लड़कियों तो कई वजनों में ऐसी लड़ी थी जो लड़कों से ही बढ़ के टेक्निकल, और जो बड़ी लड़कियां थी छोटी उम्र की होते हुए जो उन्होंने अपनी टेक्निक पर पावर पर काम किया है, अच्छा है, हमारा भविष्य बढ़िया है।
1: क्या ये लड़कियां आपको लग रहा है एशियन में जाएंगी, मेडल जीतेंगी, इतनी क्वालिटी?
6: 2 साल

0: के बाद, ये तो 17 साल की, यहाँ 16 साल की, 15 साल की, 2-3 साल के बाद 100% हमारी सीनियर टीम में जगह बनाती हुई दिखेंगे।
1: ये अंडर 17 में जब जाएंगी तो वहाँ क्या इनकी स्थिति होने वाली है?
0: 100% ये चैंपियन हो गए।
1: कितने मेडल आएंगे?
0: आप हर बार पूछ ले तो मैं ये पूछता
1: हूँ, आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही होती है।
0: ये मैं ये बताता हूँ, ये एशिया में चैंपियन हो गए वाली टीम है।
1: गोल्ड जीत के आएंगे?
0: बिल्कुल श्योर, ये चैंपियनशिप फर्स्ट लेके आएंगे
1: जी। अगर ओवरऑल अंडर 23 देखें, अंडर 17 दोनों जाएंगी, दोनों से क्या संभावना?
0: 23 में थोड़ा टफ कंपटीशन होता था सीनियर में, क्योंकि DPR वगैरह आ जाती है, जापान बेस्ट स्क्वाड भेजता है, लेकिन ये हमारी लड़कियां ठीक रहेंगी और ये चैंपियन हो जाएंगी पक्की।
2: आपको बता दें अंडर 17 और अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 23 से 31 मई तक वियतनाम में आयोजित की जाएगी। नई दिल्ली के KD जाधव हॉल से कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ आकाशवाणी के लिए मैं मोहम्मद शाहिद आजमी।
3: बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद आजमी आपका इस विस्तृत जानकारी के लिए। और इसमें आपने जिन खिलाड़ियों के साथ बात की उन सभी की जो खुशी है ना अभिषेक, वो महसूस हम कर पा रहे थे, क्योंकि सभी खिलाड़ियों को जाना था ओलंपिक मेडल के लिए।
4: काफी युवा थे सब और उनकी खुशी एकदम थी कि ओलंपिक ही सपना है।
3: और अब क्योंकि जाते जाते समय नहीं बचा है, लेकिन एक खबर चेस जगत से भी, इस वक्त सुपर रैपिड्स एंड ब्लिट्स के जो राउंड खेले जा रहे हैं पोलैंड के अंदर, जहां पर अभी आज के 4 राउंड्स में डी गुकेश 1 ड्रॉ के साथ 3 लॉस के साथ 8th पोजीशन पे पहुंच गए हैं। और ये जो मैचेस हैं अभी भी बाकी हैं, और देखते हैं कि इसके बाद अब किस तरह का जो रिजल्ट है वो हम सभी के सामने होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में अपने सहयोगी अभिषेक कपिल और प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
4: नमस्कार।
5: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
6: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल RN रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रमाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
7: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
6: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव MA Baby ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन

0: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल। आज के इस अंक में कैबिनेट निर्णयों के संदर्भ में आयोजित संवाददाता सम्मेलन, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्रोबेटिक डांसेस एंड डांस स्पोर्ट्स के संदर्भ में आयोजित संवाददाता सम्मेलन और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा स्वरांजलि श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम। 5 मई मंगलवार को कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय मीडिया सेंटर सभागार में किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया,
1: जिस तरह से श्रद्धेय अटल जी ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का स्वर्ण चतुर्भुज का दिया था, पूरा देश के लिए एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी था, वैसा ही रेवोल्यूशन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे के क्षेत्र में ला रहे हैं। ये जो स्वर्ण चतुर्भुज बनता है दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता प्लस दिल्ली से गुवाहाटी तक जो हमारी हाई डेंसिटी लाइन्स है, इन सब हाई डेंसिटी लाइन्स को एक एक करके 4 लाइनिंग कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हमें रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को, रेलवे की कैपेसिटी को इतना सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर देना है कि हम हजारों गाड़ियां एक्स्ट्रा चला सके। वेटिंग लिस्ट का फिनोमिनन है, जब भी समर या छठ या दिवाली आती है बहुत बड़ा रश आता है, जब भी न्यू ईयर आता है रश आता है, जब भी होली आती है रश आता है, बहुत सारी गाड़ियां एक्स्ट्रा चलाने की जरूरत है। और गाड़ियां एक्स्ट्रा चलाने के लिए हमें कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। कैपेसिटी हम नए ट्रैक में भी बनाते हैं और जो एग्जिस्टिंग ट्रैक है उसकी मल्टी ट्रैकिंग करके बढ़ाते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं स्वर्ण चतुर्भुज के प्रोजेक्ट्स में आ रहे हैं, दिल्ली से मुंबई तक का, इसमें मथुरा से लेके नागदा तक का, नागदा से लेके बड़ौदा और बड़ौदा से आगे लेके मुंबई तक। तो इस तरह से कंप्लीट 4 लाइनिंग हो जाएगा दिल्ली से लेके मुंबई तक का। डिटेल्स हैं यहाँ पर, मथुरा सवाई माधोपुर फिर कोटा फिर नागदा। ये जो प्रोजेक्ट है नागदा से लेके बड़ौदा तक, इसका काम ऑलरेडी चल रहा है, कुछ समय पहले कैबिनेट में अप्रूव हुआ था। बड़ौदा से लेके भरूच तक, भरूच से भी और आगे विरार तक, उसमें भी कहीं पे DPR बन रही है, कहीं पे सर्वे कम्प्लीट होने को आया है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है कि देश के लिए एक लाइफ लाइन जो चाहिए हमें रेलवे की कैपेसिटी से, वो लाइफ लाइन इससे पूरी स्ट्रेंथन होती है। ये प्रोजेक्ट 568 किलोमीटर का है, 16,400 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट जाएगा, कई जिले जुड़ेंगे, उज्जैन रतलाम मंदसौर राजस्थान के झालावाड़ कोटा बूंदी टोंक सवाई माधोपुर करौली भरतपुर और उत्तर प्रदेश का मथुरा, ये सारे जिले इससे बेनिफिट इसमें होगा। 11 मेगा ब्रिजेस इसमें बनेंगे, 131 मेजर ब्रिजेस बनेंगे और 1000 से ज्यादा माइनर ब्रिजेस इस प्रोजेक्ट में बनेंगे। 2 टनल्स बनेंगी, 9 फ्लाईओवर्स, 8 जगह रेल ओवर रेल, रेल का फ्लाईओवर जिससे कि सरफेस पे क्रॉसिंग नहीं करनी पड़े, 8 जगह पे रेल फ्लाईओवर, टोटल 1265 किलोमीटर का ट्रैक इसमें लगेगा नया। बहुत बड़े बड़े हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, उन सबको बेनिफिट मिलेगा। रेलवे जितनी ज्यादा ट्रैफिक को लेती है

0: हाईवे से ट्रैफिक जब रेलवे में ट्रांसफर होता है, सीधा बेनिफिट एनवायरनमेंट पे आता है, क्योंकि रेलवे इज 95% मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली कंपेयर टू हाईवे। इस प्रोजेक्ट से 135 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सेव होती है, विच इज इक्वलेंट टू प्लांटिंग 5 करोड़ ट्रीज। मतलब 5 करोड़ पेड़ लगाते अगर हम, उससे जितना CO2 बचता, उतना CO2 इस एक प्रोजेक्ट से बचेगा। 3 करोड़ 86 लाख ह्यूमन डेज इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सेकेंड है प्रोजेक्ट गुंतकल से वाड़ी। इस वाले में वाड़ी कर्नाटक में है, कुछ हिस्सा तेलंगाना में, बाकी आंध्रा में, गुंटकल तक। बेसिकली इसका भी 4 लाइनिंग अप्रूव हुआ है, ये इसका डिटेल है। ऊपर दौंड पुणे से आता है और शोलापुर गुलबर्गा वाड़ी, इसका सर्वे चल रहा है। जितना स्वर्ण चतुर्भुज अगर आप कल्पना करें, श्रद्धा अटल जी ने जो हाईवे में काम किया था, वैसा ही काम आज रेलवे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 4 लाइनिंग ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, उसमें ऐड किया दिल्ली से गुवाहाटी वाली लाइन, हाई डेंसिटी रूट है नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी करने के लिए, दोनों डायगोनल्स नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्वाड्रिलेटरल प्लस डायगोनल्स 6 हो गए, और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने का दिल्ली से गुवाहाटी 7वां। इन 7 जो हाई डेंसिटी नेटवर्क्स के रूट्स हैं, इन सब को कनेक्ट करने का 4 लाइनिंग का काम इसमें हाथ में लिया है।
1: 6 मई बुधवार को दिल्ली में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्रोबेटिक डांसेस एंड डांस स्पोर्ट्स द्वारा नेशनल फेडरेशन ऑफ एक्रोबेटिक्स एंड डांस स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया के सहयोग से WFADS एशियन चैंपियनशिप कप 2026 के संदर्भ में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में संस्था की अध्यक्ष जसमीत के शान ने आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में बताया,
2: एक्रोबैटिक रॉक एंड रोल डांस फिटनेस और एजिलिटी की गेम है। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को इसलिए करते हैं बिकॉज जो एक्रो फिगर्स हैं, दे आर स्पोर्ट्स क्वालिफाइड स्पिरिट्स, एंड जो डांसिंग पार्ट है इसका, दैट मेक्स दिस स्पोर्ट वेरी फन लविंग। इसमें पूरा जो स्टेप्स हैं वो बेस्ड है बेसिक के ऊपर, विच इज किक स्टेप किक बॉल चेंज। सो अगर ये चीज समझ आ, दैट्स द पावर ऑफ अ स्पोर्ट, कि दो चीजों के साथ एक स्पोर्ट खेल सकते हो विद दैट एक्रोबैटिक फॉर्मेट। 4 से 7 वी आर डूइंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम विद 7 स्टेट्स एंड 7 कंट्रीज के एथलीट्स लर्निंग टुगेदर फ्रॉम वर्ल्ड चैंपियंस। ये हमारा एशियन चैंपियनशिप होगा जहाँ ये सारी कंट्रीज, 7 स्टेट्स 7 कंट्रीज, दे ऑल कम्पीट टुगेदर।
1: और आप हैं उमी सेने, वाइस प्रेसिडेंट वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्रोबेटिक डांसेस एंड डांस स्पोर्ट्स।
3: वी ऑर्गेनाइजिंग अ कंपटीशन व्हिच अलाउज अस नॉट ओनली टू शोकेस द टैलेंट नेशनली बट इन द सब रीजन, बट आल्सो गेटिंग द सब रीजन टू नो टुगेदर। यू नो, इन स्पोर्ट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन इफ यू डू नॉट हैव द मोटिवेशन ऑन व्हाट इज टुमारो, व्हाट इज नेक्स्ट। यू नो, यू हैव टू हैव एन ऑब्जेक्टिव एंड द स्पोर्ट्स कंपटीशन इज व्हाट गिव्स यू द ऑब्जेक्टिव। Today you are your town champion, tomorrow you're your region champion, the day after your state, then you're national, then you're going international. It gives a path that is clear on people who are inspired, people who find that they have talent and who see by the results the talent they're having to go further. And you know, there is no limit for sports. Here in India, we have really a great potential. You have always loved music and dance. Now the only thing is we're adding sport to it. It's going to be like if you had cricket and Bollywood together, and that's acrobatic rock and roll. So everybody's gonna like.
1: 30 अप्रैल गुरुवार को भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में साप्ताहिक श्रृंखला स्वरांजलि के अंतर्गत आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक वायलिन वादन हेतु विद्वान VSK चक्रपाणी और उस्ताद जौहर अली को आमंत्रित किया गया था। प्रस्तुत है इस आयोजन में सांगीतिक प्रस्तुतिकरण की एक झलक।

0: इसी के साथ चहल पहल का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चहल पहल। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 6:20 होने को है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
2: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य प्रथमः भाजपा मुख्यमंत्री संजातः। तेन सह पञ्चान्यैः मंत्रिभिः अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम्। तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे 20+% विधायकानां समर्थनं वर्तते। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणेन अशेषे हि देशे विवादानां सौहार्दपूर्ण रीत्या निस्तारणार्थं राष्ट्रीय लोक न्यायालयस्य आयोजनं विहितम्। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं त्रिनिदाद एंड टोबेको देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह मेलनं साधितवान्। अपि च क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य जयपुर नगरे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलेन सह क्रीडिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य नूतन मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिम बंगाल राज्ये प्रथमं तावत् भाजपा दलस्य प्रशासनं संघटितं जातम्। अवधेयं यत् भाजपा दलं विधानसभा निर्वाचनेषु ऐतिहासिकं जयं समर्ज्य तृणमूल कांग्रेस दलस्य 15-वर्षात्मकस्य शासनस्य अन्तं कृतवत्। कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले राज्यपालः आर एन रविः श्री शुभेंदु अधिकारिणं पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। तेन सह पञ्चान्यैः मंत्रिभिः अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम्।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
2: तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे 20+% विधायकानां समर्थनं वर्तते। 34-200 सदस्यानां विधानसभायां बहुमताय 18-100 विधायकाः आवश्यकाः आसन्। चेन्नई नगरे वार्ताहरैः सह भाषमाणः टीवीके दलस्य नेता अधव अर्जुनः अवदत् यत् वीसीके तथैव इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इत्युभाभ्यां दलाभ्यां तस्मै पक्षाश्रयं विना समर्थनं प्रदत्तम्। अधुना निर्वाचने 88% आसनानि जित्वा टीवीके सर्वबृहत्तम दलत्वेन उद्भूतम्। यद्यपि दलनेता सी जी सेफ विजयः द्वयोः क्षेत्रयोः विजयी जातः, अतः तेन एकं स्थानं परित्यक्तं भविष्यति, येन दलस्य संख्या 70+100 भविष्यति। तथापि कांग्रेस दलस्य 5 सीपीआई सीपीआईएम वीसीके तथा आईयूएमएल इत्येतेषां प्रत्येकं 2 विधायकौ च मिलित्वा सहायक दलानां कुलसंख्या 13 वर्तते, येन बहुमतस्य मार्गः प्रशस्तो जातः। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणम् अद्य संपूर्ण देशे ऐषमः द्वितीय राष्ट्रीय लोक न्यायालयस्य आयोजनं विदधाति। प्राधिकरणस्य सदस्य सचिवः संजीव पाण्डेयः आकाशवाणीं विज्ञापयत् यत् लोक न्यायालये सहमतेः योग्येषु आपराधिक प्रकरणेषु वादश्रवणं विधीयते। अस्य आयोजनस्य उद्देश्यं न्यायालयेषु लंबित प्रकरणानां सहमत्यानुसारं निस्तारणम् इति वर्तते। श्रीपाण्डेयः अवोचत् यत् 23-2000 25-2000 यावत् 12 राष्ट्रीय लोक न्यायालयानां आयोजनं विधाय 26 कोटि प्रकरणानां समाधानं अभवत्।
4: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
2: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। विदेशमंत्री सुब्रमण्यम जयशंकरः भारत त्रिनिदाद टोबैगो देशानां मिथः पारंपरिक संबंधानां प्रशंसाम् अकरोत्। त्रिनिदाद टोबैगो इत्यस्य विदेश तथा कैरिकॉम प्रकरणानां मंत्रालयस्य समारोहे डॉक्टर जयशंकरेण द्वयोः देशयोः प्रगाढ़ सांस्कृतिक संबंधानां अथ ऐतिहासिकतायाः उल्लेखं कृतम्। भारतस्य त्रिनिदाद टोबैगो अमुना सह परंपरागत रूपेण मैत्रीपूर्णाः संबंधाः वर्तन्ते। उभयोः देशयोः जनाः वेशभूषां, क्रीडां, आहारव्यवहारं च समेत्य परम्पराः यावत् नैकेषु विषयेषु साम्यं संददते। डॉक्टर जयशंकरेण प्रधानमन्त्रिणा कमलाप्रसाद विशेषरवर्येण सह मेलनं विधाय द्विपक्षीयसहयोगम् इतोपि सुदृढीकर्तुं चर्चा कृता। यात्रावधौ पर्यटनं, विदेश कैरिकॉम मन्त्रालयभवनस्य सौरोर्जा संचालनं, विविध परियोजनाः अथ च आयुर्वेद केन्द्रस्य स्थापनां समेत्य नैकेषु विषयेषु सहमतिः जाता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः कर्णाटकस्य बेंगलुरुनगरे आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य संस्थानस्य पञ्चचत्वारिंशत्तमीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य आयोजयिष्यमाणे समारोहे सहभागितां करिष्यति। श्रीमोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर इत्यत्र नवनिर्मितं ध्यानमन्दिरमपि उद्घाटयिष्यति। ततः परं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैदराबादनगरे प्रायः 9,500 कोटितोप्यधिकरूप्यकाणां अनेकासां विकासपरियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तत्र हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां राष्ट्रियराजमार्गस्य चतुःभागपरस्य निर्माणस्य आधारशिलामपि स्थापयिष्यति। तत्रैव प्रधानमंत्री वारंगल स्थले पीएम मित्रा पार्क इत्येतस्य उद्यानस्य उद्घाटनं करिष्यति। सममेव श्रीमोदी हैदराबाद अत्याधुनिकं कर्करोगपरं चिकित्सालयमपि लोकार्पयिष्यति। अद्य गुरुदेवस्य रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य 65th जयन्ती वर्तते। दिनमिदं उपलक्ष्य शान्तिनिकेतनं, विश्वभारती विश्वविद्यालयं अथ बांग्लादेशं समेत्य जगतः अनेकेषु स्थलेषु सांस्कृतिक कार्यक्रमाः समायोजिताः। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमितशाहः अथ रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः पोचिशे बोईशाख इत्येतस्य अवसरे गुरुदेवाय श्रद्धांजलिं समर्पितवन्तः। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन नियामक निर्देशानां तथा च केवाईसी मानकानां

0: उल्लङ्घनम् उद्दिश्य हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेंस सहैव यस बैंक इत्यनयोः उपरि मौद्रिक दण्डः आरोपितः। पृथक पृथक वक्तव्येषु भारतीय रिजर्व बैंकेन सूचितं यत् तेन हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेंस इत्यस्योपरि 1.80 लक्ष रूप्यकाणां दण्डः प्रस्थापितः। अपरत्र यस बैंक इत्यस्योपरि 1.80 लक्ष रूप्यकाणां दण्डः आरोपितः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन आगामी 5 दिवसेषु केरलम राज्यस्य विविध जनपदेषु विद्युत्पातेन प्रचंड वायुना च सह अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विभागेन अद्य राज्यस्य 9 जनपदेषु पीतवर्णीया संचेतना अपि प्रसारिता। श्वः अपि संचेतना तावत् 7 जनपदेषु यथावस्थं कार्यान्विता भविष्यति। प्रतिकूल वातावरणस्य कारणात् मत्स्याजीविभ्यः अद्य केरल लक्षद्वीपतटेषु गमन परिहारार्थं परामर्शः प्रदत्तः। यद्यपि कर्णाटकतटेषु मत्स्यग्रहणार्थं तादृशः कश्चन प्रतिबन्धः एतावता नैव उपस्थापितः। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलेन सह क्रीडिष्यति। भारतीय समयानुसारेण इयं स्पर्धा तावत् सायं 7:30 वादने जयपुर नगरे आरप्स्यते। अवधेयं यत् अंकतालिकायां राजस्थान दलं चतुर्थे गुजरात दलं च पंचमे स्थाने स्तः। इति वार्ताः।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम संसार लेकर के। और बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, आज शनिवार है और आज के दिन आप सुनते हैं लोक संगीत पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। लेकिन उससे पहले बहन भाइयों, आपको बताना चाहेंगे भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में। नीलम बहन, हमारे जो श्रमिक भाई बहन होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और तब जा करके वो अपना घर चला पाते हैं, अपने रोज़मर्रा के खर्चे पूरे कर पाते हैं। लेकिन हर इंसान के शरीर में ताकत एक समय तक रहती है और एक समय वो भी आता है कि जब शरीर में ताकत नहीं रहती, काम वो कर नहीं पाते, लेकिन जो खर्चे होते हैं रोज़मर्रा के वो तो होते ही होते हैं। ऐसे में उनको ज़रूरत होती है सहारे की, मदद की, कि कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसके ज़रिए उनको कुछ पैसा मिलता रहे जब वो काम ना कर रहे हों तब, ताकि उनके जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो पूरी होती रहें। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार एक बहुत ही अच्छी योजना चला रही है जिसका नाम है अटल पेंशन योजना।
1: बिल्कुल शशि भाई, अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन प्रदान करना है। ये योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के किसी भी बचत खाता धारक के लिए खुली है जो आयकर दाता नहीं है। पात्र के योगदान के आधार पर 1000 से 5000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान की जाती है।
0: बिल्कुल नीलम बहन, तो एक बार फिर से अपने बहन भाइयों को बता दें कि अटल पेंशन योजना के लिए जो पात्रता है वो है 18 से 40 वर्ष की आयु, यानी कि इसके बीच अगर आपकी आयु है तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके पास एक बचत खाता होना चाहिए और आप आयकर दाता नहीं होने चाहिए। तो अगर ये सब पात्रता आप पूरी करते हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। और बहन भाइयों, इस योजना की सबसे बड़ी खासियत ये है, अगर हम पारिवारिक लाभ की बात

0: बात रही अटल पेंशन योजना की, और आइए अब शुरुआत करते हैं आज के फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार की। हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो ग्राम संसार, शशि बाबू को नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से।
0: डॉक्टर साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: विनोद कुमार को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: रामेश्वर जी।
0: जी,
1: पोती है सुमेरा।
0: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
2: राम राम साहब।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: हवलदार जय प्रकाश, ग्राम पाचौथा बुलंदशहर से बोल रहे हैं साहब।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: विनोद कुमार को सुनवा दीजिए साहब। नाम नोट कर लो। करण, खुशी, नंदनी, राधिका, प्रतिज्ञा। राम राम साहब।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
3: मैं चंद्रपाल जी अखंड बोल रहा, मुरादनगर नबीपुर से जी।
0: चंद्रपाल जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: विनोद कुमार को सुनवा दो जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: और दो तीन नाम है जी।
0: हाँ बोल दीजिए।
3: खुशी जाखड़ और वंशी जाखड़ और शिव कुमार गुड्डू।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
4: हेलो ग्राम संसार जी।
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मैं जीडी राणा भगत सिंह पार्क से बोल रहा हूँ साहब।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: विनोद कुमार जी को सुनवा दो जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: सब कुछ नाम है ललित जी, और मेरे बड़े बेटे का नाम है आशु राणा, बहू का नाम है उर्वशी राणा, और पोते का नाम है जतिन राणा, छोटे बेटे का नाम है रवि राणा, बहू का नाम है राखी राणा, और एक लड़की आई हुई है स्वार्थी राणा, और मेरे पोते का नाम है जीवा राणा।
0: हेलो ग्राम संसार।
5: हेलो ग्राम संसार, शशि भाई नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: मैं जी गांव दोंगड़ा ही जिला महेंद्र हरियाणा से पंडित राधाराम पटवारी बोल रहा हूँ जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: विनोद कुमार जी को।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
6: हेलो शशि भैया नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
6: गांव चौधरी वास से राजू अग्रवाल।
0: राजू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: आज विनोद कुमार को सुना देना जी, और केशव दक्ष तरणदास।
0: हेलो ग्राम संसार।
7: राम राम जी।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
7: मैं सोनू कौन ढोल जिला महेंद्र हरियाणा से बोल रहा हूँ जी।
0: सोनू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: आज विनोद कुमार को।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
8: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
8: मैं हरि सिंह सैनी, पसवा नगला, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश, यूपी से बोल रहा हूँ।
0: सैनी जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
8: विनोद कुमार को सुनवा देना, और कुछ नाम है देवचंद, राकेश, मुकेश, बले डॉक्टर है, पोती पोता कुछ, नीतीश, हेमपाल, ललित, चंदन, पुष्पंदर, जीतू, भूमेश, छवि, निशा, कंचन, और मेरा भांजा गोविंद, मनोज, हरिचंद, और रिश्तेदार है संजीव और ज्योति।
0: हेलो ग्राम संसार।
9: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
9: मैं गांव पुनियाद से विनोद बोल रहा हूँ जी।
0: किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
9: विनोद कुमार की सुना दीजिए जी। बच्चों के नाम जी, साहिल, रोहित, कविता, ममता, राम राम।
0: राम राम जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर विनोद कुमार से ये उपदेश।
10: हाँ।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो जी, राजस्थान से बोल रहे हैं, अलवर जिले से, जगनगिरी।
0: कार्यक्रम में स्वागत है। आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: करणपाल जी को सुनवा दीजिए।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो जी, नमस्कार सर।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं मंटू शर्मा, गांव खेड़ा से, तहसील भदरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से बोल रहा हूँ सर।
0: मंटू जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: जी किरण पाल का सर।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
3: हेलो ग्राम संसार,
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
3: इंद्रवीर तेवतिया, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बोल रहा हूँ।
0: तेवतिया जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: किरणपाल को सुनना चाहेंगे। कुछ नाम लेने चाहूंगा
0: जी।
3: सुमित प्रवेश, छोटू प्रत्यक्ष, निष्कर्ष, हमारी बुआजी राज, गुड़ावती से पिंकू सैनी और शीशपाल हेड़ी, खुशियालपुर से पंडित रतनलाल, मास्टर शेर सिंह।
0: हेलो ग्राम संसार।
4: हाँ जी, मैं रामचंद्र, गांव डोला बागपत से बोल रहा हूँ जी।
0: किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: किरण पाल जी हैं जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: मेरी लड़की है छाया, लड़का है तरुण, लड़की है प्रिया, बेटा मेरा बड़ा है प्रदीप, पुत्र वधु मंजू।
0: हेलो ग्राम संसार
5: जी। भाई जी, राम राम।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: किला आबू, दरभंगा, नए बात से बोल रहा हूँ।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: किरण पाल को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: हमारी बहन है ज्ञानपति आनंद जी, है प्रधान जी, है ज्ञानदास, सबको आकाशवाणी को, सबको राम राम।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
6: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
6: मैं काशीराम दलाल, निवासी ग्राम गैसरूर उपगादी, तहसील जनपद बागपत, उत्तर प्रदेश से बोल रहा जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: किरण पाल को सुनवा दीजिए। कुछ नाम है जी।
0: जी,
6: बलदेव सिंह आर्या, नितिन दलाल, अर्पित दलाल, प्रयान सिंह दलाल, निकिता चौधरी, अश्वनी चौधरी, दीपू चौधरी, रीड कुमल, मट्टू मल, साहिब ठाकुर और सुरेश पाल डवास, राजेंद्र डवास, नीटू डवास, राम कुमार और अनिल कुमार। राम राम जी।
0: राम राम जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर किरण पाल से ये रागनी। किस्सा रहेगा द्रौपदी स्वयंवर का।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: जी राम राम जी।
0: राम राम जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
1: नोएडा से बोल रहे राकेश।
0: राकेश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: काली राम यादव
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
2: भाई साहब जी को राम राम।
0: राम राम जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं गांव लोहारे से मिस्त्री राकेश कुमार बोल रहा जी।
0: राकेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है। आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: कालू यादव को जी सुना दो। दो नाम और लूंगा जी। मेरी छोटी लड़की है अन्नू, बड़ी लड़की है सालू और घर वाली है सामो। मेरा दोस्त है जी सराय से नरेंद्र यादव।
0: हेलो ग्राम संसार।
3: हेलो ग्राम संसार।
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
3: अशोक कुमार शर्मा।
0: अशोक भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: कालू यादव जी को सुनना है और कुछ नाम है
0: जी बोल दीजिए।
3: ऋषु शर्मा, नर शर्मा, देव शर्मा, कर्म शर्मा, गिन्नी शर्मा। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। हेलो ग्राम संसार।
4: राम राम साहब।
0: राम राम जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
4: खुर्जा उत्तर प्रदेश के तिलक राज अरोड़ा।
0: अरोड़ा साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: आज कालू यादव को सुनवा देना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा भी सुनेंगे।
0: चलिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
5: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
5: मैं जयपाल सिंह, ग्राम घसोती, तहसील रामपुर, मनिहारान, जिला सहारनपुर, यूपी से बोल रहा जी।
0: जयपाल भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: कालू यादव जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: कुछ नाम है जी
0: बोल दीजिए।
5: मेरी पोती है श्रद्धा पवार, मिट्टू पवार, पोता है दुष्यंत पवार। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
6: नमस्ते जी, मैं खजान सिंह जौहरीपुर से बोल रहा हूँ जी।
0: खजान भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: कालू यादव की अच्छी से रागनी सुनवा दीजिए।
0: जरूर सुनवाएंगे।
6: कुछ नाम है जी, रामबती, अजय कुमार, चंद्रकांता, आरव, मोहन, लिबियान।
0: हेलो ग्राम संसार।
7: सभी भाई राम राम।
0: राम राम जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
7: मैं हीरालाल बोल रहा हूँ, गाँव मुलहेटा है मेरा, जिला संभल है और उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: हीरालाल जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: कालू यादव को सुनवाएं।

0: जरूर सुनवाएंगे।
1: दो नाम है जी, काशीराम है मेरे भाई छोटे और हिमांशु पोता है।
0: हेलो ग्राम संसार।
2: किसान नमस्कार, मैं बसंत कुमार ठाकुर, ग्राम भिरई नया पारा, जिला बालक, छत्तीसगढ़।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: कालू राम यादव के स्वर में सुनना चाहते हैं।
0: जरूर सुनवाएंगे। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर कालू यादव से ये

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112346731 और दूसरा नंबर है 0112346732। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले एक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इस जयंती के अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलक वेत्री कड़गम टीवीके ने दावा किया है कि उनकी पार्टी को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए 120 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी टीवीके को नई सरकार बनाने के लिए तमिलनाडु विधानसभा के 234 सदस्यों में से बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जबकि पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेल अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिनमें 118 किलोमीटर

0: किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन भी शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड रीएंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात पांचवें स्थान पर है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। नीलम बहन, हमारे जो पशुपालक भाई हैं, किसान भाई हैं, ये बखूबी जानते हैं कि जो हमारे पशु होते हैं, खासकर दुधारू पशु, वो कितना सहयोग हमारे किसान परिवारों को, पशुपालक परिवारों को करते हैं, और साथ ही साथ पशुपालन और खेती का जो संतुलन है वो हमारे किसान भाइयों के परिवार में भी संतुलन बनाए रखता है। क्योंकि जब कभी कुछ खेती में घाटा हो जाए तो कहीं ना कहीं जो भरपाई होती है वो पशुओं से पूरा हो जाती है। और हम देख रहे हैं कि अब गर्मी बढ़ती चली जा रही है, तो जिस तरह से हम इंसानों को गर्मी लगती है, हम अपना बचाव करते हैं और पशु तो अपनी बात कह भी नहीं पाते हैं, तो ये तो हमारे पशुपालक भाइयों को और किसान भाइयों को ही समझना पड़ेगा कि जो गर्मी है, हीट स्ट्रोक है, उससे अपने पशुओं को कैसे बचाएं, क्या इसके लक्षण हैं, कैसे पहचानें, जिनको जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में पशु बहुत कीमती है, ऐसे में अगर पशु को गर्मी लग जाती है तो अचानक से जो दूध का उत्पादन है वो तो कम होता ही है, साथ ही साथ उसको ठीक करने में भी काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। तो हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को ऐसे मौसम में पशुओं का विशेष ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है।
1: बिल्कुल शशि भाई, दुधारू पशु हमारे किसान भाइयों की आय को दोगुना करने और रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ पशु देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना रहे हैं, लेकिन कई बार पशुओं में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। गर्मी लग जाती है जिसके कारण पशुपालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। गर्मी का प्रकोप बढ़ते ही पशुपालकों के सामने दुधारू पशुओं की सुरक्षा बड़ी चुनौती बन जाती है। लू और बढ़ते तापमान से पशुओं को बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतना जरूरी है।
0: बिल्कुल नीलम बहन, तो इसी क्रम में अपने किसान बहन भाइयों को एक बातचीत सुनवाते हैं जिसका विषय है पशुओं में हीट स्ट्रोक के लक्षण और प्राथमिक उपचार। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अनूप कालरा और इनसे बात कर रहे हैं शिव नंदन लाल। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: किसान भाइयों नमस्कार। हम अपने कार्यक्रम में समय पर निश्चित तौर पर कृषि वैज्ञानिकों को बुलाते हैं, और उसके साथ साथ क्योंकि जो भी हमारे किसान भाई हैं खेती बाड़ी करते हैं तो निश्चित तौर पर वो पशुपालन भी करते हैं, और जो पशु पालते हैं जब मौसम बदलता है तो इस बदलते हुए मौसम का प्रभाव जिस तरीके से आम आदमी पर पड़ता है उस तरीके से हमारे पशुओं पर भी पड़ता है। और जब धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाती है और गर्मी चरम सीमा पे हो जाती है तो उससे देखते हैं कि पशु कभी अस्वस्थ हो जाते हैं, कभी उनमें बेचैनी दिखाई देती है, जिसका प्रभाव हमारे जो पशुपालन से होने वाला उत्पादन पर पड़ता है। और जहाँ किसी किसान का पशु बीमार होता है तो निश्चित तौर पे हमारे पशुपालक को भी चिंता हो जाती है। गर्मियों में किस तरीके से इस तनाव से अपने पशुओं को बचाया जाए, उसके क्या कारण हैं, लक्षण क्या हैं, और उसका बचाव कैसे किया जाए और उपचार के बारे में जानेंगे। आज हमारे साथ हैं पशुपालन विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप कालरा जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार शिवनंदन जी।
2: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जब मौसम बदलता है तो इसका प्रभाव हमारे पशुओं पर भी पड़ता है, तो आम आदमी तो समझ लेता है कि तापमान बढ़ गया, ये हो गया, लेकिन पशुओं का कैसे समझा जाए?
3: देखिए, इसे आपको और हमें तनाव होगा तो हम पंखे के नीचे आ जाएंगे,
2: जी
3: कूलर में चले जाएंगे, एसी में बैठ जाएंगे, लेकिन पशु क्या करे? जैसे आपको और हमें तनाव होता है गर्मी से, ऐसे ही पशुओं को भी होता है, लेकिन सिर्फ ये है कि हमारे पशु बोल नहीं पाते हैं। तो कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है जो हमें अपने किसान भाइयों को ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि जैसे ही पशु को बाहर बांधते हैं तो वो सुबह के समय ही उसको बाहर बांधे, जब थोड़ा मौसम ठंडा है, 7-8 बजे तक, 9 बजे तक, जैसे जैसे गर्मी बढ़े तो उसको वो शेड के नीचे ले आए। अब कहीं कहीं पे जो है पुआल की वो बनी होती है तो वहाँ छाया ले लें, कहीं अगर नहीं जगह है तो कोई घना पेड़ है उसके नीचे पशु को खड़ा कर दे, जिससे कि गर्मी का सीधा जो प्रकोप है वो हमारे पशुओं पे ना पड़े। तो पहली चीज़ तो ये है।
2: जी
3: दूसरा, पशुओं को पानी भरपूर दिया जाए। ऐसे तो हमारे किसान भाई बहुत जागरूक हैं, लेकिन कई बार क्या होता है पशु को पानी चाहिए, वो गए, वो वहाँ से पानी निकाला, अब वो पानी है गर्म क्योंकि धूप से गर्म हो गया है वो। तो ऐसा पानी दें जो ठंडा हो, कम से कम रूम टेम्परेचर का पानी हो, जिससे कि जब पशु उस पानी को ग्रहण करे तो उसको ठंडक महसूस हो। तो एक तो भरपूर पानी दिया जाए और गर्म पानी ना दिया जाए। तीसरी चीज, आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटियां वर्णित हैं जिनके सेवन से पशुओं में तनाव को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। और ये हमारे पशुपालक भाई इसको भली भांति जानते होंगे, क्योंकि आप और हम भी अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे आंवले का इस्तेमाल करना, आम का इस्तेमाल करना, तुलसी का इस्तेमाल करना, अश्वगंधा का इस्तेमाल करना। तो अगर ऐसे पशुपालक भाई जो हैं, पशु विशेषज्ञ हैं, जहाँ पे भी वो हैं, उनसे ऐसे संपर्क कर लें कि ऐसे अगर कोई बाजार में ऐसी कोई दवा मिलती है तो उसका सेवन रोज़ 50 ml से 100 ml ज़रूर करवाएं। इससे क्या होगा कि जो गर्मी का प्रकोप है जो पशुओं के ऊपर हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। चौथी चीज़, इस समय में क्या होता है कि पशुओं की खाने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे घट जाती है
2: जी।
3: तो घटने की वजह से क्या होता है कि उसकी पाचन क्षमता में फर्क पड़ जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी कम हो जाती है। तो इसलिए इसको समय समय के ऊपर डॉक्टर की सलाह के साथ में कुछ वाइटामिन, जैसे वाइटामिन ए, वाइटामिन ई, वाइटामिन सी और कुछ जड़ी बूटियों का जैसे सेवन है, तो ये देने से एक तो क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहती है और गर्मी सहन करने की जो क्षमता होती है वो भी बनी रहती है। तो ऐसे कुछ मुझे लगता है कि चीज़ों पे अगर हमारे पशुपालक भाई ध्यान देंगे तो निश्चित ही अपने पशुओं को गर्मी के प्रकोप से बचा सकते हैं।
2: जी डॉक्टर साहब, आपने तो शुरू से और आखिरी तक विस्तार से बताया, लेकिन हमें गर्मी हुई तो उसका एहसास होने लगता है, और एहसास तो पशुओं को भी होता है, लेकिन जो उसका मालिक है, पशुपालक है, तो वो कैसे समझे?
3: देखिए, एक तो क्या होगा इसमें, जब भी स्ट्रेस होगा या गर्मी होगी तो पानी की पीने की क्षमता बढ़ेगी, उसको प्यास ज़्यादा लगेगी, लार कई बार गिरना शुरू हो जाएगी साइड से
2: जी।
3: क्योंकि उससे क्या होता है कि उसको ठंडक मिलती है जब वो सूखता है
2: जी।
3: दूसरा, खाना कम करना शुरू कर देगा, वो दूध देने की क्षमता है वो घट जाएगी। मान लीजिए कि जानवर 10 लीटर दूध दे रहा है तो हो सकता है कि वो 8 लीटर के ऊपर आ जाए, आप सोचोगे पता नहीं क्या है। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं जिनको मुझे लगता है कि अगर ध्यान में रखा जाए तो पहचाना जा सकता है कि पशुओं पे गर्मी का तनाव हो रहा है। और इस वर्ष तो मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि भारत के ऊपर एल नीनो का इफेक्ट होने वाला है, जिससे कि जो पैसिफिक महासागर है उसके ऊपर जो असर पड़ने वाला है, उससे भारतवर्ष में गर्मी का बहुत ज़्यादा प्रकोप होने वाला है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई हम अपने पशुओं को समय समय पे जानकारी देते रहें और पशुओं को गर्मी के प्रकोप से बचाएं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम लोगों का उद्देश्य ये है कि जो पशुपालक है उसको रोज़ आमदनी मिले दूध से। अगर उसको हम गर्मी के प्रकोप से नहीं बचा सकते हैं तो उसके दूध में कटौती आएगी, दूध में कटौती आएगी तो समझिए कि उसकी आमदनी में भी कटौती हो गई।
2: पशु का स्वास्थ्य गिरेगा तो निश्चित तौर पे उसके प्रोडक्शन में कमी
3: आएगी।
2: प्रोडक्शन में कमी आएगी तो किसान की आमदनी
3: आमदनी भी कम हो जाएगी। तो गर्मी का प्रकोप सीधा जो है उसकी आमदनी से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित ही अगर इन बातों पे ध्यान दिया जाता है तो मुझे लगता है कि हमारे पशुपालक जो है इस समस्या से निपटने के लिए सजग रहें।
2: तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने पानी का जिक्र किया, तो पानी पिलाने के लिए बहुत से हमारे किसान भाई, उनके पास नांदी होती है उसमें भर देते हैं, तो उसकी भी साफ सफाई, क्यों गर्मी में पानी गर्म हो जाता है?
3: एक तो आपने सही कहा, एक तो पानी गर्म तो नहीं पिलाना चाहिए उसको, ऊपर से धूप का प्रकोप है, बोला चलो पशु को यहाँ बांध दो, एक तो वो है। दूसरा ये कि साफ सफाई का गर्मियों में विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कई बार बैक्टीरिया या ऐसे इस तरह की जो है कई सारी बीमारियां होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो स्वच्छ पानी दें और ठंडा पानी दें, इसका विशेष ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी।
2: डॉक्टर साहब, क्योंकि गर्मियों में जिस तरीके से जब ज़्यादा गर्मी लगती है हम कोशिश करते हैं कि स्नान कर ले, तो क्या पशुओं को भी नहलाना उचित रहता?
3: अगर पानी की कमी ना हो पशुपालक के पास में तो निश्चित ही उसको सुबह और शाम अगर नहलाएं, भैंसों को खास तौर पे, क्योंकि उनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होती, जैसे हम लोगों को पसीना आता है भैंसों में वैसा पसीना नहीं आता है, तो इसलिए उनको तो तालाब में छोड़ दिया जाता है, जितने समय तालाब में रहेंगी उतना अच्छा है, एक तो वो है। लेकिन अगर गाय तो जाती नहीं है तालाब में, तो उसको सुबह और शाम जो है उसके ऊपर 5 से 10 मिनट पानी का छिड़काव किया जाए, लेकिन ठंडे समय में, मतलब सुबह के समय कर दिया और शाम के समय कर दिया। दोपहर के समय जब बहुत गर्मी का प्रकोप है तब उसको अंदर जो है कोई ऐसी जगह रखें जो छायादार हो, पेड़ के नीचे हो, जिससे उसको गर्मी का असर कम से कम हो। जैसे बोरी होती है अनाज की बोरी आती है, तो अनाज की बोरी को आपने गीला कर दिया और गीला करके पशु है उसके ऊपर रख दिया, या जहाँ आपने छाया में रखा है वहाँ पे बांध दिया, तो उससे क्या होगा कि जब गर्म हवा भी चलेगी तो पशुओं को उसका प्रकोप नहीं लगेगा, अंदर ठंडी हवा उसको मिलती रहेगी।
2: डॉक्टर साहब, बहुत से जागरूक किसान ऐसे हैं जहाँ पे उनके दुधारू पशु बंधे होते हैं वहाँ पे कूलर भी लगाते
3: हैं। कूलर भी लगाते हैं, ऐसी पंजाब में हम पीछे गए थे शिवनंदन जी, एक बड़ा ये होता है PDFA करके एक संस्थान है वहाँ पे, प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन, वहाँ पे मतलब हमने ऐसी गाय देखी जो प्रतिदिन 70 से 80 लीटर दूध देती है, वो AC में रहती है। आप सोचिए कि 80 लीटर दूध की कीमत कितनी होगी, अगर 40 रुपए के हिसाब से भी आप कैलकुलेट करो तो कितनी हो गई। लेकिन ये चीज़ आपने बहुत अच्छी कही, हमारे जो भारतवर्ष की जो गाय है जैसे साहिवाल हो गई, थारपारकर हो गई, हरियाणा हो गई, इनको गर्मी कम लगती है और गर्मी का प्रकोप भी इनके ऊपर कम होता है।
2: अगर आप सहन शक्ति ज्यादा होती है,
3: बिल्कुल, आप दूसरी जर्सी ले लेंगे या होल्स्टीन ले लेंगे तो इनके ऊपर गर्मी का प्रकोप ज्यादा होता है और बीमार भी ज्यादा होती है। तो ब्रीड का सिलेक्शन जो है वो भी बहुत मायने रखता है,
2: मतलब जितना ज्यादा उत्पादन उनसे मिलता है उतनी सेंसिटिव होते हैं,
3: उतनी सेंसिटिव होती है, इसीलिए उनको AC में रखा जाता है, क्योंकि गर्मी अगर हो गई तो एकदम से बीमार हो जाती है वो, और कोई भी बीमारी पकड़ सकती है, दूध देने की क्षमता एकदम से कम हो जाती है। मतलब ये तो ये है कि पशुपालक अगर थोड़ी दूर की सोचें तब, लेकिन अगर हम सोचें कि आज, तो आज के आज तो हमारे पशुपालक भाई अपनी गाय नहीं बदल लेंगे, लेकिन ये कि उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है कि कौन से ब्रीड का पशु आपने रखा है। जैसे भैंस को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता,
2: लेकिन जैसे आपने डॉक्टर साहब जिक्र किया कि भैंस को जोहर या तालाबों में भी छोड़ देते हैं उसको ठंडाने के लिए, और कभी कभी क्या है कि आपने पशु को पानी नहीं पिलाया है, नहीं दिया, अब आपने जोहर में छोड़ दिया और उसको प्यास लगे, अब वो वहाँ का गंदा पानी पी ले।
3: देखिए, मैंने जो देखा है, पशु अपने खाने का चारा और पीने का पानी वो अपने तरह से कोशिश करता है कि मैं स्वच्छ से स्वच्छ पानी पीऊं और अच्छा से अच्छा चारा खाऊं, लेकिन कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि प्यास लगी है और आपने वो वाला पानी पी लिया जो स्वच्छ नहीं है, तो उसमें पेट में कीड़ों की समस्या हो सकती है
2: जी,
3: क्योंकि वो घास के साथ भी जा सकते हैं, उस पानी के साथ भी जा सकते हैं
2: जी।
3: अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं, डायरिया भी हो सकता है, क्योंकि समर डायरिया जो है वो भी एक बहुत कॉमन है, मतलब कि पेट खराब हो जाता है और लूज मोशन होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका भी यही एक कारण है। तो इसलिए निश्चित ही हमारे पशुपालक भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि स्वच्छ पानी दें, समय समय के ऊपर दें, इवन जो उसको आप संतुलित आहार दे रहे हैं
2: जी जी।
3: वो भी ऐसा हो जिसमें हरे चारे की मात्रा अच्छी हो, क्योंकि गर्मियों में हरा चारा कम मिलता है
2: जी।
3: लेकिन हरा चारा यथासंभव जहाँ जहाँ हो उसको हरा चारा दें, और जो संतुलित आहार दें भी वो थोड़ा डेंस हो, क्योंकि पशु क्या है कि खाना कम खा रहा है
2: जी।
3: तो अगर वो खाना कम भी खा रहा है तब भी जितनी उसकी क्षमता है उतना उसको दाना मिल जाए।
2: डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि पशुओं को पेट की भी समस्या हो जाती है,

0: इस समय क्या पशुओं को, जैसे नमक है, कोई चूर्ण है, आपने विटामिन का जिक्र
1: जी
0: किया,
1: जी
0: अगर हल्का सा आप उसको कोई नमक या मिनरल मिक्सचर देते हैं तो
1: जी
0: वो पानी ज़्यादा पिएगा, क्योंकि
1: जी
0: पानी की ज़रूरत है उसको, किया जा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये बिल्कुल सही कहना है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग बाहर से आते हैं
0: जी
1: गर्मी से, तो हम क्या करते हैं, नींबू पानी पीते हैं, उसमें नमक डाल लेते हैं।
0: जी
1: क्योंकि नमक डालने से तो सोडियम क्लोराइड मिल गया, और नींबू डालने से जो है विटामिन सी मिल गया। तो ऐसा ही पशुओं के लिए भी इलेक्ट्रोलाइट्स बाजार में उपलब्ध हैं, तो वो डॉक्टर की सलाह से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अन्यथा नमक तो निश्चित देना ही चाहिए, मतलब अगर आप नमक देंगे तो फायदेमंद है। और इलेक्ट्रोलाइट्स भी पशुओं के लिए मिलते हैं, डीकैट के नाम से कई सारे और आते हैं, तो आपको पशु चिकित्सक सलाह देंगे और वो इस्तेमाल करने से निश्चित ही फायदा होगा।
0: तो डॉक्टर साहब, जो हमारे पशुपालक हैं उनके पशु स्वस्थ रहें, किसी तरीके के उनके पशुओं पर गर्मी का ज़्यादा प्रभाव न पड़े, उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: मैं तो सिर्फ तीन मुख्य बातें कहना चाहूँगा कि गर्मी का प्रकोप जैसे ही आपको लगे, आप सजग हो जाएं और पशु प्रबंधन ऐसा करें कि उसको स्वच्छ पानी मिले, अच्छा आहार मिले, और छायादार जगह में पशुओं को आप रखें। और जैसा ही आपको लगता है कि भाई गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, तो कुछ ऐसे चीज़ें इस्तेमाल करने से, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ आयुर्वेदिक उपचार हैं वो किए जा सकते हैं, विटामिन्स मिनरल मिक्सचर्स दिए जा सकते हैं, जिससे कि गर्मी का जो प्रकोप पशुओं पे हो रहा है उसका असर कम हो। कैल्शियम भी साथ में दिया जा सकता है, और इन सारी चीज़ों का अगर हमारे पशुपालक भाई ध्यान रखते हैं तो अपने पशुओं को गर्मी के प्रकोप से वो निश्चित बचा सकते हैं।
0: अब अगर कोई दिक्कत आती है तो पास के पशु चिकित्सक को अवश्य दिखाएं।
1: अवश्य दिखाएं, वेट ना करें कि भाई चलो कल सुबह तक रुक जाते हैं, क्योंकि गर्मी का प्रकोप ऐसा होता है कई बार ज़्यादा होने से पशु रात रात में गिर के ख़त्म भी हो सकता है।
0: तो निश्चित तौर पे डॉक्टर अनूप कालरा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और हमारे जो पशुपालक हैं अपने पशुओं का ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनका जो पशु है निश्चित तौर पे वही उनकी आमदनी का साधन भी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे ये बातचीत, पशुओं में हीट स्ट्रोक के लक्षण और प्राथमिक उपचार। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अनूप कालरा, और इनसे बात कर रहे थे शिवनंदन लाल।
3: और अब नीलम बहन अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं राजेंद्र जाटव, और किस्सा रहेगा सरवर नीर का।

0: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे, ये रागिनी कलाकार थे राजेंद्र जाटव।
1: नीलम बहन, भारत सरकार देश के किसान भाइयों और गरीब नागरिकों को सहायता पहुंचाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं, जिनमें से एक योजना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि गौवंशीय पशुओं में नस्ल सुधार, संरक्षण और दूध की उत्पादकता में वैज्ञानिक रूप से वृद्धि करने के लिए काम किया जाए।
0: बिल्कुल शशि भाई, पशुपालन के अंदर गाय हम सबका आधार रही है। गाय का महत्व देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक है। गाय का सामाजिक, पारंपरिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्व माना गया है। हमारे भारत में गाय की जो प्रजाति पाई जाती है उसे बास इंडिकस के नाम से जाना जाता है, जिसे हम साधारण भाषा में देसी गाय कहते हैं। ऐसे में स्वदेशी गायों के संरक्षण और विकास के लिए कई प्रयोगशाला बनाई गई हैं और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके किसानों को देसी गायों के पालन और इनके उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए काफी मदद की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत भारतीय देसी गाय की नस्ल जैसे गिर, साहिवाल, राठी, देवनी, थारपाकर, रेड सिंधी आदि गायों का विकास किया जाएगा और कृत्रिम गर्भाधान के जरिए इनकी नस्ल को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा।
1: तो किसान बहन भाइयों, अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी पशुपालन और डेयरी विभाग में जाके संपर्क कर सकते हैं और इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो नीलम बहन, ये तो जानकारी रही राष्ट्रीय गोकुल मिशन की, और अब समय हो चला है कि अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति ली जाए। लेकिन अनुमति लेने से पहले अपने किसान बहन भाइयों को बताते चलें कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम के बारे में।
0: कल ग्राम संसार कार्यक्रम में बहन भाई सुनेंगे पत्रों के उत्तर और लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम। इसके साथ ही बहन भाई चर्चा सुनेंगे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में और बहन भाइयों आपको प्रधानमंत्री प्रणाम योजना की भी जानकारी दी जाएगी।
1: और कल के कृषि जगत कार्यक्रम में किसान बहन भाइयों के पत्रों के उत्तर और उनकी पसंद के लोक गीत सुनवाए जाएंगे। इसके अलावा कृषि विपणन अवसंरचना योजना की जानकारी दी जाएगी। तो किसान बहन भाइयों, ये तो जानकारी रही

कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम की, लेकिन आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है, कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी किसान बहन भाइयों को राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स। शाम के 7:30 हुए हैं और ये समय होता है गज़ल और कव्वालियों का। लेकिन आज हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में गज़ल, और गज़ल में सबसे पहले हम ले रहे हैं चंदन दास की ये खूबसूरत गज़ल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली और गुरुग्राम में छापेमारी कर पंजाब के कैबिनेट मंत्री को गिरफ्तार किया। दिल्ली सरकार चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान में होम्योपैथी और यूनानी ओपीडी सेवा शुरू करेगी। दिल्ली में सेंट्रल रिज का 673 हेक्टेयर क्षेत्र आरक्षित वन घोषित। और अनीश भानवाला ने नई दिल्ली में आयोजित 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज पश्चिम बंगाल में नव निर्वाचित भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। श्रीमती गुप्ता ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और बंगाल की जनता को दिल्ली की ओर से बधाई दी। इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने बंगाल की जनता विशेषकर महिलाओं और बेटियों के साहस तथा संघर्ष की सराहना करते हुए राज्य के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये जीत केवल राजनीतिक आंकड़ों की जीत नहीं है, बल्कि बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले 321 भाजपा कार्यकर्ताओं के बलिदान की भी जीत है।
1: ये जीत उन 321 भाजपा कार्यकर्ताओं के बलिदान की आहुति की यात्रा पे टिकी है, जब आज यहाँ बंगाल में नया सूर्योदय हुआ है और नई सरकार बन रही है। इन 321 भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी जान कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं दी, उन्होंने अपनी जान सोनार बंगला के भविष्य के लिए दी।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में बंगाल की जनता ने अत्याचार और भ्रष्टाचार का दौर देखा, लेकिन अब जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव करने का फैसला लिया है।
2: बंगाल की बेटियों के लिए, बंगाल की महिलाओं के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा युग 15 साल अत्याचार का, दमन का झेला, परंतु अब बंगाल की जनता ने सोनार बंगला लिए जो वोट किया है, आज की ये सुबह, आज का ये सूरज उस बंगाल के लिए है जहां विकास होगा, जहां विश्वास होगा, और विश्वास और विकास के साथ बंगाल पूरे देश के साथ आगे बढ़ेगा।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इससे पहले ईडी ने दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी।
3: ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। ईडी ने बताया कि ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। ईडी ने कथित तौर पर दिल्ली स्थित गैर मौजूद फर्मों से कई फर्जी जीएसटी बिल प्राप्त किए, ताकि फर्जी इनपुट नुकसान हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
0: एक अन्य मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने श्रावंती ग्रुप के प्रमोटर दंडामुदी वेंकटेश्वर राव उर्फ डीवी राव सहित 3 लोगों को करीब 284 करोड़ रुपए के धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी ने बताया कि गुरुग्राम के सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की दी थी। आरोप था कि डीवी राव के नियंत्रण वाली डीजेडब्ल्यू इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने विभिन्न संस्थानों से फर्जी तरीके से ऋण प्राप्त किए थे और ऋण चुकाने की धनराशि वैध ऋणदाताओं को लौटाने के बजाय फर्जी कंपनियों को हस्तांतरित कर दी गई। ईडी ने बताया कि आरोपियों ने आरटीजीएस बैंकिंग प्रणाली का दुरुपयोग किया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ कर 3 मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी आईपीओ स्कैम, डिजिटल

0: और फॉरेक्स ट्रेडिंग धोखाधड़ी में संलिप्त थे और इन्होंने पीड़ितों से कुल 1,22,00,000 से अधिक रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप, फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और फर्जी सरकारी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर लोगों को निवेश, आईपीओ फंडिंग और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डराकर ठगी करते थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राजधानी में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने सेंट्रल रिज के 673 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित कर दिया है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के अंतर्गत इस क्षेत्र को ये दर्जा दिया गया है। ये क्षेत्र सरदार पटेल मार्ग और राष्ट्रपति भवन स्टेट के आसपास स्थित है।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली रिज प्राचीन अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है, जिसे राजधानी का ग्रीन लंग्स भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिज क्षेत्र वायु गुणवत्ता सुधारने, भूजल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि आरक्षित वन घोषित किए गए रिज क्षेत्रों में नीम, पीपल, शीशम, जामुन, इमली और आम जैसे देसी तथा पर्यावरण के अनुकूल प्रजातियों के वृक्ष बड़े स्तर पर लगाए जाएंगे। अब तक दिल्ली में कुल 4,754 हेक्टेयर रिज क्षेत्र को आरक्षित वन का दर्जा मिल चुका है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के अन्य रिज क्षेत्रों को भी जल्द आरक्षित वन घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से अतिक्रमण और पर्यावरणीय क्षरण पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अनुपम मिश्र।
0: दिल्ली सरकार का आयुष निदेशालय चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान में होम्योपैथी और यूनानी ओपीडी सेवा शुरू करेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस पहल से लोगों को बिना आर्थिक बोझ के समग्र उपचार और तनाव प्रबंधन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आयुष निदेशालय डॉक्टरों और स्टाफ की तैनाती करेगा। इस पहल से आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी और यूनानी जैसी आयुष पद्धतियों के जरिए एक ही मंच पर समग्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज रोहिणी सेक्टर 24 में नई जल पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना के माध्यम से क्षेत्र में स्वच्छ, नियमित और निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। श्री सिंह ने कहा कि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार नई पाइपलाइन बिछाने, पुरानी लाइनों को बदलने और जल नेटवर्क को मजबूत करने का काम कर रही है। श्री सिंह ने अधिकारियों को जल आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने मॉनसून कार्य योजना 2026 की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परिषद ने ताज मानसिंह के पास भूमिगत नालियों और कवर स्टॉर्म वाटर ड्रेन की जांच पहली बार रोबोटिक तकनीक का उपयोग शुरू किया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री चहल ने बताया कि 31 मार्च तक पहले चरण की 100% घास सफाई पूरी कर ली गई थी, वहीं दूसरा चरण 15 जून तक पूरा हो जाएगा। 3.5 करोड़ रुपए की लागत से घास सफाई का कार्य किया जा रहा है। परिषद क्षेत्र में पुराना किला, दयाल सिंह कॉलेज, पंचकुइया रोड, हनुमान मंदिर और सत्य सदन समेत 5 प्रमुख संवेदनशील स्थान चिन्हित किए गए हैं। इन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे और सेंसर आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अमीशा।
0: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाहिनी आज केशवपुरम जोन के अंतर्गत कमला नगर क्षेत्र में सफाई अभियान का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री वाहिनी अधिकारियों और कर्मचारियों को सिंधोरा कला गांव में स्थित रेलवे अंडरब्रिज की तुरंत सफाई का निर्देश दिया। श्री वाहिनी ने गुलाबी बाग स्थित पार्क का उद्घाटन किया और रोशन नारा बाग में झील की सफाई, पंप हाउस निर्माण तथा उद्यान विभाग के जर्जर कार्यालय की मरम्मत करने का आदेश भी दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA द्वारा दिल्ली की तेजी से बिगड़ती जलीय संपत्तियों के पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार पर प्रस्तुत एक प्रस्तुति की समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि DDA 77 जलाशयों के पुनरुद्धार कार्य को तुरंत शुरू कर रहा है। बैठक में द्वारका, रोहिणी और नरेला सब सिटी में परिवर्तनकारी विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन और विस्तार योजना का भी समीक्षा कर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि

0: इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा परिचालन उत्कृष्टता और नवाचार की दिशा में किए जा रहे प्रयास प्रभावशाली हैं। उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय हवाई अड्डा और एरोसिटी इकोसिस्टम का उपयोग कर राष्ट्रीय राजधानी को व्यापार, पर्यटन तथा निवेश के वैश्विक केंद्र के रूप में और अधिक मजबूत किया जा सकता है। उपराज्यपाल ने विमान शोर प्रदूषण जैसी समस्याओं के समाधान के साथ विकास और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया, जिसमें सड़कों पर धूल के स्तर का आकलन करने और शहर में सड़क सफाई और झाड़ू लगाने के कार्यों की समीक्षा की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि समीक्षा अभियान में कुल 19 हवाई दस्ते की टीमें शामिल थी, जिन्होंने नोएडा प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाली 46 सड़क खंडों को कवर किया। दिल्ली सरकार ने बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के पास हीट वेव एक्शन प्लान के अंतर्गत विशेष कूलिंग जोन तैयार किया है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि यहां 70 से 80 लोगों के बैठने की व्यवस्था, ठंडे पानी और ORS की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार केवल व्यवस्था बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि लोगों तक सीधी राहत पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE और अखिल भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में स्वास्थ्य संबंधी मॉड्यूल, सहकर्मी सहायता गतिविधियां और अभिभावक सहभागिता कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। दूसरे चरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 60 से अधिक CBSE स्कूल शामिल हुए हैं। नई दिल्ली में 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी प्रतियोगिता में अनीश भानवाला ने आज स्वर्ण पदक जीता। रेलवे का प्रतिनिधित्व कर रहे अनीश ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में ये पदक अपने नाम किया। डॉ. करनी सिंह शूटिंग रेंज में चैंपियनशिप के फाइनल में अनीश ने 31 का स्कोर करके पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के सूरज शर्मा दूसरे, जबकि पंजाब के विजयवीर सिद्धू ने तीसरे स्थान पर रहे।
1: नई दिल्ली की डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में चैंपियनशिप के फाइनल में अनीश ने 31 का स्कोर करके पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश के सूरज शर्मा दूसरे, जबकि पंजाब के विजयवीर सिद्धू तीसरे स्थान पर रहे। 50 मीटर पिस्टल IPC मिक्स्ड SH1 सीनियर वर्ग में दिल्ली की भक्ति शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान की सारिका अंदाना दूसरे और हरियाणा के संदीप कुमार तीसरे स्थान पर रहे। जूनियर पुरुष वर्ग में मध्य प्रदेश के सूरज शर्मा ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल जूनियर पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। टीम स्पर्धा में आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट का दबदबा देखने को मिला। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल पुरुष टीम स्पर्धा में आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि हरियाणा ने रजत और नौसेना की टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। 50 मीटर पिस्टल पुरुष वर्ग में हरियाणा के कपिल बैंसला और महिला वर्ग में हरियाणा की केतन मलिक ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रादेशिक समाचार के लिए स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
0: सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। राजधानी में आज दिन के समय धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल मौसम साफ रहेगा, वहीं कल का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पश्चिम बंगाल में नव निर्वाचित भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली और गुरुग्राम में छापेमारी कर पंजाब के कैबिनेट मंत्री को गिरफ्तार किया। दिल्ली सरकार चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान में होम्योपैथी और यूनानी OPD सेवा शुरू करेगी। दिल्ली में सेंट्रल रिज का 673 हेक्टेयर क्षेत्र आरक्षित वन घोषित। और अनीश भानवाला ने नई दिल्ली में आयोजित 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता।

0: और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम मुशायरा।
2: सामईन की खिदमत में फरहीन इकबाल का पुरखलूस आदाब। सामईन, अल्फाज को तरतीब देकर वजन के साथ पेश करने को ही शायरी नहीं कहा जा सकता, बल्कि शायरी में बुलंद ख्याली और रमजियत भी ज़रूरी है। यानी जो बात शेर में कही गई है उसका लहजा शायराना हो, ज़ाहरी तौर पर जो शेर का मफहूम समझ में आ रहा है उसके हकीकी मायने उससे किसी कदर बुलंद हों और क़ारी या सामे अपने बेदार जहन से फौरन समझ जाए कि शेर में जो बात कही गई है वो किन माने में कही गई है। यही शेर की खूबी भी है। ये भी हकीकत है कि शायरी ऐसा फ़न है कि किसी को सिखाया नहीं जा सकता, बल्कि ये जज्बात और एहसासात के नतीजे में किसी शख्स पर इल्हाम की शक्ल में उतरती है। वो जज्बात खुशी और मुसर्रत के भी हो सकते हैं और अफसरदगी के भी। समय आइए सुनते हैं मुशायरा। आज के मुशायरे की निजामत कर रहे हैं जनाब तसनीफ हैदर।
3: आकाशवाणी के इस मुशायरे में आप सभी का खैर मकदम है। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं शहबाज रिजवी, उसामा जाकिर, विपुल कुमार और खाकसार तसनीफ हैदर। आइए इस मुशायरे की इब्तिदा करते हैं शहबाज रिजवी साहब के कलाम से। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अपना कलाम हम सबको सुनाएं।
4: बहुत शुक्रिया तसनीफ भाई। एक गज़ल से चंद अशार समात करें। धूप ढल जाती है साए पे जवाल आता है, मिटने लगता हूँ तो बनने का ख्याल आता है। रात कट जाती है आँखों को चरागाँ करते, रात कट जाती है आँखों को चरागाँ करते, दिन निकलता है तो चेहरे पे जमा लाता है।
5: वाह वाह वाह।
4: दिन निकलता है तो चेहरे पे जमा लाता है। पहले उड़ता है मोहब्बत के चमन में तन्हा, पहले उड़ता है मोहब्बत के चमन में तन्हा, फिर किसी शाम बहुत हो के निढाल आता है। फिर किसी शाम बहुत हो के निढाल आता है। पहले जम जाता है आँखों के दरीचे में कहीं, फिर मेरे खून में यकदम से उछाल आता है। जंगलों से जो गुजरता हूँ तो आती है सदा, पेड़ पौधों को भी रोने का कमाल आता है। मैं चला जाता हूँ सयाद का साथी बनकर, मैं चला जाता हूँ सयाद का साथी बनकर, पीछे पीछे मेरे सयाद का जाल आता है।
3: अरे वाह वाह, फिर से पढ़िए।
4: पीछे पीछे मेरे सयाद का जाल आता है। मैं चला जाता हूँ सयाद का साथी बनकर, पीछे पीछे मेरे सयाद का जाल आता है। धूप ढल जाती है साए पे जवाल आता है, मिटने लगता हूँ तो बनने का ख्याल आता है।
5: वाह वाह, क्या अच्छी गजल है।
4: बहुत शुक्रिया। और एक गजल देखे, ऐ मेरी बादे सबा चल तो जरा जेरे नगी,
5: मेरी बादे सबा
4: चल तो जरा जेरे नगी, शहर इफलाक से लौटे हैं अभी खाक नसी।
3: क्या बात, बहुत अच्छे।
4: अपने जलने पे हूँ नादिम के मेरे शहर के लोग,
3: अपने जलने पे हूँ नादिम के मेरे शहर के लोग,
4: अपने जलने पे हूँ नादिम के मेरे शहर के लोग, बस चरागों को समझते हैं सितारों को नहीं।
3: क्या बात है, वाह वाह।
4: बस चरागों को समझते हैं सितारों को नहीं। ये जो रोने की सदा आती है दीवारों से,
3: ये जो रोने की सदा आती है दीवारों
4: से, मेरी आवाज पे आवाज लगाती हो कहीं, मेरी आवाज पे आवाज लगाती हो कहीं, हाथ छूटा तो कलेजे से लगी हिजर की धूप, रंग बिखरे तो नजर आई मुझे मेरी जमीन। रंग बिखरे तो नजर आई मुझे मेरी जमीन, ख्वाब टूटा तो खुले आँख के शह पर मुझ पे, ख्वाब टूटा तो खुले आँख के शह पर मुझ पे, नींद आई तो उड़ा दूर खलाओं में कहीं, नींद आई तो उड़ा दूर खलाओं में कहीं, याद रहता ही नहीं मुझको तेरे घर का पता, ढूंढता फिरता हूँ मैं अपना खुदा।

0: अपनी जबीं।
1: वाह वाह
0: बहुत
1: वाह,
0: शुक्रिया। और एक गज़ल देखें कि तहलील हुए जाते हैं आवाज़ के सम में,
1: तहलील हुए जाते
0: तहलील
1: हैं
0: हुए
1: आवाज़ के
0: जाते
1: सम
0: हैं
1: में,
0: आवाज़ के सम में। तायर तो चले आए थे गंदम के भरम में,
1: तायर तो चले आए थे गंदम के भरम में।
0: तायर तो
1: वाह वाह,
0: चले आए थे गंदम के भरम में,
1: बहुत अच्छे शब्द।
0: आवाज़ लगाती है मुझे मेरी खामोशी, आवाज़
1: लगाती
0: लगाती
1: है
0: है
1: मुझे
0: मुझे
1: मेरी
0: मेरी
1: खामोशी,
0: खामोशी, और शोर मचाती है सबा दीदे नम में।
1: क्या
0: वाह
1: बात है,
0: वाह।
1: बहुत
0: और
1: अच्छा।
0: शोर मचाती है सबा
1: सबा
0: दीदे
1: दीदे
0: नम
1: नम में,
0: में, तन्हाई चली आई थी एक रोज़ मेरे घर, अब खाक उड़ाती है मेरे दस्ते अलम में।
1: आय हाय हाय,
0: अब
1: वाह वाह
0: खाक
1: वाह,
0: उड़ाती है मेरे दस्ते अलम में, जो लोग मुझे ढूंढने निकले थे उन्हें अब,
1: जो लोग मुझे
0: जो
1: ढूंढने
0: ढूंढने
1: निकले
0: निकले
1: थे
0: थे
1: उन्हें,
0: उन्हें अब, सब ढूंढने निकले हैं मेरे नक्शे कदम में।
1: अरे वाह,
0: वाह
1: फिर
0: वाह
1: से पढ़िए।
0: वाह,
1: वाह वाह
0: क्या
1: वाह,
0: जो लोग मुझे ढूंढने
1: ढूंढने
0: निकले
1: निकले
0: थे
1: थे
0: उन्हें
1: उन्हें
0: अब,
1: अब,
0: सब ढूंढने निकले हैं मेरे नक्शे कदम में। हम
1: हम
0: कैसे यहाँ ख्वाब के अंबार लगाते, हम
1: कैसे
0: कैसे यहाँ ख्वाब के अंबार
1: लगाते।
0: लगाते, आंखें तो लगा रखी थी वीरान शिकम में।
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह वाह,
0: आंखें तो लगा रखी थी। और आखिर में गज़ल और देख लें कि जमी से देखते रहते हैं आसमान का दुख,
1: जमीन से देखते
0: हमारे दुख से बड़ा तो नहीं जहान का
1: दुख।
0: दुख,
1: वाह वाह वाह,
0: बदन सराय से आती है बेनवा चीखें, हमारी रूह में पिन्हा है इस मकान का
1: क्या
0: दुख।
1: बात है,
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह वाह
0: वाह,
1: वाह, बहुत अच्छा।
0: हमारी रूह में पिन्हा
1: पिन्हा
0: है
1: है
0: इस
1: इस
0: मकान
1: मकान
0: का
1: का दुख,
0: दुख, दिखाए फिरते रहो सबको चाक दामानी,
1: दिखाए फिरते
0: दिखाए
1: रहो
0: दिखाए फिरते रहो सबको
1: सबको
0: चाक
1: चाक दामानी।
0: दामानी, छुपाए फिरते रहो सबसे साहिबान का दुख।
1: वाह वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वाह वाह वाह,
0: छुपाए फिरते रहो सबसे साहिबान का
1: नशिस्ते
0: दुख, नशिस्ते ख़त्म हुई और चराग बुझने लगें,
1: खत्म
0: नशिस्ते
1: हुई और
0: ख़त्म
1: चिराग
0: चराग
1: बुझने
0: बुझ
1: लगे,
0: चराग बुझने
1: समझ
0: लगे,
1: में
0: समझ किसको चराग दान का दुख।
1: क्या
0: वाह
1: बात
0: वाह, ज़रूरतों के मुताबिक घटे
1: है।
0: बढ़ाए गए, मकाने दिल से जुड़ा है यहाँ जमान
1: जमान
0: का
1: का दुख,
0: दुख, चढ़ो पहाड़ तो पत्थर भी पांव चूमेंगे,
1: चढ़ो
0: उतरने
1: पहाड़,
0: वाले से पूछो कभी ढलान का
1: क्या
0: दुख।
1: बात
0: आय
1: है,
0: हाय
1: अरे
0: हाय
1: वाह
0: हाय,
1: वाह
0: बहुत
1: वाह,
0: अच्छा शेर।
1: बहुत अच्छा।
0: चढ़ो पहाड़ तो पत्थर
1: पत्थर
0: भी
1: भी
0: पांव
1: पांव
0: चूमेंगे,
1: चूमेंगे,
0: उतरने वालों से
1: से
0: पूछो
1: पूछो
0: कभी
1: कभी ढलान
0: ढलान
1: का,
0: का दुख,
1: बहुत अच्छे भाई, वाह वाह।
0: दरख्त काटने वालों कभी सुनो तो सही,
1: दरख्त काटने वालों कभी
0: दरख्त
1: सुनो,
0: काटने वालों
1: कभी
0: कभी सुनो
1: सुनो
0: तो
1: तो
0: सही,
1: सही,
0: परिंदे बोलते रहते हैं बेजबान का दुख।
1: क्या
0: हाय
1: बात है,
0: हाय
1: वाह
0: परिंदे
1: भाई।
0: बोलते रहते हैं बेजबान का दुख। ये गज़ल और देख लें, मैं खुश हूँ मेरे पास ये तन्हाई बहुत है,
1: मैं खुश
0: मैं
1: हूँ मेरे
0: खुश हूँ
1: पास
0: मेरे
1: ये
0: पास
1: तन्हाई
0: ये
1: बहुत है,
0: तन्हाई बहुत
1: मुझको
0: है,
1: आय
0: मेरे होने की ही रुसवाई बहुत है,
1: हाय, वाह वाह,
0: मुझको मेरे होने की ही रुसवाई बहुत है, उस आँख से कहता हूँ मेरा दिल न टटोले,
1: उस आँख से
0: उस
1: कहता हूँ
0: आँख से
1: मेरा दिल न
0: कहता हूँ
1: टटोले,
0: मेरा दिल
1: इस
0: न
1: दिल में
0: टटोले,
1: वाह
0: चुभे तीर की गहराई बहुत है।
1: वाह
0: हाय
1: वाह
0: हाय,
1: वाह,
0: इस दिल में चुभे
1: तीर
0: तीर
1: की
0: की गहराई
1: गहराई
0: बहुत
1: बहुत है,
0: है,
1: वाह
0: वाह
1: वाह वाह वाह,
0: पत्थर पे उगा रखा है इस दिल का सबूचा,
1: हो पत्थर पे
0: पत्थर पे
1: उगा
0: उगा रखा
1: रखा
0: है
1: है
0: इस दिल
1: दिल का
0: का
1: सबूचा,
0: सबूचा, खिलने के लिए दर्द को पुरवाई बहुत है,
1: हाय हाय
0: वाह
1: वाह
0: हाय
1: वाह वाह
0: खिलने के लिए दर्द
1: वाह
0: को
1: वाह,
0: पुरवाई बहुत है, कब
1: वाह।
0: मैंने कहा तुझसे मेरे सर पे रहे हाथ, कब मैंने कहा तुझसे
1: मुझसे मेरे
0: मेरे सर
1: सर पे
0: पे
1: रहे
0: रहे
1: हाथ,
0: हाथ, को तेरे चादर
1: चादर
0: की
1: की
0: चौथाई
1: चौथाई,
0: बहुत है, उस शोक के हाथों से जला भी हूँ बुझा भी, अपना है कभी वो कभी हरजाई बहुत
1: बहुत
0: है,
1: है,
0: तुम चाहो तो एक फूल मुझे फेंक के मारो,
1: हाँ,
0: तुम चाहो तो
1: एक
0: एक
1: फूल
0: फूल
1: मुझे
0: मुझे फेंक
1: फेंक के
0: के मारो,
1: मारो,
0: देखो मेरी मिट्टी अभी पथराई बहुत
1: क्या
0: है।
1: बात,
0: वाह
1: अरे वाह
0: वाह
1: वाह, फिर
0: वाह
1: से
0: वाह,
1: पढ़ो भाई,
0: देखो
1: वाह वाह
0: तुम
1: वाह,
0: चाहो तो एक फूल
1: फूल
0: मुझे
1: मुझे फेंक
0: फेंक
1: के
0: के मारो,
1: मारो, क्या कहने भाई साहब,
0: देखो मेरी
1: मेरी मिट्टी
0: मिट्टी अभी
1: अभी पथराई
0: पथराई बहुत
1: बहुत,
0: है।
1: क्या
0: बहुत
1: बात,
0: अच्छा शेर,
1: बहुत अच्छे भाई,
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह।
1: वाह। जो लोग मुझे ढूंढने निकले थे उन्हें अब, सब ढूंढने निकले हैं मेरे नक्शे कदम में। सामईन, अभी आप सुन रहे थे शहबाज़ रिज़वी को, बड़े ही उम्दा अशआर से उन्होंने हमें नवाज़ा। अब मैं यहाँ मौजूद शौरा की इजाज़त से अपना कलाम पढ़ना चाहूँगा। मतला पेश खिदमत है। न तेरे पास कोई संग है न सर साई,
0: न तेरे पास
1: पास
0: कोई
1: कोई
0: संग
1: संग
0: है न
1: है न
0: संग
1: सर
0: साई,
1: साई, न तेरे पास कोई संग है न सर साई, चला है धुन में मोहब्बत की तू किधर साई,
0: वाह वाह
1: चला है धुन में
0: वाह,
1: मोहब्बत
0: मोहब्बत
1: की
0: की तू,
1: तू किधर साई, निकल के देख कभी वहशतों के सहरा से,
0: निकल के देख कभी
1: निकल
0: वहशतों
1: के
0: के
1: देख
0: सहरा
1: कभी
0: से।
1: वहशतों के सहरा से, तुझे बनाना है सचमुच का एक घर साई,
0: हाय हाय हाय
1: तुझे
0: हाय,
1: बनाना है सचमुच
0: सचमुच
1: का
0: का
1: एक
0: एक
1: घर
0: घर साईं,
1: साई,
0: क्या सच्चा
1: और
0: शेर है,
1: ज़रा सी ठेस से मिल जाएगा ये मिट्टी में, ज़रा
0: जरा
1: सी
0: सी ठेस
1: ठेस
0: से
1: से
0: मिल
1: मिल
0: जाएगा ये
1: जाएगा ये
0: मिट्टी
1: मिट्टी
0: में।
1: में।

0: तेरा बदन है कोई कांच का हुनर साईं, और
1: वाह
0: कदम में डूब का खतरा, कदम में पार का रंग,
1: वाह,
0: कदम में डूब का खतरा,
1: कदम में
0: कदम में
1: पार
0: पार का
1: का रंग,
0: रंग, यही किनारे दरिया यही भंवर साईं, यही
1: वाह
0: किनारे दरिया
1: यही
0: यही
1: भंवर
0: भंवर
1: साईं।
0: साईं। और खुद अपने आप को पहचानना ज़रूरी है, खुद अपने
1: अपने
0: आप
1: आप को
0: को पहचानना
1: पहचानना
0: ज़रूरी
1: जरूरी
0: है,
1: है।
0: खुद अपने आप से थोड़ी सी बात कर साईं,
1: वाह वाह
0: खुद
1: वाह वाह,
0: अपने आप से थोड़ी
1: थोड़ी
0: सी
1: सी बात
0: बात कर
1: कर
0: साईं।
1: साईं,
0: और शिकस्ते ज़ात भी उम्दा, शिकस्ते दुनिया भी, शिकस्ते
1: शिकस्ते
0: ज़ात भी
1: जात भी
0: उम्दा,
1: उम्दा, शिकस्ते
0: शिकस्ते
1: दुनिया
0: दुनिया भी,
1: भी।
0: मिला है जो भी मोहब्बत के नाम पर साईं,
1: बहुत अच्छे,
0: मिला
1: वाह
0: है
1: वाह वाह,
0: जो
1: जो
0: भी
1: भी
0: मोहब्बत के
1: मोहब्बत के
0: नाम
1: नाम
0: पर
1: पर सही।
0: साईं।
1: बहुत अच्छे,
0: और एक दूसरी गज़ल है कि दिल उसी शख्स के ध्यान में है,
1: उसी
0: दिल उसी
1: शख्स के
0: शख्स के
1: ध्यान
0: ध्यान में
1: में है।
0: है, वो जो मसरूफ़ इम्तिहान में है,
1: वाह, वो जो
0: दिल उसी
1: मसरूफ
0: शख्स के ध्यान
1: इम्तिहान
0: में
1: में,
0: है,
1: वो जो
0: वो जो मसरूफ़
1: मसरूफ
0: इम्तिहान
1: इम्तिहान
0: में
1: में
0: है,
1: है।
0: खूबरूई में खाल खाल एक तिल,
1: खूब रुई में खाल
0: खूबरूई
1: खाल
0: में
1: एक
0: खाल
1: तिल,
0: खाल एक तिल,
1: तिल।
0: नाक के ऐन दरमियान में है,
1: वाह,
0: खूबरूई में खाल खाल एक तिल, नाक के ऐन दरमियान में है। और बात से कबल बुए खुश का हुनर,
1: बात
0: बात
1: से
0: से
1: कबल
0: कबल
1: बुए
0: बुए
1: खुश
0: खुश
1: का
0: का
1: हुनर।
0: हुनर, उन लबों के गुलाबदान में है,
1: वाह
0: उन
1: वाह
0: लबों के गुलाबदान में है। और एक हरे रंग की परी शायद,
1: वाह, एक
0: एक
1: हरे
0: हरे
1: रंग
0: रंग
1: की
0: की परी
1: परी
0: शायद,
1: शायद।
0: मेरे ख्वाबों के आसमान में है।
1: बहुत अच्छा,
0: और एक गुलाबी तरंग का अफसूं,
1: एक
0: एक
1: गुलाबी
0: गुलाबी
1: तरंग
0: तरंग
1: का
0: का अफसूं,
1: आसमान।
0: उसकी भीगी हुई जबान में है।
1: बहुत अच्छा,
0: नींद मेरी मेरा सुकून तसनीफ, नींद मेरी
1: नींद
0: मेरा
1: मेरा
0: सुकून
1: सुकून
0: तसनीफ,
1: तसनीफ।
0: उसी आगोशे मेहरबान में है। ये गज़ल कुछ यूँ है कि किस बहारा से होकर आए थे, किस
1: किस
0: बहारा
1: बहार
0: से
1: से,
0: होकर आए थे, कौन
1: कौन सी
0: सी
1: फसल
0: फसल
1: हो
0: हो
1: गए
0: गए हैं
1: हैं
0: हम,
1: हम।
0: कोई भी ठीक बात कहने पर वाजिबुल कत्ल हो गए हैं हम, कोई
1: वाह
0: भी ठीक बात कहने पर
1: वाह,
0: वाजिबुल
1: वाजिबुल
0: कत्ल
1: कत्ल
0: हो
1: हो
0: गए
1: गए
0: हैं
1: हैं
0: हम।
1: हम।
0: और कुछ भी कहने से डरते रहते हैं, बात इशारों में करते रहते हैं, कुछ भी कहने से डरते
1: करते
0: रहते
1: रहते
0: हैं,
1: हैं, बात
0: बात
1: इशारों
0: इशारों
1: में
0: में करते
1: करते
0: रहते
1: रहते हैं।
0: हैं, भीड़ की नज़र हो गए हैं हम, खौफ की नस्ल हो गए हैं हम,
1: वाह वाह
0: भीड़ की
1: वाह,
0: नज़र हो गए हैं हम,
1: खौफ की
0: खौफ की
1: नस की
0: नस्ल हो
1: नस्ल
0: गए
1: हो
0: हैं
1: गए
0: हम।
1: हैं।
0: और उसकी सब बददिमागियों पर हम हुस्न को दे रहे हैं बस तरजीह,
1: इस
0: उसकी
1: पर
0: सब
1: बददिमागियों
0: बददिमागियों पर
1: पर
0: हम
1: हम
0: हुस्न
1: हुस्न
0: को
1: को
0: दे
1: दे
0: रहे
1: रहे
0: हैं
1: हैं
0: बस तरजीह,
1: तरजीह।
0: इश्क तेरी इनायतों से ही दुश्मने अक्ल हो गए हैं हम,
1: वाह वाह वाह,
0: इश्क तेरी इनायतों से ही दुश्मने अक्ल
1: दुश्मन
0: हो गए
1: अक्ल
0: हैं
1: हो गए
0: हम।
1: हैं।
0: और डालियों पर फुदकने वालों को किसने दी है सजाए यकरंगी,
1: वाह,
0: डालियों
1: डालियों
0: पर
1: पर
0: फुदकने
1: फुदकने वालों
0: वालों
1: को
0: को
1: किसने
0: किसने दी
1: दी
0: है
1: है
0: सजाए
1: सजाए
0: यकसमती,
1: यकरंगी यकसमती।
0: बंदरों की सिफात वाले थे, भेड़ की नकल हो गए हैं हम,
1: बहुत अच्छा,
0: बंदरों की
1: बहुत अच्छा,
0: सिफात वाले थे, भेड़
1: भेड़
0: की
1: की
0: नकल
1: नकल
0: हो
1: हो
0: गए
1: गए
0: हैं
1: हैं
0: हम।
1: हम।
0: कुछ एक अशार और पढ़
1: क्या
0: देता हूँ। ये गज़ल के चंद अशार यूँ हैं कि जुर्म है राहे अदब में ये हुनर पाना भी,
1: जुर्म है
0: राहे
1: राहे
0: अदब
1: अदब में
0: में
1: ये
0: जुर्म
1: हुनर
0: है
1: पाना
0: राहे
1: भी।
0: अदब में ये हुनर पाना भी, अपने बारे में बहुत धीरे से चिल्लाना भी,
1: वाह वाह वाह,
0: अपने बारे में बहुत धीरे से चिल्लाना भी।
1: वाह,
0: इतना बेफहम हूँ बेरंग हूँ बेफायदा हूँ, इतना
1: इतना
0: बेफहम
1: बेफहम
0: हूँ
1: हूँ,
0: बेरंग
1: बेरंग हूँ,
0: हूँ बेफायदा
1: बेफायदा
0: हूँ,
1: हूँ।
0: कि समझना मुझे बेकार है समझाना भी,
1: बहुत
0: कि
1: अच्छा,
0: समझना
1: इतना
0: मुझे
1: मुझे
0: बेकार
1: बेकार है
0: है समझाना
1: समझाना
0: भी।
1: भी।
0: और तुझसे मुमकिन हो तो उस सांस पे कर रक्स बदन,
1: वाह, तुझसे
0: तुझसे
1: मुमकिन
0: मुमकिन
1: हो
0: हो तो उस सांस पे कर रक्स
1: रक्स
0: बदन,
1: बदन।
0: जिसको आता हो किसी दीप सा जल जाना भी,
1: बहुत
0: जिसको
1: अच्छा,
0: आता हो किसी दीप सा जल
1: जल
0: जाना
1: जाना
0: भी।
1: भी।
0: काहली मेरी तबीयत है अमल इश्क मेरा,
1: वाह वाह,
0: काहली
1: काहली
0: मेरी
1: मेरी
0: तबीयत
1: तबीयत
0: है
1: है।
0: अमल इश्क मेरा, कुछ न होने से ही होगा यहाँ हो जाना भी,
1: वाह वाह वाह
0: कुछ न
1: वाह,
0: होने से ही
1: जो
0: होगा
1: यहाँ
0: यहाँ
1: हो
0: हो
1: जाना
0: जाना
1: भी।
0: भी।
1: क्या
0: और ये सलीका ये अदा और ये बातों का रचाओ, ये
1: सलीका
0: सलीका
1: ये
0: ये
1: अदा
0: अदा
1: और
0: और
1: ये
0: ये
1: बातों
0: बातों
1: का
0: का रचाओ,
1: रचाओ।
0: तुझसे कुछ जल तो रहा है तेरा दीवाना भी,
1: वाह वाह वाह,
0: तुझसे कुछ जल तो रहा है तेरा
1: तेरा
0: दीवाना
1: दीवाना
0: भी।
1: भी।
0: और लहर खाती हुई साड़ी की कसम जाने अदा,
1: वाह वाह
0: लहर
1: वाह,
0: खाती हुई
1: हुई साड़ी।
0: साड़ी

0: कि कसम जाने अदा, तेरी पोशाक का एक नाम है पैमाना भी, तेरी पोशाक का एक नाम है पैमाना भी। बहुत शुक्रिया। मैं अब हमारे दरमियान मौजूद उसामा जाकिर साहब से इल्तिमास करूंगा कि वो अपनी गज़ल के अशआर सुनाएं।
1: एक गज़ल से इब्तिदा करता हूँ, पेश खिदमत है। अपने नूर को मिट्टी कर और मेरी मिट्टी पानी कर, मौला मेरी मूरत को सोला आने मनमानी कर, और मेरा नाम ठिकाना हो,
0: मेरा नाम ठिकाना हो
1: सब खुश आवाज परिंदों का।
0: क्या बात है। मेरा नाम ठिकाना हो,
1: मेरा नाम ठिकाना हो सब खुश आवाज परिंदों का, मेरी जात को जंगल कर और जंगल कोहिस्तानी कर।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह वाह।
1: ओ मेरा होना
0: मेरा
1: अपने होने की पहचान बनाकर गूंद,
0: मेरा होना अपने होने की पहचान बनाकर गूंद,
1: मेरा होना अपने होने की पहचान बनाकर गूंद, मेरी मिट्टी चाक पे धर और कुन की कारस्तानी कर।
0: क्या बात है भाई, वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर है।
1: मेरा होना अपने होने की पहचान बनाकर गूंद, मेरी मिट्टी चाक पे धर और कुन की कारस्तानी कर, और क्या तेरा दिल बहलाएगी सूखे घुटनों की चटपट।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या तेरा दिल बहला,
1: क्या तेरा दिल बहलाएगी
0: सूखे घुटनों,
1: सूखे चटपट घुटनों की चटपट, मन में प्रेम का रस भर मौला हर सजदा नूरानी कर।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छे भाई, वाह।
1: मन में प्रेम का रस भर मौला
0: हर सजदा
1: नूरानी कर, और या तो कम कर दिल की तह में हर एक चाह की गहराई।
0: हाय हाय, चाह की गहराई का जवाब नहीं, वाह वाह।
1: और या तो कम कर
2: दिल की
1: तह में हर एक चाह की गहराई, या फिर मेरे तन के भीतर दमखम भी लाफानी कर।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह।
1: या तो कम कर दिल की तह में हर एक चाह की गहराई, या फिर मेरे तन के भीतर दमखम भी लाफानी कर, और पीले रेगिस्तान से सुनकर नीले पानी की गाथा।
0: पीले रेगिस्तान से सुनकर,
1: पीले रेगिस्तान से सुनकर
2: नीले
1: पानी, नीले पानी की गाथा। चिकनी चिकनी मिट्टी चीख रही है बाबा खत्म कहानी कर।
0: चिकनी मिट्टी चीख रही है,
1: चिकनी मिट्टी चीख रही है
2: बाबा
1: खत्म कहानी कर। एक और गजल के कुछ
0: जी
1: शेर
0: साथ फरमाएं।
1: प्यासे होठों की खातिर खाली प्याला हूँ मैं,
0: प्यासे होठों की खातिर खाली प्याला हूँ,
1: प्यासे होठों की खातिर खाली प्याला हूँ मैं, सूखी आंखों में पानी भरने वाला हूँ मैं।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह।
1: और एक नदी के तूफानों का चौकीदार भी हूँ,
0: एक नदी के तूफानों का चौकीदार भी,
1: एक नदी के तूफानों का चौकीदार भी हूँ, एक जंगल के आसेबों का रखवाला हूँ मैं।
0: वाह वाह वाह,
1: एक नदी के तूफानों का चौकीदार भी हूँ, एक जंगल के आसेबों का रखवाला हूँ मैं, और मेरे ख्वाब की कोख से जन्मी तू नवजात शिशु।
0: आया है, क्या बात है, वाह वाह वाह।
1: मेरे ख्वाब की कोख से जन्मी
0: तू
1: नवजात शिशु, तेरी किलकारी से फूट रही ज्वाला हूँ मैं।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह।
1: तेरी किलकारी से फूट रही ज्वाला हूँ मैं,
0: क्या बात है।
1: और मेरी आंख में टूटने वाली एक किरण है तू,
0: मेरी आंख में टूटने वाली,
1: मेरी आंख में टूटने वाली एक किरण है तू, तेरे ख्वाब में गढ़ने वाला एक भाला हूँ मैं।
0: हाय हाय, वाह वाह, फिर से पढ़िए, वाह वाह वाह।
1: मेरी आंख में टूटने वाली एक किरण है तू,
0: वाह वाह,
1: तेरे ख्वाब में गढ़ने वाला एक भाला हूँ मैं। और एक और गजल के चंद शेर
0: जी।
1: अपने तेवर थाम संवरिया,
0: अपने तेवर थाम संवरिया,
1: कांप कांप बल खाए सड़क।
0: क्या बात है,
1: अपने तेवर थाम संवरिया,
0: कांप कांप
1: कांप कांप बल खाए सड़क, चलने वाली तेरी चाल पे जालिम मर ना जाए सड़क।
0: क्या बात है, वाह।
1: और पड़े पड़े ये दिन भर झोंके दुनिया की आंखों में धूल,
0: पड़े पड़े ये दिन भर झोंके दुनिया की आंखों में,
1: पड़े पड़े ये दिन भर झोंके दुनिया की आंखों में धूल, रात को एक साए के पीछे पीछे चलती जाए सड़क।
0: हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: और चल

0: चलते सोच रहे हो,
1: चलते चलते सोच रहे हो।
0: चलते चलते मत सोचो।
1: वाह वाह वाह, चलते चलते सोच रहे हो, चलते चलते मत सोच।
0: चलते चलते सोच रहे हो,
1: चलते चलते मत
0: चलते
1: सोचो।
0: चलते मत सोचो, सोच की अंधियारी खाई में गिरकर डूब न जाए सड़क।
1: क्या बात है भाई,
0: वाह।
1: वाह वाह वाह।
0: सोच की अंधियारी खाई में गिरकर डूब न जाए सड़क, और दीवानों को चूमने वाले,
1: दीवानों को चूमने वाले, दीवारों
0: दीवारों को चूमने
1: को,
0: वाले तुझ पर कमरे तारी हों,
1: दीवारों को चूमने वाले तुझ पर कमरे
0: कमरे
1: तारी हों।
0: तारी,
1: वाह,
0: दीवारों को चूमने वाले तुझ
1: तुझ पर
0: पर कमरे तारी हों, घर को लौटने वाले तुझको रस्ते में मिल जाए सड़क।
1: क्या बात है,
0: वाह
1: वाह
0: जी,
1: वाह
0: साहब
1: वाह,
0: वाह।
1: बहुत अच्छे भाई।
0: घर
1: क्या
0: को
1: क्या
0: लौटने वाले
1: लहजा है वहाँ,
0: तुझको रस्ते में मिल
1: मिल
0: जाए
1: जाए
0: सड़क।
1: सड़क। हाँ,
0: एक और गज़ल है, दुनिया भर से ऊब गए हो, आओ पधारो
1: दिल हारो। वाह वाह वाह,
0: दिल
1: क्या
0: हारो।
1: बात है, बहुत अच्छी गजल
0: दुनिया भर से ऊब गए हो,
1: है। आओ पधारो,
0: आओ पधारो
1: दिल
0: दिल
1: हारो।
0: हारो, खुद से भी बेजार हुए हो,
1: क्या बात है,
0: मौका मारो
1: दिल हारो।
0: दिल
1: वाह
0: हारो।
1: वाह, बहुत
0: वाह
1: अच्छे भाई, वाह
0: वाह।
1: वाह वाह।
0: और हर बंदूक की काली नाल के अंदर रख के लाल गुलाब,
1: क्या बात है, हर बंदूक की काली
0: हर
1: नाल के,
0: बंदूक की काली नाल के अंदर रख के लाल
1: लाल
0: गुलाब,
1: गुलाब।
0: हर अंधी सरहद की आंख में गोली मारो
1: वाह वाह वाह,
0: दिल
1: दिल हारो।
0: हारो।
1: क्या
0: बहुत
1: बात है भाई,
0: अच्छी,
1: वाह वाह,
0: बहुत अच्छी,
1: कमाल की गजल है, क्या शेर
0: जो
1: है।
0: भी धड़कता दिल मिल जाए उससे टूट के प्यार करो।
1: है
0: वाह
1: है, जो भी
0: वाह।
1: धड़कता दिल मिल जाए
0: जो भी धड़कता दिल मिल जाए
1: उससे
0: उससे टूट
1: टूट के
0: के प्यार
1: प्यार करो,
0: करो, ख्वाब भरी सारी आंखों की नजर उतारो
1: दिल हारो।
0: दिल
1: वाह
0: हारो।
1: वाह,
0: और दिन निकले तो सूरज की हर एक किरण का मुंह चूमो,
1: क्या बात है, वाह वाह वाह। दिन निकले तो
0: दिन
1: सूरज
0: निकले तो सूरज
1: सूरज की
0: की हर
1: हर एक
0: एक किरण
1: किरण
0: का
1: का
0: मुंह
1: मुंह
0: चूमो,
1: चूमो,
0: और रातों को चांद का कोमल नूर निहारो
1: दिल
0: दिल
1: हारो। वाह
0: हारो।
1: वाह वाह
0: बहुत
1: वाह, क्या
0: अच्छी,
1: बात है,
0: बहुत
1: उसामा
0: अच्छी।
1: कमाल, बहुत अच्छी।
0: पहली दूसरी तीसरी दुनिया सब माया का झांसा है,
1: क्या बात है, सच्चाई है बिल्कुल। वाह वाह,
0: पहली
1: पहली दूसरी
0: दूसरी
1: तीसरी
0: तीसरी
1: दुनिया
0: दुनिया
1: सब
0: सब
1: माया,
0: माया का झांसा है, दुनिया एक है दुनियादारो, इसे संवारो
1: दिल हारो।
0: दिल हारो।
1: वाह
0: बहुत अच्छा,
1: वाह,
0: बहुत बहुत
1: बहुत
0: शुक्रिया।
1: अच्छी। पहली दूसरी तीसरी दुनिया सब माया का झांसा है, दुनिया एक है दुनियादारों, इसे सवारो दिल हारो। सामईन, आप सुन रहे थे अभी उसामा जाकिर को, जिन्होंने बड़े कमाल के अशआर सुनाए, और उनका लहजा आपने महसूस किया होगा कि बेहद मुनफरिद था। अब मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे दरमियान मौजूद इस महफिल की आखिरी शायर जनाब विपुल कुमार से, कि वो अपने कलाम से हमें महसूस फरमाएं।
2: शेर,
1: इरशाद,
2: खाने सोख्ते दिल का मकीन कोई नहीं,
1: खाने सोख्ते दिल का मकी कोई,
2: खाने सोख्ते दिल का मकीन कोई नहीं, तू नहीं है तो मेरे शोला नशीन कोई
0: कोई
2: नहीं।
0: नहीं।
1: क्या
0: वाह
1: बात,
0: वाह,
1: वाह
0: बहुत अच्छा,
1: वाह,
0: क्या बात है।
2: तू नहीं है तो मेरे शोला नशीन
1: कोई
0: कोई
1: नहीं,
0: नहीं।
1: क्या बात है, वाह वाह।
2: चांद चेहरे भी चमकते हैं, गुलो सुंबुल भी,
1: चांद चेहरे भी चमकते हैं, गुलो
0: चांद
1: गुलो
0: चेहरे भी
1: सुंबुल,
0: चमकते हैं, गुलो
1: गुलो
0: सुंबुल
1: सुंबुल भी,
0: भी, तेरी दुनिया में मगर दिल सा नगीं कोई
1: कोई
0: नहीं।
1: नहीं। वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह।
1: वाह वाह वाह,
0: एक आवाज़ लगाता हूँ, कोई है भी यहाँ,
1: एक आवाज लगाता हूँ, कोई
0: एक
1: है भी
0: आवाज़
1: यहाँ,
0: लगाता हूँ,
2: एक
0: कोई
2: आवाज़ लगाता हूँ, कोई है भी यहाँ, एक आवाज़ सी आती है कहीं कोई
1: क्या
2: नहीं।
1: बात है भाई,
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह वाह,
0: वाह
1: क्या
0: वाह
1: शेर है
0: वाह।
1: भाई, बहुत अच्छा,
2: एक आवाज़ लगाता हूँ,
1: क्या
0: कोई
1: बात
0: है
1: है
2: भी
1: भी, बहुत
2: यहाँ,
1: अच्छा,
2: एक आवाज़
1: आवाज
2: सी
1: सी
2: आती
1: आती
2: है
1: है
2: कहीं
1: कहीं
2: कोई
1: कोई नहीं। वाह
2: नहीं,
1: वाह वाह,
2: एक आलम है फरावानी मर्दुम से मगर,
1: एक
0: एक
1: आलम है
2: एक आलम है
1: फरावानी
2: फरावानी
1: मर्दुम
2: मर्दुम
1: से
2: से
1: मगर,
2: मगर, मैं जहाँ जिसको बुलाता हूँ वहीं कोई नहीं।
1: क्या बात है भाई,
0: वाह
1: वाह वाह
0: वाह
1: विपुल,
0: वाह।
1: वाह वाह वाह,
0: मैं जहाँ
1: क्या
0: जिसको
1: शेर है,
0: बुलाता
1: बुलाता हूँ
0: हूँ
1: वहीं
0: वहीं
1: कोई
0: कोई
1: नहीं। बहुत
0: नहीं।
1: अच्छा है
0: वाह
1: भाई,
0: वाह।
1: वाह वाह।
2: सवाद शाम में सब वैशियों का जलसा हो,
1: सवाद शाम में
0: शाम
1: सब
0: में सब
1: वैश्यों का जलसा हो,
0: सवाद
1: कौन,
0: शाम में सब वैश्यों का जलसा हो, लहू का राग हो और सुरतराज प्यासा हो।
1: आए
0: वाह
1: वाह
0: वाह।
1: है,
0: सुना रहे हैं मुझे लोग दास्तां उसकी,
1: सुना रहे हैं मुझे लोग दास्तां
0: सुना
1: उसकी,
0: रहे हैं
1: मुझे
0: मुझे लोग
1: लोग
0: दास्तां
1: दास्तां उसकी,
0: उसकी, इस एतमाद से जैसे किसी ने देखा हो।
1: क्या
0: वाह
1: बात है,
0: वाह
1: वाह वाह,
0: वाह
1: अरे
0: वाह
1: वाह
0: सुना
1: वाह, बड़े
0: रहे
1: मजे के,
0: हैं
1: वाह वाह वाह,
0: मुझे लोग
1: क्या बात है,
0: दास्तां
1: बहुत
0: उसकी,
1: अच्छी है, क्या
0: इस
1: बात है,
0: एतमाद से
1: इस
0: जैसे,
1: एतमाद से
0: जैसे
1: जैसे
0: किसी
1: किसी
0: ने
1: ने
0: देखा
1: देखा हो,
0: हो,
1: क्या बात है भाई, वाह वाह वाह,
0: किसी के होंठ सुरों में कलाम करते हों,
1: किसी के होंठ सुरों

0: किसी का रंज उदासी की तान लेता हो, किसी कनार की खुशबू से शेर खुलने लगे, कि बात बात नहीं हो बस एक इशारा हो।
1: क्या बहुत अच्छा।
0: अब आ गए हैं कि आखिर तेरी गली का भरम,
1: अब आ गए हैं कि
0: अब आ गए हैं कि आखिर तेरी गली का भरम कहीं किवाड़ की दस्तक ही से न खुलता हो। अब आ गए हैं कि आखिर तेरी गली का भरम कहीं किवाड़ की दस्तक ही से न खुलता हो।
1: क्या बात है, क्या जबान है, बहुत अच्छे भाई।
0: मैं ये समझ के रगे गुल से बात करता हूँ, मैं ये समझ के रगे गुल से बात करता हूँ, कोई तो बाग में मेरा हिसाब लिखता हो। इस धमक से तू अगर पांव रखेगा मुझमें,
1: इस धमक से तू अगर पांव रखेगा मुझमें
0: फिर कोई चश्मा नया फूट बहेगा मुझमें। क्यों न कुछ शोर उठाऊं कि वो खामोश मिजाज,
1: क्यों न कुछ शोर उठाऊं कि वो खामोश मिजाज
0: बे इरादा ही सही ध्यान तो देगा मुझमें। क्यों न कुछ शोर उठाऊं कि वो खामोश मिजाज, बे इरादा ही सही ध्यान तो देगा मुझमें। घर में चलते हुए डरता हूँ कि कोई साया आके टकराएगा और आ ही बसेगा मुझमें। घर में चलते हुए डरता हूँ कि कोई साया आके टकराएगा और आ ही बसेगा मुझमें।
1: बहुत अच्छे भाई।
0: इस कदर तंग है दिल अपनी परेशानी से,
1: इस कदर तंग है दिल अपनी परेशानी से
0: सैर अच्छी है मगर कौन रहेगा मुझमें।
1: वक्त झाड़ेगा नए हिजर के मौसम का शजर
0: और एक लम्हा कोई आन गिरेगा मुझमें। और एक लम्हा कोई आन गिरेगा।
2: दोबारा पढ़ो यार, बहुत अच्छा।
0: वक्त झाड़ेगा नए हिजर के मौसम का शजर और एक लम्हा कोई आन गिरेगा मुझमें। एक ही बुत से निकल जाएगा इल्हाद का तीर,
1: एक ही बुत से निकल जाएगा इल्हाद का तीर
0: सांस में नाद जो अटका है बजेगा मुझमें।
1: क्या बात, फिर से बड़ी।
0: एक ही बुत से निकल जाएगा इल्हाद का तीर, सांस में नाद जो अटका है बजेगा मुझमें। मेरे नाजुक मेरी मिट्टी पे बहुत रक्स न कर,
1: मेरे नाजुक मिट्टी पे बहुत रक्स न कर
0: ध्यान की रुत है कोई फूल खिलेगा मुझमें। आंखों की स्याही बरती है ख्वाब रकम करने के लिए,
1: आंखों की स्याही बरती है ख्वाब रकम करने के लिए
0: इस पर भी वो कहता है कम है सुरमे की कलम करने के लिए। मेरे खुश्क बदन की ख्वाहिश में कई बादल उड़ते फिरते हैं, मेरे खुश्क बदन की ख्वाहिश में कई बादल उड़ते फिरते हैं, कई नदियां बहती रहती हैं मेरी खाक को नम करने के लिए। तू किन बागों का हुस्न लिए इस तपती रेत पे बैठा है,
1: तू किन बागों का हुस्न लिए इस तपती रेत पे बैठा है
0: आए आहुए मस्ती होश में आ एक दश्त है रम करने के लिए। कहता है वो जालिम सब्र करो क्या तेग के नीचे गर्दन है,
1: कहता है वो जालिम सब्र करो क्या तेग के नीचे गर्दन है
0: और एक इशारा होता है मुझे गर्दन खम करने के लिए।
1: बहुत सामईन, आप सुन रहे थे विपुल कुमार को। इसी के साथ ये मुशायरा अपने अख्तिताम की तरफ बढ़ता है और हमारे साथ मौजूद थे जनाब शहबाज रिजवी, जनाब उसामा जाकिर और जनाब विपुल कुमार, साथ में खाकसार तसनीफ हैदर। उम्मीद है कि आपको ये मुशायरा पसंद आया होगा। शुक्रिया।
3: सामईन, अभी आप मुशायरे से महजूज हो रहे थे, मुशायरे की निजामत कर रहे थे जनाब तसनीफ हैदर। इसी के साथ अपनी मेज़बान फरहीन इकबाल को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मुशायरा। ये आकाशवाणी दिल्ली का

इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और आइए चलते हैं और सुनते हैं फिल्म संगीत। और कार्यक्रम फिल्म संगीत का सुनते हैं सबसे पहला प्यारा सा गीत।

जी हाँ दोस्तों, ना जाने क्या क्या ढूंढता है ये पागल दिल, और ना जाने कितनी कितनी अर्जियां लगाता है कि केवल एक बार, सिर्फ एक बार वो चेहरा देखने को मिल जाए, है ना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: श्रोताओं, अब समय है समाचार संध्या का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 99 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
3: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार 3री बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपये से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस

0: मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का

0: शुभेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। पांच अरकान असम्बली ने भी काबीना वजीर के तौर पर हलफ लिया। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वो कल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दिनभर के दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। और तीरंदाजी में शंघाई में वर्ल्ड कप स्टेज टू में मर्दों के इन्फरादी कंपाउंड मुकाबले में भारत के साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल में बीजेपी कानून साज पार्टी के लीडर शुभेंदु अधिकारी ने आज रियासत के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। इस तरह उन्होंने रियासत में पहली बीजेपी सरकार की कमान संभाल ली है। गवर्नर आर एन रवि ने जनाब शुभेंदु अधिकारी को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक शानदार तकरीब में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वजीर आला के हमरा पांच काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। इनमें दिलीप घोष, अग्नि मित्रा पॉल, अशोक किर्तानिया, निशित प्रमाणिक और क्षुदीराम टूडू शामिल हैं। हलफबरदारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, एनडीए और बीजेपी की सरकार वाली रियासतों के वजराए आला, भारतीय जनता पार्टी के सदर नितिन नबीन और पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात में बीजेपी ने 207 सीटें जीती हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली। तृणमूल कांग्रेस रियासत में पिछले 15 साल से इख्तदार में थी। इधर मगरबी बंगाल कानूनसाज असम्बली के नए मुंतखब अरकान विधानसभा में 13 मई को हलफ लेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मगरबी बंगाल के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने मैदान में पीडब्ल्यू टेंट में चीफ सेक्रेटरी, दाखिला सेक्रेटरी और रियासत के दीगर ओहदेदारान के साथ मीटिंग की। इस दौरान रियासती हुकूमत के सेक्रेटेरिएट की जगह फिर बदलने के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में तजदीद का काम जारी है, जिसे इस विरासती मकाम से 2011 में ममता बनर्जी के इख्तदार में आने के बाद न बनना मुंतकिल कर दिया गया था। बीजेपी की नई हुकूमत राइटर्स बिल्डिंग से काम करेगी, जो एक विरासती मकाम है। एक अहम वाक़े के तहत आज एसआईआर के लिए मगरबी बंगाल के खसूसी मुशाहिद रिटायर्ड आईएएस अफसर सुब्राता गुप्ता को मगरबी बंगाल के वजीर आला का मुशीर और 2017 बैच के आईएएस अफसर शांतनु बाला को उनका पर्सनल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: तमिलनाडु में तमिल कवयित्री कड़गम टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में लोक भवन में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर से मुलाकात की और 120 सरकारी असेंबली की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारे नामनिगार ने बताया कि रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर कल सुबह 10 बजे चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में जोसेफ विजय और उनकी काबीना को हलफ दिलाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: टीवी के पार्टी के लीडर जोसेफ विजय ने सरकार बनाने के लिए आज फिर गवर्नर से मुलाकात की। नतीजे आने के बाद पिछले 6 दिन में वो चौथी मरतबा अक्सरियत हासिल होने के मामले पर गवर्नर से मिलने गए। गवर्नर मौसूफ ने इससे पहले उनसे मुलाकात का प्रोग्राम मनसूख कर दिया था, क्योंकि उन्हें केरला में जाना था, लेकिन बाद में उन्होंने टीवी के पार्टी के लीडर को फिर मुझसे मुलाकात के लिए मधु किया। अब पार्टी को मजमूई तौर पर 120 सरकारी असेंबली की हिमायत हासिल है। डीएमके पार्टी से इतिहास से अलीहदा होकर कांग्रेस ने टीवी के पार्टी की हिमायत करने का ऐलान किया है। चेन्नई से जुआ की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: हालिया असम्बली इंतखाबात में टीवी के पार्टी 108 सीटें जीतकर वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि सरकार बनाने के लिए 234 रुकनी तमिलनाडु असम्बली में अक्सरियत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। पार्टी ने कहा है कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ही पार्टियों ने सरकार की तश्कील के लिए अपनी गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है। जोसेफ विजय दो असेंबली हलकों से चुनाव जीते थे, इसलिए उन्हें एक सीट छोड़नी होगी। इस तरह टीवी के पार्टी के अरकान की तादाद 107 रह जाएगी। हिमायत करने वाली पार्टियों के अरकानी असेंबली की मजमुई तादाद 13 हो गई है। इनमें कांग्रेस के 5 अरकान जबकि सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल के 2-2 अरकानी असेंबली शामिल हैं। भारत ने ओडिशा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जजीरे से एमआईआरवी निज़ाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दिफा ने कहा कि कई तरह के पेलोड्स के साथ इस मिसाइल का तजुर्बा किया गया। इसमें बहरे हिंद के खित्ते में एक वसी जोग्राफियाई इलाके में फैले हुए मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एमआईआरवी सलाहियत वाले अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश पर दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम डीआरडीओ, भारतीय फौज और सनद की सताइश की। जनाब सिंह ने कहा कि इससे बढ़ते हुए खतरात के खिलाफ मुल्क की दिफाई तैयारी में नुमाया इजाफा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। सुबह तकरीबन 11 बजे वजीर आजम बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं सालगिरह तकरीबात में शिरकत करेंगे। इसके बाद वजीर आजम मोदी हैदराबाद जाएंगे, जहां वो तेलंगाना में तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम मोदी गुजरात का भी 2 रोजा दौरा करेंगे, जो कल से ही शुरू होगा। पीर के रोज वजीर आजम मोदी सोमनाथ मंदिर के अहिया की 75वीं सालगिरह के मौके पर सोमनाथ अमृत महोत्सव में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 11 साल पहले एनडीए सरकार की जानिब से शुरू की गई समाजी सिक्योरिटी और पेंशन की अहम स्कीमों के असरात को उजागर किया है। इनमें पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना शामिल हैं। जनाब मोदी ने कहा कि इन इकदामात से मुल्क के अवाम के लिए अजमत, वक़ार, यकीन दहानी और माली सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के सरकार के अहद की अक्कासी होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना से सबसे निचली सतह पर लोगों की जिंदगी पर मुस्बत असर पड़ा है और समाजी सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क मजबूत हुआ है। हुकूमत ने कौमी पंचायत अवार्ड्स 2025 के फातिहीन का ऐलान कर दिया है और इस एजाज के लिए मुल्क भर से 42 पंचायतों को मुंतखब किया गया है। पंचायती राज की वजारत ने मुतला किया है कि अवार्ड पेश किए जाने की तकरीब आइंदा माह की 3 तारीख को नई दिल्ली में होगी। वजारत के मुताबिक कर्नाटक को सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं और उसकी 6 पंचायतों को मुंतखब किया गया है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की 5-5 पंचायतें चुनी गई हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से वापस्ता मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। इससे कबल ईडी ने इस केस के सिलसिले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 मकामात पर छापे मारने की कार्रवाई अंजाम दी थी। काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम के 2002 के एक्ट की फौजदारी दफात के तहत ये कार्रवाई की गई है। एजेंसी ने बताया कि इस केस का ताल्लुक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद के जरिए मुबैना तौर पर बड़े पैमाने की मनी लॉन्ड्रिंग और दुबई से नाजायज रकूमात की भारत मुंतकली से है। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस एडीए ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ दर्ज किए गए 3 केसों के सिलसिले में मुंबई में 17 मकामात पर तलाश की कार्रवाई अंजाम दी। सीबीआई के मुताबिक तलाशी की यह कार्रवाई इन कंपनियों के डायरेक्टरों के रिहायशी ठिकानों के साथ साथ उन जैली कंपनियों के दफातर में की गई जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक फंड्स को मुंतकिल करने के लिए किया गया था। एजेंसी ने कहा कि इस कार्रवाई के नतीजे में काबिल एतराज दस्तावेजात कब्जे में ली गई हैं। सीबीआई ने कहा कि गुज़श्ता कुछ महीनों के दौरान सरकारी मिल्कियत के मुख्तलिफ बैंकों और एलआईसी की जानिब से दर्ज कराई गई शिकायतों की बुनियाद पर अनिल अंबानी की सरबराही वाले रिलायंस ग्रुप के खिलाफ 7 केस दर्ज किए गए। हजारों करोड़ रुपए की मुबैना धोखाधड़ी के सिलसिले में ये शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। मणिपुर में कामजोंग जिले के नामली से जिस खातून को कुकी नेशनल आर्मी बर्मा और विलेज वॉलेंटियर्स ईस्टर्न जोन की जानिब से जुमेरात को अगवा किया गया था, उसे आसाम राइफल्स की मरबूत कोशिशों के सबब आज जेड चुरुज गांव से रिहा कर दिया गया। नीम फौजी दस्ते ने खुफिया और दीगर एजेंसियों के साथ तालमेल में अगवाशुदा खातून के बचाव की कोशिश की और इस खातून को जेड चुरु गांव के नज़दीक सुपुर्द कर दिया गया।

दिफा के वजीर ममलिकत संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में AIOS मुसल्ला अफवाज से मुतालिक ऑफ्थेल्मोलॉजी अपडेट 2026 का इफ्तिताह किया। इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आंखों के अमराज की कुल हिंद अंजुमन के साथ इश्तराक में नई दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल के महकमा अमराज चश्म की जानिब से किया जा रहा है। इसमें भारत और बैरून मुल्क से फौज के आंखों के अमराज के माहिरीन और दीगर सिविलियन माहिरीन आंखों के अमराज के सिलसिले में तहकीक इख्तरा और तिब्बी महारत के सिलसिले में एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर यज्जा हो रहे हैं। अमरीका ने कहा है कि वो मुजवजा 14 निकाती फ्रेमवर्क पर ईरान के बाजाब्ता जवाब का इंतजार कर रहा है, जिसका मकसद इलाकाई महाजराई को फैलने से रोकना है। मगरबी एशिया के खत्ते में फौजी और सियासी कशीदगी का सिलसिला भी जारी है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका सिफारतकारी में मसरूफ है, और उधर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह इशारा दिया है कि ईरान के जवाब से मुजाकरात के अगले मरहले का तायुन हो सकता है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने अमरीका की हालिया फौजी कार्रवाई पर नुकताचीनी की है और अमरीका पर इल्जाम लगाया है कि वो कशीदगी बढ़ाकर सिफारती कोशिशों को कमजोर कर रहा है। आप नए हुरमुज और उसके अतराफ ताज़ा वाकयात के पस मंज़र में ये बयानात सामने आए हैं, जिसमें ईरान और अमरीकी फोर्सेस के दरमियान मुबैना बहरी टकराव भी शामिल है। केरल में मौसम गर्मा की बारिश में तेजी आ गई है और भारतीय मौसमियात महकमे ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 5 दिनों तक कहीं कहीं शदीद बारिश और तेज़ हवाएं चलने की पेशगोई की है। IMD ने आज 9 अजला में येलो अलर्ट जारी किया है और 7 अजला में कल भी अलर्ट नाफिज रहेगा। खराब मौसम के सबब केरलम में और लक्षद्वीप में माहीगीरों को समंदर में न जाने का मशवरा दिया गया है। ताहम कर्नाटक के साहिल के नज़दीक माहीगीरी के सिलसिले में कोई पाबंदी नाफिज नहीं की गई है। 19वें मुंबई बैनुल अक्वामी फिल्म फेस्टिवल के लिए मंदूबीन के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। ये फिल्म फेस्टिवल 15 से 21 जून तक मुंबई में होगा। जनूबी एशिया का ये अहम फेस्टिवल दस्तावेजी मुख्तसर फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों के लिए वक्फ है। इसके लिए मंदूबीन 500 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस अदा करके फेस्टिवल के पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अपना इंदराज करा सकते हैं, जबकि तलबा को दस्तावेजात की तस्दीक के साथ इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होगी। आज चेन्नई के शंघाई में तीरंदाजी आलमी कप 2026 के दूसरे मरहले के तहत मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता। महाराष्ट्र के 25 साल तीरंदाज ने डेनमार्क के सरकर्दा खिलाड़ी और कोच मार्टिन डेम्सपो को 144-147 के स्कोर से हराकर कांसे का तमगा जीता और भारत को जारी टूर्नामेंट में पहला तमगा दिलाया। गुज़श्ता बरस भारत ने शंघाई में 5 कंपाउंड तमगे जीते थे। IPL में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान मैच जारी है। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स की जीत के लिए 230 रन का निशाना दिया। गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए, जबकि साई सुदर्शन ने 55 रन स्कोर किए। इससे कबल राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की कुश्ती फेडरेशन ने विनेश फोगाट को डिसिप्लिन की पाबंदी न करने और डोपिंग मुखालिफ जाब्तों की खिलाफवर्जी के इल्जाम के सिलसिले में आज वजह बताओ नोटिस जारी किया है। 15 सफहात पर मुश्तमिल नोटिस में WFI ने कहा कि विनेश इस साल जून तक घरेलू मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। शोभेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। 5 अरकान असम्बली ने भी काबीना वजीर के तौर पर हलफ लिया। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने कांग्रेस VC के IUML और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वो कल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। भारत ने MIRV निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दिन भर के दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। और तीरंदाजी में शंघाई में वर्ल्ड कप स्टेज 2 में मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में भारत के साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धोंडोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से। मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाए हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे कहने दीजिए, अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है, लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें या अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो उस दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करूं, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेते थे,

0: आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही आकाशवाणी की, वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए। अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी, वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खाटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से, और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहां के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे, वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता है आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था, कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप दो दो गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, तो फिर आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहाँ, जब आप वहाँ पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था, तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था, कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि उस सबके लिए कुछ ना कुछ है।
1: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100-100 रंग।
2: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैक्लुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
3: लेकिन सच तो ये है कि मैक्लुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था।

0: भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है, जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
1: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
0: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
1: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है, जहां 7 समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR,
0: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है, जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
1: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
2: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाई, जो हमारे 2-3 वर्टिकल है, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का ना केवल प्रचार प्रसार करें, बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र, वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिस जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन हैं और दूतावास और प्रधान कौंसुल, वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता, संस्कृति, अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट, विदेशी आर्टिस्ट हैं, जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती, और वो सबके लिए आनंद का विषय है। और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है, और 4,000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती हैं, और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7,000 से 8,000 स्टूडेंट्स हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड
0: एम्बेसडर्स। इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है, जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को, जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाव में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
3: नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम एके जुगबाय है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे एक साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
4: नमस्ते,

0: मेरा नाम दरिया है, मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का एक साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग के स्टेट यूनिवर्सिटी में और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है भारतीय लोगों के साथ। मैंने बहुत काम किया है अनुवाद के क्षेत्र में और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए। हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के 2 टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए। और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग देशों के दोस्त हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
1: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
2: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है। चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान, दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
1: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
2: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
1: और मैं प्रांजल।
3: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी 100-100 रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है, और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी, वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
4: मेरा नाम सुनीता जाखड़ है। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए, और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है। मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट्स को। फिर और हौसला बढ़ाते रहे, मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना जीपर्स होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ। बाकी 2 अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे इसमें शेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इस पे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहां का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहां से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊं। मैं हमेशा मेरी यही कोशिश रहती हूँ।
5: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादरगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्यरत कर रही हूँ। जिससे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे, तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी, तो उन्होंने भी बहुत सारा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशंस में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन्स हैं जो ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीश लेके चलूं। और फिर उसी में

0: तो मैं अभी लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं मुझे ये आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था करना। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भादरगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो वहाँ पे आए थे तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली। तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
1: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है, जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते हैं कारीगर घर में जो काम करते हैं, पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
2: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद, सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
3: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को। हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
4: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
3: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
4: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
3: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है? बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
5: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बहुत देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पर लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रिलिक ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से ले में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए, हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है, कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया, उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
4: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद,
3: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।

0: आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
1: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
2: भारत में और भारत की यह वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रांग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं ये मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
1: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
0: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल।
1: और मैं नेत्रा।
3: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है। और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए, पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पी.वी. काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया। और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। श्री राजकुमार मजुमदार भारत के बहुमुखी संतूर वादकों में से एक हैं। अपनी विशिष्ट वादन शैली और मधुर ध्वनि के लिए वे संगीत प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से दोनों हाथों से संतूर को उल्लासपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत अपने पिता सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, स्वर्गीय संगीत साधक पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की। इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम बल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजुमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं तथा ICCR के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। वे भारत एवं विदेशों में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।
5: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ संतूर रिसाइटल बाय राजकुमार मजुमदार। Rajkumar Majumdar is one of the most versatile santoor players in India, renowned for his distinctive style and exceptional tonal quality. His performances are widely admired by music connoisseurs, particularly for his remarkable ability to play the santoor with both hands in a vibrant and dynamic manner, creating a truly captivating musical experience. He began his musical journey with training in tabla under his father, the eminent classical vocalist, late Sangeet Sadhak, Pandit Prashant Majumdar. He later underwent advanced training in tabla under illustrious gurus including Pandit Prem Ballab of the Delhi Gharana, Professor Gyan Prakash Ghosh of the Farrukhabad Gharana, and the legendary Pandit Samata Prasad of the Banaras Gharana. A gold medalist in tabla, his deep understanding of rhythm laid a strong foundation for his musical evolution. During this period, he was inspired to learn the santoor under the guidance of the legendary santoor maestro, Pandit Bhajan Sopori of the Sufiana Gharana. His innate sense of rhythm combined with melodic sensitivity enabled him to emerge as a distinguished instrumentalist, earning accolades at both national and international levels from various prestigious musical organizations. Rajkumar Majumdar is an A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, and an empaneled artist of ICCR. A celebrated performer in India and abroad, he has presented his art on numerous prestigious occasions.
4: आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उजित उदय कुमार. राजकुमार मजुमदार अपने कार्यक्रम का आरंभ राग जनसमोहिनी से कर रहे हैं. प्रस्तुत है आलाप जोड़ और झाला. विलंबित रचना रूपक ताल में निबद्ध है और मध्य लय रचना तीन ताल में निबद्ध है.
5: He is accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. Rajkumar Majumdar begins his santoor recital with rag Jansammohini, presenting Alap, Jod and Jhala. Vilambit composition is set to Rupak Tal and Madhyalay. Drut composition is set to Teen Tal.

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was Rag Jansammohini. Continuing his recital, he now presents Rag Abhogi. Madhyalay and Drut composition is set to Teen Taal.

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard Santoor Recital by Rajkumar Majumdar. With this, we come to the end of tonight's National Program of Music. He was accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R. N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram today were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Nabin and several other leaders of BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishakh, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is said to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu tomorrow. Tamilaga Vitri Karagam TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, Vidudalai Sirithagai Kachi, VCK and the Indian Union Muslim League, IUML. Vijay, who won from two assembly constituencies, will have to vacate one seat, reducing TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting parties, including Congress with five MLAs and CPI, CPIM, VCK and IUML with two MLAs each, stands at 13. The top brass of the Congress party today held a meeting in New Delhi to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state Deepa Dasmunshi, general secretary organization KC Venugopal and senior Kerala leaders Ramesh Chinnitala and VD Satheesan. The party said Congress Chief Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister and the name will be announced very soon. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana tomorrow. Mr. Modi will first travel to Karnataka to participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He will also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Thereafter, Prime Minister Modi will travel to Telangana to lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistics efficiency, enhance safety, and provide a better travel experience for people. Later in the day, Mr. Modi will reach Jamnagar on a two-day visit to Gujarat. India has conducted a successful flight trial of an advanced Agni missile with MIRV, Multiple Independently Targeted Re-entry Vehicle System, from Dr. APJ Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post, the Defence Ministry said the missile was flight tested yesterday with multiple payloads targeted to different targets spatially distributed over a large geographical area in the Indian Ocean region. Defence Minister Rajnath Singh has complimented DRDO, Indian Army and industry on the successful flight test of Agni missile with MIRV capability. Mr. Singh said the achievement will add an incredible capability to the country's defence preparedness against the growing threat of perceptions. In archery, India, Sahil Jadhav won a bronze medal in the men's individual compound event at the World Cup 2026 Stage 2 in Shanghai, China today. The 25-year-old Maharashtra archer defeated Denmark veteran player-cum-coach Martin Damsbo 147-144 in the bronze medal playoff to secure India's first medal of the ongoing tournament. And with that, we end this news bulletin.
3: Yay. आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, जो कि है आपका मनपसंद कार्यक्रम आपकी फरमाइश। मैं रचना अग्निहोत्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि हमें अपना ईमेल भेज देना है। हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। एक बार फिर से मैं बता दूं, ipradiodelhi@gmail.com पर आपको अपना ईमेल भेजना है, अपनी फरमाइश के गीत के साथ, अपने नाम के साथ, और आप किस जगह से भेज रहे हैं उसका नाम। बस चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

श्रोताओं, इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है मालियान सरधना मेरठ से, अनिल जैन जी, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन और आदि जैन का। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

श्रोताओ, ये गीत हमने सुना फिल्म बहू बेगम से आवाज़ें आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी जी की थी। इसी के साथ आगे चलते हैं, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं आप सभी के। सबसे पहला मैसेज है जय जिनेंद्र श्रोता संघ परभणी से, महाराष्ट्र से, रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई का। आप सभी और पूरा संघई परिवार हमारा ये कार्यक्रम सुन रहा है, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर जी का, जो कि हमारे साथ हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंदन नगर सहारनपुर से एस के नारंग जी, आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग भी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके हैं, हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। अगला मैसेज कल्पना मदन झा, मानव और मयंक का आया है वापी गुजरात से, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज दुर्गा चौक जूना पानी सनावत से कालू सिंह बडोले, सीताराम हीरालाल बडोले, साहिल सुमन बडोले, विशाल हरिओम और भावना बडोले जी का मैसेज आया है, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे जी का, जो कि

सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। वही वीरमगाम गुजरात से अजीत भवसार और प्रमिला भवसार भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं मोहम्मद सईद अब्बासी जी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान और अबान अब्बासी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगला मैसेज हमारे पास आया है ताज मोहम्मद अंसारी जी का, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल जी भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा जी शामिल हो चुके हैं हमारे कार्यक्रम में। ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगला मैसेज हमारे पास आया है सपकाल परिवार का, उसके साथ ही गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी जी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगला मैसेज हमारे पास गांव टोरोवाल नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसी के साथ चलते हैं अगले गीत की तरफ।

श्रोताओं, इस गीत को हमने लिया था फिल्म प्यासा सावन से और आवाज़ें लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की थी। इसी के साथ अगला मैसेज जो कि आया है राम राम जी के साथ जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित का, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसके साथ सुनील पाठक जी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं अनारकली बाजार जगराओं से। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है गुमला झारखंड से एसएम जावेद, शगुफ्ता और अंजुम का, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। दीदी जी को प्यार भरा नमस्कार। और हमारे साथ हैं शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल जी जो कि हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा जी, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल हमारे साथ बने हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अगला मैसेज हमारे पास मजनू का टीला से आया है जहां से कमल बालूजा जी हमें सुन रहे हैं, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक साथ में हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया जी, गीता रानी जाजोरिया जी के साथ गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू के साथ हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। घनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सभी का स्वागत। कमल बालूजा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल मेहसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कुवात बिहार से शेख जफर हसन और नरगिस जफर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह हमारे साथ बने हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुरहेकर हमारे साथ हैं, हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारे साथ शामिल हैं कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज और रिफाकत भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारे साथ आपका स्वागत। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी जी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। इसी के साथ अगला मैसेज हमारे पास आया है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड के, श्रीमती नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के, अंबेडकर चौक बाकोड़ी से उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वडिंग खेड़ा से पंजाब से मिंटू थॉमस जी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। प्यार भरी नमस्कार के साथ हमारे पास मैसेज आया है पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग,
टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भाविक ढींगरा जी का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पटियाली रोड गंज डुंडवारा से आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिज हुसैन, अरहान हुसैन और परिवार के सभी सदस्य हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। चलिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले बहुत से प्यारे से गीत की तरफ, जो कि भेजा है आप ही ने।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म सलामी से। आवाज़ें थी कुमार सानू और आशा भोसले जी की। और इसी के साथ चलते हैं अपने श्रोताओं की तरफ, जिनका मैसेज आया है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। राजकुमार वर्मा जी सुन रहे हैं प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा के साथ। शिव मंदिर हकीकत पूरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन

आपका बहुत बहुत स्वागत है। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगला मैसेज हमारे पास आया है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा का, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंटू शर्मा जी का भी हमारे पास मैसेज आया है और उसी के साथ चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा जी भी हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना पंखा रोड, जनकपुरी से पिंटू दीवाना राजेंद्र सिंह ओबरॉय हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारे साथ शामिल हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला मैसेज हमारे पास आया है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया का, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली रघुबीर नगर से दिलावर खान जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, साथ में हैं हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू, लड्डू भी हमारा कार्यक्रम सुन रहा है। इसके साथ ही अगला मैसेज सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम कुमार वर्मा भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। अगला मैसेज हमारे पास आया है पटियाला रोड गंज डुंडवारा से आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और परिवार के सभी सदस्य हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंजू सराय संभल से हमारे पास मैसेज आया है छोटे अंसारी, आलम अंसारी और असद अंसारी जी का, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, साथ में है सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा जी सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम, साथ में है प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा, आप सभी का स्वागत। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी जी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, साथ में बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर और रिजवाना परवीन अब्दुल्ला आज़ाद जी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म जहां आरा से, आवाज तलत महमूद जी की थी। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पे, मेरे साथ यानी कि रचना अग्निहोत्री के साथ। और इसी के साथ चलते हैं अगले मैसेज की तरफ, जो कि हमारे पास आया है राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से, सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामन शेंडे जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमें निराश और नजरअंदाज मत करना के मैसेज के साथ हमारे पास मेल आया है छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से, अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, कापसहेड़ा बॉर्डर, नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले फैमिली की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमने आपका मैसेज पढ़ दिया है, अब आप हमसे नाराज नहीं हो सकते। अगला मैसेज हमारे पास आया है, बहुत सारे मैसेज हमारे पास एक साथ आए हैं, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला मैसेज फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से, एड नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगला मैसेज हमारे पास आया है कस्बा गुन्नौर यूपी से, फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा कार, जो कि लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रीम नमस्कार के साथ हम आपका प्रोग्राम बराबर सुन रहे हैं, आपका लोकप्रिय कार्यक्रम आपकी फरमाइश कार्यक्रम हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि संदेश के साथ। ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्रवधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया और समस्त कठेरिया परिवार की तरफ से मैसेज आया है, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद के साथ। इसके साथ अगला मैसेज हमारे पास आया है समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह जी का, जो कि हमारे कार्यक्रम के साथ हैं, हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी जी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं। इसके साथ ही अगला मैसेज छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा जी, जो कि लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत।

अगला मैसेज डंगेड़िया सरहिंद पंजाब से गुरप्रीत सिंह बिलिंग का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता और पिहरा बाजार झुमरी तलैया गिरिडीह से शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, अभय कुमार सनातनी, गुड्डू कुमार, खदान कोठी बोरोपारा चौक बस बेरिया वेस्ट बंगाल से मुन्नी देवी शॉ, जयप्रकाश साव, वसंत लाल साव, रिया जिया, टूसी आयोशी, अनिरुद्ध बाबू हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में मैसेज पढ़ने का अंदाज बहुत ही शानदार। आप हमेशा खुश रहिए के आशीर्वाद के साथ हमारे पास मैसेज आया है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी जी का, जो कि लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। इसके साथ ही अगला मैसेज हमारे पास आया है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल जी, जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आइए चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ, जो कि आप ही के द्वारा चूज किया गया है।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म सिलसिला से और आवाज़ अमिताभ बच्चन जी की थी। इसी के साथ चलते हैं अगले मेल की तरफ, जो कि आया है ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया जी का। उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्रवधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया और समस्त कठेरिया परिवार की तरफ से। और आपने मुझसे शिकायत की है कि बहन जी मेरा मेल शामिल नहीं करोगी क्या, हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं या मेरे मेल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। प्लीज़ बहन जी मेल ज़रूर ज़रूर शामिल कर ले और इससे आपकी चोरी पकड़ी गई कि आप हमारा कार्यक्रम लगातार नहीं सुन रहे, क्योंकि मैं आपका मेल पहले शामिल कर चुकी थी। इसके साथ ही अगला मैसेज हमारे पास आया है कृष्ण की नगरी मथुरा से। सबा अंसारी, शकील अंसारी, बुशरा अंसारी, हिना अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि का, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी जी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। और रियासत हुसैन सिद्दीकी जी जसपुर उत्तराखंड से लगातार हमारे साथ शामिल हैं। इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया है फिल्म उसने कहा था और आवाजें लता मंगेशकर और तलत महमूद जी की थी। और इसी के साथ मुझे यानी रचना अग्निहोत्री को इजाजत दीजिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश समेटने की।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, 12 बजने को है, इन सभी मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नबन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुख

0: लोगों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धने खाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री रवि रविशंकर के 70वें जन्म समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला परसद बिसेसर के साथ त्रिनिदाद और टोबैगो के नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप का वो स्थान जहां गिरमिटिया भारतीय मजदूर सबसे पहले त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। डॉ जयशंकर ने नेल्सन द्वीप पर त्वरित प्रभाव परियोजना के लिए डॉ कमला परसद बिसेसर के साथ भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय सहायता से समर्थित ये परियोजना एक अमर यात्रा की साझा विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स 152 पर ही सिमट गई। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से रविंद्र जडेजा ने सर्वाधिक 38 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 229 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिम राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal yesterday. Governor R. N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram Tudu were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP-ruled states, BJP President Nitin Nabin and several others leaders of BJP attended the ceremony. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay yesterday met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is set to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu today. Tamilaga Vetri Karagam, TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 seats in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, Vidudalai Sirithagail Katchi, VCK and the Indian Union Muslim League, IUML.

आप सुन रहे हैं एआर लाइव न्यूज 24x7 पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 12:10।

प्रस्तुत है सुरों का सफरनामा कार्यक्रम। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कीर्तिका है आप सभी को प्रणाम। सुरों का सफरनामा कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज का सफर उन गलियों की ओर है जहां भारतीय फिल्म संगीत ने चलना सीखा। आज बात उस शख्स की जिन्हें लता मंगेशकर अनिल दा कहती थी और जिन्हें नौशाद साहब अपना गुरु मानते थे। आज हमारा शो समर्पित है अनिल बिस्वास को। अनिल दा का जन्म 7 जुलाई 1914 को बंगाल के बारिसाल में हुआ था। बहुत कम लोग जानते हैं कि संगीतकार बनने से पहले वे एक क्रांतिकारी थे। वे भगत सिंह के विचारों से प्रेरित थे और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई बार जेल भी गए। जेल की उन तन्हा रातों में वे खंजरी

बजाकर गाना गाया करते थे। आइए उनके उस संगीत से शुरुआत करते हैं जिसने 1943 में किस्मत फिल्म के जरिए पूरे भारत में तहलका मचा दिया था।

दोस्तों, अभी अभी गीत सुन रहे थे फिल्म किस्मत से। 1934 में अनिल दा मुंबई आए। उस दौर में संगीत बहुत साधारण होता था। अनिल दा ने पहली बार भारतीय संगीत में ऑर्केस्ट्रेशन और काउंटर मेलोडी का परिचय दिया। काउंटर मेलोडी यानी जब गायक गा रहा हो तो बैकग्राउंड में वाद्य यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट्स एक अलग धुन बजा रहे हैं जो मुख्य धुन को सहारा दें। वे पहले संगीतकार थे जिन्होंने फिल्मों में 12-पीस ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल किया। उन्होंने सागर मूवी टोन को और बॉम्बे टॉकीज जैसी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया। अनिल जी की बहन पारुल घोष ने भी उनके संगीत को घर घर पहुंचाया।

दोस्तों, अनिल दा को गायक बनाने वाली मशीन भी कहा जाता था। क्या आपको पता है कि मुकेश जी शुरू में KL सहगल की नकल करते थे? अनिल दा ने उनसे कहा, दुनिया को दूसरा सहगल नहीं चाहिए, दुनिया को पहला मुकेश चाहिए। उन्होंने मुकेश को अपनी असली आवाज़ पहचानने में मदद की। इसी तरह तलत महमूद की आवाज़ में जो हल्का सा वाइब्रेटो यानी कंपन था, उसे अन्य संगीतकार कमी मानते थे, लेकिन अनिल दा ने उसे तलत की पहचान बना दिया।

सुरों का सफरनामा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त कीर्ति के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं अनिल बिस्वास की। दोस्तों, अब बात करते हैं अनिल दा के निजी जीवन की। उनकी पहली शादी अभिनेत्री आशा लता से हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने मशहूर गायिका मीना कपूर से विवाह किया। मीना जी की आवाज़ में उन्होंने कई बेहतरीन गीत रिकॉर्ड किए।

Yeah.

दोस्तों, अफसोस की बात है, जब अनिल दा अपने चरम पर थे तब फिल्म फेयर जैसे अवार्ड शुरू नहीं हुए थे, लेकिन उनकी प्रतिभा को भारत सरकार ने पहचाना। 1986 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार भी मिला। 1963 में अपनी फिल्म छोटी छोटी बातें के दौरान अपने भाई और बेटे की असामयिक मृत्यु से वे टूट गए और मुंबई छोड़ दिल्ली आ गए। यहाँ उन्होंने आकाशवाणी यानी AIR में नेशनल ऑर्केस्ट्रा का कार्यभार संभाला।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म लाजवाब से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में, संगीत बिल्कुल अनिल बिस्वास ने दिया था।

दोस्तों, अनिल बिस्वास साहब का संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक संस्था था। उन्होंने लता मंगेशकर को सांस लेने की तकनीक सिखाई जिससे उनकी गायकी में और निखार आया। लता जी अक्सर कहती थी कि अनिल दा जैसा संगीत का ज्ञान बहुत कम लोगों के पास है। 31 मई 2003 को

संगीत का ये सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया, लेकिन उनकी धुनें आज भी अमर है। शो को समाप्त करते हैं उनकी फिल्म तराना के उस गीत के साथ, जिसने भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दिया।

इस गीत को आपने सुना फिल्म बेकसूर से, जिसमें आवाज़ थी लता मंगेशकर की। ये फिल्म 1950 में आई थी और इसके बोल एहसान रिज़वी ने लिखे हैं, संगीत अनिल बिस्वास और इनके साथ हंसराज बहल का था।

श्रोताओं, सुरों का सफरनामा कार्यक्रम में आज इतना ही, और उम्मीद है अनिल दा की यादों का ये सफर आपको पसंद आया होगा। अब अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए सुरों का सफर कारण सफरनामा कार्यक्रम से इजाजत। छोड़े जा रही हूँ आपको इस गीत के साथ।

0: गीत आपने सुना सुरों का सफरनामा कार्यक्रम में, और अब सुरों का सफरनामा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 1 बजने वाले हैं। अब हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5ों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नवन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस

0: इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती है। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम का सामना आज चीन से होगा, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिम राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रॉयलसीमा, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका आज बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। शुभेंदु अधिकारी took oath as the first BJP chief minister of West Bengal yesterday. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agni Mitra Paul, Ashok Kirtaniya, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP-ruled states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of BJP attended the ceremony. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay yesterday met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay said to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu today. Tamilaga Vetri Kadagam, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, VCK and the Indian Union Muslim League, that is IUML. The top brass of the Congress party yesterday held a meeting in New Delhi to discuss government formation in Kerala. The meeting, convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence, was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state Deepa Das Munshi, general secretary organization KC Venugopal, and senior Kerala leaders Ramesh Chenithala and V.D. Satishan. The party said Congress Chief Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister and the name will be announced very soon. Prime Minister Narendra

यह आकाशवाणी दिल्ली का AR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 1:10 अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत सुनहरे। इस कार्यक्रम में हम आनंद लेते हैं पुराने फिल्मी नगमों का। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको उस दौर में जहाँ के गीत आज भी हमारे दिल में बसे हुए हैं। सबसे पहला मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में आ रहा है फिल्म मेरा घर मेरे बच्चे, संगीत हसरत जयपुरी का है।

अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म है जिस देश में गंगा बहती है। लता मंगेशकर, गीता दत्त, मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर व अन्य साथियों की आवाज़ों में, बोल शैलेंद्र के हैं और संगीत से पिरोया है शंकर जयकिशन ने।

आपने सुना हम हिंदुस्तानी फिल्म का टाइटल ट्रैक मुकेश व अन्य आवाज़ों में उषा खन्ना का संगीत था। अगला गीत सविता बनर्जी की आवाज़ में, आइए सुनते हैं।

गीत सुनहरे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से। लता मंगेशकर का स्वर है, शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा है और शंकर जयकिशन ने संगीत दिया था।

गीत सुनहरे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, और अब इस कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं फिल्म आशा से यह अगला गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है, आनंद बख्शी की बोल है, और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: गीत सुनहरे कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नवन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलग्म

वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोक भवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला परसद बिसेसर के साथ ट्रिनिडाड और टोबैगो के नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप का वो स्थान है जहां गिरमिटिया भारतीय मजदूर सबसे पहले ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। डॉक्टर जयशंकर ने नेल्सन द्वीप पर त्वरित प्रभाव परियोजना के लिए डॉक्टर कमला परसद बिसेसर के साथ भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय सहायता संघ समर्थित ये परियोजना एक अमर यात्रा की साझा विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

0: इसी गीत के साथ नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत बहार अब यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। सुबह के माफ कीजिएगा 3 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने की और उनके आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नबन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल N. रामास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति N. रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल K. कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, रात्रि के 3:10 और ठीक 40 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत गजल।

कौन है जो एक साये की तरह मेरे दिल को छूता हुआ गुजर जाता है, कभी पास से कभी दूर से, एक आवाज, एक नगमा, एक गीत बनकर रग रग में उतर जाता है, कभी पास से कभी दूर से। कौन है जो मुझे अपनी तन्हाई का एहसास दिला जाता है, एक खालीपन, सूनापन छोड़ जाता है। मैं उसे देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, उंगलियों से उसके चेहरे को छूना चाहती हूँ। कौन है जो पास रहकर भी मुझसे दूर है, कदमों की आहट सुनती हूँ, पलटती हूँ, उसे देखती हूँ, तस्वीर बन जाती हूँ, खुद को भूल जाती हूँ, बेखुद हो जाती हूँ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। आप सुन रहे हैं गीत गजल कार्यक्रम अपने दोस्त मोहन के साथ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। श्रोताओं, प्रातः के 4 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे और वे कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल नबन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज चेन्नई पहुंचेंगे। विजय आज चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल N. रंगास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति N. रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए खरीद संबंधी अनुपालन दिशा निर्देशों की नियमावली लागू करके केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत बाहरी स्रोत और संविदा कर्मचारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य वेतन का समय पर भुगतान, सामाजिक सुरक्षा अंशदान का अनिवार्य भुगतान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही। आई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए अब सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम। प्रस्तुति मिनी एन की है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 मई सन 2026। श्रोताओं, प्रातः के 4:54.15 हुए हैं। इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

श्रोताओं, आइए आपको इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 5:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसमें देशभक्ति गीत आप सुन पाएंगे। 5:20 पर आओ योग करें कार्यक्रम प्रसारित होगा, जिसमें आप ताड़ आसन और कंधे के आसन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 5:30 का समय स्वर रंजनी कार्यक्रम का है। हमारी प्रातःकालीन सेवा 6:00 आरंभ होगी हिंदी समाचारों के साथ। 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। 6:10 का समय वंदना कार्यक्रम का है, जिसके अंतर्गत आप भक्ति संगीत के रस से सरोवर हो सकेंगे। 6:40 पर चिंतन, और आज के चिंतन में स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आप सुनेंगे। 6:45 पर रामचरितमानस से बाल कांड भाग 52 प्रसारित किया जाएगा। 6:55 पर संस्कृत समाचार होंगे। संस्कृत समाचारों के उपरांत 7:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। हिंदी समाचारों के बाद 7:05 का समय अंग्रेजी समाचारों का है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: श्रोताओं, प्रातः के 5 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे दिन के 11 बजे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद जाएंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रूपये की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुड्डेबेलूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा के तहत महत्वपूर्ण सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। ये अस्पताल हैदराबाद में अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दौरान श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे और कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया है। तमिलनाडु में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के कई प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारे संवाददाता ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज चेन्नई पहुंचेंगे। कई वरिष्ठ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल के नेता, फिल्मी हस्तियां और पार्टी कार्यकर्ताओं के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि केरलम के नए मुख्यमंत्री का निर्णय पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का होगा और जल्द ही नाम की घोषणा कर दी जाएगी। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगासामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगासामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। रंगासामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए खरीद संबंधी अनुपालन दिशा निर्देशों की नियमावली लागू करके केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत बाहरी स्रोत और संविदा कर्मचारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य वेतन का समय पर भुगतान करना, सामाजिक सुरक्षा अंशदान का अनिवार्य भुगतान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानून के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन तंत्र सुनिश्चित करना है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी चौखन, आपके योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे शोल्डर जॉइंट्स प्रॉब्लम पर। शोल्डर जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो बहुत ही मोबाइल जॉइंट है और सबसे ज्यादा मूवमेंट इसी जॉइंट में पाई जाती है। इसकी मोबिलिटी के साथ साथ शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इसके लिए शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हमें प्रतिदिन क्या जरूरी है, योग करना जरूरी है। शोल्डर जॉइंट की समस्या जैसे शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर और बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स में भी शोल्डर प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। शोल्डर जॉइंट की सर्जरी होने के बाद भी शोल्डर जॉइंट मूवमेंट में कई बार रुकावट आ जाती है। इन समस्याओं से निदान पाने के लिए आप योग में शोल्डर जॉइंट के लिए सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। आज मैं आपको एक सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर और दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। श्वास छोड़ते हुए यानी ब्रीद आउट करते हुए दोनों कोहनियों को वक्षस्थल के सामने मिलाएं। अब श्वास भरते हुए यानी ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्र आकार घुमाएं। ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की ओर लेकर जाएं और ब्रीद आउट करते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। दोनों कोहनियों को चेस्ट रीजन के सामने स्पर्श करने की कोशिश करें। पीछे की ओर भी कोहनियों को खींच कर घुमाएं। इस प्रकार पूर्ण रूप से दोनों कोहनियों को पहले 4 से 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 4 से 5 बार घुमाएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। इस योगिक क्रिया के अभ्यास में शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और उसमें होने वाले रक्त संचालन भी बढ़ता है। अगर आप यह अभ्यास प्रतिदिन मॉर्निंग में करते हैं तो आपके शोल्डर जॉइंट हेल्दी रहता है और उसमें होने वाली रुकावट से भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज हमने शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी को, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, उसकी मांसपेशियों को आप किस प्रकार मजबूती प्रदान कर सकते हैं एक सिंपल छोटी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया के साथ, जिसको हम शोल्डर मूवमेंट्स कहते हैं। तो आज के लिए हमारी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया थी शोल्डर मूवमेंट।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज हम करेंगे सबसे सरल व सुखद आसन ताड़ासन, जिसे कहीं भी ऑफिस में, घर में, किसी भी प्रकार के कार्यस्थल पर सावधानी से किया जा सकता है, जिसको करने से पैर के तलवे से लेकर सर की चोटी तक समस्त मांसपेशियां स्वस्थ होती हैं, विशेष रूप से हमारी पसलियां एवं विष्ठ की मांसपेशियां। जानते हैं इसे करने का तरीका। दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की हथेलियों को साथल से, जंघा से मिलाकर रखें, धीरे से श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में फंसाएं और श्वास भरते हुए सामने की ओर से ऊपर की ओर ले जाएं, ऊपर की ओर थोड़ा खिंचाव दें, धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाएं, समस्त भार अपने पैर के पंजों पर ले आए। तीन लंबे गहरे श्वास लें और प्रत्येक श्वास के साथ शरीर में और ऊपर और ऊपर और ऊपर स्ट्रेच करें, खिंचाव दें। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस पुरानी स्थिति में आ जाए। दोबारा इस आसन को करने के लिए अपनी उंगलियों को आपस में फंसाएं, श्वास भरते हुए पुनः ऊपर की ओर ले जाएं। इस बार एड़ियों को ना उठाएं, पूरा ऊपर की ओर खिंचाव दें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी ओर झुकाएं, कुछ देर रुकें, श्वास भरते हुए फिर ऊपर की ओर खिंचाव दें और श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर झुकाएं, पूरे शरीर में खिंचाव अनुभव करें। श्वास भरते हुए फिर बीच में आएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं, पुरानी स्थिति में वापस आ जाएं। इस आसन को दो या तीन आवृत्ति दोहराएं, रिलैक्स अनुभव करेंगे। कहीं भी इस आसन को कर सकते हैं, अपने शरीर के तनाव को दूर करने के लिए, अपने को स्वस्थ अनुभव करने के लिए तनाव अथवा थकान की अवस्था में। धन्यवाद। और विशेष रूप से यह आसन बच्चों के लिए और भी ज़्यादा लाभकारी है, उनकी लंबाई बढ़ाने में। विशेष रूप से 25 वर्ष तक की उम्र के लोग इस आसन को रोजाना 2-3 बार करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी लंबाई भी बढ़ने की संभावना है। धन्यवाद।

आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं। क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर प्रस्तुत है देश भक्ति संगीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वर रंजनी। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे राग अहीर भैरव, सारंगी पर संगत हफीजुल्ला हाँ की है।